और वही है जिसने दो समंदरों को मिला रखा है, एक लजीज व शीरी और दूसरा तल्ख व शोर, और दोनों के दरमियान एक पर्दा हायल है, एक रुकावट है जो उन्हें गडमड होने से रोके हुए है। और वही है जिसने पानी से एक बशर पैदा किया, फिर उससे नसब और ससुराल के दो अलग सिलसिले चलाए। तेरा रब बड़ा ही कुदरत वाला है। उस खुदा को छोड़कर लोग उनको पूज रहे हैं जो न इनको नफा पहुंचा सकते हैं न नुकसान, और ऊपर से मजीद ये कि काफिर अपने रब के मुकाबले में हर बागी का मददगार बना हुआ है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमको तो हमने बस एक बशारत देने वाला और खबरदार करने वाला बनाकर भेजा है। इनसे कह दो कि मैं इस काम पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, मेरी उजरत बस यही है कि जिसका जी चाहे वो अपने रब का रास्ता इख्तियार कर ले। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस खुदा पर भरोसा रखो जो जिंदा है और कभी मरने वाला नहीं, उसकी हम्द के साथ उसकी तस्बीह करो। अपने बंदों के गुनाहों से बस उसी का बाखबर होना काफी है। वो जिसने 6 दिनों में जमीन और आसमानों को और उन सारी चीजों को बनाकर रख दिया जो आसमानों और जमीन के दरमियान है, फिर आप ही अर्श पर जलवा फरमा हुआ रहमान, उसकी शान बस किसी जानने वाले से पूछो। इन लोगों से जब कहा जाता है कि इस रहमान को सजदा करो तो कहते हैं रहमान क्या होता है, क्या बस जिसे तू कह दे उसी को हम सजदा करते फिरें? ये दावत इनकी नफरत में उल्टा और इजाफा कर देती है। बड़ा मुतबर्रिक है वो जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और उसमें एक चराग और एक चमकता चांद रोशन किया। वही है जिसने रात और दिन को एक दूसरे का जानशीन बनाया, हर उस शख्स के लिए जो सबक लेना चाहे या शुक्रगुजार होना चाहे।

من علينا بأعظم طلب، من علينا بأشرف طلب، واجعلنا من

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد

إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل

0: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहु। दोस्तों, मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ आइए जानते हैं वजारत दाखला से वीकली अपडेट।
1: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सरवर एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में। एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारत दाखला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। एमओआई वीकली अपडेट, एमओआई वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद आरजे सरवर, विद आरजे सरवर।
0: रियासत कतर की तरफ से वजारत दाखला के वकील शेख अब्दुल्ला बिन खलीफा बिन हत्ताब अल काबी ने रियाद में मुनक्किद कतर और सऊदी अरब के दरमियान सिक्योरिटी और मिलिट्री कमेटी वर्किंग ग्रुप के छठे इजलास में कतरी वफ्द की क़यादत की। सऊदी वफ्द की सरबराही ममलकत सऊदी अरब के वजीर दाखला के असिस्टेंट मिनिस्टर डॉक्टर हिशाम बिन अब्दुलरहमान अल फाले ने की। दो तरफा इजलास के दौरान दोनों ब्रदर ममालिक के दरमियान मुश्तरका सिक्योरिटी और मिलिट्री से मुतालिक कई अहम एजेंडा पर गुफ्तगू की गई। इस मौके पर मुश्तरका प्रोजेक्ट्स और तावन के इकदामात के सिलसिले में किए गए इकदामात का जायजा लिया गया, जो दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तहकम तावन और हम आहंगी को मजीद फरोग देने की मुसलसल कोशिशों का हिस्सा है। इजलास ने इस बात की एक बार फिर तस्दीक की कि कतर और सऊदी अरब सिक्योरिटी और मिलिट्री शराकत, निजाम और यकजहती को मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। इसके अलावा दो तरफा तावन और राबते के निजाम को तरक्की देने और उसे मजीद मुअसर बनाने की अहमियत पर भी जोर दिया गया। वजीर दाखला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अलसानी ने अमेरिका के दौरे के दौरान फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर केशव पाटिल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दो तरफा कायम सिक्योरिटी तावन का जायजा लिया गया और बहामी हम आहंगी को मजीद फरोग देने के साथ साथ तजुर्बात और महारत के तबादले के तरीकों पर भी तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा दोनों ही तरफ से मुश्तरका दिलचस्पी के कई अहम मौजूदात पर बातचीत की गई और सिक्योरिटी शराकत को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए मुसलसल राबते और ताबुन की अहमियत पर जोर दिया गया। ये मुलाकात कतर और अमरीका के दरमियान मजबूत दो तरफा ताल्लुकात और सिक्योरिटी के मैदान में करीबी ताबुन को मजीद तरक्की देने की मुश्तरका ख्वाहिश का इजहार है। पुलिस अकेडमी के सिक्योरिटी रिसर्च एंड स्टडीज सेंटर ने अर्रैयान सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के तावन से जुर्म की रोकथाम में इदारती हम आहंगी के उनवान से एक सेमिनार का अहतमाम किया। सेमिनार का मकसद कौमी इदारों के दरमियान शराकत को मजबूत बनाना, जुर्म की रोकथाम के निजाम को फरोग देना और माशरती अमन व अमान को मुस्तहकम करना था। सेमिनार में डायरेक्टर जनरल ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी मेजर जनरल मोहम्मद जासिम अल सुलैती, डायरेक्टर ऑफ द पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट मेजर जनरल अब्दुल्ला खलीफा अल मुफ्ता और पुलिस अकेडमी के प्रेसिडेंट मेजर जनरल अब्दुर्रहमान माजिद अल सुलैती ने शिरकत की। इसके अलावा मुतअद्दिद इदारों के डायरेक्टर्स, अफसरान और मुतालिक इदारों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। सेमिनार के दौरान दो इजलासों में मुश्तमिल 6 महाराना मकालात पेश किए गए, जिनमें जुर्म की रोकथाम में कौमी इदारों के किरदार और बचाव से मुतालिक आगाही को फरोग देने के पहलुओं पर रोशनी डाली गई। शुरका ने इस बात पर जोर दिया कि मुआशरे में अमन और इस्तेहकाम को मजीद मजबूत बनाने के लिए कौमी कोशिशों में हम आहंगी, इदारती शराकत की तरक्की और आगाही प्रोग्राम को वसत देना नहायत अहम है। सेमिनार ने जुर्म की रोकथाम के लिए मुश्तरका जिम्मेदारी और इदारों के दरमियान करीबी तावन की अहमियत को उजागर किया। रियासत कतर ने रियाद में गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के जनरल सेक्रेटरीट के हेडक्वार्टर्स में मुनक्किद कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज के 38वें इजलास में शिरकत की। ये इजलास गल्फ ड्रग प्रिवेंशन वीक के मौके पर मुनक्किद किया गया। वजारत दाखिला के वफ्द की क्यादत असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ ड्रग इन्फोर्समेंट कर्नल तारिक अली अल फराहिद अल मालकी ने की। इजलास के दौरान GCC ममालिक के दरमियान ड्रग से मुतालिक जराइम के खिलाफ मुश्तरका तावन और हम आहंगी को मजीद मजबूत बनाने के तरीकों पर बातचीत की गई। इसके साथ साथ तजुर्बात और मालूमात के तबादले और ड्रग्स के खात्मे के लिए बचाव और सिक्योरिटी से मुतालिक कोशिशों को तरक्की देने पर भी तबादला ख्याल किया गया। शरका ने इस बात पर जोर दिया कि ड्रग्स के पहलुओं और इससे वाबस्ता जराइम को मुअस्सर मुकाबला करने के लिए जीसीसी ममालिक के दरमियान मुस्तहकम शराकत, मुसलसल राबता और मुश्तरका इकदामात नहायत अहम हैं। इजलास ने खित्ते में अमन व अमान के तहफ्फुज और मुआशरे को ड्रग्स के नुकसानात से बचाने के अज़्म का भी इजहार किया। रियासत कतर ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के रुकन ममालिक में जीसीसी एंटी ड्रग स्ट्रेटेजी 2025 से 2028 पर अमल दरामद की निगरानी के लिए कायम परमानेंट कमेटी के तीसरे इजलास में शिरकत की। ये इजलास रियाद में जीसीसी जनरल सेक्रेटरेट के हेडक्वार्टर्स में मुनक्किद हुआ। वजारत दाखिला के वक्त की क्यादत स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर कर्नल फैसल जासिम अल सुलैती ने की। इजलास के दौरान एजेंडा में शामिल कई अहम मौजूदात पर बातचीत की गई और जीसीसी एंटी ड्रग स्ट्रेटेजी के मकासद को मौसर अंदाज में हासिल करने के लिए मुख्तलिफ पेशरफ्त और इकदाम का जायजा लिया गया। शुरका ने ड्रग्स के खिलाफ बचाव, आगाही और सिक्योरिटी कोशिशों को मजीद मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया। इजलास के अख्तिताम पर मौजूदात के हवाले से मुनासिब सिफारिशात मंजूर की गईं ताकि जीसीसी ममालिक के दरमियान तआवुन, हम आहंगी और मुश्तरका कोशिशों को मजीद फरोग दिया जा सके। ये इजलास खित्ते को ड्रग्स के खतरात से महफूज बनाने और जीसीसी ममालिक के दरमियान मुश्तरका सिक्योरिटी और बचाव की हिकमत अमली को मजीद मुअस्सर बनाने की मुसलसल कोशिशों का हिस्सा है। वजारत दाखिला की जानिब से जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग इन्फोर्समेंट के जेरे एहतमाम मंशियत के इस्तेमाल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ बैनुल अक्वामी दिन के मौके पर पैलेस वेंडम मॉल में एक आगाही नुमाइश का इफ्तिताह किया गया। इस साल की मुहिम बाशऊर मुआशरा महफूज वतन के स्लोगन के तहत मुनक्किद की गई, जो अरब वीक और गल्फ वीक फॉर ड्रग प्रिवेंशन के साथ हम आहंग है। नुमाइश में वजारत दाखिला के मुख्तलिफ इदारों और मुतालिका शुरका इदारों ने शिरकत की। नुमाइश का इफ्तिताह असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ

0: ड्रग इन्फोर्समेंट कर्नल तारिक अली अल मालकी ने किया। इस मौके पर मुतअद्दिद डायरेक्टर्स, अफसरान, जिम्मेदारान और शिरकत करने वाले इदारों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। नुमाइश में तालीमी और आगाही स्टॉल्स कायम किए गए, जहां ड्रग्स के नुकसानात, बचाव के तरीके और फर्द, खानदान और मुआशरे पर उनके मनफी असरात के हवाले से मालूमात फराहम की गई। ज़ायरीन को ड्रग्स के खतरात से आगाह करने और उनके खिलाफ मुआशरती जिम्मेदारी को उजागर करने पर खास तवज्जो दी गई है। दोस्तों, सिक्योरिटी सर्वेलेंस कैमरास जुर्म रोकने और उनकी डिटेक्शन में मदद करते हैं। ये इंश्योर करें कि ये कैमरास सिर्फ लाइसेंस्ड और अप्रूव्ड कंपनीज के जरिए इंस्टॉल किए गए हों, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के सिक्योरिटी सिस्टम डिपार्टमेंट के साथ लाइसेंस्ड या रजिस्टर्ड हैं। ये आपकी प्राइवेसी की हिफाजत करते हैं और सेफ्टी को इनहेंस करते हैं। सिक्योरिटी सर्वेलेंस कैमरास आजकल हर जगह जरूरी हो चुके हैं, घर से लेकर ऑफिस तक। ये कैमरास न सिर्फ जुर्म की रोकथाम में मदद करते हैं, बल्कि किसी भी हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन में भी मददगार साबित होते हैं। याद रखिए, अनऑथराइज्ड कंपनीज के थ्रू लगवाए गए सिस्टम आपकी प्राइवेसी के लिए रिस्क बन सकते हैं। सिर्फ लाइसेंस्ड कंपनीज ही आपकी डेटा प्रोटेक्शन और कैमरा कवरेज के हवाले से प्रॉपर गाइडेंस देती हैं। कैमरास को एंट्रेंसेस, एग्जिट्स और पार्किंग एरियाज में इंस्टॉल करें। ये आपके लिए जहनी सुकून का बाइस बनते हैं, खासकर जब आप घर या ऑफिस में नहीं होते। सामईन, इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वीकली अपडेट का सिलसिला अपने अख्तिताम को पहुंचा। अगली मुलाकात तक के लिए प्रोग्राम डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए, और याद रखिए, कानून की पासदारी और एहतराम कीजिए, कानून आपकी हिफाजत करेगा।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिस पे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिस पे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती है। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।
1: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
2: दोस्तों अरबी जबान की कहावत है जो इंसान के एक आम रवैये की तस्वीर भी तर्रार व तशर्रत यानी मांगने वाला और ऊपर से शर्तें भी लगा रहा है। ये कहावत तब कही जाती है जब कोई मोहताज या साहिल आपसे मदद मांगे, जब उसे कुछ देते हैं तो उसे लेने में तरद्दुद करे या कहे ये कम है ज्यादा चाहिए मैं ये नहीं लूंगा उसकी जगह वो दे दो या शराइत तय करने लग जाए। गोया वो खुद तो मोहताज है मगर मुतालिबे उसके बड़े हैं। अरब इस रवैये को मजाकन और तंजन बयान करते हुए कहते हैं तर्रार व यश्तरित यानी भिखारी और नखरे भी। हमारे यहाँ भी मशहूर मुहावरा है कि भिखारी के नखरे, गोया मांगने वाला शर्तें लगाए तो बहुत ताज्जुब की बात समझी जाती है। ये कहावत हमें ये सिखाती है कि इंसान को अपने हालत के मुताबिक गुफ्तगू रवैया और तवक्कात रखनी चाहिए। जो मदद ले रहा हो उसमें शुक्रगुजारी होने चाहिए न कि नखरे और मुतालिबे। इसीलिए अरब कहते हैं तर्रार व तशर्रत भिखारी और ऊपर से शर्तें भी लगाता है।
3: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिन किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। दिन भर की थकन, मसरूफियात और जिम्मेदारियों के बाद जब रात आती है तो इंसान सुकून और आराम की तलाश में अपने बिस्तर की तरफ जाता है। नींद अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है जिसके जरिए जिस्म ताजगी पाता है, जहन को राहत मिलती है और इंसान अगले दिन के लिए कुव्वत हासिल करता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने से पहले बिस्तर पर लेटने के बारे में भी एक खूबसूरत सुन्नत सिखाई है। ये कैसी सुन्नत है जिसके अंदर बेक वक्त हिफाजत, सफाई और एहतियात सब के सब मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे सोने से पहले बिस्तर को छाड़ने की सुन्नत पर। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स बिस्तर पर लेटने का इरादा करे तो पहले अपना बिस्तर अपने इजार के अंदरूनी किनारे से झाड़ ले, क्योंकि वो नहीं जानता कि उसके पीछे उसकी बेखबरी में क्या चीज उस पर आ गई है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे हमें कि ये भी सिखाया कि बिस्तर पर लेटने से पहले उसका जायजा भी ले लिया करो, क्योंकि इंसान नहीं जानता कि उसकी गैर मौजूदगी में वहां क्या आया होगा। किसी कीड़े मकोड़े का आ जाना कोई नुकसान दे चीज, ये कोई ऐसी चीज जो इंसान की नजर से ओझल हो। इस्लाम एहतियात सिखाता है और एहतियात भी इबादत बन जाती है जब वो सुन्नत के मुताबिक हो। एक वक्त यहाँ सफाई का मामला भी है, लेकिन एक मुसलमान के लिए उससे बढ़कर ये सुन्नत है। जब आप बिस्तर झाड़ते हैं तो सिर्फ गर्द नहीं हटा रहे होते, बल्कि आप अपने सर ताज खातम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को जिंदा कर रहे होते हैं और यही नीयत एक आम अमल को इबादत में बदल देती है। सामिन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफ जमान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मासलामा।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। लिसनर्स, हमारे फुट, हमारे पाँव की जो सेहत है और रोज़ाना देखभाल के बारे में आज हम बात करेंगे कि हमारे पाँव हमें चलने, दौड़ने और डेली जो हम काम कर रहे होते हैं उसमें मदद देती हैं, इसलिए इनका ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये है कि हम किस तरह से चल सकते हैं, यानी अपने पाँव की हिफाजत कैसे कर सकते हैं, क्योंकि चलना तो है ही, तो उसके लिए फिर कंफर्टेबल शूज़ होने चाहिए, ब्रीदेबल सॉक्स आप देखिए, और इसी तरह से बहुत हाई हील जो हैं और बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए आप उसे ना पहनिए, और जो अगर आपके पुराने शूज़ हैं ठीक नहीं आपसे चला जा रहा है या आपको वो डिसकम्फर्ट कर रहे हैं तो आप उन्हें बदल दीजिए। और इसी तरह से जो अपने पाँव हैं उनकी जो डेली फूड हाइजीन है उसकी तरफ हमें ज़रूर तवज्जो देनी है, उसे वॉश करना है अपने जो पाँव हैं और उन्हें ड्राई करना है मुकम्मल तौर पर, इसी तरह नेल ट्रिमिंग करनी है, मॉइस्चराइज करना है टू प्रिवेंट द क्रैक्स आ जाते हैं तो उसके लिए मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है, फंगल इन्फेक्शन जो हैं वो इससे प्रिवेंट भी होंगी, और मतलब आप फंगल इन्फेक्शन जो कि बहुत आम है पाँव में हो जाती हैं तो उससे हम दूर रह सकते हैं, और अगर खासा कोई डायबिटिक है तो फिर उसके लिए बहुत स्पेशल केयर ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर ब्लड शुगर लेवल जो है वो आपका सही नहीं है तो उससे जो हमारे पाँव की सेहत है बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। इसी तरह से अगर कोई छोटा भी ज़ख्म है तो उसे चेक कीजिए, देखिए कि आपके पाँव के ऊपर कोई रेडनेस तो नहीं है या कहीं कोई सूजन, कोई स्वेलिंग तो नहीं है। अगर आप ऐसा कुछ भी महसूस करें तो फौरन अपने डॉक्टर से आप रुजू कीजिए, और रेगुलरली अगर आप अपने पाँव चेक करवाते रहें तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। इसी तरह से जो एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कि अपने पाँव को स्ट्रेंथन करने के लिए टो कर्ल्स हैं, एंकल रोटेशंस हैं, और इसी तरह से जो सॉफ्ट सर्विसेज हैं उनके ऊपर अगर आप नंगे पाँव चलते हैं तो ये भी एक एक्सरसाइज है, इससे सर्कुलेशन की इम्प्रूवमेंट होती है, और फिर बैलेंस जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी आप ज़रूर कीजिए। जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जैसे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, कॉर्न्स हो जाते हैं, उनकी तरफ आपने ज़रूर तवज्जो देनी है, और जो टाइट शूज़ हैं उन्हें अवॉइड कीजिए, और रोज़ या रोज़ाना की बुनियाद पर चेक ज़रूर कीजिए अपने पाँव को। और इसी तरह से अगर कोई भी मसला नज़र आता है, कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आप मेडिकल एडवाइस ज़रूर लीजिए। सेहतमंद पाँव रोज़मर्रा ज़िंदगी में आसानी होती है और मोबिलिटी जो है वो होती है, रोज़ाना छोटे इकदाम से पाँव मजबूत और महफूज रह सकते हैं। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।

0: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आज हम बात करेंगे शरीफ यूनुस के बारे में। शरीफ यूनुस कतर के मशहूर बीच वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं जो असल में सेनेगल में पैदा हुए, लेकिन बाद में वो कतर को रिप्रेजेंट किया। उनका टॉल और एथलेटिकली स्ट्रॉन्ग फ्रेम उन्हें बीच वॉलीबॉल के लिए परफेक्ट बनाता है। शरीफ ने अपने करियर में कतर की नेशनल टीम को वर्ल्ड स्टेज पर पहचान दिलाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। वो अपने पार्टनर अहमद तिजान के साथ मिलकर FIVB बीच वॉलीबॉल वर्ल्ड टूर और ओलंपिक गेम्स जैसे बड़े इवेंट्स में कतर की रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं। उनकी खेलने की स्टाइल एग्रेसिव ब्लॉकिंग और पावरफुल स्पाइक्स पर मबनी है। शरीफ कोर्ट पर बहुत फोकस्ड और डिसिप्लिन नजर आते हैं और उनकी टीम वर्क एबिलिटी उन्हें दुनिया की टॉप प्लेयर्स के मुकाबले में कॉम्पिटिटिव बनाती है। कतर ने बीच वॉलीबॉल में जो तरक्की की है उसमें शरीफ का बड़ा हाथ है। उन्होंने एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी शानदार परफॉर्मेंस दी है। शरीफ यूनुस सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि कतर के स्पोर्ट्स डेवलपमेंट का एक सिंबल बन चुके हैं। उनकी मेहनत, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन ने उन्हें इंटरनेशनल बीच वॉलीबॉल का एक रेस्पेक्टेड नाम बना दिया है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। आज हम बात करेंगे उन रोजमर्रा आदात के बारे में जो मर्द हजरात की सेहत को बेहतर बना सकती हैं। जो हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें ज्यादातर बैठे बैठे काम करने का रुझान बहुत ज्यादा हो गया है, जिससे वजन में इजाफा, कमर दर्द, डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा है। जरूरी नहीं है कि आप जिम जाएं या बहुत ही जो फास्ट जो वॉक है वो करें, या सीढ़ियाँ जो हैं वो इस्तेमाल अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, और इसी तरह से साइकिलिंग कीजिए या हल्की एक्सरसाइज भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। नींद को हमेशा तरजीह दीजिए और रोज़ाना 7 से 8 घंटे की मायारी नींद जिस्म को तवानाई देती है, ज़हनी कारकर्दगी बेहतर बनाती है और बीमारियों के ख़तरे को कम करती चली जाती है। बढ़ती हुई उम्र के साथ प्रोस्टेट के मसाइल और बाज़ इकसाम के कैंसर का ख़तरा बढ़ सकता है, और अगर यूरिन में दुश्वारी हो, बार बार यूरिन आए या कोई गैर मामूली अलामत महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से राबिता कीजिए। मुसलसल जहनी दबाव दिल की बीमारियां और हाई ब्लड प्रेशर का सबब बनता है, इसलिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, मुराकबा कीजिए। वर्जिश और ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना हमारे जहनी सुकून को ज़्यादा बेहतर बनाता है। दोस्तों और ख़ानदान के साथ मजबूत ताल्लुकात जहनी और जिस्मानी सेहत पर मुस्बत असर डालते हैं। तन्हाई और समाजी दूरी जहनी दबाव को ज़्यादा कर सकती है। तो लिसनर्स, ख़ास तौर पर हमारे मर्द हजरात, हमारे जो भाई हैं, उनके लिए सेहतमंद ग़िज़ा, बाकायदा वर्जिश, अच्छी नींद और बरवक्त जो तिबी मुआयना है वो आपकी सेहत के बुनियादी उसूल हैं। आज ही अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक मुस्बत तब्दीली लाइए और सेहतमंद मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाइए। सेहतमंद रहिए और खुश रहिए।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। One step to 2030.
2: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One Step to 2030.
2: आज के सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ इनोवेशन मिनट्स पर। जी हाँ, आज के इस फास्ट पेस दुनिया में इनोवेशन मिनट्स का कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब ये है कि छोटी यानी कुछ मिनट्स के अंदर ही अपने नए आइडियाज को सच्चाई या ये कहो कि ग्राउंड लेवल पर लेकर आना। इनोवेशन सिर्फ बड़ी डिस्कवरीज तक महदूद नहीं है, बल्कि रोजाना जिंदगी के छोटे इम्प्रूवमेंट्स भी इनोवेशन का हिस्सा होते हैं। जी हाँ, इनोवेशन असल में नए आइडियाज, मेथड्स या प्रोडक्ट्स क्रिएट करने का प्रोसेस है जो जिंदगी को बेहतर बनाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर इनोवेशन किसी बड़ी मशीन या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो। कभी कभी एक सिंपल आइडिया जिसमें काम को आसान बनाना या टाइम बचाना भी इनोवेशन का एक हिस्सा होता है। इनोवेशन मिनट्स का मतलब ये है कि इंसान अपनी डेली रूटीन में थोड़ा सा टाइम निकाले, सोचे समझे और फिर कुछ चीजों को एनालाइज करे। जब हम अपने काम को डिफरेंट एंगल से देखते हैं तो हमें नए सॉल्यूशंस मिलते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई स्टूडेंट अपनी स्टडी का तरीका चेंज करे या कोई एम्प्लॉई अपने काम को फास्ट और बेटर करे तो ये भी तो इनोवेशन ही हुआ ना। आजकल इनोवेशन हर जगह नजर आता है। स्मार्टफोन्स, ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सब इनोवेशन की मिसालें हैं जो हमारी और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं। ये इन्वेंशन इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि इन्होंने लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और उनकी जरूरियात को समझा। इनोवेशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये प्रोग्रेस और ग्रोथ को प्रमोट करता है, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, नए जॉब्स क्रिएट करता है और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। इसके साथ साथ इनोवेशन सोसाइटी के बड़े प्रॉब्लम्स, चाहे फिर एनवायरमेंट हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इनके सॉल्यूशंस भी देता है। जी हाँ, इनोवेशन मिनट्स हमें ये सिखाती है कि चेंज लाने के लिए हमेशा ज्यादा टाइम नहीं चाहिए बल्कि सोच चाहिए। कभी कभी सिर्फ कुछ मिनट्स ही क्रिएटिव थिंकिंग के लिए, नए आइडिया के लिए काफी हो जाते हैं। और ये हैबिट अगर रोजाना डेवलप हो तो इंसान अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकता है। बस आखिर में कहना जरूरी है कि इनोवेशन सिर्फ एक्सपर्ट्स का काम नहीं है, ये हर इंसान अपने लेवल पर जरूर कर सकता है। जब हम अपने नए आइडियाज को एक्सेप्ट करते हैं और इन पर काम करते हैं तो हम अपनी जिंदगी के साथ साथ सोसाइटी को भी बेहतर बनाते हैं। इसीलिए हर दिन कुछ इनोवेशन मिनट्स निकालिए, क्योंकि छोटी सी सोच कभी कभी बड़ा चेंज लेकर आती है। आपकी और मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: जी सामने के नाम, जैसा कि आप जानते हैं मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को काफ़ी आसान बना दिया है, लेकिन जहां आसानी है वहां कुछ मुश्किलात भी हैं। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि इस दौर में इलेक्ट्रॉनिक जराइम काफ़ी उभर रहे हैं और मंजरनामे पर काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। बैंकिंग फ्रॉड की बात करें, मेल हैकिंग की बात करें, ऑनलाइन ब्लैक मेलिंग या क्रेडिट कार्ड की चोरी वगैरह, ये सब जराइम जो हम रोज़मर्रा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर हमें नज़र आ रहा है। ओवरऑल आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि साइबर जराइम की अकसाम क्या हैं और ज़ाती मालूमात ईमेल और क्रेडिट कार्ड के हवाले से हम किसे इसको इन चीज़ों को कैसे महफूज रखें। अगर कोई शख्स इलेक्ट्रॉनिक ब्लैक मेलिंग का शिकार हो जाए तो वो क्या करे, कतर के कवानीन जराइम के बारे में क्या कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं जिनका ताल्लुक साइबर और इलेक्ट्रॉनिक साइबर और इक्तसादी जराइम के रोकथाम के इदारे से हैं, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गानिम लहदान अल मुहन्नदी। तो चलें पहले हम उनका इस्तकबाल करते हैं। सदना नरहब बिकुम सियात अल मुलाजिम अल अव्वल गानिम लहदान अल मुहन्नदी मिन इदारत मुकाफहत अल जराइम अल इक्तसादिया व अल इलेक्ट्रोनिया التابعة للوزارة الداخلية بدولة قطر. يا اهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج الشرطة والعوام.
1: مرحبتين يا هلا سعدنا.
0: الله يسلمك. الله يسلمك. فرصة سعيدة إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله ستكون الجولة مفيدة.
1: إن شاء الله.
0: ومحاور يعني تفيد الكل بإذن الله.
1: بإذن الله إن شاء الله.
0: سيادة الملازم بإذن الله يعني نبدأ بمحور الأول معك. قبل كل شيء نبي نعرف عن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية.
1: صحيح. التعرف الإدارة تم الإنشاء

0: वेलकम एक सामीन, एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम पुलिस और अवाम में। हम आपका मेज़बान तलहा शफ़ ज़मान, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फर्स्ट लेफ्टिनेंट गानिम लहदान अल-बुहन्नदी, जिनका ताल्लुक साइबर और इक्तिसादी जराइम से निमटने के इदारे से है। और जैसे कि हमने ब्रेक से पहले बताया था कि हम उनसे अब सवाल करेंगे कि भाई हम ईमेल वगैरह को कैसे महफूज और सेफ रखें, इस सिलसिले में वो हमें रहनुमाई पेश करेंगे। तो चलें हम हमारे मेहमान का रुख करते हैं। सैयद अल-मुलाज़िम अव्वल गानिम लहदान अल-मुहन्नदी, المحور يعني التالي: كيفية حماية البريد الإلكتروني من السرقة والقرصنة، ما هي النصائح سيادتك في هذا الخصوص؟
1: هذا ظل عمرك نصيحة، يجب دائما إجراء عملية التحقيق بخطوتين لتأمين الدخول إلى البريد الإلكتروني. يجب وضع وسائل آمنة إضافية في البريد الإلكتروني، كوضع رقم هاتف وبريد إلكتروني احتياطي.
0: صحيح.
1: ويجب الانتباه لعدم فتح الروابط من مصادر غير موثوقة.

0: काफ़ी वक्त हमारे साथ यानी इन तमाम मालूमात पर उन्होंने गुफ्तगू की, इस पर हमने उनका शुक्रिया अदा किया है। और बिलखसूस वजारत दाखिला की बात आ जाती है कि वो मुख्तलिफ अफसरान को हमारे यहाँ उनके जो मुख्तलिफ इदारे हैं जो जो खिदमात हैं इस सिलसिले में जो आगे की मुहिम वो चलाते हैं और आप लोगों तक ये बातें पहुँचाते हैं, हम तक ये बातें पहुँचाते हैं, तो इस सिलसिले में हम उनके शुक्रगुजार हैं। और आखिर में उन्होंने जो बात कही कि आप यानी अपने मालूमात को, अपने पर्सनल जो मालूमात हैं, बयानात हैं, इसकी हिफाजत करें, तो आखिर में ही प्रोग्राम के आखिर में वो सिर्फ़ आपको बता देंगे कि आपने अगर उनसे राबता करना है, मैं ही बता देता हूँ सामिन कराम, अगर आपने उनसे राबता करना है तो आप मित्राज से राबता कर सकते हैं, साथ साथ जो हॉटलाइन है वो भी ईमेल पर, वहाँ पर उनके अकाउंट वेबसाइट पर है, तो 6681-5757 है ये मोबाइल का नंबर, और उनका फ़ोन का नंबर है 2347-444, और ईमेल का नंबर भी दस्तियाब है। ओवरऑल हम सबको आज के इस प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, मासलाम।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ, रहिए अपडेटेड सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: आओ जी आओ, अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे। आइए आइए आइए आइए भाई साहब, बहुत बाहर ठंड हो रही है कब कभी छूट रही नहीं 50 डिग्री में, ऐसी खतरनाक ठंड। तो भाई इस गर्मी में प्लीज अपना ख्याल रखिए। मैं तो शो के स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर दे रहा हूँ भाई, गाड़ी में कोई भी प्लास्टिक की बोतल मत रखना भरी हुई, ना तो परफ्यूम रखना और ना ही साथ में किसी किस्म का लाइटर वाइटर, ठीक है? ये पहले ही मैं डिस्क्लेमर से शुरुआत कर रहा हूँ। वेलकम टू कतर 2026 बिकॉज आई वॉन्ट यू टू प्लीज गो आउट एंड एंजॉय। क्या मेरी तरह घर पे, मैं भी जा रहा हूँ, बेचारा हूँ सभी तो कतर 2026 वो शो है जिसमें मैं दोहा वाला कबीर आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, कहाँ कहाँ इवेंट्स हो चुके हैं जो आपकी नजरों से गायब हो गए और कौन से इवेंट्स होने वाले हैं। बहुत सारा लेखा जोखा लेकर आया हूँ मैं, तो बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हैं जो हो रहे होंगे एज आई एम स्पीकिंग टू यू राइट नाउ, और बहुत सारे हो चुके होंगे। ओके, तो लेट्स बिगिन विद सेम चीज, स्टेकेशन कर लो भाई, स्टेकेशन प्लीज जाइए वीकेंड पे। सबसे पहले सारे इवेंट छोड़ छाड़ के अपनी फैमिली को लेकर या अकेले या गर्ल्स नाइट आउट कुछ तो करें भाई। ख्वातीन इसमें हमसे बहुत बेहतर होती है, लड़कों का क्या है वो तो मिल लिए चाय पी ली खत्म हो गया हमने, जो जो ख्वातीन है वो अच्छे से मैनेज कर लेती हैं, तो व्हाई नॉट गर्ल्स नाइट आउट के लिए बहुत सारी जगहें हैं, या फिर जो स्टेकेशन है उसमें लड़कियों के ग्रुप के लिए बहुत सारे ऑफर्स हैं, वो देखें। ऑल द फीमेल्स, शाउट आउट टू ऑल द फीमेल्स, आप बहुत बहुत बहुत बहुत मेहनत करती हैं माशाल्लाह, और आप जो है आगे जाएं, मजे करें, आप अपने ग्रुप बनाइए और निकल जाइए स्टेकेशंस में कपल्स के लिए, ग्रुप ऑफ गर्ल्स के लिए। बॉयज आई एम रियली सॉरी, हमारे लिए कुछ नहीं है चाय पियो बेटे चाय, और बाकी इवन इफ यू आर सिंगल आप जाइए मजे कीजिए, स्टेकेशंस आर देयर बहुत सारे होटल्स हैं कतर में, और हर होटल की खासियत है, हर होटल के पास ऑफर है, और हर होटल कुछ ना कुछ ऐसा जो आपको रोके रखेगा। यहाँ पे वाला सिस्टम नहीं है कतर में, अल्हम्दुलिल्लाह वाला सिस्टम नहीं है जहाँ पे सिर्फ फैंसी सी चादर रख दी और फैंसी से पर्दे लगा दी, ना, होटल्स आर रियली रियली फैंसी ब्रो, और बजट में होते हैं, सो डू एंजॉय दैट फर्स्ट। बाकी अब मैं इवेंट बताना शुरू करता हूँ, एंड उससे भी पहले एक लास्ट चीज प्लीज, सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं, प्लीज जुड़िएगा। और अगर आप मुझसे भी अभी तक नहीं जुड़े हुए तो मेरे समझ नहीं आया क्यों, मुझे ढूंढने की कभी चाहत नहीं आई, बस टाइप करो सर्च इंजन में जाके दोहा वाला कबीर .FM 107। ओके शुरू करें। तो देखिए इस महीने एक बड़ा ही खास इवेंट है जो शायद आप सुन रहे होंगे तो पता नहीं खत्म हो चुका होगा या हो रहा होगा। इस इवेंट का जो इस इवेंट को कराने वाले जो लोग हैं वो है DFI सिनेमाज यानी दोहा फिल्म इंस्टीट्यूट, और इनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, इनको पता भी नहीं नहीं पता है ये एक लौते लोग हैं जिनके फैन है, जिनके मैं फैन हूँ, और इंस्टीट्यूट है उसका मैं फैन हूँ। तो ये इंस्टीट्यूट बहुत कमाल का है, यहाँ पे काफी टैलेंटेड राइटर्स, डायरेक्टर्स, स्क्रीन राइटर्स, कंटेम्प्रेरी राइटर्स, सिनेमेटोग्राफर सब आते हैं, और इस बार उन्होंने रखा है कंटेम्प्रेरी रिलीजेस, और वो लेकर आ रहे हैं जॉर्जियो एम उनकोव्स्की, सन डांस विनिंग डीजे जिनका नाम है डीजे अहमद, ये

म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट ऑडिटोरियम में 24 से 27 जून को परफॉर्म करेंगे, ऐसा डेट बताई गई है। आई थिंक जब आप सुनेंगे तो परफॉर्म कर चुके होंगे। एंड ये परफॉर्मेंस की वीडियोस आप इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं DFI की, बिकॉज DFI इस पूरे साल में और भी बहुत सारे इवेंट करने वाला है। तो बेसिकली एक विलेज है इन मैसेडोनिया, एंड वहां से भी फिल्म निकल के सामने आई है, उस फिल्म को दिखाया जाएगा। एंड बहुत कमाल की फिल्म है। फिल्म फॉलोज 15-year-old अहमद, जो कि म्यूजिक ओपन करता है, एक अपनी जगह बनाता है, आज़ादी के साथ आगे बढ़ता है और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करता है। वो जो एहसास होता है ना सेल्फ एक्सप्रेशन का, आगे बढ़ते रहने का, वो इस मूवी में आपको जरूर मिलेगा। एक सनडेंस विनिंग मूवी है जिसका नाम है DJ अहमद, एंड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये इस म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट में फॉर्म दिखाई जाएगी। प्लीज इफ यू हैव सीन इट जरूर शेयर कीजिएगा। एंड म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट कतर 24 से 27 जून, 7 बजे से 9 बजे। सो आई बिलीव आप ये देख चुके होंगे, जिन्होंने देख लिया बहुत बढ़िया, पर निराश ना हो अगर आप नहीं जा पाए। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होंगे जो DFI की तरफ से होंगे। ऐड कर देता हूँ DFI दो फिल्म इंस्टीट्यूट, अपने इंस्टीट्यूट में बहुत सारे फिल्म मेकिंग के कोर्सेज भी रखते हैं। सो इफ यू गो ऑनलाइन एंड चेक विद देम, यू नेवर नो कि आपके अंदर का जो फिल्मोग्राफर है, आप कुछ सीखना चाहते हैं इनसे। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड दे आर अमेजिंग बंच ऑफ पीपल। तो आप उनसे इस बारे में भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव डन इट। तो मैं चाहूंगा कि आप भी मन करे तो ट्राई कीजिएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले इवेंट की तरफ। अब अगला इवेंट जो है वो है दोहा थिएटर फेस्टिवल का। 38th दोहा थिएटर फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं थिएटर अफेयर्स सेंटर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, वो 21 जून को कमेंस किया गया है। बहुत कमाल का इवेंट रहा है ये। इसके बहुत सारे इवेंट्स आने वाले वक्त में भी आपको मिलेंगे, बट फॉर नाउ 3 प्ले हुए बाय एमेच्योर ग्रुप्स जिन्होंने अलमयासा थिएटर में परफॉर्म किया कतर के QNCC। इसके अलावा ओपनिंग प्ले हुआ अंडर द रबल जिसको दोहा थिएटर ने परफॉर्म किया, विच इज रिटन बाय यासिर अल हसन एंड वाज डायरेक्टेड बाय फाले फायज। और जो फेस्टिवल था उसको ओपन किया एक और ग्रुप ने जिसका नाम है द कतर थिएटर ग्रुप, और उसको नाम दिया था द डिवाइडिंग सिटी एंड वाज रिटन बाय तालिब अल बुस और डायरेक्टेड बाय मोहम्मद यूसुफ अल मुल्ला। और ये एक ओपनिंग एक्ट रहा बीते हफ्ते। इट वाज जस्ट अमेजिंग। बहुत बढ़िया माहौल सेट करते हैं लोग यार ये फेस्टिवल में। उन्होंने कंक्लूड किया, जब फेस्टिवल कंक्लूड किया तो ब्लैक हील विच इज डन बाय द अल वतन थिएटर ग्रुप, उन्होंने परफॉर्म किया। इट वाज रिटन डायरेक्टेड बाय शेवल क्वारी एंड परफॉर्मेंस इसकी बहुत बहुत जबरदस्त रही है। थिएटर का जो कल्चर है वो कतर में रहना चाहिए। आई ऑलवेज से दिस, मुझे 10 साल हो चुके हैं कतर में, एंड आई ऑलवेज से दिस ऑन रिपीट के अभी एक लैंग्वेज बार आ जाता है बीच में। ऑफकोर्स हम सोचते हैं कि हमें अरबी नहीं आती तो हम कैसे इन चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मगर इफ़ वी कैन लर्न अरबिक एंड आपके अंदर थिएटर का जरा सा भी कीड़ा क्योंकि मेरे अंदर है तो होना चाहिए। थिएटर कतर में रहना चाहिए, ये आर्ट फॉर्म डाई आउट नहीं होना चाहिए। एंड आई एम सो हैवी कि कतर ने इनिशिएटिव लिए हैं कि ये फॉर्म जिंदा रहे, बिकॉज कतर के पास सारा का सारा साजो सामान है इसको जिंदा रखने के लिए। क्या चाहिए? फंडिंग चाहिए है, एक्टर चाहिए है, देसी एक्टर चाहिए है, फॉरेन एक्टर चाहिए है, लोकेशन है, सब कुछ तो है, बार बार के थिएटर्स हैं। तो आई रियली होप कि कतर में चीज बढ़ती रहे और आगे चलती रहे, बिकॉज कतर टोटली डिजर्व्स इट। और दोहा थिएटर फेस्टिवल जो हुआ ये सबसे पुराने थिएटर्स सबसे पुराने उसमें आता है कतर के थिएटर में। इनफैक्ट दिस इज द फर्स्ट थिएटर है ना, हाँ फर्स्ट है भाई, फर्स्ट थिएटर फेस्टिवल है ये रीजन का, और बहुत कमाल का फेस्टिवल है ये। ये सेलिब्रेट करता है 38th एडिशन को इस साल जो कंप्लीट हुई है, एंड ये अपने रोल को आगे बढ़ाता रहेगा ताकि जो कल्चर है वो एनरिच होता रहे, लोग थिएटर के जरिए प्लेस के जरिए एक एक्सप्रेशन को एक आर्टिस्टिक अप्रोच को समझ पाए। ऐसे बहुत सारे प्लेस और भी होंगे जो अलमया थिएटर में होंगे, दुकान हॉल थिएटर में होंगे, अलग अलग जगहों पे होते रहेंगे, मगर ये जो प्लेस हैं इन पे अगर आप नजर डालेंगे तो ये अरेबिक में होते हैं मोस्टली, एंड इस बार भी अरेबिक में हुए। तो जब भी मैं कह रहा हूँ कि कतर में आके इफ यू लर्न वन लैंग्वेज तो आपके पता नहीं कितने दरवाजे खुल जाते हैं, और ऐसे कई सारे इवेंट आप विटनेस कर सकते हैं बाय जस्ट ब्रेकिंग इनटू द लैंग्वेज। तो अरेबिक एक ऐसी लैंग्वेज है तो अगर आपने सीख ली तो आपके काम वाम तो हो ही जाते हैं आसानी से, कॉन्वर्सेशन आसान हो जाता है और ऐसे इवेंट्स आप इंजॉय कर पाते हैं। अभी मत कहिएगा और तुमने कौन सा सीख लिया, मैंने भी नहीं सीखा, कंप्लीटली अग्री, बट इसके वीडियोज और फोटोज देख के मुझे लगता है कुछ तो बढ़िया हुआ है, कुछ तो बहुत ही बढ़िया हुआ है। और थिएटर को जिंदा रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है किसी भी मुल्क के लिए। जैसे हम इंडिया की बात करें तो हमारे में दिल्ली है, दिल्ली का है

0: नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, पुणे का FTI है, ये सब थिएटर को जिंदा रखे हुए है ना. और एक्टिंग की कोई भाषा नहीं है, यू कैन सी कि बंदा किसी और भाषा में भी बोल रहा है, किसी और जुबान में भी बोल रहा है, एक्ट आउट कर रहा है, तो समझ जाते हैं एक्टिंग बुरी है या अच्छी. एंड आई कैन क्लियरली टेल कि इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है इन तमाम थिएटर्स की जो कतर में परफॉर्म करते हैं. दिस इज अमेजिंग. ओके, मूविंग ऑन टू अनदर इवेंट.
1: कतर 2026.
0: अगला इवेंट है 3-2-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम का, जो कि स्क्रीन करने जा रहे हैं कतर के सारे वर्ल्ड कप मैचेस. 2026 के ग्रुप मैचेस यहीं पर हुए हैं, एंड अगर आपने मिस कर दिया तो हेड ओवर टू कतर मैचेस, वॉच इट इन 3-2-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम. ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, तो अगर आपने नहीं देखा है भाई, सैडली आपने बहुत मिस कर दिया है. आई नो कतर की गेम्स थे पुराने वाले अच्छे नहीं रहते अभी रिसेंट वाले, मगर कतर वर्सेस बॉस्निया अगर आपने देखा है यहाँ पर, तो अपने फोटो जरूर शेयर कीजिएगा. बहुत बहुत बहुत बहुत जबरदस्त जो ये क्या कहते हैं दिखाने वाला जो सीन है, मैचेस दिखाने वाला जो सीन है कतर में, ये हमेशा बहुत ही ख्याल रखते हैं. लग्जरी के बीच में बैठ के देखने का जो मजा, उसकी बात ही कुछ और है. और यहाँ पर अगर आपने मैचेस नहीं दिखे तो कहीं और देखे होंगे, तो कहीं और दिखे तो वो भी हमसे जरूर शेयर कीजिएगा 666-22-107 पे. एंड मैं इनवाइट करूंगा सबको सोशल मीडिया हैंडल्स पर आया करें, सोशल मीडिया हैंडल्स बहुत जरूरी है ताकि हम और आप जुड़े रहें, हमारी बातें होती रहें. बहुत सारे इवेंट ऐसे होंगे जो मुझसे मिस हो जाएंगे. भाई मैं 2 आंखें 12 हाथ तो होंगी ना, तो मुझसे मिस होंगे, तो कुछ जो मिस हो जाएंगे तो आप बता दिया करें, है ना. तो उसके लिए आपको क्या करना है, सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar और आप मुझसे भी डायरेक्टली रابطہ कायम कर सकते हैं. दोहा वाला कबीर एंड वी कैन गेट इन टच विद अस, एंड मुझसे भी बात कीजिएगा, फिर बताइए कोई इवेंट अगर मिस हो गया. ठीक है, मूविंग ऑन टू अनदर इवेंट. अगला इवेंट तो बहुत सारे लोग गए भाई साहब, पेटियां पेटियां उठा के ले गया है, पेटियां पेटियां. तो ये एक्सपीरियंस करने का मौका मिला इंडिया के रिमार्केबल सिलेक्शन ऑफ प्रीमियम मैंगो का, जहां पे कई सारी वैरायटी दिखाई गई और मैंगो से इंस्पायर्ड प्रोडक्ट्स भी रखे गए. इसकी बात कर रहा हूं मैं, मैंगो फेस्टिवल की भाई साहब. मैंगो फेस्टिवल बढ़िया वाला फेस्टिवल है भाई, बढ़िया वाला फेस्टिवल, शानदार. और जो वैरायटी इन्होंने प्रेजेंट करी है सुक वाकिफ में, बड़ी कमाल करी. तो ईस्टर्न स्क्वायर सुक वाकिफ अगर आप गए हैं 18 जून से 27 जून के बीच में, तो आप जानते हैं मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ. हर एज ग्रुप के लिए यहाँ पर सब कुछ है और हर किसी के लिए. आप फैमिली फ्रेंडली एक्सपीरियंस चाहते हैं, आइए. दोस्तों के साथ आइए, सब मिलेगा आपको. आम का अचार, आम की मिठाई, स्पेशल प्रोडक्ट्स, आम खुद मिलेगा, आम के जूसेस, आम से क्या क्या बनता है सब आपको यहाँ मिल जाएगा. और आम तो है ही, उठा के ले जाओ, पे करने के बाद उठा के ले जाओ प्रीमियम आम, घर जाकर बढ़िया खाओ भाई. और जिसने भी आज तक भाई, मैं तो यही कहूँ, अगर तुमने आज तक भाई रोटी के साथ आम नहीं खाया ना, तुमने कुछ नहीं खाया फिर. तो अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया, दिस इज द टाइम, दिस इज द अपॉर्चुनिटी. तो आम के साथ रोटी अगर कभी आपने ट्राई नहीं करी है, देसियों जागो जागो, और अपने घर के लोगों को जो देसी नहीं रहे उनको जगाओ और खिलाओ, उनको एक्सपीरियंस कराओ, कितनी कमाल की चीज है. तो ये आपके पास चांस है एक्सपीरियंस करने का. अगर आप नहीं एक्सपीरियंस किया, मिस आउट कर दिया, कोई नहीं, आम तो बाहर भी मिलते हैं भाई. पर ये फेस्टिवल बहुत कमाल करा है. एंड इफ यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस, हमारे साथ फोटो जरूर शेयर कीजिएगा, हमें भी बताएं कि आपने वाले कौन से वाले आम उठाए. क्योंकि कुछ लोग मैं जानता हूँ बड़े एक्सपर्ट होते हैं, ये आम होता है, निफो आम होता है, चौसा आम होता है, लाल फंजो होता है, सारे आम की वैरायटी पता होती है, लंगड़ा होता है, हमें तो यही पता है, तीन ज्यादा नहीं आते यार. पता तो और भी है, दिमाग में भी तीन ही आए. एनीवे, तो ईस्टर्न स्क्वायर सुक वाकिफ में हुआ इवेंट मैंगो फेस्टिवल, और ये 18 जून से 27 जून के बीच में हुआ, और शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक. तो बहुत बहुत ग्रैंड इवेंट रहा ये, और यहाँ पे ना सिर्फ प्रोडक्ट शोकेस किए गए, बल्कि वो जो बड़े बड़े हाइपर मार्केट है जहाँ पर आम आते हैं स्पेशली इंडिया के अलग अलग हिस्सों से, वो भी यहाँ पर मौजूद थे. एंड देवर शोकेसिंग इन दिस फेस्टिवल, इट वॉज जस्ट अमेजिंग मैन, अमेजिंगली डन. एंड आई थिंक मैंगो फेस्टिवल के बाद एक दिन फालसा फेस्टिवल भी आना चाहिए, विच रिमाइंड्स मी कि अभी तक मैंने फालसे खरीदे नहीं है. अगर आपने गर्मी में फालसे नहीं खाए या आपको पता ही नहीं है फालसे क्या होते हैं, तो हो कैसे नहीं पता भाई साहब, फालसे खा के देखिए आप, ये जामुन का छोटा कजन है, इतने कहूंगा आपसे मैं. बढ़िया होता है हमारे यहाँ तो, वो लगते थे क्या कहते हैं, अरे वो आवाजें लगती थी, काले काले फालसे बड़े रसीले फालसे. ये भी एक इवेंट हो सकता है आपकी जिंदगी में, बता रहा हूँ मैं आपको. इन गर्मियों में फालसे खाइए, बहुत सारी मार्केट्स हैं जो आपको ओल्ड दो ओल्ड एयरपोर्ट रोड पे मिलेंगी, वहां पे जाके आप लीजिए, उनसे बोलिए फालसे चाहिए मुझे, खा के देखिए आप, मजा आ जाएंगे आपको. दिस विल बी अनदर इवेंट इन योर लाइफ ऑल टुगेदर, यू विल फील लाइक अरे भाई ये तो

0: मैंने डिस्कवर ही नहीं किया था। एंड आप इतने दीवाने हो जाएंगे कि आपको गर्मी सर्दी हर जगह चाहिए होगा, हर टाइम चाहिए होगा, मिलेगा सिर्फ गर्मी में। इसका जूस बनाइए, हेल्दी रहिए, ये गर्मी के लिए बहुत मुफीद है भाई, इसका जूस भी। सो फालसे का फेस्टिवल तो नहीं है, लेकिन फालसे आप जरूर खाइए इस गर्मी में, दिस कैन बी योर ओन इवेंट। और बच्चों को भी खिलाई, बहुत सही है भाई। फालसे के तो मैं हमेशा हिमायती रहता हूँ, और मैं तो अगर फालसे मुझे वकील हायर करेंगे तो मैं उनकी तरफ। नहीं खाया आप? नहीं पता ना, इसी बात का डर था मुझे। खाइए आप प्लीज, अगले इवेंट की तरफ बढ़ते।
1: आप सुन रहे हैं कतर 2026 सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
0: अगला इवेंट है बच्चों के लिए, बच्चों 5 से 12 साल के। तो समर कैंप 2026 वापस आ चुका है दोहा क्लब में, और इस टाइम और भी ज्यादा भाई, हर साल हमेशा इसका मयार बढ़ता ही रहता है और बढ़ता आ रहा है। तो इस बार 22 जून से 31 अगस्त 2026 को ये इवेंट समर कैंप 2026 तैयार रहेगा, सुबह के 8 बजे से दोपहर के 2:30 बजे तक। यहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज हैं, एज ग्रुप बच्चों का मैंने बता दिया है 5 से 12। इसमें स्पोर्ट्स है, मार्शल आर्ट्स है, अक्वा एरोबिक्स है, लिटिल मास्टर शेफ है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हैं, एजुकेशनल गेम्स हैं, स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं, और सब ज्वाइन कर सकते हैं। स्लॉट्स थोड़े लिमिटेड हैं, विच आई अंडरस्टैंड, इतना सारा कैसे भरेंगे बेचारे, पर आप रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ, नो प्रॉब्लम, रजिस्टर कीजिए आप। ये जो कैंप है ये सनडे टू थर्सडे ओनली है, तो दाना क्लब में आप रजिस्टर कर सकते हैं, या आप इनके कॉन्टेक्ट में हैं, इनसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, इंटरनेट पर नंबर वंबर मिल जाएगा। मैं तो कहूँगा वहाँ जाइए दाना क्लब में, एंड वहाँ पे जाके रजिस्टर कीजिए 22 जून से 31 अगस्त तक, सुबह के 8 से दोपहर के 2:30 बजे। और ये कमाल का इवेंट है बच्चों के लिए। समर कैंप्स हम अक्सर हॉलीवुड की पिक्चरों में देखते आए थे भाई, कतर में आके मुझे जो है इनको बड़े बड़े फॉर्म में देखने का मौका मिला, और अब हॉलीवुड की पिक्चरों के समर कैंप मुझे बहुत सस्ते लगते हैं भाई, कतर ने लेवल ही बढ़ा दिया है। तो अगर अभी घर में बच्चे हैं और छुट्टियाँ चल रही हैं उनकी, और आप चाहते हैं वो भी किसी ऐसी एक्टिविटी का हिस्सा बने जहाँ पे वो कुछ सीख ही लें, इसमें मार्शल आर्ट्स इज वन ऑफ द की फीचर्स, जो कि बड़ा हिट चल रहा है मार्केट में। एंड लिटिल मास्टर शेफ, बहुत सारे बच्चे, दे आर वेरी गुड कुक्स, दे कैन पार्टिसिपेट इन दिस, क्योंकि इसकी कैटेगरी क्या थोड़ी छोटी होती है ना, तो इस कैटेगरी में सीखने के लिए बहुत ज्यादा है, और इसके स्लॉट्स भी इजीली मिल जाते हैं। बाकी आर्ट्स एंड क्राफ्ट से एजुकेशनल गेम्स भी रखे गए ताकि बच्चे इंगेज्ड रहें। हर बच्चा तो ऑब्वियसली 5 साल का बच्चा कैसे कुकिंग करने उतर जाएगा, कर रहा है तो मैं हैरत में हूँ भाई, फिर मेरी गलती है। पर 5 से 12 साल के बच्चों के लिए समर कैंप रखा गया है, ताकि वो इंगेज्ड रहें, आपको भी आराम मिले, बच्चे भी खुश, आप भी खुश, ठीक है भाई। तो 22 जून से 31 अगस्त सुबह के 8 से दोपहर के 2:30 दाना क्लब में जाइएगा, रजिस्टर कीजिएगा। फिर से बता रहा हूँ, स्लॉट्स अवेलेबिलिटी पे ध्यान दें, थोड़े से कम स्लॉट्स रहेंगे इसके लिए, बट इफ यू आर इनटू इट, समर कैंप में आपको बच्चों को भेजना है, डालना है, उनके साथ जाना है, बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। आगे बढ़ते हैं।
2: कतर 2026
0: जी, एक बहुत ही बढ़िया इवेंट जो कि पोस्टपोन हो गया, पहले अप्रैल में होने वाला था, उसके लोग इंतजार कर रहे थे कब होगा। तो मियाऊ, बिल्ली की आवाज निकलती है, वेरी सॉरी, तो मियाऊ, हाँ अब निकली। तो ये एक ओरिजिनल इवेंट जो ओरिजिनल डेट पे था उसकी ओरिजिनलिटी बरकरार है, बस डेट थोड़ी सी आगे कर दी गई है। इसका नाम है नोवा पॉ फेस्टिवल। बिल्ली की फोटो नजर आएगी इसके उस पर, बड़ी प्यारी सी बिल्ली है, तो ये नजर आ जाएगी। ये इवेंट अब रीशेड्यूल कर दिया गया है 27 से 28 नवंबर को, अभी बहुत टाइम है। पर अभी से बता दूं, जिन लोगों को डेट्स लग रही थी कि अप्रैल में हो ही चुका, नहीं, पहले जो डेट्स थी वो 3 से 4 अप्रैल की थी, अभी 27-28 रख दी गई है, 2 दिन पहले 3 और 4 अप्रैल को थी। तो नोवा पॉ फेस्टिवल वर्ल्ड 2026 कतर का पहला इंटरनेशनल पेट फेस्टिवल है, ये आज से पहले कभी भी नहीं हुआ है, पहली मर्तबा होने जा रहा है, एक और बेंचमार्क। सो ये पहला इंटरनेशनल पेट फेस्टिवल होगा, इसमें फैमिलीज, पेट लवर्स, टूरिस्ट सब हिस्सा ले सकते हैं, सब आइए, सब देखिए। और ये फीचर करेगा वर्ल्ड क्लास डॉग्स को और कैट्स को अंडर WWF एंड WCF स्टैंडर्ड्स, और हाईलाइट करेगा फैशन वॉक्स, ग्रूमिंग कॉन्टेस्ट, एजिलिटी शोज, और साथ में आपको इम्प्रेसिव कैट डोम भी नजर आएगा, फ्लाइंग बलून भी है इसमें, 10,000 से ज्यादा कह रहा हूँ मैं, विजिटर्स एक्सपेक्टेड हैं ऑलरेडी इस फेस्टिवल के लिए, क्योंकि बाहर जब ये फेस्टिवल होता है तो लोग दीवानों की तरह जाते हैं। तो और आप भी कहते हैं कि या आई एम अ पेरेंट, आई हैव एन एनिमल, इट्स लाइक अ चाइल्ड टू मी, तो आपको जरूर पहुंचना चाहिए। एंड इफ यू आर अ पेट लवर इन जनरल, वैसे भी बिल्ली बहुत सारे लोगों ने पाली हुई है यहाँ पर, एंड इफ यू हैव डॉग्स एट होम, ये भाई बहुत बढ़िया फेस्टिवल है आपके लिए ही है, एंड दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपका जाना तो बनता ही है। इसके साथ साथ फेस्टिवल में एक जो कॉम्बिनेशन है, इट इज एन एमलगेमेशन ऑफ

थिंग्स, कॉम्पिटिशन है, एंटरटेनमेंट है, खाना तो है ही, अडॉप्शन ड्राइव्स भी रखी गई हैं, विच इज अ वेरी यूनिक फीचर ऑफ दिस इवेंट. सो अडॉप्शन ड्राइव्स के जरिए भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं कोई जानवर अगर आपको अच्छा लगता है. और बड़े बड़े प्यारे प्यारे क्यूटी पटूटी जानवर आते हैं, बहुत प्यारी बिल्लियां हैं और बिलोटे हैं, तो देख लीजिएगा आप. एंड इस पेट फ्रेंडली टूरिज्म का हिस्सा आप बन सकते हैं. कतर ने अपना को पोजीशन वैसे भी कर लिया है कि रीजनल हब है वो पेट फ्रेंडली टूरिज्म के तौर पे. और कतर की इसी कोशिशों के बाद ये मुमकिन हुआ है कि पूरी दुनिया अब लोहा मानती है, और इसलिए इवेंट पहली मर्तबा कतर में होने जा रहा है, एक कल्चरल और एक टोटल इन एंड आउट फैमिली एक्सपीरियंस के लिए. तो लोकेशन होगी इसकी पेट्स पार्क द पर्ल दोहा, और ये 27 और 28 नवंबर को होगा. अभी टाइम है, बट स्टिल इफ यू वांट टू मार्केट इन योर कैलेंडर और प्रोबेबली मार्केट समवेयर, टेक्नोलॉजी का जमाना है, कहीं भी भाई साहब मार्क कर लीजिए, तो वहां पे आप मार्क कर सकते हैं. दिस इज नोवा पॉ फेस्टिवल, रात के 12 बजे ये होगा, और ये होगा पेट्स पार्क द पर्ल कतर में 27-28 जून. आई होप यू हैव मार्क्ड द डेट्स बिकॉज जरूरी है, अभी से बता दिया है मैंने, बताता रहूंगा वैसे भी. ठीक है, बढ़ते हैं अगले इवेंट की तरफ. अब अगला जो इवेंट है वो कतर की सस्टेनेबिलिटी, कतर के टारगेट की तरफ है. कतर 2030 का जो टारगेट है उसकी तरफ बढ़ते हुए एक और हफ्ता, कतर सस्टेनेबिलिटी वीक. ये एक नेशनल कैंपेन है पूरे कतर को साथ लेके चलने के लिए, एंड दिस इज इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज. इसका मकसद है कि कम्युनिटीज एकजुट हों, एक साथ इस मकसद के लिए आगे बढ़े, और एक वाइड रेंज ऑफ सस्टेनेबिलिटी ओरिएंटेड एक्टिविटीज रखी जाए ताकि अवेयरनेस लोगों तक पहुंचे और शोकेस किया जाए कि कतर ने कहां से कहां तक प्रोग्रेस किया है इन द एरिया ऑफ सस्टेनेबिलिटी. कुछ काम होते हैं हमें हमारी नजरों के सामने नहीं हो रहे होते, मगर फिर एकदम से सामने आते हैं, बोलते हैं अरे ये कब हुआ, ये कब किया कतर ने, और कतर हमें हमेशा ऐसे अच्छे सरप्राइज देता रहता है. एंड अगेन कतर इज वर्किंग टूवर्ड सस्टेनेबिलिटी, वो हम कब से देखते आ रहे हैं. माशाल्लाह वर्ल्ड कप में भी स्टेडियम्स ने दिखाया कि सस्टेनेबिलिटी के साथ खेल भी किए जा सकते हैं. एंड अभी ये जो सस्टेनेबल वीक है ये भी चलती रहेगी, और सस्टेनेबल वीक में जैसे मैंने कहा इसका मकसद है कि लोगों को अवेयर किया जाए. एंड ये वीक एक किस्म का प्लेटफॉर्म है ताकि प्रमोट कर सके नेशन के टारगेट को, नेशन के विजन को, और कम्युनिटी एंगेजमेंट हो सके और नेशन एक साथ आ सके. सो अर्थना सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी फ्यूचर, दे आर रियली प्राउड टू अनाउंस कि वो 11th एडिशन लेके आ रहे हैं ऑफ कतर सस्टेनेबिलिटी वीक. और ये पिछले जो गए हैं इनके इवेंट्स लास्ट 10 ईयर्स से, उनकी जो शोहरत है, उनकी उनकी जो काबिलियत है, उनकी जो कामयाबी है उसके बेसिस पे, बिकॉज 1 मिलियन से ज़्यादा मेम्बर्स इसका हिस्सा बने इस इनिशिएटिव का, इस एक्टिविटी का अक्रॉस कतर. और ये वीक लॉन्ग जो कैंपेन है, नेशनल कैंपेन, ये रहेगी 31 अक्टूबर से 7 नवंबर. इसके जॉइन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस सब इस रहने वाले हैं. इसमें ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स आएंगे, बिजनेसेस हैं, कम्युनिटी ग्रुप्स हैं जो अक्रॉस कतर हैं. एंड एक नेशन वाइड एफर्ट है इसके पीछे ताकि कतर ये दुनिया को दिखा सके किस तरीके से एनर्जी को बचाया जा सकता है, अर्थ को बचाया जा सकता है. बहुत सारे इनिशिएटिव और इवेंट है, एंड अगर आप इसे पार्टनर बनना चाहें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सीधा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं. और एक्टिविटी जो है वो रिलेटेड होनी चाहिए किसी ना किसी एस्पेक्ट से ऑफ सस्टेनेबिलिटी. एप्लीकेशन जो है वो रिव्यू की जाएंगी और पब्लिश की जाएंगी इन 3 वर्किंग डेज. रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको मिल जाएगा कतर सस्टेनेबिलिटी वीक जब आप टाइप करेंगे. इसकी लोकेशन अलग अलग जगह, कोई एक फिक्स लोकेशन नहीं है, अलग अलग जगहों पर ये इवेंट होगा. अगेन बता दूं 31 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक रात के 12 बजे. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड थिंग्स इन कतर, और मैं कहूंगा इसका हिस्सा आप जरूर जरूर बने. ओके, ऑलराइट, मूविंग ऑन टू अनदर इवेंट. कतर 2026. अब देखिए ओलंपिक डे जो कि 27 जून को है, आई थिंक जब सुनोगे तो बनाया जा चुका होगा. ओलंपिक डे 27 जून को कतर ने भी सोचा कि मनाया जाए एट प्लेस वंदोम. 5 किलोमीटर का इंडोर वॉक रख दिया, 5 किलोमीटर का. सो इफ यू हैवंट डन इट, ये रिमाइंडर है कि आप वॉक वैसे भी कर सकते हैं, इवेंट की जरूरत नहीं है. पर ये इवेंट जो हो रहा है कतर में ये रिमाइंड कराता है कि ऐसे अगर इवेंट हो तो आप इनका हिस्सा जरूर जरूर बने. यू कैन वॉक, यू कैन जॉग एंड बी अ पार्ट ऑफ IOC's लेट्स मूव कैंपेन. ये रखा गया है, इवेंट रखा गया इन कोलैबोरेशन विद एजुकेशन अबव ऑल फाउंडेशन. और इस इवेंट के जो फीचर्स हैं उन्हें बता दूं मैं, 5 लैब्स हैं पूरे प्लेस वेंदोम में, और रजिस्ट्रेशन सुबह के 8:30 बजे ओपन हुआ और किक स्टार्ट हुआ है 9 बजे ग्राउंड फ्लोर गेट 1 प्लेस वेंदोम में. एंड इसी के साथ शो के
तो मैं इस्तेमाल पहुंच गया हूँ, लेकिन

कुछ चीजें, एक दो इवेंट्स और जो बताना चाहूंगा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, जो एक चीज है नजरअंदाज हो जाती है, मैंने भी बहुत सारी की है, वो है स्टेकेशन का मामला। स्टेकेशन में मेरी बात हुई थी एक हमारी लिसनर, उन्होंने बोला कि अकेलों के लिए क्या है जी, बैचलर्स के लिए तो सब कुछ है ही, आप ग्रुप बना के जाए ना, अकेले जाना क्यों है, ग्रुप बना के जाए आप, देखिए क्या मजा आएगा आपको, वीकेंड पे निकल जाए। बहुत सारे से स्टेकेशन ऑप्शन है कतर में जहां पर आपको ग्रुप में मजा आएगा, वहां आपको पार्टनर, अपनी लाइफ पार्टनर के साथ ही मजा नहीं आएगा। Why am I saying this? घर नहीं जाना क्या मुझे, बराबर समझ कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि बैचलर्स के लिए कुछ है ही नहीं। भाई मैं भी बैचलर रहा हूँ यहाँ पे, आई नो हाउ इट इज, सब कुछ है कतर में अवेलेबल, और अभी तो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। सो प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज विजिट ऑल दीज प्लेसेस, एंजॉय योरसेल्फ व्हाइल बीइंग इन कतर। ये मौका जो है आपको ताउम्र याद रहना चाहिए, जब तक आप कतर में हैं कुछ नहीं छूटना चाहिए। भाई छोटी कंट्री लेकिन शानदार कंट्री का फायदा ही ये है, जो कंट्री आपको इतना सब कुछ दे रही है, फिर आप क्यों ऑफर को ठुकराएंगे। तो जो जो आता रहेगा हम बताते रहेंगे, आपके पास हो आप हमें बताते रहें, और कहानी इस तरह से हमारी बढ़ती रहे। स्टेकेशन इज वन ऑफ दोस थिंग्स व्हिच आई थिंक यू शुड कीप एन आई ऑन, क्योंकि ये वीकेंड पर ही आप निपटा सकते हैं। लंबी छुट्टी लें, लंबी छुट्टी लीजिए, वो आपके ऊपर है, बट आप वीकेंड के साथ साथ इसे निपटा सकते हैं। एन एस सी के साथ एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको जो बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए, स्पेशल ऑफर्स जो हैं वो लगे हैं ऑनलाइन भी, और साथ साथ आप जाके देखेंगे तो ये आपको कतर के भी अलग अलग जगहों पर दिख जाएंगे, बिकॉज देर आर टन्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू। तो अगर आप इन चीज़ों का हिस्सा नहीं बने हैं तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ बनिए और जाइए कतर के इवेंट्स में शरीक होइए। सिर्फ फोटोज देखने से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा भाई साहब, करना पड़ेगा आपको, ये बड़े जरूरी इवेंट हो जा रहा है भाई, ठीक है। तो एक और इवेंट मैं इसकी तरफ बढ़ना चाहूंगा, बिकॉज दिस विल दिस इज करंटली हैपनिंग, इस इवेंट के बारे में बता देता हूँ। तो ये जो इवेंट है ये है 15 सालों का जश्न ऑफ मतहफ, जिन्होंने एक नया लुक दिया है म्यूजियम को, और उन्होंने परमानेंट कलेक्शन चार्टिंग रखा है। ये उसका पिवोटल रोल है कि वो जो है हिस्ट्री ऑफ अरब मॉडर्निज्म वो उसे हाईलाइट करे दुनिया के सामने। ये एग्जीबिशन है पूरी की पूरी, जो कि शुरू हो चुकी है पिछले साल से 31 अक्टूबर से, और ये चलने वाली है 8 अगस्त 2026 तक। ये एग्जीबिशन हर एक मोमेंट को कैप्चर करती है जिसकी वजह से आज अरब मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ा है और मॉडर्निज्म आया है, येट उसकी रूट्स आज भी स्ट्रांग है। सबसे बड़ा एग्जांपल जहां आप रह रहे हैं कतर, कतर अपनी रूट्स के साथ स्ट्रांग है, फिर भी मॉडर्न वर्ल्ड के साथ चलना जानता है, और यही बैलेंस है जो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। मतहफ के जो रीजंस हैं एज एन आर्टिस्टिक हब ऑलरेडी सेट हैं कतर में, इट इज लेड बाय द पायनियरिंग एफर्ट्स ऑफ हिज एक्सीलेंसी शेख हसन बिन मोहम्मद बिन अली अल थानी, एंड इसके साथ साथ ये जो एक लेगेसी है ऑफ आर्ट एजुकेशन एंड नॉलेज का जो सिग्निफिकेंस है उसको भी ये दर्शाता है। तो इसकी टाइमिंग्स बड़े सिंपल हैं, टाइमिंग्स एक बार रिपीट कर देता हूँ, दो बार सुना दूंगा ताकि आपको याद रहे। संडे को सुबह 9 से शाम 7, मंडे को बंद रहेगा, प्लीज मंडे को ट्रैक करना ही नहीं। ट्यूजडे को सुबह के 9 से 7, और बाकी दिन भी यही है फ्राइडे को छोड़ के, फ्राइडे दोपहर के 1:30 बजे से शाम के 7। तो ये एक और इवेंट है जो चल रहा है, इट इज एन ऑनगोइंग इवेंट, और आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। ऐसे ही एक और इवेंट है विच इज ऑन गोइंग राइट नाउ, इसका नाम भी वही है, ये भी म्यूजियम के अंदर है, और ये भी 15th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है ऑफ अरब म्यूजियम ऑफ इस्लामिक ऑफ मॉडर्न आर्ट, जिन्होंने ओपन किया है रेजोल्यूशंस। ये 30 अप्रैल से 22 अगस्त तक है अक्रॉस द म्यूजियम्स आट्रियम और ग्राउंड फ्लोर गैलरीज 1 से 7। एग्जीबिशन जो है, इस वाले एग्जीबिशन का मकसद है कि जो फॉर्मर एयर्स रहे हैं, जिसमें लार्ज स्केल स्कल्पचरल वर्क आता है वो भी दिखाया जाएगा। इसमें एक रिनाउंड आर्टिस्ट है, काफी मशहूर आर्टिस्ट है, इराकी आर्टिस्ट है इस्माइल फताह, और उनका काम भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दिस इज वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस इफ यू आर इनटू आर्ट एंड एवरीथिंग, स्पेशली अगर आप पेंट वेंट करते हैं, यू कैन गेट अ लॉट ऑफ क्या कहते हैं उसको, इंस्पिरेशन फ्रॉम दीज। एक और इवेंट है जिसपे मेरी नजर बनी हुई थी, और ये छोटा इवेंट है लेकिन बहुत मोटा इवेंट है। ये इवेंट 2 जून से शुरू हुआ है, इसी महीने शुरू हुआ है, और 2 फरवरी 2027 तक। ये मुआतर गैलरी नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर के अंदर है, और ये इवेंट है बहुत शानदार। ये एग्जीबिशन 3 एक्सेप्शनल ऑटोमोबाइल्स को दिखाती है, इनोवेशन, परफॉर्मेंस और कल्चरल के साथ। ये 3 फैक्टर्स हैं जहां पर आपको नजर आएंगे। ये डिफरेंट एरास ऑफ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को दिखाती है, एंड ये इस एग्जीबिशन का हिस्सा बनेंगे, तो जितने भी गाड़ी के शायकीन हैं वो जरूर यहाँ पर आए। डिस्प्ले पर रखी गई है फरारी और रोडस्टर, तो ये दोनों

0: Mercedes Benz bhi hai. Kaise bolte hain Mercedes? I won't even try this accent. To ye exhibition kaisa ban sakte hain aap Sunday, Monday, Wednesday, Saturday subah ke 9 se shaam ke 7 aur Tuesday ko ye band rahega, Thursday ko 9 se 9 rahega aur Friday ko 1:30 se 7 rahega. ठीक है जी. तो ये था कतर 2026. अगर आपको कुछ कहना है, आपके जहन में कुछ इवेंट्स है या कहीं पर आप हो क्या है, तो प्लीज प्लीज हमें बताएं सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए FM107 Qatar. एंड इवेंट्स क्या है ना कि होते रहेंगे, पर ये जो स्टेकेशन का आइडिया मैंने शुरुआत में और बीच में आपको बताया, इसको मिस आउट बिल्कुल मत कीजिएगा. दीज आर वेरी वेरी की फीचर्स. ऑल्सो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप पोस्ट करें, कहीं पे आप हमारे बताने के बाद गए तो प्लीज प्लीज जाएं वो भी बताएं. इन द कमिंग वीक कतर के बहुत सारे ऑफर्स शॉपिंग के वो लगने वाले हैं. ऑनलाइन ऑलरेडी जगहों जगहों पर हैं, तो आप इन इस समर के सीजन में उसका भी पूरा फायदा उठाएं. एंड एक एडवाइस है, हालांकि मेरा दिन बनता नहीं एडवाइस, मैं खुद भी इस एडवाइस को बहुत कम मानता आया हूं, पर अभी मैं जाग गया हूं. कतर में स्पेशली इफ देर आर इवेंट्स स्मॉल और लार्ज एंड इफ यू आर लिविंग विद योर फैमिली, टेक योर फैमिली विद यू एंड एंजॉय योरसेल्फ. बहुत जरूरी, वरना आप कहते हुए लोग सुनेंगे,
1: अरे मैं तो आ गया 2 साल के लिए यार, 8 साल हो गए मुझे यहीं पे.
0: तो कहीं आपकी टोन ऐसी ना हो जाए, इसलिए लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट एंड प्लीज विजिट जहां पर भी आपको मौका मिलता है, कहीं भी आपको इवेंट दिखता है, एक छोटा मोटा इवेंट भी. आप सोच रहे हैं मैंगो फेस्टिवल में कितनी तादाद में लोग पहुंचते हैं, वो इसलिए ना क्योंकि एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू बी आउट एंड सी समथिंग यूनिक. तो अगर कोई नया आया कतर में तो उसका वेलकम करता हूँ. बिफोर आई एंड द शो, वेलकम टू कतर एंड एंजॉय योरसेल्फ. दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी है.
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
3: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे. सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, मुफीद साबित होंगी. तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड. सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर. दिल से देसी, दिल से देसी.
4: आप सुन रहे हैं एफएम 107.
5: दिल से देसी.

ऑनलाइन खिदमात शामिल हैं। वेबसाइट में वीडियो मवाद, ओपन डेटा, सरकारी ऐलानात और ताज़ा तरीन मालूमात के लिए नए इंटरेक्टिव सेक्शन भी शामिल किए गए हैं, ताकि सार्फीन को बरवक्त सही मालूमात फराहम की जा सकें। इसके अलावा वेबसाइट को ज़्यादा आसान बनाया गया है, जहां आवाम वजारत और उसकी आला क़ियादत से बराह रास्त राबता कर सकेंगे, जबकि अक्सर पूछे जाने वाले सवालात का एक अलग सेक्शन भी उसमें शामिल किया गया है, ताकि मुख्तलिफ सर्विसेज से मुतालिक मालूमात फौरी तौर पर आसानी से हासिल की जा सकें। वजारत इंसाफ ने कहा है कि नई वेबसाइट के ज़रिए कानूनों जायदाद से मुतालिक खिदमात तक रसाई मज़ीद बेहतर होगी, अदालती खिदमात के मयार में इजाफ़ा होगा और कतर में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल को मज़ीद फ़रोग मिलेगा। रियासत कतर ने खलीजी ताउन कौंसिल की पेट्रोलियम ताउन कमेटी के गैर मामूली इजलास में, जो वीडियो कम्युनिकेशन के ज़रिए मुनाकिद किया गया, उसमें शिरकत की है। इजलास में कतर की नुमाइंदगी वज़ीर ममलकत बराए उमूर तवानाई इंजीनियर साद बिन शुरैद अल काबी ने की। इजलास में खलीजी ताउन कौंसिल के रुकन ममालिक के वज़राए तवानाई और कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल ने भी शिरकत की। यह खसूसी इजलास खलीजी ताउन कौंसिल के सरबराहान ममलकत के 19वें मुशावरती इजलास में किए गए मुतअद्दद फ़ैसलों पर गौर खोज के लिए मुनाकिद किया गया। यह मुशावरती इजलास गुज़िश्ता साल 28 अप्रैल को मुनाकिद किया गया था। कतर ने जम्हूरी शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में अल कसरुल अदली यानी महल इंसाफ के करीब एक कैफ़े पर होने वाले बम धमाके की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की है, जिसमें कई अफराद जा बहक और कई दीगर ज़ख्मी हो गए हैं। कतर की वजारत खारजा ने अपने जारी करदा बयान में कहा है कि कतर हर किस्म के तशद्दुद, दहशतगर्दी और मुजरमाना कार्रवाइयों को उनके महरकात या वजूहात से कतई नज़र मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है। वजारत खारजा ने जाँ बहक अफराद के अहल खाना, शाम की हुकूमत और आवाम से दिली ताज़ियत का इजहार किया, जबकि ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात और तमन्नाओं का इजहार भी किया है। कतर ने एक बार फिर अपने आज़म का इरादा करते हुए वाज़ह किया है कि वह दहशतगर्दी की हर शक्ल और हर किस्म की कार्रवाई की सख्त तरीन अल्फाज में मदम्मत करता है, चाहे उसका मुर्तकिब कोई भी हो और उसके पीछे कोई भी असबाब व अवामिल क्यों ना हों। कतर ने मज़ीद कहा कि दहशतगर्दी आलमी अमन, पायदार तरक्की, इंसानी हकूक और कानून की हुक्मरानी के लिए एक संगीन ख़तरा है। अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से ख़िताब करते हुए अक्वामे मुत्तहिदा में कतर की मुस्तकिल मंदूब शेखा आलिया अहमद बिन सैफ अलसानी ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिर्फ सिक्योरिटी इकदामात काफ़ी नहीं, बल्कि उन वजूहात का खात्मा भी ज़रूरी है जो इंतहा पसंदी को जन्म देती हैं, जिनमें तनाज़ात, गैर मुल्की कब्ज़ा, नफ़रत अंगेज़ तकारीर और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ शामिल हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि कतर नौजवानों को बाख्तियार बनाने, तालीम के फ़रोग देने और मुख्तलिफ सकाफ़तों और माशरों के दरमियान मुकालमे और बाहमी अहतराम को फ़रोग देने वाली कोशिशों की मुसलसल हिमायत कर रहा है। शेख आलिया ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि दहशतगर्दी को किसी मजहब, कौमियत, तहजीब या नस्ली तशख़ुस से जोड़ना दुरुस्त नहीं, और मज़हबी तासुब, नस्ल परस्ती और इस्लामोफोबिया जैसे रुझानात का मौसर मुकाबला करना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि कतर 2019 से अक्वामे मुत्तहिदा के इंसदाद दहशतगर्दी दफ्तर को हर साल 15 मिलियन अमरीकी डॉलर फराहम कर रहा है, जिसकी मुद्दत 2026 तक बढ़ा दी गई है। कतर की मजमूई माली मुआवनत 141 मिलियन डॉलर से तजावज़ कर चुकी है, जिसके बाइस वो इस दफ्तर का सबसे बड़ा अतिया दहंदा मुल्क बन गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कतर ने दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ एक जामे कौमी हिकमत अमली भी नाफिज कर रखी है,

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: आप सुन रहे हैं FM 107
0: दिल से देसी।
4: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिन किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सभी कराम, आज हम एक ऐसी अजीम सुन्नत के बारे में गुफ्तगू करेंगे जिसके लिए हौसला, एक सच्चा मौकिफ और हक बात कहने की हिम्मत दरकार होती है। आज का मौजू है अपने मुसलमान भाई की इज्जत व आबरू का दिफा करना। सभी कराम, अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सी नेमतें अता फरमाई। इन नेमतों में एक बड़ी नेमत है इज्जत और आबरू। इंसान कभी कभी माली नुकसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपनी इज्जत पर लगने वाला दाग बर्दाश्त करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इस्लाम ने मुसलमान की इज्जत को इंतहाई मुकद्दस करार दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया, तुम्हारे खून, तुम्हारे माल और तुम्हारी इज्जतें एक दूसरे पर उसी तरह हराम है जैसे इस दिन की हुरमत है। अबू दर्दा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने भाई की इज्जत व नामूस का उसकी गैर मौजूदगी में दिफा करे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके चेहरे को जहन्नम की आग से दूर कर देगा। सामने किराम, ये कितनी अजीम बशारत है। एक मुसलमान अपने भाई की इज्जत की हिफाजत करे और बदले में अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे जहन्नम की आग से बचा ले। अब किसी शख्स की तारीफ उसके सामने करना तो आसान है, लेकिन असल इम्तिहान उस वक्त होता है जब वो मौजूद ना हो, जब किसी मजलिस में उसका जिक्र हो रहा हो, जब कोई उसकी गीबत कर रहा हो, जब कोई उस पर इल्ज़ाम लगा रहा हो, जब उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाया जा रहा हो। उस वक्त अगर कोई शख्स खड़ा होकर कहे, भाई ऐसी बात ना करें, मुझे नहीं लगता ये दुरुस्त है, उसके भी कुछ हकूक हैं, उसकी गैर मौजूदगी में ऐसी गुफ्तगू मुनासिब नहीं, तो डट कर ऐसी बातें कह देना हिम्मत के साथ, यही वो अमल है जिसकी फजीलत हदीस में बयान हुई है। सामिन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मअस्सलामा।
5: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
6: दोस्तों, ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट पहनना आपकी हिफाजत को बढ़ाता है, और हाँ, सीट बेल्ट नहीं बांधने से आपको फाइंस का सामना करना पड़ता है क्योंकि ये ट्रैफिक के कानून का सीरियस वायलेशन है। सीट बेल्ट कार ड्राइवर्स के लिए फर्स्ट सेफ्टी लाइन है क्योंकि ये आपकी हिफाजत करती है। FM 107 तमाम रोड यूजर्स से गुजारिश करता है कि वो अपनी जानो माल की सेफ्टी के लिए

0: ट्रैफिक कानून की तामील करें। याद रखिए कि ट्रैफिक सेफ्टी ऑफिशियल अथॉरिटीज और सोसाइटी के दरमियान मुश्तरका जिम्मेदारी है।
1: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियाँ मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। आज हम बात करेंगे बॉलिंग

0: खोखे के बारे में। या दोस्तों, वर्ल्ड कप फुटबॉल में बोअलेम खोखी कतर के लिए एक मशहूर और कहूंगा कि एक यादगार गोल किया एंड अगेंस्ट स्विट्जरलैंड इन द ओपनिंग कैंपेन इन 2026 के इस इवेंट में। और देखा जाए तो कतर फुटबॉल हिस्ट्री के सबसे वर्सेटाइल और इन्फ्लुएंशियल प्लेयर्स में से एक हैं ये बोअलेम खोखी। उनका फुटबॉल जर्नी यूनिक है क्योंकि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मिडफील्डर और डिफेंडर दोनों रोल्स में की और बाद में एक डिपेंडेबल सेंटर बैक के तौर पर एस्टैब्लिश हुए। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में कहूँ तो ही इज यूटिलिटी प्लेयर। यूटिलिटी प्लेयर मीन्स हर पोजीशन में खेलने वाला वो खिलाड़ी, कहीं पर भी उनको डाल दीजिए, ही इज ऑलवेज प्लेइंग टू हिज एबिलिटी। बोअलेम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी गेम रीडिंग, पोजीशनिंग और एरियल ड्यूल्स में डोमिनेंस है। बोअलेम खोखी असद के लिए बहुत अरसे से की प्लेयर रहे हैं और क्लब के मल्टीपल डोमेस्टिक और कॉन्टिनेंटल सक्सेसेस में उनका इम्पोर्टेंट रोल रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर भी बोअलेम खोखी ने कतर नेशनल टीम के लिए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दी हैं। खासतौर पर 2019 AFC एशियन कप विनिंग स्क्वाड का हिस्सा बनकर उन्होंने अपनी लेगेसी को मजीद स्ट्रॉन्ग किया। उनकी एडेप्टेबिलिटी उन्हें मॉडर्न फुटबॉल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल बनाती है जहां एक प्लेयर मल्टीपल रोल्स एफिशिएंटली प्ले कर सकता है। डिफेंसिव स्टेबिलिटी के साथ साथ उनका ओकेजनल गोल कंट्रीब्यूशन भी टीम के लिए वैल्यूएबल होता है, जैसे कि स्विट्जरलैंड के गेस्ट में स्टॉपेज टाइम में गोल करके कतर को एक अहम पॉइंट दिलवाने में बोअलेम खोखी ने मदद की एंड ये पॉइंट वर्ल्ड कप के हिस्ट्री में कतर का पहला पॉइंट। कतर फुटबॉल के डेवलपमेंट फेस में बोअलेम जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी ने लीडरशिप और प्रोफेशनलिज्म का स्टैंडर्ड सेट किया है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है. अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नेहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो. सबसे पहला कदम यह है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से पार ना कर सकें और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए. कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए. उन पर हमेशा नजर रखें, खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों. फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके. पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे. बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके. पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें ताकि इन्फेक्शन और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके. इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके. इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके. छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है. पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी

0: ऐसी चीज वहाँ ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।
3: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
4: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम बात करेंगे स्ट्रेचिंग और हल्की एक्सरसाइज की, कि उस तरह से अगर हम ये अपना लें तो कमर दर्द से बचने में कामयाब हो सकते हैं। ज़्यादा देर तक बैठने या कम जिस्मानी सरगर्मी के बायस हमारे जो मसल्स हैं बहुत सख्त हो सकते हैं, जिससे कमर का दर्द पैदा होता है। अब ये कि रोज़ाना स्ट्रेचिंग जो है वो बेहद ज़रूरी है, और क्यों ज़रूरी है, उससे हमारे मसल्स की जो लचक है वो बढ़ती है, या अगर हम ये कहेंगे स्ट्रेचिंग जो है वो मसल्स की लचक को ज़्यादा करती है, जिस्म की हरकत बेहतर बनाती है, मसल्स के खिंचाव को कम करती है और कमर पर दबाव कम करती है। स्ट्रेचिंग जो है हमारी कमर पर जो दबाव होता है उसे कम करती चली जाती है। बहुत ही आसान सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कि सुबह उठते वक्त पूरे जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता से आप स्ट्रेच कीजिए। गर्दन और कंधों की हल्की एक्सरसाइज कीजिए। हर घंटे के बाद चंद मिनट खड़े होकर आप थोड़ी देर के लिए चलिए। टांगों और कमर के मसल्स को आराम से स्ट्रेच कीजिए। रोजाना 20 से 30 मिनट की वॉक कमर के मसल्स को मजबूत बनाती है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है। अगर एक्सरसाइज के दौरान शदीद दर्द महसूस हो तो आप फौरन रुक जाइए, डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से मशवरा जरूर कीजिए। बाकायदा स्ट्रेचिंग और जिस्मानी सरगर्मी सेहतमंद कमर के लिए नहायत ज़रूरी है, और इसमें यह है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है उसे एक्टिव होना है। चंद मिनट की रोज़ाना की एक्सरसाइज आपको तवील अरसे तक कमर दर्द से महफूज रख सकती है।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर, दिल से देसी।
0: दोस्तों, मसाजिद और आसपास के घरों के करीब गलत पार्किंग ना सिर्फ ट्रैफिक को रोकने का सबब बनती है, बल्कि ये इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे एम्बुलेंस, फायर ट्रक्स और पुलिस कार्स के लिए भी बहुत बड़ी रुकावट है। जब इन व्हीकल्स को जल्दी से गुजरना होता है तो किसी भी हादसे का खतरा लाहक बढ़ जाता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पार्किंग की आदतों में बेहतरी लाएं और दूसरों के लिए रास्ता खाली रखें। अगर हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपनी गाड़ी सही जगह पर पार्क करें तो हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने इलाके के हर शख्स के लिए फायदा मंद साबित हो सकते हैं। इस तरह हम अपनी कम्युनिटी को सेफ, ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल बना सकते हैं। हमारी छोटी सी सोच और मेहनत से ना सिर्फ ट्रैफिक का मसला हल होगा बल्कि हमें अपनी रिलीजियस और सोशल ड्यूटीज को बेहतर तरीके से अदा करने में मदद मिलेगी। वजारत दाखला का कहना है कि हम सब मिलकर इस मसले को हल करने में अपना हिस्सा डालें और एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा बने जहां सबके लिए रास्ता खुला हो और सेफ्टी पहली तरजीह हो। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत

0: कॉल आ जाएगी इंशाल्लाह।
1: बहुत शुक्रिया आपकी
0: मोहब्बत है। तो ट्रस्ट वर्दी के हवाले से, बिजनेस के हवाले से आजकल का जो रवैया है लोगों का, इस सिलसिले में आप क्या बताना चाहेंगे, दरअसल कामयाबी किस में है?
1: अच्छा, आपने बात शुरू की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि वो नबूवत से पहले सादिक और अमीन थे, और ये एक ऐसी खासियत थी कि इसको मुमताज़ किया गया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे एक आदमी आया तो उसने मुख्तलिफ बुराइयां बताई, तो उसने कहा कि आप झूठ छोड़ दें, जबकि आज झूठ और दूसरी चीज़ जिसको अल्लाह ताला ने कहा कि मुझसे जंग है रुबा, इतनी ज़्यादा सराइयत कर गई है, और उसको हम मुख्तलिफ वजूहात की बना पे कि ऐसे नहीं हो सकता फलाना फलाना, यानी उसको हम जस्टिफिकेशन के लिए ना 100 बहाने तराशते हैं। तो इसमें जैसे अब कहते हैं ना सियासत का नाम ही उन्होंने झूठा रख दिया, जबकि सियासत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की मतलब अमूरे सल्तनत चलाना, तो सच्चाई पर, ईमानदारी पर और खुलूस पर चलाया जाता है, जिसपे अल्लाह के हुक्म को फॉलो किया जाता है। कि ये जो तशरीहात हम लोगों ने खुद से बना ली हैं, इसका क्या किया जाए, और लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। यानी मकसद है कि वही बात है कि सच को या इस रास्ते को समझना या इस पर चलना, क्या शैतान हमें साथ में ना रेजिस्ट ज़्यादा करता है और हमें इस चीज़ को चलने में बड़ी दुश्वारी होती है। और दूसरी बात है कि लोग सच सुनना नहीं चाहते। अगर किसी को सच आपने बताना है कि ऐसा मामला है, तो वो आपको बड़ा बुरा माइंड करेगा, या आपको उसके सच के भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे।
0: सही, कॉन्सिक्वेंसेस ये बहुत खतरनाक होते हैं। सही,
1: अक्सर अच्छा, एक एक एक एक लफ्ज बड़ा है कि हम लोगों ने इवन आप यूरोप में देखे हैं, यानी हमने ट्रायल देखे हैं कोर्ट में, मुजरिम है, गया है, उसको कह रहे हैं जी आपने ये बयान देना है, तो वो कहते हैं नो कॉमेंट्स, दे आर साइलेंट। ये नहीं हमारी तरह मार मार के वो किसी के, उसके दादा ने भी कोई जुर्म किए होंगे वो भी कबूल कर ले, नहीं, नो कॉमेंट्स मतलब साइलेंट।
0: तो ये दरअसल ये आपने जो यूरोप की बात कही, इस तरफ की सच्चाई की जो अगर बात मैयार पर हम बात करें, तो लोग अक्सर वहाँ जाकर काफ़ी वो जो वाह हो जाते हैं कि भाई माशाल्लाह यहाँ के लोग काफ़ी सच बोलते हैं और सच्चाई में तरीग और इस जुरत के साथ कहते हैं, हालांकि हमारे यहाँ ये बात होनी चाहिए थी। तो इस सिलसिले में आपको क्या लगता है, यानी हमारी हालत ये क्यों है?
1: इसका मतलब है कि को बोलने का, और अगर बाज़ुकात आप कोई समझते हैं कि कोई चीज़ उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, उसको बता दिया जाए कि मैं ये चीज़ आपको नहीं बता रहा, कि इन स्टेट वो कहते हैं ना उसके लिए 100 झूठ और हीले बहाने मैं तराश करूं, जैसे है ना राइट टू साइलेंट, या वो कहना चाहिए जैसे वो राइट टू नो कमेंट्स, इवन उनको पता है, हाँ अगर उनके पास शवाहिद मुकम्मल हो जाएं तो वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, अगर नहीं है तो वो मार मार के उसको दुम्बा नहीं बना देते, जब तक फिर वो अपनी मेहनत करते हैं कि हम लोग इसको ना किस तरह प्रूफ किया जाए। और हमारे यहाँ भी इस चीज़ को, यानी मैं खुद अपने आप को भी इसमें शामिल करता हूँ कि बिला वजह जिसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसकी नहीं है, लेकिन वी आर यूज टू टॉक, कि हम लोग ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं, मिसाल के तौर पे कि अगर मैंने कहीं शुमाल में जाना है तो मैं जनूब का बोल के चला जाऊं, और बात होता है मैंने उसको नहीं बताना चाहता, लेकिन अगर उसको बोलूं मैं आपको नहीं बताना
0: की बात, हैरत की बात है, बाज लोगों की ऐसी आदत पड़ी हुई होती है बोलने का, यानी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता लेकिन फिर भी वो ऐसे ही बोलेगा।
1: लेकिन एक सवाल और भी है, हम पूछते भी बहुत ज़्यादा।
0: हाँ, ये भी है हमारे अपने ये सबकॉन्टिनेंटल की तरफ लोगों की आदत है।
1: सबकॉन्टिनेंटल में अगर स्ट्रेंजर भी कहीं मिले ना, तो आप कहाँ रहते हैं, घर, अच्छा शहर में, मोहल्ले में, वो घर तक पहुँच के दम लेते हैं स्ट्रेंजर, तो भाई हम आपको नहीं बताना चाहते हैं, तो बोलते हैं यार मैंने क्या कर लेना था, ये इस तरह है। हालांकि दिस इज़ वेरी पर्सनल, कि आप किसी को, कोई आपको इनवाइट करे तो घर का एड्रेस बताए, वरना आप गली मोहल्ले शहर घर के नंबर तक पहुंच जाते हैं, और ये कई लोगों की बड़ी बुरी आदत है, और अगर कोई ना बताए तो उस पर भी बातें सुना देते हैं।
0: जितना ये समझा जाता है ताल्लुकात की गहराई उतनी होती है जितने आप अपने पर्सनल बातों को शेयर करेंगे।
1: अब आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें प्राइवेसी कैसी बताई, किसी के घर जाएं तीन दफा नोक करें ना खोले, आपको पता है अंदर है, यानी हमारे दीन के अंदर जितनी ताकीद और अहमियत है, और आपने बुरा नहीं माना।

0: ना ना, हम लोग तो गए, आवाज आ रही थी अंदर से बच्चों की उनकी, मैं अब सारी उम्र नहीं जाऊंगा, अंदर ही था यार, देयर इज फॉर सम रीजन। मैं खुद भी ये चीजें यहाँ बाहर आके मुझे पता चला है, जो ऑनेस्टली हमें इन चीजों के ऊपर एजुकेट ही नहीं किया गया, क्योंकि पार्ट ऑफ सोसाइटी, लेकिन आप कहते हैं ना उस कुएं से जब बाहर निकले हैं तो हमें इन चीजों का पता चला है, आप जैसी महाफिल और तालीमात और इन चीजों का जब उनमें बैठे हैं, वहां पर कुछ लोग तशरी अपनी तशरी करते हैं, वो सजा जजा जहन्नुम और जहन्नुम तक पहुंचा के दम लेते हैं।
1: जिम्मेदारी ली हुई थी इन्होंने। और बड़ी बात ये है कि देखें, एक मसला, नाजुक मसला है हमारे बच्चों के हवाले से, कि हम बाज़ औक़ात उन्हें झूठ बोलने पर मजबूर करते हैं, सिलसिले में आप क्या कहेंगे?
0: ये बिल्कुल एक अलमिया है और बहुत बड़ी मुसीबत है। हम लोग, यानी हम लोग मजबूरी का नाम लेके या इस तरह करके इस चीज़ों में उनको शामिल कर लेते हैं जिसका हमें पता नहीं चलता। लेकिन वही बात है कि हम जिस, अभी हमारे बच्चे यहाँ पर जो है ना, ऑनेस्टली जब हम लोग छुट्टियों पे जाते हैं ना, तो वहाँ के हिसाब से ये बड़े ही इनोसेंट्स हैं। उनको किस तरह उनके कज़न या वो लोग या वहाँ के लोग एक तो पहचान जाते हैं कि ये बंदा यहाँ का नहीं है, इतना मासूम और सीधा साधा। तो हमारे यहाँ एक चीज़ है कि जो इस तरह की चलाकियाँ, होशियारियाँ या फ्रॉड करता है ना, दे प्रूव टू बी अक्लमंद, कि उसकी सोसाइटी ऐसी बना दी है कि वो सर्वाइव कर सके, और जो सीधा साधा है उसके लिए उन्होंने स्पेस नहीं छोड़ी है, तो बेवकूफ़ है। यानी आप टर्म्स देखें कैसी यूज़ कर रहे हैं। तो जो इसको डिस्करेज करता है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला के ऐसे बंदे हैं जो पाए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि ज़ीरो हो गया है। लेकिन अब आपने जैसे डिस्कशन किया, उम्मीद है और लोग भी सुन रहे होंगे,
1: जरूर जरूर,
0: तो इस चीज़ को ज़रूर, सबसे बड़ी चीज़ है कि जहां आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है या बताने की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ी सी शायद बैड वर्ड हो, आप शट अप कॉल दे दें, भाई इट इज़ नॉट योर कंसर्न कि मैं बिला वजह झूठ क्यों बोलूँ, खुद ही मुझे महसूस होता है। उसके बजाय आप बोल सकते हैं कि मैं आपको बताना नहीं चाहता, सिंपल।
1: सही सही
0: सही, और ये आपका हक है, झूठ बोलना बुरी चीज है, ना बताना आपका हक है, तो आप अपना हक इस्तेमाल करें।
1: वाओ,
0: ऐसे बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे घर में भी ये।
1: लेकिन ये चीजें सिखानी पड़ती है, वो नहीं, बहुत ही अहम नुकता है ये भी, जो बच्चों को सिखानी पड़ती है, और ना बोलने का जो ये, मैं नहीं बताना चाहता ये, फिर मैं तो ये स्कूल में भी, मदारिस में भी जो पढ़ाते हैं बच्चों को, उनको भी, टीचर्स को भी इस सिलसिले में मुहतात रहना चाहिए, तालीम देनी चाहिए बच्चों को।
0: और इसमें टीचर को इस चीज़ को इनकरेज करना चाहिए कि बच्चा है, स्कूल में है, मतलब बच्चा है, ही डू मिस्टेक्स, बच्चे करते ही मिस्टेक्स हैं
1: जरूर,
0: और वो करेंगे, और इसकी इन्होंने स्पेस रखनी है कि बेटा हाँ, आपने झूठ बोल के नहीं बचना, सच बोल के हम आपको माफ करेंगे, ये आपने नहीं करना, ये आपके लिए नसीहत है।
1: सही सही सही,
0: ये जो नसीहत है कि भाई वो उन्होंने पेरेंट्स को कॉल कर दिया, उनको ह्यूमिलेट कर दिया, वहाँ खड़ा कर दिया, ऐसी चीजें जब बच्चे देखते हैं ना, तो वो फिर उससे बचने के लिए, तो इसमें वो टीचर को, अच्छा एक मुख्तसर वाक्या सुनाता हूँ, मैंने बड़ा ज़बरदस्त पढ़ा था, देखें
1: जरूर।
0: एक गरीब बच्चा क्लासों में कहीं पढ़ रहा था, क्लास में स्कूल में था, तो वहाँ अमीर एक बच्चा, उसके पास एक बड़ा टॉय, बड़ा खूबसूरत, या इस तरह के उसका दिल ललचाया उसको देख के, यार ये भी मेरे पास होना चाहिए, इसके पास तो और भी हो सकते हैं, इसके पैसे हैं, तो वो लेके आया, जैसे बच्चों को दिखा रहा है। इस दौरान उसको ना, उसने चोरी कर लिया। अच्छा, चोरी तो उसने कर लिया, लेकिन वो शर्मिंदा हो रहा था, चोरी तो मैंने कर लिया है, मैं इसको वापस कैसे करूं। उसको नहीं समझ आ रहा,
1: एहसास
0: हो जाती है इंसान से, गलती हो जाती है। इस दौरान वो जो अमीर बच्चा था, उसने बड़ा शोर मचाया, पूरे स्कूल में जनाब टीचरों को इकट्ठा कर लिया कि मेरा था, इधर था, तो गुम हो गया, मुझे अभी चाहिए। अब आप पता है, अमीर की आवाज़ भी सुनी जाती है, टीचर हो गए, तो उसमें एक टीचर था, उसने सबको कहा कूल डाउन, मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग जाएं, बच्चे हैं, मैं मैटर को हल कर लेता हूँ। उनको सबको भेजा, एक प्राइवेसी रखी, क्लास की लाइटें बंद की, बच्चों को कहा आपने आंखें बंद कर लेनी है, तो अभी जो एंजल है ना वो आके आपको दे देगा। उसने जाके टीचर को है, उसने जाके, उसने कहा यहाँ कोई रख देगा, इस तरह है, कहते उसने वो लिया टॉय, उसको रख दिया, दे दिया। वो बच्चा जिसने ये वाकया किया था, उसने कहा था कि आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ, अगर वो मुझे पढ़ के ह्यूमिलेट करते, स्कूल से निकाल देते, तो मैं एक मुजरिम होता, आज मैं बड़ा प्रोफेशनल हूँ।
1: बहुत
0: तो
1: ही
0: उस टीचर को

0: कलाम है।
1: तसव्वुर बदल दिया आपने।
0: क्यों उसने मुझे बच्चा समझा, मेरी गलती को ना स्पेस दी।
1: बहुत ही एक अहम वाक़या, दरअसल मैं पहली मरतबा सुन रहा था। और लोग इस तरह भी चीज़ों का हल कर सकते हैं, पूरे ऐसी तरबियत भी हो सकती है, बिल्कुल। यानी ये क्या कहेंगे, बहुत हज़ारों सैल्यूट इनको, इन ऐसे असातिज़ा को।
0: तो ये मैंने वाक़या बल्कि अपने सही हमारे ग्रुप में भी फॉरवर्ड किया। बच्चे हैं, हम लोग भी घर में हैं बच्चों के साथ, सुबह से शाम तक सौ मसले मसाइल होते हैं, स्पेस देते हैं।
1: हमें ऐसा लगता है कि हम बच्चों को अगर वो डांटेंगे और पिटाई होगी और ये करेंगे, उन्हें क्या कहते हैं, रुसवा करेंगे, तो फिर जाके उन्हें सही वो एहसास होगा। हालांकि बात ऐसी नहीं है, कभी इसके बरक्स दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है।
0: हमारे असल में फ़र्क तफरीक इतनी ज़्यादा हो गई है, अप एंड डाउन की, और चीज़ों को बायस तफाखुर बना दिया गया है ना, जिसकी वजह से ये ख्वाहिशात पैदा होती है। अरे हर चीज़ की एक रीज़न है ना, कोई बीमारी होती है तो हमारे यहाँ कहते हैं अस्पताल बना दो, दूसरे मुल्कों में कहते हैं कि रूट कॉज क्या है भाई, ये क्यों लोग बीमार हो रहे हैं, पूरा मुल्क तो हॉस्पिटल नहीं बना सकते। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या सांस ले रहे हैं, चेक किया जाए द रूट कॉज। कॉज सही हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। हॉस्पिटल बनाने में भी खर्चा, दवाइयों में भी खर्चा, और बीमार होने के भी बड़े मसाइल, तो क्या वजह है? तो हम लोग रूट कॉज को एड्रेस नहीं करते, हम लोग अपेरेंटली बस ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो बेवकूफ़ बना रहे हैं।
1: बहुत ही ये, जैसे यहाँ तक के जैसे सच्चाई के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ रूट जो प्रॉब्लम्स हैं, कोर जो प्रॉब्लम्स है, इस पर बात नहीं होती है कि फॉर्म पर हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, वैसे क्यों कर रहे हैं। हालांकि हमारी ख़ास तरबियत जो अहम जो उमूर है, इसको हम नज़रअंदाज कर रहे होते हैं।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल वही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुल्क़रनैन भाई, बात तो आपके साथ ऐसी जारी रही घंटों पर घंटे। माशाल्लाह, बहुत प्यारा नुक्ता आपने बताया आज, ये वाक़या दिल हिला दिया मेरा। इसी के साथ हम ब्रेक की तरफ रुख करते हैं, मुलाकात होती है ब्रेक के उस पार, जुड़े रहिए हमारे साथ।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: आप सुन रहे हैं FM 107।
4: दिल से देसी।
5: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब। सुनिए हदीब टू हैबिट RJ महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीब सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीब, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीब टू हैबिट, हदीब टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
6: दोस्तों, कैंपिंग सीजन के लिए कैरेवन्स और ट्रेलर्स को टो करने के औकात समाप्त कीजिए। संडे से वेडनेसडे तक सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, थर्सडे से सैटरडे तक सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक। बराए करम ऑर्बिटल हाईवे और उसकी एग्जिट का इस्तेमाल करें, राइट लेन में चलें और ओवरटेकिंग से बचें। और ये भी याद रखें कि खराब मौसम के दौरान टोइंग मना है। कैरेवन्स के लिए कुछ सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स जिनको पूरा करना लाजिम है, इनमें शामिल है फायर एक्सटिंग्विशर की वैलिडिटी, ब्रेक्स और टायर्स की सेफ्टी, टोइंग व्हीकल के रेयर लाइटिंग का काम करना, रेयर रिफ्लेक्टर्स यानी रेड और साइड रिफ्लेक्टर्स यानी येलो की क्वालिटी, मैक्सिमम विड्थ 2.60 meters हो सकती है इंक्लूडिंग द लोड, मैक्सिमम लेंथ सिंगल एक्सल के लिए 3.5 मीटर्स है और डबल एक्सल के लिए मैक्सिमम लेंथ 4.20 मीटर्स हो सकती है इंक्लूडिंग द लोड। इसके अलावा कुछ और इकदामात का ख्याल करें, जैसे टोइंग करते वक्त अपनी और दूसरों की सेफ्टी का ख्याल रखें। कैरेवन्स या ट्रेलर्स के साथ सफर करते वक्त अपने रास्ते और स्पीड पर भी नजर रखें। अगर कैरेवन्स का लोड

0: आउटपुट ज्यादा है तो उसे ठीक तरीके से बैलेंस करना जरूरी है। टोइंग के दौरान अपने ब्रेक सिस्टम को चेक करते रहें और टायर्स की कंडीशंस भी बराबर देखते रहें। टोइंग व्हीकल और कैरेवेंस की लाइट्स, रिफ्लेक्टर्स और इंडिकेटर्स का सही काम करना बेहद जरूरी है ताकि रात के वक्त या धीरे चलने पर किसी को कोई मुश्किल ना हो। वेदर कंडीशंस का भी ख्याल रखें। अगर मौसम खराब हो जैसे बरसात, धुंध या तेज हवाएं तो टोइंग करना मना है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
0: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
1: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
0: हर मंडे सुबह 10 बजे से आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
2: आप सुन रहे हैं जुमा रिफ्लेक्शंस विद तलहा अशरफुज़मान ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। फिर आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शन में, जिसमें हम हमारे ज़िंदगी के डायरेक्शन पर बात करते हैं कि भाई डायरेक्शन अगर सही ना रहे तो आप लोकेशन अगर आपको सही से पता ना रहे तो फिर आप मुख्तलिफ रुकावटों का सामना कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में जब हम बिज़नेस कर रहे होते हैं, बिज़नेस में, मामलात में, कारोबार में, ओवरऑल मुख्तलिफ मामलात, ये सिर्फ पैसे के नहीं, इसमें काफ़ी दूसरी सारी चीज़ें आ जाती हैं। जो भी मामला कहलाता है वो उसमें एक बात काफ़ी अहम है, जिसके बगैर न बरकत रहती है, न एतमाद, न सुकून, और वो उसूल है सच्चाई सच्चाई सच्चाई। तो सामिन कराम, ये बहुत ही अहम है। बचपन से बच्चों की जो तरबियत होनी चाहिए सच्चाई पर, जैसे कि हमारे असलाफ़ सालहीन के हवाले से काफ़ी सारे वाक़यात ये मज़कूर हैं। तो हम ओवरऑल आजकल का कलमा ये बना हुआ है कि लोग कसम खाकर बात कहते हैं कि भाई खुदा कसम खाकर कहता हूँ कि ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई ऐब नहीं, ऐसे कह के वो कह के आप बच्चों के एतमाद को बर्बाद कर रहे होते हैं। फिर पता चलता है बच्चे को, हाँ उसने कसम खाकर ये बात कही थी, और फिर पता चला कि चीज़ वैसी नहीं जैसे उसने बताई है, तो बस उसका एतमाद क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और इस तरह एतमाद टूटने के बाद ये बच्चा भी आगे जाके ऐसे कसम खाएगा और ये समझेगा कि हाँ ये मैंने बड़ा अच्छा काम किया है, अपने बड़प्पन की अलामत है कि मैं कसम खाकर ऐसी बात कहूँगा जो हालांकि वो बात सही नहीं है। माज़ल्लाह नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो सामने कराम, कारोबारी में छोटे से छोटे मामलात पर भी धोखा दही तो ये सही नहीं, क्योंकि छोटी चीज़ें बर्बाद में जाके बड़ी बन जाती हैं। तो चूँकि जब आपको पता है कि एक झूठ दूसरे झूठ को बुलाता है, फिर दूसरा झूठ, तीसरा झूठ, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मामला बहुत बड़ा हो जाता है। फिर बंदा अपने इस झूठेपन को अपने इज़्ज़त और शराफत के साथ जोड़ लेता है, फिर मामला और भी संगीन हो जाता है। इस्लाम तजारत के सिलसिले में ज़रूर हौसला अफजाई करता है, हलाल रोज़ी कमाने को इज़्ज़त देता है, और हमारे अंबिया अलैहिस्सलाम ने मेहनत की, काम किया, तजारत की, हाथ से रोज़ी कमाई। और इसी के साथ एक कॉल हमारे साथ इस वक्त हैं स्टूडियो के लाइन में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जी कौन हमारे साथ? जमा के इस मुबारक प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। जी कौन हमारे साथ?
4: हमजा नाम है सर मेरा।
3: हमजा भाई बताइए क्या हाल, खैर खैरियत?
4: अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ।
3: बारकल्लाह
4: फीकुम, माशाल्लाह आपकी आवाज बहुत प्यारी लगती है, अल्लाह पाक इसी तरह आपको
3: बस बस यही
4: और आपका सफर ये चलता रहे कि
3: आपके हौसले अफजाई और कुछ नहीं सर नवाजिश। अच्छा जी बताइए, सच्चाई के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे कि आज की जो तजारत और जो भी हम यानी कमाई वगैरह के सिलसिले में लोग ने हमने अपने झूठा दही को अपना शियार यानी झूठ बोलने को अपना शियार बना लिया है, और इस तरह काफ़ी रुकावटों का हम सामना करते हैं, सिलसिले में आप क्या बताएंगे? जी
4: अगर बात कहने की है कि बात तो ये बहुत छोटी सी है कि सच और झूठ में फर्क करिया करें, ठीक है कि सच बोला करो और झूठ से बचा करो। आजकल के फैशन के लिहाज से ये बहुत बात छोटी सी है कि भाई सच बोला करो यार, झूठ नहीं बोला करो, ठीक है। लेकिन अगर फर्क किया जाए तो ये बहुत मुश्किल और बहुत

0: बड़ी चीज बन चुकी है।
1: बेशक बेशक,
0: ठीक है। और जैसे अभी मेरे से पहले कॉलर से जुल्कुरनैन भाई थे मेरे ख्याल से, तो उन्होंने क्या बताया और वाकया मैंने वाकई खुद पढ़ा था, वो एक बिजनेसमैन था या कोई अच्छी पोस्ट का जाना लड़का था और वो अपना बचपन का वाकया बता रहा था।
1: ओके।
0: इसी तरह आप अभी तिजारत की बात कर रहे थे, तो हमारे पाकिस्तान में एक कौम पाई जाती है जिनको मेमन कहते हैं।
1: हाँ हाँ सुना है मैंने जी।
0: तो मेमनों का ना मेरे वाले साहब अक्सर बताते होते हैं उनका, तो वो ना एक मजाहिया बात उनके बताते बोलते हैं, वो बकौल उनके कि वो झूठ नहीं बोलते, ठीक है। कारोबार के अंदर वो कारोबार में बहुत ना पॉपुलर माने जाते हैं कि बहुत पॉपुलर है कारोबार के लिहाज से।
1: अच्छा। हाँ ऐसे होते हैं, बाज एरियाज के लोग कारोबार के हवाले से मशहूर होते हैं, ये हर जगह में ही है जी।
0: तो उनका वाले साहब बताते हैं कि बेटा अगर वो कुछ चीज लेकर आया ना, मिसाल के तौर पर उन्होंने ली है 20 रुपए की चीज या 20 रियाल की चीज ली है, ठीक है, और उन्होंने बेचनी है वो 100 रियाल की। अब वो कस्टमर को बताएंगे कि कसम बिल्ला 99 की हम लेकर आए हैं और हम आपको बेच रहे हैं। अब वो कसम क्यों जना ये सच्ची खाते हैं, बोलते जी हम सच्ची कसम खा रहे हैं, हम झूठी नहीं खाते। तो उनका क्राइटेरिया क्या है, वो घर पे बैठे हैं, घर पे चीज लेकर आया 20 रियाल वाली। अब वालदा भी बैठी है, वालिद भी बैठे हैं, भाई भी बैठा है। अब वो वहां पे टेबल पे सेंटर में चीज रखी जाती है और बताया जाता है जी मैं 20 की लेकर आया हूँ। वालिद साहब बोलते हैं जी मैं 30 में मैं खरीद लेता हूँ, ठीक है। आगे वालदा बोलती 40 में मैं खरीद लेती हूँ, फिर भाई है वो बोलता 50 में मैं। इस तरह करते करते वो जब चीज 90 या 99 में पहुंचती है तो वो उसकी बात कहीं की चर्च हो जाती है।
1: बस वो अब नवे की रेटिंग लग गई।
0: झूठ को हाँ जी, झूठ को भी सच बनाने की कला करते हैं।
1: अल्लाह, जिसे शरीयत में इसे गबन फाहिश कहते हैं कि भाई अपने आप में इतने यानी रेटिंग बढ़ाना। और ये बिल्कुल बिल्कुल ये लोग ऐसे हैं, हमारे यहाँ लोग ऐसे हैं। आप यहाँ तक के जब उनके साथ वो क्या कहते हैं चीज़ों के जो मुसावमत और नीलाम के हवाले से बात करेंगे तो ऐसा होगा कि 100 रियाल की वो चीज़ आप फिर बाद में 20 रियाल में भी खरीद सक रहे होंगे, ऐसा भी होता है। और ख्वातीन इस हाल में काफ़ी माहिर होती है हमारे यहाँ।
0: क्राइटेरिया ऐसा बन चुका है ना कि हम लोग, और जितना भी आप बोले थे कि बच्चों को सिखाने के बारे में, तो ये भी वालिद साहब से एक सुना था मैंने, क्योंकि वालिद साहब अक्सर इस तरह किस्से सुनाते होते हैं। तो वो बोलते हैं कि एक बाप ने अपने बच्चों को नसीहत की कि बेटा हमेशा सच बोलना। और कुछ टाइम बाद कुछ ऐसा हुआ कि एक बंदा उनके घर में मिलने के लिए आया और वालिद साहब अंदर बैठे हुए थे, तो अब वो उनसे मिलना नहीं चाहते थे।
1: अच्छा।
0: तो उन्होंने बच्चे को बोला कि जाके ना बाहर अंकल को बोला कि पापा घर पे नहीं है। तो बच्चे ने गेट खोला और बोलता है मेरे बाबा बोल रहे मैं घर पर नहीं हूं।
1: सही।
0: तो आजकल के क्राइटेरिया के लिहाज से भाई ये बहुत जरा चीज समझना करना बहुत मुश्किल हो चुकी है, ठीक है।
1: सही,
0: कोशिश करनी चाहिए कि इंसान सच बोले, ठीक है, और ऐसा मौका ना पैदा हो कि आपको झूठ बोलना पड़े। और अगर जहां कभी आपको लगता है कि यार आपको झूठ बोलना पड़ रहा है, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि खामोशी सबसे बेहतर है।
1: बेशक बेशक, ये खामोशी की बात बहुत अपने अहम कही, और ये सिलसिले में तो हदीस में भी रहनुमाई है कि भाई खामोशी आपको कई सारी मुसीबतों से आपको बचा सकता है। और इसमें तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपनी सच्चाई की जमानत रख सकते हैं कि ईमानदार के हवाले से आपकी ये पहचान में कोई तरह की कोई दाग नहीं लगेगी। तो बहुत ही अहम बात, माशाल्लाह अहम नुक्ते आपने बयान किए, और सच्चाई के हवाले से हर वक्त
0: गुस्से में भी बताया कि आप खामोश रहें, ठीक है, कोशिश करें खामोशी आपको
1: सही सही सही
0: जरा गुस्से पे काबू देने पे बिल्कुल करती है। और इसी तरह मैं समझता हूँ सच अगर आप किसी को नहीं बताना चाहते, जैसा भाई ने बोला कि भाई आप शट अप कॉल दे सकते हैं, ठीक है। बहुत औकात जगहें ऐसी होती हैं कि जिस तरह आप अपने पेरेंट्स के सामने खड़े हैं, ठीक है, या कोई आप अपने बुजुर्ग के सामने खड़े हैं, आप उनको ये बात नहीं बोल सकते कि यार मैं आपको नहीं बताना चाहता।
1: सही सही, नहीं बोल सकते।
0: ये है कि खामोशी ज्यादा काम देती है कि ठीक है, या वो कंडीशन ऐसी बन गई है कि खामोश है, पता नहीं क्यों नहीं बोलता बच्चा, लेकिन अब वो बच्चे को पता है कि वो क्यों नहीं बोल पा रहा, ठीक है, अब वो क्या बताया, या तो झूठ बोले या खामोश रह ले। तो मैं जो अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ कि मैं इस चीज को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, खामोश रहना ज्यादा बेहतर है।
1: सही सही सही, मजा आया बहुत माशाल्लाह। सॉल्यूशन पर जब आपने बात की ना तो ये मकाम बहुत उम्दा था आपके साथ, ये निचोड़ है हमारी बात की। बहुत बहुत शुक्रिया हमजा भाई, जज़ाकअल्लाह। इंशाअल्लाह ये कॉल जारी रहेंगी, बेइज़्निल्लाह ताला जुड़े रहेंगे। बारकअल्लाह। वालेकुम।

लगाए जा रहे हैं आजकल हेडलाइंस से। तो हालांकि हदीस ने हमें क्या बताया कि सच बोलने में बरकत है, अलबयान बिलखियार मालम यतफर्रका फ इन सदका व बैना बोरिक लहुमा

साख खत्म हो जाती है, इंसानियत जिसे कहते हैं। लोग कहते हैं उससे बच कर रहो, ये धोखा देता है, कारोबार से एतमाद ख़त्म होता है, रिज़्क़ से बरकत उठती है, दिल बेसुकून रहता है। जैसे मैंने कहा, इस दौर का सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ा अलमिया है ये बेसुकूनी, इज़्तिराब की कैफियत हर वक्त हावी रहती है, बंदा परेशान रहता है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। हाँ, यहाँ तक कि खाने में दफ्तर में तो अपने काम, और वहाँ घर में लौट कर फिर खाने के उस दस्तरखान में भी टेलीविज़न ऑन करके वहाँ बैठे रहते हैं, हर वक्त अपने आप को मसरूफ़ रखने की कोशिश, ये वो। तो बंदा यानी बेसुकून और यानी परेशान नहीं होगा तो क्या होगा, सही है ना। तो अपने आप को, आपको अपने जहन को स्ट्रेस से खाली रखना, आप हर वक्त उसको कुछ ना कुछ देने की कोशिश दे रहे हैं, तो वो तो उसकी भी अपनी ताकत है ना, वो तो यानी कहता है खलास अब मेरे पास तो ताकत नहीं है, अब जो आ रहा है वो नुकसान ही हो रहा है, वो न हेल्थ के हवाले से उसमें कोई फ़ायदा है, न नफ्सियाती तौर पर उसमें कोई फ़ायदा है। तो सामिन किराम, में एक ताजर को चाहिए कि वो इस सोचे कि मैंने कैसे कमाया, सिर्फ ये नहीं कि मैंने कितना कमाया। और इन्हीं पैगामात के साथ है कि अगर आप ताजर हैं तो अगर आप जानते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है चीज़ में तो आप ज़रूर बताएं। ख़रीदार हैं तो कीमत कम करवाने के लिए झूठ ना बोले, ये ना कहें कि भाई मैं तो आपका परमानेंट कस्टमर हूँ, हालांकि आप पहली मरतबा आ रहे हैं। तो ये जो ख़रीदार है ना, ये भी जो बेचने वाले हैं, इनकी खोपड़ी में काफ़ी मसाइल का यानी बायस बनते हैं, तो इस वजह से यानी वो भी गुस्से में आ जाते हैं कि ऐसी ऐसी बातें कहते हैं वो कस्टमर से जो ख़रीदने आते हैं। तो इस वजह से आपने भी यानी ऐसी बात होती है समाज में, बाहमी तआवुन से एक सही रुख पर आप जा सकते हैं, माशरे को ले सकते हैं आप। अगर यानी हमारे जो कस्टमर हैं, हम भी जो ख़रीदार हैं, हमें भी इन बातों का लिहाज रखना है। अल्लाह सुब्हानहु ताला हमें हुस्न अख़लाक के साथ मुतसिफ़ होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ज़िंदगी के हर शोबे में अच्छा अख़लाक दिखाने की कोशिश करें। तो मुसलमान अच्छे अख़लाक के साथ मुतसिफ़ होता है, अच्छे अख़लाक क्यों, चूँकि अल्लाह राज़ी होगा इस वजह से, रज़ामंदी हमारी नीयत होती है अल्लाह की रज़ामंदी। तो इन्हीं पैगामात के साथ हम आज के जुमा रिफ्लेक्शंस के प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। स्टूडियो से तकनीकी मुआविन मोहम्मद हसन असदानी और मुझे तलहा अशरफ जमान को आइंदा मुलाकात के लिए दीजिए इजाज़त। मा सलामा फ़ी अमानिल्लाह, बारकल्लाहु फ़ीकुम।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

और खुले हुए भी। वो उन लोगों को हरगिज पसंद नहीं करता जो गुरूर नफ्स में मुब्तला हों। और जब कोई उनसे पूछता है कि तुम्हारे रब ने ये क्या चीज नाजिल की है, तो कहते हैं अजी वो तो अगले वक्तों की फरसूदा कहानियां हैं। ये बातें वो इसलिए करते हैं कि कयामत के रोज अपने बोझ भी पूरे उठाएं और साथ साथ कुछ उन लोगों के बोझ भी समेटें जिन्हें ये बरबनाए जहालत गुमराह कर रहे हैं। देखो कैसी सख्त जिम्मेदारी है जो ये अपने सर ले रहे हैं। इनसे पहले भी बहुत से लोग हक को नीचा दिखाने के लिए ऐसी ही मक्कारियां कर चुके हैं, तो देख लो कि अल्लाह ने उनके मकर की इमारत जड़ से उखाड़ फेंकी और उसकी छत ऊपर से उनके सर पर आ रही और ऐसे रुख से उन पर अजाब आया जिधर से उसके आने का उनको गुमान तक न था। फिर कयामत के रोज अल्लाह उन्हें जलील और खार करेगा और उनसे कहेगा बताओ अब कहां हैं मेरे वो शरीक जिनके लिए तुम अहले हक से झगड़े किया करते थे। जिन लोगों को दुनिया में इल्म हासिल था वो कहेंगे आज रुसवाई और बदबख्ती है काफिरों के लिए। हाँ उन्हीं काफिरों के लिए जो अपने नफ्स पर जुल्म करते हुए जब मलाइका के हाथों गिरफ्तार होते हैं तो सरकशी छोड़कर फौरन डगे डाल देते हैं और कहते हैं हम तो कोई कसूर नहीं कर रहे थे। मलाइका जवाब देते हैं कर कैसे नहीं रहे थे, अल्लाह तुम्हारे करतूतों से खूब वाकिफ है। अब जाओ जहन्नम के दरवाजों में घुस जाओ, वहीं तुमको हमेशा रहना है। बस हकीकत यह है कि बड़ा ही बुरा ठिकाना है मुतकब्बिरों के लिए।

0: लोग अल्लाह की पैदा की हुई किसी चीज को भी नहीं देखते कि उसका साया किस तरह अल्लाह के हुजूर सजदा करते हुए दाएं और बाएं गिरता है। सब के सब इस तरह इजहार इज्ज कर रहे हैं। जमीन और आसमानों में जिस कदर जानदार मखलूकात हैं और जितने मलाइका, सब अल्लाह के आगे सरबसुजूद हैं। वो हरगिज सरकशी नहीं करते। अपने रब से जो उनके ऊपर है डरते हैं और जो कुछ हुक्म दिया जाता है उसी के मुताबिक काम करते हैं। अल्लाह का फरमान है कि दो खुदा न बना लो, खुदा तो बस एक ही है, लिहाजा तुम मुझी से डरो। उसी का है वो सब कुछ जो आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और खालिसन उसी का दीन सारी कायनात में चल रहा है। फिर क्या अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और से तकवा करोगे? तुमको जो नेमत भी हासिल है अल्लाह ही की तरफ से है। फिर जब कोई सख्त वक्त तुम पर आता है तो तुम लोग खुद अपनी फरियादें लेकर उसी की तरफ दौड़ते हो, मगर जब अल्लाह उस वक्त को टाल देता है तो यकायक तुम में से एक ग्रोह अपने रब के साथ दूसरों को इस मेहरबानी के शुक्रिये में शरीक करने लगता है ताकि अल्लाह के एहसान की नाशुक्री करे। अच्छा मजे कर लो, अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। ये लोग जिनकी हकीकत से वाकिफ नहीं हैं, उनके हिस्से हमारे दिए हुए रिस्क में से मुकर्रर करते हैं। खुदा की कसम जरूर तुमसे पूछा जाएगा कि ये झूठ तुमने कैसे घड़ लिए थे। ये खुदा के लिए बेटियां तजवीज करते हैं, सुबहान अल्लाह, और इनके लिए वो जो ये खुद चाहें। जब इनमें से किसी को बेटी के पैदा होने की खुशखबरी दी जाती है तो उसके चेहरे पर कलोनस छा जाती है और वो बस खून का सा घूंट पी के रह जाता है। लोगों से छुपता फिरता है कि इस बुरी खबर के बाद क्या किसी को मुंह दिखाए। सोचता है कि जिल्लत के साथ बेटी को लिए रहे या मट्टी में दबा दे। देखो कैसे बुरे हुक्म है जो ये खुदा के बारे में लगाते हैं। बुरी सिफात से मुत्तसिफ किए जाने के लायक तो वो लोग हैं जो आखिरत का यकीन नहीं रखते। रहा अल्लाह तो उसके लिए सबसे बरतर सिफात है। वही तो सब पर गालिब और हिकमत में कामिल है। सदकल्लाहुल अज़ीम।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में ज़ोहर की अज़ान का वक्त हो गया है। अल्लाह

0: वुमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं। ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाएं। आइए तलहा अशरफ जमा के साथ सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान सिर्फ एफएम 107 पर।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रेडियो कदर उर्दू के प्रोग्राम कससुल कुरान में आप सबको खुश आमदीद। इस प्रोग्राम से हम आप तक कुरान करीम के हसीन और इबरत अंगेज कहानियाँ या वाकयात आप तक पहुँचाते हैं ताकि हम कुरान से सबक सीखें और अपनी जिंदगी को संवारें। आज हम सूरतुल फील में मज़कूर एक अजीम और मौजज़ाती वाकया सुनेंगे। यह है अस्हाबुल फील, हाथी वालों का वाकया।

सर पर फिजा में छा गए। उनकी चोंच और उनके पंजों में संग्रेजे लगते थे, बदन फोड़कर बाहर निकल आते थे और फौरन ही आजा गलने और सड़ने लगते थे। नतीजा निकला कि थोड़ी देर में सारा लश्कर जेरो जबर होकर रह गया। मोहम्मद इब्ने साक कहते हैं कि कुछ लोग इसी हाल में लश्कर से फरार होकर यमन और हबशा पहुंचे और उन्होंने अब्रहा और उसके लश्कर की तबाही का हाल सुनाया। और मशहूर मुहदिस इब्न अबी हातिम बरिवायत उबैद इब्न उमैर नकल करते हैं कि जब अब्रहा का लश्कर मक्के की जानिब बढ़ा तो तेज हवा चली और समंदर की जानिब से परिंदों के गौल उड़ते हुए लश्कर पर छा गए। ऐसा मालूम होता था कि फिजा में परिंदों का जबरदस्त लश्कर परे के परे बांधे हुए हैं। उनके मुंह और उनके दोनों पंजों में संग्रेजे थे। उन्होंने अव्वल तो आवाज की और फिर लश्कर पर संग्रेजे मारने लगे। साथ ही तंदो तेज हवा चलने लगी जिसने संगबारी को लश्कर के लिए मुसीबत उज़्मा बना दिया। चुनांचे जिस शख्स पर ये संग्रेजे गिरे बदन फोड़ कर बाहर निकल आए और बदन गलने लगे और सड़ने लगा और इस तरह उन संग्रेजों ने सारे लश्कर को छलनी कर

0: कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर। दोस्तों, गाड़ी में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर होना एक अहम रोड सेफ्टी रिक्वायरमेंट है। हर थोड़े वक्त के बाद ये चेक करें कि वो वैलिड है या नहीं, और गाड़ी में इसे ऐसी जगह रखिए जहां इमरजेंसी के वक्त आसानी से मिल सके, और साथ ही इसके इस्तेमाल करने को भी यकीनी बनाएं। याद रखिए, ये छोटी सी तैयारी किसी इमरजेंसी में जान बचा सकती है। फायर सेफ्टी को इग्नोर ना करें, खुद को और दूसरों को महफूज रखने की कोशिश कीजिए। गाड़ी में एक फायर एक्सटिंग्विशर होना बेहद अहम है। अक्सर हम सीट बेल्ट और स्पीड लिमिट का ख्याल रखते हैं, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर का सोचना भूल जाते हैं। आग किसी भी वक्त लग सकती है, ओवरहीटेड इंजन, शॉर्ट सर्किट या फ्यूल लीक की वजह से। जब तक मदद आए, आपका फायर एक्सटिंग्विशर ही आपकी पहली डिफेंस होता है। अपनी सेफ्टी के लिए जिम्मेदारी उठाइए और महफूज रहिए, और इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहिए। आज ही चेक करें क्या आपकी गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर है और क्या वो वैलिड है। FM 107 आपके खुशहाल सफर की ख्वाहिश करता है।

0: 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।
1: या yeah.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se desi.
1: Scam alert. दोस्तों, नए जमाने के नए स्कैम में इस्तकबाल है आपका। हम कई हफ्तों से बात कर रहे हैं नए जमाने के स्कैम्स के बारे में, फ्रॉडस्टर्स के बारे में, और आज हम बात करेंगे ऑटोमेटेड एआई एजेंट्स और सिंथेटिक आइडेंटिटी फ्रॉड के बारे में। 2026 में साइबर क्रिमिनल्स ने इंडिविजुअल आइडेंटिटी चोरी करने के बदले सिंथेटिक आइडेंटिटी बनाना शुरू कर दिया है। इस फ्रॉड में एआई एजेंट्स रियल लोगों के थोड़े से डेटा, जैसे कि आधार या पैन या कुछ हिस्सा या छोटी मोटी डिटेल्स को फेक एआई जनरेटेड डेटा के साथ मिक्स करके एक बिल्कुल नई झूठी आइडेंटिटी खड़ी कर देते हैं। ये फेक आइडेंटिटीज इतनी परफेक्ट होती हैं कि बैंक के ऑटोमेटेड केवाईसी सिस्टम्स और क्रेडिट स्कोरिंग एल्गोरिदम्स भी इन्हें पकड़ नहीं पाते। इन सिंथेटिक प्रोफाइल्स के दम पर फ्रॉडस्टर्स बड़े बड़े पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स और शॉपिंग लाइंस अप्रूव करवा लेते हैं। जब लोन डिफॉल्ट होता है तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि उस नाम का कोई इंसान दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका असर आम लोगों पर तब पड़ता है जब उनका रियल डेटा इस फेक मिक्स में यूज होता है और उनका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है। अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को रेगुलरली चेक करते रहें। ये ऑटोनोमस एआई एजेंट्स हर रोज हजारों फेक प्रोफाइल्स क्रिएट करते हैं, बैंकिंग पोर्टल्स पर ऑटोमेट अटैक्स रन करते हैं, जिससे पूरा फाइनेंशियल सिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाता है। लेकिन FM 107 आपको इसका सॉल्यूशन भी देता है। सिंथेटिक आइडेंटिटी फ्रॉड का शिकार होने से बचने के लिए आपको अपने आइडेंटिटी कार्ड क्रेडेंशियल्स के लिए बहुत ही ज्यादा सतर्क या कहें होशियार रहने की जरूरत है। सबसे पहले अपने फाइनेंशियल हेल्थ पर नजर रखने के लिए सिबिल, एक्सपेरियन या इक्विफैक्स जैसे क्रेडिट ब्यूरोस से हर महीने अपने क्रेडिट रिपोर्ट चेक करें। अगर आपको अपनी रिपोर्ट में कोई ऐसी लोन इंक्वायरी या क्रेडिट अकाउंट दिखता है जो आपने कभी खोला ही नहीं, तो तुरंत उस बैंक और साइबर सेल को रिपोर्ट करें। अपने पर्सनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट या QID, फोटोकॉपी किसी भी डॉक्यूमेंट की अनवेरिफाइड जगह पर ना दें। और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हमेशा मास्क्ड आधार या QID या ऐसी डिटेल्स जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है मास्क्ड दें। मिसाल के तौर पे अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड के आखिरी के 4 नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ही अगर आप दे देंगे तो आपके नाम से उसे मैच किया जा सकता है बजाय पूरे 16 या जितने भी नंबर हैं वो देने के, क्योंकि वो हो जाता है खतरनाक। उसके अलावा साइबर थ्रेट से अलर्ट रहने के लिए बैंक्स की तरफ से भेजे गए ट्रांजैक्शन अलर्ट्स और क्रेडिट अपडेट्स को भी इग्नोर ना करें। अगर आपका डेटा लीक हुआ है तो आइडेंटिटी थेफ्ट प्रोटेक्शन सर्विसेज का यूज करें, जो डार्क वेब पर आपके क्रेडेंशियल्स का मिसयूज स्कैन करती रहती है। ये है सबसे सेफ तरीका। दोस्तों, ये था आज का FM 107 पे खास फ्रॉड अवेयरनेस का एपिसोड। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए जमाने के नए स्कैम के बारे में बात करते हुए। तब तक सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
0: स्कैम अलर्ट।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है, और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब। यहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे अचीवर्स, बड़ी बड़ी कहानियाँ जो इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को। सो गेट रेडी, क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज, एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ। जूनियर जनाब विद आरजे सफा।
2: अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू साथियों, मैं हूँ आरजे सफा और आप सभी को वेलकम करती हूँ जूनियर जनाब के एक और एपिसोड में। साथियों, ये एक ऐसा शो है जहाँ हम आपकी मुलाकात कराते हैं यंग अचीवर्स से। आज हमारे रेडियो शो की दुनिया में एक ऐसा सितारा आया है जो अभी छोटा है, लेकिन अचीवमेंट्स इनकी बहुत बड़ी बड़ी हैं भाई। मैं बात कर रही हूँ एक यंग अचीवर की जिनका नाम है मोहम्मद हसन। अच्छा भाई, मोहम्मद हसन का अगर थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैं आपको दे सकूँ तो मैं आपको बता दूँ कि हसन ने सिर्फ अपनी किताबों में ही एक्सीलेंस नहीं दिखाई, बल्कि स्पोर्ट्स, ट्रैवल और नॉलेज की दुनिया में भी इन्होंने अपने रंग जमाए भाई। इंटर स्कूल स्विमिंग कॉम्पिटिशन से 2 मेडल्स जीते, CNQ बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीत कर अपने स्कूल का नाम रोशन सितारे की तरह कर दिया, और 14 मुल्कों की यानी 14 कंट्रीज की सैर भी की, और ये सब कोई आसान बात नहीं है साथियों। और सिर्फ यही नहीं, एकेडमिक्स में भी इन्होंने 90% प्लस स्कोर किया है भाई, और वो है ना अपना अबास्कस कंप्लीशन फ्रॉम पेस एजुकेशन दोहा, और फ्यूचर डॉक्टर बनने का ख्वाब भी भाई। इतना कुछ कैसे मैनेज कर रहे हैं, इनसे पूछना तो बनता है, क्योंकि ये हैं परफेक्ट एग्जांपल डेडिकेशन और पैशन की। और सबसे इंस्पायरिंग बात पता है क्या है साथियों इनकी, जो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी, कि ये छोटा सा सुपरस्टार सिर्फ स्पोर्ट्स और एकेडमिक्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये बुक्स और डॉक्यूमेंट्रीज से अपनी जनरल नॉलेज भी बढ़ाते हैं। नॉलेज और टैलेंट दोनों के ऑलराउंडर हैं भैया। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसी मुलाकात के लिए जो कि हो रही है मोहम्मद हसन से, उनकी जर्नी के बारे में, उनकी स्ट्रगल्स के बारे में, उनकी ख्वाबों की कहानी के बारे में, और ये सब कुछ हम उन्हीं से सुनेंगे ना, मजा तो उन्हीं की बातें सुनकर आएगा। तो भाई, ये है एक इंस्पायरिंग मुलाकात एक यंग अचीवर के साथ राइट हियर ऑन FM 107 शो पर जिसका नाम है जूनियर जनाब। तो साथियों, चले भाई चलते हैं हम मोहम्मद हसन की तरफ। मोहम्मद हसन, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अच्छा, थोड़ा सा माइक के पास पास आ जाएंगे ताकि हम हमारी दुनिया को आवाज क्लियरली आनी चाहिए ना हमारी भाई। देखिए, हमारे कॉन्सेप्ट और हमारी आवाज बिल्कुल टोटली क्लियर रहनी चाहिए लोगों को, ठीक है? अच्छा, ये बताएं कि कैसा फील कर रहे हैं?
3: मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ, एक्साइटेड हूँ।
2: एक्साइटेड है
3: जी।
2: अच्छा, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे ऐसे, मैं एक्साइटेड हूँ, ताकि एक्साइटमेंट सुनाई दे ना हमें।
3: जी, मैं एक्साइटेड हूँ। मैं
2: और सर, हाँ मैं एक्साइटेड हूँ, जबरदस्ती बुलवा रही हूँ उससे, मैं एक्साइटेड हूँ। अच्छा, ये बताएं कि ये जो छोटा सा हमारा सुपरस्टार है जिसका नाम है मोहम्मद हसन, क्या ये अपने आप को थोड़ा बहुत अपने वर्ड्स में, मैंने तो आपको इंट्रोड्यूस करा दिया, लेकिन आप अपने वर्ड्स में थोड़ा बहुत अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे?
3: जी, मैं मोहम्मद हसन हूँ, मैं 12 साल का हूँ, मैं MES इंडियन स्कूल में पढ़ता हूँ। मुझे स्पोर्ट्स में बहुत शौक है, मुझे है ना बास्केटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है, स्विमिंग, फुटबॉल, मैंने बास्केटबॉल में भी सर्टिफिकेट जीते हैं, स्विमिंग में भी सर्टिफिकेट जीते हैं, और इंटर स्कूल स्विमिंग कॉम्पिटिशन में भी 2 मेडल्स जीते हैं, और बास्केटबॉल के अंदर CNAQ में एक टूर्नामेंट था, उसके अंदर हम लोग फाइनल में जीत गए थे।
2: सही,
3: और ट्रॉफी मिली थी।
2: नाइस। अच्छा, ये सब कुछ है, अभी भी और लंबी चौड़ी लिस्ट है, चलती जाएगी इंशाल्लाह, जब बड़े होते जाएंगे तो और चलती जाएगी, ठीक। तो भाई मुझे ये बताएं, चलिए आपसे एक एक एक नॉर्मल से सवाल करती हूँ, लॉन्ग डिस्कशन, एक एक अगर मैं आपको एक एक छोटे से शॉर्ट से पैसेज में लाने को बोलूँ, तो जरा मुझे ये बताएं, अगर आपने अपने आप को डिस्क्राइब करना हो इन यू समझ लें फ्यू वर्ड्स, ठीक है, तो आप अपने लिए क्या बोलेंगे, क्या हैं आप, कौन हैं आप, कैसी पर्सनैलिटी आपकी?
3: जी मुझे पढ़ाई करने का शौक है और मैं कभी जल्दी ज्यादा गुस्सा नहीं होता हूँ.
2: अरे वाह, नाइस.
3: जब बहुत ही ज्यादा होता है तभी गुस्सा होता है, छोटी बातों पर नहीं होता हूँ.
2: अच्छा भाई, ये तरीके का देखें, हम सबको क्लासेस दे दें. चले फीस के बारे में हम बाद में बात कर लेंगे कि ये एंगर मैनेजमेंट की जो आप क्लासेस देंगे इसकी फीस कितनी होगी, हम बाद में बात करेंगे, ठीक है. लेकिन ये कमिटमेंट जरूर करके जाइएगा कि एंगर मैनेजमेंट की क्लासेस देंगे आप, ठीक है. अच्छा ये बताइएगा कि आपके जो स्पोर्ट्स हैं और हॉबीज हैं, विच वन डू यू लव द मोस्ट? अब आप बता रहे ना कि आपको मल्टीपल स्पोर्ट्स आपने खेले हुए, हॉबीज मल्टीपल हैं आपकी, लेकिन एक होगा ना जिससे आप कहते नहीं भाई इससे मैं बोर नहीं होता.
3: जी ऐसे स्पोर्ट्स के अंदर फुटबॉल है. फुटबॉल मुझे घर में भी खेलना अच्छा लगता है, बाहर दोस्तों के साथ भी खेलना अच्छा लगता है, मैं कभी फुटबॉल से बोर नहीं होता हूँ.
2: तो ये बताएं कितना फर्नीचर तोड़ चुके हैं?

0: डेकोरेशन पीसेस, क्या कितनी दफा डांट खा चुके? घर में खेलते हैं, घर के अंदर
1: कभी कभी थोड़ा
0: तो सही सही बताना, कितनी डांट खाई है अम्मी से?
1: खाई तो है,
0: ये मुस्कुराहट से पता चल रहा है मुझे, बहुत खाई। देखिए आप कौन कौन सी डांट को याद रखेंगे, अब तो नॉर्मल हो गया है। अच्छा ये बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट मेक्स यू द मोस्ट हैप्पीएस्ट डूइंग स्विमिंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल या ट्रैवलिंग, इन चीजों में आपको कौन सबसे ज्यादा अच्छा, मतलब कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है?
1: ऐसा तो कोई डिफरेंस नहीं है मुझे, दोनों से इक्वल मजा आता है, तो मेरा आंसर है फुटबॉल, बास्केटबॉल और ट्रैवलिंग।
0: लो भाई सभी आ गया हमारी जेब के अंदर। देखिए स्विमिंग आपने जो एक छोड़ दी थी वो भी मैं इंक्लूड कर ही देती हूँ फिर। चले भाई जी जी, ये हम भूल गए थे, जल्दी में बताना। अच्छा ये बताएं कि आपका कोई, जैसे घर में होता है ना हम लोग एक दूसरे को बड़े प्यार से निकनेम्स देते हैं, आपका कोई निकनेम है घर में?
1: मेरा नाम वैसे भी थोड़ा शॉर्ट है हसन, तो ऐसा ही है।
0: हाँ अम्मी भी ऐसे बोलते हैं हसन
1: जी।
0: अच्छा भाई इनका कोई निकनेम नहीं है, तो कोई फ्रेंड्स वगैरह में कोई आपको निकनेम से बुलाते हैं?
1: नहीं
0: हसन ही, माशाल्लाह प्यारा सा नाम, ठीक है भाई। अब लेते हैं एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आकर आपसे करेंगे और भी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर। सुनते रहिए FM 107।
2: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है, और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब। यहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे अचीवर्स, बड़ी बड़ी कहानियाँ जो इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को। सो गेट रेडी, क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज, एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ। जूनियर जनाब विद आरजे सफा।
0: अच्छा ये बताएं कि अगर हम आपकी स्पोर्ट्स की जर्नी के बारे में बात करें, अचीवमेंट्स के बारे में बात करें, तो हाउ डिड यू फर्स्ट गेट इंटरेस्टेड इन स्विमिंग?
1: स्विमिंग मैंने सबसे पहले आई थिंक शुरू करी थी जब मैं 4 साल का था। मेरे मेरे पापा ने मुझे स्विमिंग क्लासेस में डाला था, तब मुझे मजा आया था। मतलब स्विमिंग मतलब बच्चों को तो अच्छा ही लगता है
0: पानी में, पानी
1: जी
0: बेटा सबको अच्छा नहीं लगता, कुछ बच्चे पानी से भागती भी है मिलियों की तरह, लेकिन आपको माशाल्लाह आपको अच्छा लगता है, तो आपको यू जस्ट गॉट इंटरेस्टेड इन दैट, दैट्स हाउ।
1: पहले मैं भी भागता था, लेकिन जब क्लासेस में थोड़ा टाइम हुआ तब मुझे अच्छा मजा आने लगा।
0: हाँ जब सीख ली
1: जी।
0: अब देखो मुझे को देख लो, मैंने बड़ी सीखने की कोशिश की है, लेकिन मैं तो अभी तक सीखने के ही मरहले में हूँ, मैं पानी देख कर डर के भाग जाती हूँ। अच्छा चलें कोई बात नहीं, हम आपके बारे में बात कर रहे थे, तो ये बताइएगा कि हाउ डिड यू फील व्हेन यू वन द फर्स्ट मेडल इन स्विमिंग?
1: जी मुझे बहुत अच्छा लगा था।
0: ऐसा मतलब कभी एक होता है ना कि हमारा एक टारगेट होता है, हमारे कुछ गोल्स होते हैं या कुछ, कभी सोचा था कि नहीं भाई मैंने मेडल लेना है?
1: जी मैंने सोच कर गया था कॉम्पिटिशन।
0: अच्छा, टारगेट था?
1: जी जी।
0: अरे वाह वेरी गुड।
1: मैंने वही सेम दिन में 2 मेडल जीते थे।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, अरे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब पता चल रहा है बच्चे की डेडिकेशन। इसे देखें, आपकी इस बात को देखते हुए ना मुझे वो चीज एक बात याद आती है कि हमें हमेशा लाइफ में पॉजिटिव सोचना चाहिए, तो आप कुछ पॉजिटिव सोच कर गए थे, दैट्स हाउ यू गॉट व्हाट यू वांटेड। वेरी गुड माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो अपना बास्केटबॉल का शौक है, कैन यू टेल अस अबाउट द चैंपियनशिप यू वॉन इन बास्केटबॉल?
1: जी हम, मेरी टीम एक मतलब एकेडमी है, स्कूल की तरफ से नहीं मतलब एकेडमी है।
0: सही सही।
1: हम लोग सबसे पहले एक सिलेक्शन हुआ था जैसे,
0: सही।
1: फिर उसके बाद सिलेक्ट होने के बाद टीम सिलेक्ट हुई, और फिर हम लोग टूर्नामेंट में गए। टूर्नामेंट में हम लोग ने तकरीबन 7 या 8 मैचेस खेली।
0: सही।
1: जैसे फुटबॉल में होता है राउंड ऑफ 16, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, ऐसे हम लोग ने खेला, और फाइनल में हम लोग जीत गए।
0: सही।
1: 10 पॉइंट से ऐसा कुछ।
0: अरे वाह
1: जी।
0: और ओपोनेंट टीम के कितने थे?
1: हमारे उनके 90 ऐसा कुछ थे, हमारे 100 थे।
0: माशाल्लाह गुड नाइस। मतलब ये नहीं था, मतलब जिसे हम कहते हैं टक्कर का मुकाबला था। इफ यू आर सेइंग 98 और समथिंग, दैट मींस इट वाज अ वेरी क्लोज कॉल।
1: यस।
0: और ये मैच अच्छा हुआ होगा।
1: जी जी।
0: अच्छा भाई, अच्छा ये बताइएगा कितने सारे माशाल्लाह आप स्पोर्ट्स मल्टीपल एक्टिविटी करते हैं, तो इन स्पोर्ट्स में आपको क्या लगता है विच इज द मोस्ट, विच हैज बीन द मोस्ट चैलेंजिंग स्पोर्ट फॉर यू एंड व्हाई? What was difficult in it? के होता है, हम सबके साथ होता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, we do

0: ड्राइंग के कंपटीशन में जाने से पहले, फिर उसके बाद दूसरे के भी ऊपर होता है वो कितनी अच्छी करते हैं, हम लोग का डिफरेंस होता है। तो
1: अच्छा, ये आपको ऐसा लगता है कि हमारी प्रैक्टिस जो होती है ना वो हमें पहुंचाती है?
0: जी, एक्चुअली बिलीविंग दैट।
1: हां, ओके, तो मतलब हार्ड वर्क कर लेते हैं। अच्छा, इतने सारे माशाल्लाह से स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये बताएं कि ये स्पोर्ट्स को और स्टडीज को कैसे मैनेज करते हैं?
0: टाइम होता है मेरा,
1: स्केड्यूल पे चलते हैं अपने, माशाल्लाह, वेरी गुड गुड गुड गुड।
0: स्पोर्ट्स का टाइम होता है तो स्पोर्ट्स को ही देखना है, और जब स्पोर्ट्स खत्म हो तो पढ़ाई को देखना है,
1: फोकस हो जाता है।
0: जी,
1: तो बच्चे कहते हैं नहीं, आई एम टू टायर्ड टुडे, आई डोंट वांट टू डू दिस, ऐसा होता है?
0: हाँ, कभी कभी होता है,
1: कभी कभी चल जाता है। ज्यादा दफा करेंगे तो वो कभी कभी अगर नॉर्मल रूटीन में आ जाए तो फिर सब कुछ ही कोलैप्स हो जाता है ना।
0: जी, जी।
1: सही। अच्छा, ये बताइएगा कि मुझे ये तो पता चल रहा है कि स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो स्पोर्ट्स में आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है और क्यों है?
0: मेरा फेवरेट फुटबॉल के अंदर रोनाल्डो है।
1: ओ?
0: वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है, मैं उसको बेस्ट प्लेयर मानता हूँ।
1: अरे ये, अरे भाई, हम तो बेस्ट फ्रेंड हो गए, ताली हाई फाइव, हाई फाइव, हाई फाइव हो गए, हमारा, हम दोनों ने हाई फाइव भी ले लिया। ये हम दोनों का जो, लेकिन जो लोग CR7 को पसंद करते हैं ना, तो वो मेरे भी बड़े फेवरेट हो जाते हैं। तो CR7 तो CR7 है। अच्छा, बट वाई CR7 की कोई बात होगी ना ऐसी?
0: वो कभी गिव अप नहीं करता है, वो हमेशा कम बैक की कोशिश करता है।
1: वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको अगर मैं बोलूं कि आपकी कोई ऐसी स्पोर्ट्स में ना सिर्फ हार्डशिप नहीं होती, कभी कभी कुछ फनी सा भी हो जाता है जो हमें याद रह जाता है कि पता है ग्राउंड में ये हुआ था, फलाने ने ये कर दिया था, हम उसके ऊपर बेचारे का फुल टाइम मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपके साथ, आपको मिलकर कभी दोस्तों ने टीज किया या आपने किसी दोस्त का जो ना ये पॉइंट आउट किया, कोई ऐसा कुछ ऐसा फनी सा आपको कुछ याद?
0: फुटबॉल में एक बार मेरा एक दोस्त था, गोल के पास ही था, गोलकीपर भी नहीं था, लेकिन उसने फिर भी है ना बाहर पे बॉल को किक कर दिया।
1: अच्छा, ओके ओके ओके ओके, उसको बस ये था कि मैं किसी तरह से बचा लूं। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है फुटबॉल में कि मैंने देखा है खुद, भाई मैं, एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड, अपने ही गोल में गोल कर जाते हैं।
0: जी जी, होता है कभी कभी,
1: ये हो जाता है।
0: हाँ।
1: सही, गेम में इतने मगन हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता, बस गोल ही नजर आ रहा था, ये नहीं, ये भूल जाते हैं किसका गोल है, कहाँ है। अच्छा, ये बताएं कि जब आप कोई गेम स्टार्ट करते हैं या कुछ, एक होता है ना कुछ लोगों के अंदर ये सेंस होता है कि अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कुछ दिमाग में रखते हैं, कुछ सोचते हैं अपने आप को। मैंने ऐसे बहुत सारे जो है ना सेलिब्रिटीज को सुना है जो कहते हैं कि व्हेन वी आर अबाउट टू गो ऑन अ मैच या समथिंग, तो हम लोग अपने आप को प्रीच करते हैं कुछ ना कुछ, वी सिट डाउन फॉर अ व्हाइल इन अ रूम इन अ साइलेंस प्लेस, साइलेंट प्लेस, और हम अपने आप को ना कुछ फीड करते हैं, इन द सेंस कि वी हैव थॉट्स इन आवर माइंड। तो आप जब कोई रेस, कोई मैच, कुछ कोई गेम, कुछ पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो आपके दिमाग में क्या होता है?
0: मेरे दिमाग में होता है कि विनिंग एंड लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ गेम, हम लोग को हमारा सबसे बेस्ट देना है।
1: वेरी नाइस, अरे भाई, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, ये बताएं कि माशाल्लाह खेल कूद की तो आदत है आपको, लेकिन अपनी विक्ट्रीज कैसे सेलिब्रेट करते हैं? कुछ स्पेसिफिक होता है या एक बंदा कहता है मैं तो वैसे ही इतना हाई फाई सुपर स्टार चल रहा हूँ, अब तो मैं थक गया हूँ विक्ट्रीज सेलिब्रेट करते करते, या हर दफा हर विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं?
0: जी, खुशी तो होती है, सेलिब्रेट
1: तो होती है। तो कैसे, मतलब कोई केक शेक, कोई दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी, चलो आज फास्ट फूड खा कर आते हैं, कुछ ऐसा?
0: फास्ट फूड नेसेसरी नहीं है, हम लोग कभी मतलब घूमने जाते हैं थोड़ा।
1: अरे गुड गुड, मतलब अपने आप को सेलिब्रेट करना जरूरी है, करना चाहिए। इट बूस्ट्स आवर कॉन्फिडेंस एज वेल। अच्छा, ये बताइएगा, विनिंग के बारे में तो हमने बहुत बात कर ली, देयर आर टाइम्स व्हेन वी डोंट विन, हाउ डू यू हैंडल दैट?
0: शुरू में थोड़ा सा उदास होते हैं, लेकिन फिर हम लोग को दिल में रखना चाहिए कि हार भी होगी, जीत भी होगी। हार से हम लोग को कुछ सीखना चाहिए कि कैसे हम लोग उसको इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हम लोग जीत पाए।
1: वेरी वेरी गुड, वेरी, बहुत बड़ी बात बोली है, हमेशा याद रखें।

देखें कि अगर आउटकम वैसा नहीं आया जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल इफ यू लॉस्ट इट, तो इट्स एन एक्सपीरियंस. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे और कितना सीखते हो. इफ यू वॉन्ट यू वॉन्ट अल्हम्दुलिल्लाह, बट इफ यू लॉस्ट इट देन देयर वुड बी समथिंग ड्यू टू सम रीजन. वो रीजन फाइंड आउट करना, वेरी गुड वेरी गुड. अच्छा.

0: आई वुड से वाओ वाओ 14 कंट्रीज अम्मी अबू के साथ ही घूमी है ना
1: जी.
0: हाँ माशाल्लाह वो बट इट्स वाओ. तो ये बताएं कि इतनी सारी कंट्रीज घूमने के बाद जितनी आपने घूमी है उनके अंदर से आपकी फेवरेट वाली कौन सी है भैया?
1: फेवरेट वाली होगी स्विट्जरलैंड और टर्की.
0: टर्की मेरी फेवरेट है, मैं भी होकर आई हूँ वहाँ से. आई लाइक. अच्छा इन कंट्रीज में आपको क्या चीज आप कहते ना मुझे अच्छी लगी, ये बात बहुत अच्छी लगी, दैट्स व्हाई आई लाइक्ड इट.
1: स्विट्जरलैंड के अंदर लोग बड़े फ्रेंडली है और सीनरी तो मतलब सबको पता है बहुत ही अच्छी है.
0: people say that, कि ऐसा लगता है पिक्चर में से कहीं से
1: जी जी
0: निकल कर आ रही है. सही.
1: और टर्की के अंदर खाना भी बहुत अच्छा है मतलब.
0: Yes,
1: और सीनरी भी स्विट्जरलैंड से कम नहीं है. और घूमने की भी बहुत सारी जगह है.
0: मतलब ऐसा है, इट्स एन अमेजिंग प्लेस टू बी. यस. अच्छा ये बताइएगा कि अब इतने माशाल्लाह कंट्रीज आपने ट्रैवल की हैं, तो ये सवाल तो बनता है कि क्या आपको पसंद है न्यू फूड्स ट्राई करना? या कुछ बच्चे होते हैं ना बड़े चूजी से होते हैं और कहते हैं पिकी ईटर्स होते हैं. पिकी ईटर हैं आप?
1: हाँ.
0: ओहो, इतने सारे मुल्क घूमे और पिकी ईटर बन गए. ओहो, मेरा तो हार्ट वाला ब्रेक हो गया भाई. अच्छा स्पेसिफिकली खाने में क्या पसंद करते हैं?
1: मैं इंडियन खाने के अंदर बटर चिकन या
0: नाइस बटर चिकन. अब मुझे भूख लग गई है. अच्छा कहीं माशाल्लाह 14 कंट्रीज ट्रैवल की आपने, सबसे बेस्ट डिश ऐसी उधर जाकर क्या खाई?
1: वो तो टर्की में ही था. कबाब और
0: वो मुझे याद है क्या कहते हैं उसे, डोनर कबाब. नाइस नाइस, यू ट्राइड इट, वेरी गुड. अच्छा शवरमा वगैरह भी उनका टेस्ट भी अलग होता है कि हम लोग जो यहाँ पे खाते हैं उसका टेस्ट अलग है, बट व्हाट वी ईट ओवर देयर इज टोटली डिफरेंट.
1: यस.
2: अब लेते हैं एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आकर आपसे करेंगे और भी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर. सुनते रहिए FM 107.
3: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है, और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब. यहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे अचीवर्स, बड़ी बड़ी कहानियाँ जो इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को. सो गेट रेडी, क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज, एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ. जूनियर जनाब विद आरजे सफा.
0: अच्छा ये बताइएगा इतनी सारी कंट्रीज ट्रैवल की है, तो देयर वुड बी समथिंग स्पेशल कि कभी आपने कुछ सोचा हो, कुछ लर्न किया हो कंट्रीज घूमते घूमते, तो वो क्या चीज होगी? व्हाट डिड यू लर्न अबाउट द वर्ल्ड?
1: वर्ल्ड के बारे में मैंने लर्न करा है कि जैसा कुछ कभी कभी स्टीरियोटाइप्स होते हैं वो सही नहीं होते. हर कोई ऐसा नहीं होता है. सबके सब बुरे नहीं होते, सबके सब अच्छे नहीं होते. इट्स लाइक 50-50.
0: अच्छा हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए जब हम दूसरी कंट्रीज घूमते हैं ना, तो हमें ये बड़ी एक अच्छी समझ आ जाती है कि कैसे हमें दूसरे कल्चर्स को, ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए, डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए
1: जी.
0: और किसी के लिए ना ऐसी एक माइंडसेट नहीं बनानी, डोंट बी जजमेंटल. ये बड़े होकर भी बहुत काम आता है बेटा, ये बात याद रखना. ये बड़े होकर भी ह्यूमंस में भी, सिर्फ जगहों के बारे में नहीं, ह्यूमन एटीट्यूड और उसके बारे में भी काम आता है ये. अच्छा भाई ये बताइएगा कि मुझे बताएं कि इतनी सारी तो कंट्रीज घूमी, अब कुछ और भी ऐसी होंगी जिनको घूमने का शौक तो होगा अभी भी. शौक तो इंसान का कभी खत्म नहीं होता, चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए. तो कौन सी कंट्री होगी ऐसी जो घूमना चाहेंगे? जापान. अच्छा जापान के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, जो लोग जापान से होकर आते हैं वो कहते हैं एटलीस्ट इफ यू कैन वंस इन योर लाइफ टाइम डू विजिट जापान. इट इज जब हम कहते हैं ना कि जापान को कहा जाता है द कंट्री ऑफ राइजिंग सन, तो दे से कि वो बिल्कुल सही बैठता है. मुझे भी शौक है, चलेंगे किसने इंशाल्लाह. इंशाल्लाह पॉजिटिव रहेंगे, इंशाल्लाह चलेंगे नेक्स्ट टूर उसी वही ट्रैवल करेंगे इंशाल्लाह. अच्छा आपको जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको क्या, आप क्या प्रेफर करते हैं? बीचेस हो गए, माउंटेन्स हो गए या सिटीज? कुछ लोग सिटीज बहुत पसंद करते हैं. आपको कैसा एनवायरमेंट अच्छा लगता है?
1: मुझे माउंटेन्स और सिटीज बड़ी अच्छी लगती है.
0: मैं सिटीज से भागती हूँ. मुझे माउंटेन्स बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे कोई माउंटेन्स ले जाए, बीचेस ले जाए, हाँ पानी पानी के अंदर नहीं, सी शोर्स पे हम बैठ जाएंगे
1: जी.
0: तो नाइस सिटीज. अच्छा सिटीज में कोई ऐसी

0: थे जो आपको, मतलब होता है ना कुछ लोगों को स्काई स्क्रेपर्स बहुत ज्यादा पसंद होते हैं या कुछ लोगों को लाइट्स बहुत ज्यादा पसंद होती हैं, तो सिटीज में आपको क्या बात अच्छी लगती है?
1: मुझे सिटीज के अंदर उनकी लाइफ और फैसिलिटीज अच्छी लगती है. जैसे कि अगर आप पहाड़ पर रह रहे हो, आपको मतलब ज्यादा हर फैसिलिटी नजदीक नहीं मिलेगी. सिटीज में आपको मतलब 10-15 मिनट की दूरी पे भी मिल सकती है.
0: अरे भाई, ये बड़ी प्रैक्टिकल बात की है उन्होंने. अरे वाह, आई लाइक इट. ये बहुत प्रैक्टिकल बात की बच्चे ने. एंड आई लाइक द थॉट के द वे ही इज वेरी, ही नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. चलें भाई ठीक है, जहाँ पे फैसिलिटी ना हो ज्यादा तो वहाँ पे फिर बंदा जो ना थोड़ा टाइम बाद, क्योंकि हम लोग सारे सिटीज के ही पले बढ़े तो माउंटेन एरिया के होते तो हम कहते हैं नो इट्स नॉर्मल लाइफ फॉर अस. एक टाइम पर जाकर माउंटेन एरिया से भी तंग आ जाते हैं, चाहे कितना ही पसंद क्यों ना करते हो.
1: माउंटेन ऐसी चीज है, मतलब
0: लिमिटेड एक्सेस है ना हर चीज को. सही.
1: लॉन्ग टर्म के लिए मतलब सिटी ज्यादा अच्छी है.
0: सही. अच्छा ये एक बात बताएं, कोई ऐसी मेमोरी हो आपकी जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ फॉर व्हेन यू ट्रैवल, कोई ऐसी मेमोरी अम्मी अबू के साथ हो या फ्रेंड्स के साथ हो या कोई ऐसा ओकेजन हुआ हो जो आपको याद रह गया हो
1: ट्रैवलिंग में?
0: हाँ जी,
1: टर्की, स्विट्जरलैंड और नेदरलैंड्स गए थे हम लोग हमारे दोस्तों के साथ गए थे. मेरे पापा के दोस्त और मेरे भी दोस्त थे, उनके बच्चे. हम लोग को उसके अंदर बहुत मजा आया था. हम लोग खेल रहे थे, हम लोग सब साथ में घूम रहे थे.
0: सही, तो मतलब यू एंजॉय विद ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स.
1: यस,
0: वेरी गुड वेरी गुड. मतलब ये नहीं कि इंट्रोवर्ट टाइप के नहीं है, फ्रेंडली है. अच्छा ये बताएं कि आपस में दोस्त तो हैं, ये बताएं जब आप ट्रैवल करते हैं तो ऐसा होता है ना कि आपको कोई मिल जाए, कोई दोस्त, कोई बच्चे मिल जाए तो फ्रेंडशिप हो जाती है आपकी उनसे?

0: आपको काम आ जाएगी।
1: मैं कभी कभी पढ़ाई करता हूँ, कभी कभी एंड टाइम पे भी होती है, कभी कभी जल्दी भी करता हूँ, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा जल्दी करो। एंड टाइम पे तो मतलब प्रेशर बहुत हो जाता है, टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जल्दी करने से ऐसा होता है कि हम लोग को सुकून से सब कर सकते हैं, हम लोग को ज़्यादा
2: आराम से आप टॉपिक्स कवर,
1: ओवरलोड नहीं होगा।
2: सही सही सही। अच्छा ये बताइएगा कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आप कहेंगे भाई मुझे आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड, मुझे ये पता है कि आपको डॉक्टर बनने का शौक है, तो आई कैन गेट अ हिंट ऑफ इट।
1: या साइंस।
2: साइंस साइंस, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि आपका ये जो था माशाल्लाह से, हाउ डिड लर्निंग एबेसकस हेल्प यू इन योर स्टडीज?
1: मैथ में बहुत हेल्पफुल है, हम लोग माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कभी कभी।
2: सही। अच्छा एबेकस का बड़ा पहले नहीं सिखाया जाता, अब बहुत माशाल्लाह से इट्स वेरी ट्रेंडिंग एंड इट्स वेरी डिफरेंट। मैंने देखा है, मुझे अभी तक समझ में नहीं है कि मुझे पर्टिकुलरली कोई समझाने वाला है नहीं, बट मैंने देखा है कि मैंने कोशिश जरूर की है उसको समझने की, बट आई थिंक इट नीड्स प्रैक्टिस। वंस यू गेट इनटू द थिंग यू नो इट।
1: पहले वो बोर्ड पे सिखाते हैं एबेकस के, फिर हम लोग को माइंड कैलकुलेशन में लेके जाते हैं।
2: सही सही सही सही। और उसके लिए भी वही वाली बात है
1: जी
2: कि आप जो ना प्रैक्टिस करो।
1: जी
2: ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि ये तो मुझे पता है कि यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है, अब ये बताएं कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम वन?
1: लोगों की सेवा करना, लोगों की हेल्प करना, और मुझे डॉक्टर की फील्ड बड़ी अच्छी लगती है, लोगों की मदद करना।
2: तो व्हाट काइंड ऑफ डॉक्टर इफ आई आस्क यू?
1: MBBS।
2: अच्छा MBBS में होता है ना कि आपको हार्ट सर्जन बनना है, आपको न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, या आपको जनरल फिजिशियन बनना है?
1: जनरल
2: वाला, ठीक है ओके। अच्छा ये बताइएगा कि आपकी लाइफ में आपको क्या लगता है हु इंस्पायर्स यू द मोस्ट?
1: माय पेरेंट्स।
2: माशाल्लाह वेरी गुड।
1: बहुत ही सपोर्टिव है, जब भी मैं उदास रहता तो हम मुझे हमेशा मुझे खुश रखने की कोशिश करते हैं।
2: अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह वेरी गुड, एवरी पेरेंट शुड डू दैट। अच्छा ये बताइएगा कि आपकी लाइफ में आपका सबसे बड़ा, अब मैं कहूँ कि जो आप सोचते हैं कि क्या ऐसा करूँगा जो मेरे लिए अचीवमेंट होगी फ्यूचर की, कैसे गोल है, कोई टारगेट है?
1: कम्युनिटी की ट्राई करो तो हेल्प करना, वो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी कि मैंने लोगों की हेल्प करी है।
2: सही सही सही। अच्छा ये बताइएगा कि जाने से पहले, अभी हमारा टाइम खत्म होने वाला है, बस मुश्किल से पाँच दस दस भी नहीं 5 मिनट है हमारे पास, ठीक है, तो मुझे ये बताइएगा जरा कि ऐसा कोई पीस ऑफ एडवाइस होगा जो आप, जितने बच्चे आपको सुन रहे हैं माशाल्लाह यू आर एन अचीवर
1: जी,
2: एंड आई नो इट्स नॉट दैट कोई आपको ऐसे आकर कह दे कि भाई लकी है और गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड भी होता है, लेकिन इफ यू डोंट, इफ यू एक्चुअली डोंट पॉलिश योर सेल्फ इनफ एंड यू डोंट वर्क हार्ड फॉर इट, तो वो गॉड गिफ्टेड भी चीज फेड आउट हो जाती है
1: जी।
2: तो मुझे ये बताइएगा कि अपने पास से आपको ये अच्छा सा पीस ऑफ एडवाइस देना चाहेंगे उन बच्चों को जो आपको सुन रहे हैं।
1: मैं सबसे पहले ऐसा बोलूंगा कि इज टू नेवर गिव अप, अगर गिव अप करेंगे तो हमारा होने वाला काम भी नहीं होगा, तो हम लोग को हमेशा विल पावर को स्ट्रांग रखना है ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। और दूसरी एडवाइस है कि हमेशा टैलेंट पर भरोसा नहीं करना है, हार्डवर्क पे भी भरोसा करना है।
2: टैलेंट इज नथिंग इफ रिसोर्सेज और टैलेंट कुछ नहीं होता जब तक आप उसको परफेक्टली अलाइन करके उसके ऊपर सोच कर उसको समझ कर यूज नहीं करते।
1: जी
2: सही सही वेरी गुड। एंड एनीथिंग एल्स?
1: That's it.
2: भाई ये बहुत ही मेजर बात थी, ये सिर्फ दैट्स इट नहीं था, बहुत बड़ी बात थी, और आपकी एज में माशाल्लाह आई होप वॉट एवर यू हैव सेड बाकी बच्चे भी सुने और उससे इंस्पायर हों। साथियों हमेशा याद रखिएगा बच्चा पार्टी, ये होता ये है, आजकल की तो माशाल्लाह जनरेशन इतनी मैं कहूँगी इंटेलिजेंट आ रही है, एज सच जैसे एक टाइम पर फैसिलिटीज इतनी नहीं थी जितनी आप लोगों के टाइम पर हैं, तो उन फैसिलिटीज को कैसे यूटिलाइज किया जाए और उनसे कैसे फायदा हासिल किया जाए आपकी

तो भाई मेरी तरफ से आरजे सभा की जानिब से मैं आप सभी से इजाजत चाहूंगी। हमारे माशाल्लाह मोहम्मद हसन ने आज हमसे बहुत अच्छी अच्छी बातें की, अपनी जर्नी शेयर की है, और हमेशा याद रखें मैं जिस भी अचीवर को लेकर आती हूँ हमेशा मुझसे एक ही बात कहते हैं, हार्ड वर्क। इफ यू थिंक कि दे वर लकी इनफ टू हैव दिस काइंड ऑफ लाइफ और दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड और दिस काइंड ऑफ अचीवमेंट, तो यू नीड टू रिकंसिडर योर वर्ड्स। दे वर नॉट जस्ट

0: lucky. They worked hard for it. And they are still passionate about it. They are still working on it. They're still doing their part. तो भाई आपका भी बनता है कि अगर इफ दे कैन डू यू कैन ऑल्सो डू. हमारी तरफ से हम सबको अल्लाह हाफिज कहते हैं. ठीक है, अल्लाह हाफिज. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा साथियों, याद रखिएगा बड़ों की इज्जत करें, छोटों का ख्याल रखें और सबसे ज्यादा ख्याल अपना रखें, क्योंकि जो इंसान अपना ख्याल नहीं रख सकता वो दूसरों का भी ख्याल नहीं रख सकता. यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप. सुनते रहें पे 107 दिल से देसी.
1: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है, और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब.

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: एब्सोल्यूट सिनेमा।
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने पब्लिक प्लेसेस में पेट्स के लिए कुछ लॉज रखे हैं, जैसे डॉग्स को अक्सर पब्लिक प्लेसेस जैसे पार्क्स और कॉर्निश में अलाउड नहीं है, और परमिटेड एरियाज में भी लीश्ड होना जरूरी है। इसके साथ पेट आइडेंटिफिकेशन, जिसमें ओनर्स को मशवरा दिया जाता है कि माइक्रोचिप्स, टैग्स या टैटूज के जरिए आइडेंटिफिकेशन करें। डेंजरस एनिमल्स के लिए भी कुछ रेगुलेशंस हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर डेंजरस स्पीशीज को रेगुलेट करती है, जिनमें रॉटवीलर्स, डोबरमैन्स और दूसरे एनिमल्स शामिल हैं जो पब्लिक सेफ्टी के लिए थ्रेट बन सकते हैं। ऐसे में स्ट्रे डॉग्स को फीड ना करें, क्योंकि ये टेरिटोरियल बिहेवियर को इंकरेज करता है। अगर आपको ये बाइट करें तो फौरन नियरेस्ट हॉस्पिटल जाकर रेबीज वैक्सीन लगवाएं। अग्रेसिव डॉग्स की गैदरिंग को अथॉरिटीज को रिपोर्ट करें। ये गाइडलाइंस पब्लिक सेफ्टी और पेट ओनरशिप के रूल्स को हाईलाइट करती हैं, जो रीसेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एडवाइजरी में शामिल है।
0: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद RJ सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार। कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: टू इको स्विच साथियों विद सफा, जहां हम बात करते हैं उन छोटी छोटी आदतों की जो प्लेनेट को बड़ा चेंज दे सकती हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स, यानी पेड़ लगाने की मुहिम। भाई अब पेड़ लगाना सिर्फ एक सोशल एक्टिविटी नहीं है, ये एक्चुअली नेचर का इन्वेस्टमेंट प्लान है। जरा सोचिए, आप बैंक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, अम्मा को देखा होगा, अम्मा बैंक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं फ्यूचर के लिए। बिल्कुल वैसे ही ट्री प्लांटेशन एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन, शेड, कूलिंग और बायोडायवर्सिटी का इन्वेस्टमेंट है। देखें, एक मेच्योर दरख्त अपनी जिंदगी में लगभग 20 से 25 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हर साल एब्जॉर्ब करता है और 100 साल तक जीता है। यानी एक दरख्त अपने लाइफ टाइम में एक छोटी कार के इमिशन को काफी हद तक ऑफसेट कर सकता है। अच्छा, अगर इसकी एक रिलेटेबल एग्जांपल लेना तो भाई, एक पेड़, एक शेड, एक लाइफ एक्सपीरियंस। अब इसको सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, दोहा की गर्मी में आप एक रोड पर वॉक कर रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और एक छोटा सा दरख्त आपको शेड देता है। बस उस एक दरख्त की वजह से सराउंडिंग टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक कम महसूस हो सकता है। ये छोटी सी कूलिंग इफेक्ट किसी एसी से कम नहीं होती, लेकिन फ्री होती है और सस्टेनेबल होती है। एक रिसर्च के मुताबिक साथियों, अर्बन एरियाज में सिर्फ 20% ट्री कवर इंक्रीज करने से हीट रिलेटेड एनर्जी कंजम्पशन 30% तक कम हो सकती है, क्योंकि लोग कम एसी यूज करते हैं ना भाई। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको सरप्राइज कर देंगे वो बता देती हूँ। देखिए, एक मेच्योर दरख्त जो है वो एक दिन में इतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है कि 2 से 4 लोग आराम से सांस ले सकते हैं। एक एकड़ फॉरेस्ट हर साल लगभग 6 टन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक सिंगल लार्ज ट्री अपनी लाइफ टाइम में 15,000 लीटर तक पानी एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है, जो ह्यूमिडिटी और रेनफॉल साइकिल को बैलेंस करते हैं। और अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें ना, तो दुनिया में हर साल लगभग 10 बिलियन ट्रीज लगाए जा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उतने ही या उससे भी ज्यादा कट भी हो रहे हैं। इसलिए प्लांटेशन ड्राइव्स और भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। साथियों, ट्री प्लांटेशन सिर्फ एनवायरनमेंट को ग्रीन नहीं बनाती, बल्कि क्वालिटी ऑफ एयर भी इम्प्रूव करती है, नॉइज पोल्यूशन भी रिड्यूस करती है और सॉइल इरोजन रोकती है। जब ट्रीज लगाए जाते हैं तो रूट्स जो होती है ना ट्रीज की, वो सॉइल को होल्ड करती हैं, जिससे फ्लड रिस्क भी कम होता है। एक और सिंपल एंगल ये है कि ट्रीज नेचुरल एयर फिल्टर्स हैं, वो हार्मफुल पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। मतलब अगर आप एक ट्री लगाते हैं तो आप इनडायरेक्टली अपने एरिया को एयर प्योरिफायर इंस्टॉल कर रहे हैं, वो भी जीरो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट के ऊपर। जरा सोचिए, एक स्कूल में 100 स्टूडेंट्स ट्री प्लांटेशन ड्राइव में पार्टिसिपेट करते हैं और हर स्टूडेंट एक प्लांट लगाता है। अगर उनमें से सिर्फ 70% प्लांट सर्वाइव कर जाए ना, या 60% भी कर जाए, तो 60 न्यू ट्रीज ग्रो हो रही होती हैं। 5 साल बाद वही जगह एक मिनी ग्रीन जोन बन सकती है, या एक कॉलोनी में अगर हर घर एक दरख्त लगाए तो पूरी सोसाइटी का टेम्परेचर नोटिसेबली ड्रॉप हो सकता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप एक फैन रूम में लगाते हैं, लेकिन यहाँ नेचर खुद कूलिंग सिस्टम बन जाता है। साथियों, अब इको स्विच का कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स ले लेते हैं। पहला, हमेशा लोकल क्लाइमेट के मुताबिक ट्रीज चूज करें। जैसे कतर में हीट रेजिस्टेंट स्पीशीज ज्यादा सर्वाइव करती हैं। दूसरा, प्लांटिंग के बाद सिर्फ लगाना काफी नहीं होता, पहले 6 मंथ्स, जो फर्स्ट 6 मंथ्स क्रिटिकल होते हैं, रेगुलरली वाटरिंग करें और प्रोटेक्शन जरूरी होती है। तीसरा, प्लास्टिक गार्ड्स यूज करें ताकि छोटे प्लांट्स, एनिमल्स या एक्सीडेंटल डैमेज से सेफ रहें। चौथा, हर प्लांटेशन ड्राइव के बाद ट्री ओनरशिप टैगिंग करें ताकि लोग इमोशनल कनेक्शन फील करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। पांचवा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्कूल्स और ऑफिसेज में अडॉप्ट अ ट्री कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करें, जहां हर ग्रुप एक ट्री का केयर टेकर हो। साथियों, ट्री प्लांटेशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट तब होता है जब ये एक इवेंट नहीं बल्कि हैबिट बन जाए। अगर हर इंसान अपनी लाइफ में 5 से 7 ट्रीज भी लगाए ना और उनको ग्रो होने तक सपोर्ट करे, तो ग्लोबल स्केल पर बिलियंस ऑफ ट्रीज का इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। ये सिर्फ एनवायरमेंट नहीं बदलता बल्कि माइंडसेट भी चेंज करता है, फ्रॉम कंजम्पशन टू कंट्रीब्यूशन। आखिर में इको स्विच का मैसेज ये है साथियों कि ट्री प्लांटेशन सिर्फ एक फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं होता, ये फ्यूचर जनरेशन के लिए एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करता है। आज का लगाया हुआ एक दरख्त एक स्कूल, एक स्ट्रीट और एक सिटी को शेड, ऑक्सीजन और लाइफ दे सकता है। तो जब भी मौका मिले एक ट्री जरूर लगाएं, क्योंकि पौधे लगाना असल में अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107, जहां हर सीड एक स्टोरी है और हर ट्री एक फ्यूचर। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान और आज का टॉपिक है छोटी छोटी नेकियों की अहमियत। इस्लाम हमें सिखाता है कि कोई भी नेक अमल छोटा नहीं होता। कभी कभी एक छोटा सा काम भी अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा हो सकता है। एक मुस्कुराहट, किसी को रास्ता बताना या किसी का बोझ हल्का कर देना, ये सब छोटी नेकियां हैं जो रोज़ाना जिंदगी का हिस्सा बन सकती हैं। अक्सर हम समझते हैं कि सिर्फ बड़े काम ही अहमियत रखते हैं, लेकिन असल में कंसिस्टेंसी छोटी नेकियों में होती है। अगर हम रोज़ एक भी अच्छा काम कर लें तो धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाती है और ज़िंदगी में पॉजिटिव तब्दीली आ जाती है। आज का अमल ये है कि जानबूझकर एक छोटी सी नेकी करें और उसे अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश, फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी। One step to 2030.
3: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नासिया।
4: One step to 2030.
3: दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पर, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक है फ्यूचर जॉब्स को लेकर। क्या हम 2030 के लिए रेडी हैं? देखिए, आज का जमाना ना बहुत तेजी से बदल रहा है। हर दिन नए टूल्स, नए एप्स, नए तरीके सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बदल रही, काम करने का तरीका भी बदल रहा है। और शायद इसीलिए सवाल उठता है कि क्या हम 2030 की जॉब्स जो है उसके लिए खुद को तैयार कर पा रहे हैं, क्या हम उस तरह से तैयार हैं? देखिए, पहले के ज़माने में लोग एक ही स्किल सीखते थे और पूरी ज़िंदगी उस पर काम करते थे, कमा लेते थे और ज़िंदगी बिता लेते थे। लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल अलग है। अब एक इंसान को मल्टीपल स्किल्स चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, एक जर्नलिस्ट को सिर्फ लिखना नहीं आना चाहिए बल्कि उसको वीडियो को एडिट करना, सोशल मीडिया हैंडल करना, AI टूल्स का इस्तेमाल करना और शायद कंटेंट भी खुद ही क्रिएट करना आना चाहिए। 2030 तक कई ट्रेडिशनल जॉब्स या तो खत्म हो जाएंगी या फिर उनका नेचर शायद चेंज हो जाएगा। जैसे कैशियर की जॉब सेल्फ चेकआउट मशीन्स की वजह से खत्म होती ही जा रही है, आप देख ही रहे। दूसरी तरफ नए करियर्स भी पैदा हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पुराने ही खत्म हो रहे हैं और कुछ नया नहीं आ रहा, नए भी आ रहे हैं। जैसे आज आप जानते ही हैं कि आज के जमाने में AI स्पेशलिस्ट हैं, डेटा एनालिसिस्ट हैं, ड्रोन ऑपरेटर्स हैं, वहीं डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट हैं और भी कई तरह की नई किस्म की

जॉब्स जो है वो आ रही हैं। अगर मैं बात करूँ कतर की, दोस्तों कतर जैसे मुल्क में जहाँ विजन 2030 का फोकस है नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी पर, ये चेंज और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ यूथ को प्रिपेयर किया जा रहा है फ्यूचर वर्कफोर्स के लिए, जहाँ इनोवेशन और डिजिटल स्किल्स सबसे इम्पोर्टेंट होंगी। अब सवाल ये है कि यूथ क्या करेंगे? तो सबसे पहली बात, लर्निंग कभी स्टॉप ना करें। आज जो स्किल्स आप सीख रहे हैं मुमकिन है 5 साल बाद आउटडेटेड हो जाएं। इसीलिए कंटिन्यूस लर्निंग बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है सॉफ्ट स्किल्स। कम्युनिकेशन है, टीम वर्क है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये वो स्किल्स हैं जो मशीन्स रिप्लेस नहीं कर सकती। आप एआई को यूज कर सकते हो, लेकिन क्रिएटिविटी और इमोशनल इंटेलिजेंस कभी भी इंसान की स्ट्रेंथ जो है ये खत्म नहीं होती। एक इंटरेस्टिंग एंगल ये है कि फ्यूचर जॉब्स सिर्फ ऑफिस तक महदूद नहीं होंगी। रिमोट वर्क है, फ्रीलांसिंग है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की वजह से आप दुनिया के किसी भी कोने से रहकर बैठकर काम कर सकते हैं। मतलब दोहा में बैठकर लंदन या फिर न्यूयॉर्क के क्लाइंट्स के लिए काम करना एक नॉर्मल सी बात बन जाएगी, जो कि है भी। इस टॉपिक का जो टीवी एंगल बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आप एक स्टूडेंट को फॉलो कर सकते हैं जो अभी स्कूल में है और पूछा जा रहा है कि वो 2030 में क्या बनना चाहता है। फिर एक एक्सपर्ट से बात कीजिए जो बताए कि वो जॉब कौन सी होंगी जो

0: पहले इसी सवाल पे मैं आपसे इजाजत लूंगी, कल मुझे बताइएगा कि आपने तैयारी शुरू कर दी है कि नहीं। आपकी मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए, देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी। One step to 2030.
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: कानून हमें तहफ्फुज़ देता है और वज़ारत दाखला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ।
3: पुलिस और आवाम एवरी मंडे 8 PM लाइव ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

वुमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिस पे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिस पे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती हैं। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे। सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ,
3: एम्बेसडर ऑफ द मंथ
2: आरजे नाजिया के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
4: Hello and welcome to the show called Ambassador of the Month, where we celebrate diplomatic excellence and cultural exchange. Well, today we are at the Embassy of India and it's an honor and privilege to connect with the Ambassador of India to Qatar, His Excellency Vipul. We welcome you on FM 107.
5: Thank you, Najma.
4: Pleasure to have you on FM 107 and this is going to be probably for the last time, right?
5: Yeah, well, it's always been a pleasure. Aapke saath bahut baar maine baat kari hai. ऐसा लग रहा है कि इस टेन्योर में शायद आखिरी होगा, बट आई एम श्योर दैट आवर एसोसिएशन विल कंटिन्यू।
4: बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा सर, आप मूव कर रहे हैं सऊदी अरेबिया और वो भी एक बहुत ही हिस्टोरिक वक्त में, जहाँ पर देखा जाए तो 1948 के बाद ये पहले नॉन मुस्लिम मैं कह सकती हूँ कि अम्बेसडर टू सऊदी अरेबिया। तो इस अपॉइंटमेंट को आप पर्सनली और डिप्लोमेटिक तौर पर किस तरह से देखते हैं और क्या अहमियत रखती है अपॉइंटमेंट आपके लिए?
5: लुक, आई मीन मैं जो है सऊदी अरेबिया जाऊंगा एज इंडियाज एम्बेसडर, एंड बीइंग इंडियाज एम्बेसडर कहीं पे भी आप बनो तो बहुत फख्र की बात है, बहुत प्राउड फील होता है। इट्स ऑलवेज अ प्रिविलेज टू रिप्रेजेंट सच अ लार्ज कंट्री एज आर्स एंड सच अ हिस्टोरिक सिविलाइजेशनल कंट्री एज आर्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ये मेरे लिए तो अपने पर्सनली बहुत खुशी की बात है और साथ में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो उस तौर पे वन हैज़ टू बी वेरी हम्बल अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्चुअली गिवन मी। एंड आई डोंट थिंक, आई मीन यू नो, हमारी जो सऊदी के साथ रिलेशनशिप है वो बहुत बड़ी है, उसमें एनर्जी है, उसमें ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट्स बहुत सारे हैं। करीब करीब 28 लाख के करीब इंडियंस सऊदी में रहते हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हैं, कल्चरल कनेक्शन है, सऊदी इटसेल्फ इज चेंजिंग और इंडिया इतना चेंज हो रहा है। तो आई थिंक एक बहुत बड़ी रिलेशनशिप है जिसको हमने आगे लेके जाना है। एंड आई डोंट थिंक उसमें एज इंडियंस इट शुड मैटर, एज इंडियन एम्बेसडर आई एम गोइंग देयर एंड विच वन शुड नॉट रियली लुक इनटू whether it's a Muslim ambassador who is going or a non-Muslim ambassador who is going.
4: True, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। सर, आपको हम देखते हैं कि आप जो है करियर डिप्लोमेट हैं और आप कंट्री मूव करते रहते हैं, आपने इंडिया को डिफरेंट लेवल्स पे रिप्रेजेंट भी किया है। तो पर्सनली आपसे जानना चाहती हूँ, आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को जानना, उन्हें समझना, वो एडजस्ट करना, क्या मूव करना डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में क्या चैलेंजिंग होता है या आपको ये चीज़ एक्साइट करती है?
5: Well, मैं तो बोलूँगा मेरे को एक्साइट करती है दूसरी जगहों पे जाना, नई जगहों पे जाना। एंड आई थिंक थोड़ा मेरे को ये अपने विरासत में मिली एक छोटे तौर पे कि फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, ट्रांसफरेबल जॉब

0: में थे तो हम जगह तो चेंज करते ही थे, तो थोड़ा बहुत चेंज, पर वो इंडिया में ही चेंज होता था. अभी हम इंटरनेशनली चेंज करते हैं. बट आई थिंक माय फैमिली हैज एडजस्टेड वेरी वेल टू इट. इन एनी केस माय माय किड्स आर स्मॉल एंड आई ऑलवेज से दिस कि नए जब कल्चर्स में जाते हैं बच्चे बड़े आसानी से अडेप्ट करते हैं, वो नए फ्रेंड्स बना लेते हैं, उनको नई जगहों के बारे में पता चल जाता है. इनफैक्ट वी कैन लर्न सो मच मोर फ्रॉम किड्स एज टू हाउ दे एडजस्ट टू न्यू कल्चर्स. मेरे को अपने तौर पे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नई जगह पे जाके नई चीज़ों को देखना, नई चीज़ों को समझना और उनसे यू नो जो भी मोटिवेशन और लेसन्स हम लोग लर्न कर सकते हैं. और सिंस आई विल बी गोइंग एज एम्बेसडर और एज डिप्लोमेट्स व्हेन यू मूव तो आपको देश को रिप्रेजेंट करना है, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट उसको डिस्चार्ज करने में यू फील वेरी प्राउड.
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात. योर एक्सेलेंसी, आपके टेन्योर की अगर मैं बात करूँ, इन 3 सालों की बात करूँ, तो एक तो बहुत बड़ा अचीवमेंट ये था ऑफ कोर्स कि हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमद अल थानी उनका विजिट हुआ इंडिया में, एंड ऑफ कोर्स वाइस वर्सा श्री नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ आए इस दौरान. इस टेन्योर को आप अपने और इस विजिट को पर्टिकुलरली लिंक करते हुए किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे कि ये जो विजिट एक्सचेंज हुई है उन्होंने किस तरह से और मजीद मजबूत किया है दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप को? और इसके अलावा अगर मैं किसी और तरीके के अचीवमेंट की बात करूँ ड्यूरिंग योर टेन्योर जिसे आप हमारी ऑडियंस के लिए हाईलाइट करना चाहें?
0: जैसा आपने बोला, जब आप एम्बेसडर के रूप में कहीं पे आते हो तो जो सबसे बड़ा आपके लिए अचीवमेंट होता है वो ये होता है कि आप अगर दोनों देशों की टॉप लीडरशिप आ जा सकें और विजिट्स हो जाएं तो वो एम्बेसडर के लिए बहुत एक फख्र की बात होती है. तो मैं बड़ा खुश रहता हूँ कि ड्यूरिंग माई टेन्योर हमारे प्रधानमंत्री जी फरवरी 2024 में कतर आए और फिर फरवरी 2025 में हिज हाइनेस की स्टेट विजिट इंडिया को हुई, विच वाज द सेकंड स्टेट विजिट एंड इट हैपेंड आफ्टर अ डिकेड. तो वो अपने आप में ये दोनों विजिट्स ये दिखाती हैं कि किस तरीके से दोनों देशों के जो ताल्लुकात हैं, रिलेशंस हैं, वो किस तरीके से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इतने सारे देश हैं दुनिया में, तो आसानी नहीं होती है कि टॉप लीडरशिप अपने दूसरे कंट्रीज को विजिट कर सके. सो वो एक खुद में एक अचीवमेंट मुझे महसूस होता है. सेकेंडली, जब हिज हाइनेस शेख तमीम दी अमीर ऑफ कतर जब वो गए पिछले साल, तो हम लोगों ने एक एग्रीमेंट किया, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एस्टैब्लिश करी दोनों कंट्रीज के बीच में. सो वो एक बहुत बड़ी चीज़ दोनों मुल्कों के, दोनों देशों के बीच में हुई. और उसके अलावा जितने भी हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं उन सब में पिछले 3 साल में अच्छी खासी हम लोगों ने प्रोग्रेस करी है. और उसमें हाई लेवल विजिट्स तो हो ही गई, हमारे खुद के बहुत सारे मंत्री इस टेन्योर में यहाँ पे आए, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनकी कई विजिट्स हुई, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पहली बार कई सालों में पिछले साल कतर आए, उस समय हमने एक जॉइंट बिजनेस काउंसिल की एस्टैब्लिशमेंट करी, उसकी पहली मीटिंग हुई, हमारे एनर्जी मिनिस्टर अभी आए, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आए, हमारे मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस पहले आए. तो बहुत सारी विजिट्स हम लोगों के दोनों देशों के बीच में हुई हैं. यहाँ से मिनिस्टर ऑफ एनर्जी 2 बार गए इंडिया एनर्जी वीक के लिए, यहाँ के जो कल्चर मिनिस्टर हैं वो पिछले कुछ महीनों में 2 बार गए इंडिया. तो बहुत सारी न्यू दिल्ली बुक फेयर में कतर वाज अ गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री. तो बहुत अच्छे तरीके से दोनों देशों के बीच में हाई लेवल पे अच्छी विजिट्स हुई हैं. उसके अलावा चाहे हम ट्रेड देखें, ट्रेड अच्छा $14 बिलियन के आसपास हम लोग का हमेशा रहा है, जबकि इस दौरान दुनिया में कुछ ना कुछ चलता रहा है. इन्वेस्टमेंट्स कतर के भारत में बढ़े हैं, भारतीय यहाँ पे वो लोग भी इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग भी. एनर्जी में नई जो हमारी एनर्जी का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो साइन हो गया 2024 में, तो एनर्जी में भी हम लोगों ने अपनी जो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप दोनों कंट्रीज ने डिसाइड किया कि अभी 20 साल तक और चलती रहेगी, 2048 तक. कल्चर में जैसे मैंने कहा कई सारी चीज़ें हुई इस दौरान, और कम्युनिटी के साथ ऑफ कोर्स इंडियन कम्युनिटी हैज़ कंटिन्यूड टू बी वेरी वेरी गुड एंड लार्ज इन नंबर हियर. तो मैं कहूँगा हर तरीके से पिछले 3 साल में हमारे रिलेशंस खूब मजबूत हुए और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी चलते रहेंगे बढ़िया तरीके से.
1: बिल्कुल बिल्कुल सर. अच्छा, आज का दौर जैसे आपने खुद भी मेंशन किया, चीज़ें बहुत रैपिडली चेंज हो रही हैं. अगर हम जियो पोलिटिकल सिनेरियो इन्वायरमेंट देखें तो अब चीज़ें बदल भी रही हैं, तो ऐसे में इंडिया और गल्फ रीजन से किस तरह की नई

0: अपॉर्चुनिटीज आने वाले टाइम में सामने आ सकती हैं या किस तरह के रिस्क आपको लगता है कि आने वाले टाइम में सामने आ सकते हैं?
1: Well, अगर हम देखें तो भी of course we all going through this conflict which is happening in the region. तो अभी तो चीज़ें काफ़ी फ्लक्स में हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग लगती हैं. लेकिन यू नो गल्फ़ जो रीजन है उससे हमारे जो ताल्लुकात हैं और रिलेशंस आर वेरी वेरी ओल्ड, मतलब सेंचुरीज से ये रिलेशंस चल रहे हैं. ये रिलेशंस पक्का चलते रहेंगे. हमारे जो इंडियन कम्युनिटी है गल्फ़ में वो खुद लगभग 1 करोड़ के करीब इंडियन कम्युनिटी है. हमारे जो रिलेशंस है वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, चाहे ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, एनर्जी हो, कनेक्टिविटी हो, कल्चर हो, तो मुझे कोई शक नहीं है कि तो हमारे रिलेशंस गल्फ़ के सभी कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे चलते रहेंगे. बट खासकर कतर के साथ या और दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी जो नई नई चीज़ें आज जो हम सारी हम लोग फेस करते हैं और जो काफ़ी अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती हैं, आई थिंक उसमें हम लोग को और खूब काम करना है. और उसमें टेक्नोलॉजी आई थिंक एक सबसे बड़ा एरिया है. तो आज हम लोग की सारी जितनी भी यू नो लाइव्स आर गेटिंग चेंज बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्जांपल. तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के दौर में, जब क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब जो हम वर्ड सुनते हैं, बट ये सही में हकीकत में हम लोगों की लाइव्स पूरी चेंज कर रही है. बहुत अपॉर्चुनिटी है और उसमें हम लोग को और बिल्ड करना है. और साथ ही साथ उसके साथ जो चैलेंजेस आते हैं, स्पेशली सस्टेनेबिलिटी के चैलेंजेस, इनोवेशन का बहुत अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंज, आई थिंक उसमें हमें इन सभी कंट्रीज़ के साथ, गल्फ कंट्रीज़ के साथ हम लोग को करना है. काफ़ी चीज़ें हम ऑलरेडी जैसे कतर के साथ भी इन सभी एरियाज में करते हैं, बट दिस इज़ अ वर्क विच विल बी ऑन गोइंग इन द कमिंग ईयर्स.
0: सही. योर एक्सेलेंसी, जैसे आपने खुद भी मेंशन किया, यहाँ पर एक बड़ी तादाद में इंडियन कम्युनिटी है जो कि काफ़ी एक्टिव है, तो आपने अपने टेन्योर के दौरान उनके वेलफेयर, स्पेशली अगर मैं लेबर भाइयों के बारे में बात करूँ, तो उनके वेलफेयर, उनके इंगेजमेंट के लिए किस तरह के काम किए, कौन कौन से स्टेप्स लिए जिन्हें आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे?
1: Well, I think जो सबसे बड़ा एक स्टेप रहता है एम्बेसीज का या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, वो रहता है कनेक्शन का, कम्युनिकेशन का और एंगेजमेंट का. तो हम लोगों का जो प्रयास रहा है पिछले 3 साल में वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, जो इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं, उनके साथ जुड़ सकें. उसके लिए बहुत सारे इवेंट्स हम लोग सालाना तौर पे करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिलने की कोशिश करते हैं. एक बहुत अच्छी चीज़ जो कतर में वो ये है कि हमारा जो इंडियन कल्चरल सेंटर है या इंडियन कम्युनिटी बेनिवोलेंट फोरम है, तो कम्युनिटी के लोग आपस में खुद से उन्होंने ये स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं. तो एम्बेसडर के रूप में आपको ये बड़ा आसान हो जाता है कि आप उनके साथ कनेक्ट करके और फिर फर्दर ऑन आप इंडियन कम्युनिटी के सभी लोगों के साथ जुड़ सकते हैं. सो ये हम लोगों ने काफ़ी किया. मैं खुद बहुत सारे प्रोग्राम्स में, कार्यक्रमों में गया हूँ. जो हमारे वर्कर भाई हैं उनके लिए भी हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत तौर पे जुड़ते हैं, चाहे वो उन लोग को
0: मंथली मीटिंग भी,
1: चाहे वो ओपन हाउस हो, चाहे वो हम लोग जो अपने कॉन्सुलर कैंप्स करते हैं वो हो, चाहे उनको इनवाइट करना हो, जैसे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है उस पे इनवाइट करना या उनके साथ जाना उसको करना हो, या जैसे रमज़ान के महीने में उनके साथ जाके इफ्तारी करना, वो भी हम लोगों ने खूब किया है. तो डिफरेंट तरीके से लेबर डे पे बहुत बड़ा प्रोग्राम हम लोग ICBF के साथ मिलके हर साल करते हैं. और जो हमारे अपने नेशनल डेज हैं, 26 जनवरी का प्रोग्राम हो, 15 अगस्त का प्रोग्राम हो, उन पे उनको इनवाइट करना, तो ये सारे स्टेप्स हमने किए हैं. और साथ में हमने ये कोशिश करी है कि एक जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट इंडियन कम्युनिटी के लोगों को एम्बेसी के थ्रू होती है, वो होती है कि पासपोर्ट रिन्यू करवाना है. तो पासपोर्ट रिन्यूअल में मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये कि हम लोगों ने लगभग पूरे 3 साल में 5 दिन का हम लोगों ने टाइमलाइन रखा है. तो आप अगर आज एम्बेसी में आके अपना फॉर्म जमा कर रहे हैं, 5 दिन के अंदर आपको अपना पासपोर्ट मिल जाता है. और मुझे नहीं लगता कि ये कहीं भी और, माने हम लोग वी वुड बी एट द टॉप.
0: रिसेंटली सर शुरू हुआ आपके टेन्योर में?
1: यस. सो पिछले बीच में एक आधी बार हम लोगों भी 10 दिन 12 दिन बिकॉज ऑफ डिफरेंट ऑपरेशनल रीजंस कभी हुआ है, बट बाय एंड लार्ज हम लोगों ने 5 दिन में

0: ने पासपोर्ट्स दिए हैं, और उसमें हम और चीजें भी नई कर रहे हैं, जैसे अब कि आपको वापस ना आना पड़े एम्बेसी, तो आप कतर पोस्ट के जरिए भी पासपोर्ट मंगा सकते हैं, और यू नो ऑनलाइन पेमेंट की, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स वगैरह की एक रिक्वायरमेंट लोगों की रहती थी, वो भी हम लोगों ने शुरू किया। तो इस तरह के डिफरेंट स्टेप्स भी लिए हैं जिससे कि लोगों को और आसानी हो सके। बट जो सबसे बड़ा मैं बोलूँगा वो यही है कि हम लोगों ने एंगेजमेंट अपना पूरा रखा, और स्पेशली अब जो ये कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में 28 फरवरी के बाद, तो हम लोगों ने अपनी जो हेल्पलाइंस चालू करी, हेल्प डेस्क चालू करी, और उसमें जो कम्युनिटी को हमने इन्वॉल्व किया पूरे तरीके से, आई थिंक ऑल दी स्टेप्स हैव बीन देयर इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिंग एंड हेल्पिंग द लाइव्स ऑफ ऑल इंडियंस हू आर लिविंग हियर।
1: और शायद इसीलिए आप मोस्ट पॉपुलर पीपल्स एम्बेसडर कहलाते भी हैं।
0: Well, I think माने सभी लोग, all ambassadors do this work, so
1: अपना
0: कोशिश रहती है कि हम अपने ज्यादा से ज्यादा कर सकें।
1: But we have seen you like आप हर इवेंट में, हर चाहे कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी हो, कोई भी हो, किसी भी तबके का हो,
0: well, I try because,
1: करते
0: हैं एक चीज जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, और जो बड़े ग्रुप्स होते हैं, जो ज्यादा लोग हैं किसी उसमें, तो उनको तो इन एनी केस दे आर एबल टू डू देयर ओन, बट जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, अब जैसे मान लिया कोई यू नो नॉर्थ ईस्ट से लोग हैं, उनका छोटे उतने शायद नंबर में ना हो, तो उनके साथ जाके बैठना मिलना, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी ऑलवेज हैव टू डू।
1: आई थिंक हैट्स ऑफ सर, जितना काम आपने किया यहाँ पर रहकर इंडियन कम्युनिटी को जोड़ा, मुझे लगता है हर कम्युनिटी को मौका दिया, प्लेटफॉर्म दिया, इट्स रियली कमेंडेबल।
0: आई मीन आई थिंक कम्युनिटी इटसेल्फ इज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड आई थिंक एवरीवन,
1: और शायद इसीलिए लोग आपको हम्बल एम्बेसडर भी कहते हैं।
0: He
1: is very humble ambassador.
2: आप सुन रहे शो अम्बेसडर ऑफ द मंथ,
3: अम्बेसडर ऑफ द मंथ।
2: मैं हूँ नाजिया आपके साथ, और इनसे बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
1: योर एक्सेलेंसी, जब आप अब दोहा छोड़ रहे हैं या छोड़ने वाले हैं, तो ऐसे में कौन कौन सी ऐसी प्रायोरिटीज हैं, या कौन सी ऐसी आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप नहीं कर पाए अवेल, और आने वाले एम्बेसडर उन्हें आगे जो है वो पूरा कर सकते हैं?
0: Well, I think ये तो you know relationships are centuries old historic relations, and they continue. So we have to keep building on our relations. As I said, you know, हम लोगों ने पिछले साल strategic partnership declare किया partnership को, तो उसके बहुत सारे dimensions होते हैं, उन सभी में हम लोग को आगे बढ़ना है. So there are things which we are already doing, उनको और strengthen करना है और deepen करना है, चाहे वो यू नो ट्रेड में हो, एनर्जी में हो, कल्चरल कॉन्टैक्ट हो, और साथ में जैसा मैंने कहा यू नो टेक्नोलॉजी साइड में हम लोग को और चीज़ों को आगे बढ़ाना है। एंड आई थिंक व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट वी कीप अप आवर हाई लेवल एंगेजमेंट बिटवीन द लीडरशिप्स ऑफ द टू कंट्रीज, तो वो कॉन्स्टेंट तौर पर चल रहा है। इवन इन द लास्ट 2-3 months कई बार फोन पे टॉप लीडरशिप में बात हुई है, और उसी को आई एम श्योर जो हमारे नए एम्बेसडर आएंगे, दिस इज समथिंग दैट वी विल कीप बिल्डिंग ऑन।
1: जब नए एम्बेसडर आते हैं सर, ये मेरी क्यूरियोसिटी के लिए, तो उन्हें क्या एक बहुत ही एक डिटेल ब्रीफिंग की जाती है, सारी चीजें एम्बेसडर जो हैं वो बताते हैं, या फिर आपका रिटन में कुछ टेक्स्ट होता है जो उन्हें दिया जाता है, एक रिपोर्ट दी जाती है, या किस तरह से एक नए एम्बेसडर आते हैं तो किस तरह से वो सारी चीजें समझाए जाते हैं?
0: वो काफी चीजें होती हैं उसमें, तो आई एम ऑलरेडी इन टच विद व्होएवर वुड बी कमिंग, बट यू नो व्हाट हैपेंस इज कि एक तो इतना सारा मटेरियल ऑलरेडी मिशन में होता है, तो एक मिशन की अपनी एक मेमोरी होती है, तो उसको एक यू नो उसको लेवरेज कर सकते हैं। हमारा जो लोकल स्टाफ होता है वो लोग तो कंटिन्यू करते हैं, सो दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन टेलिंग न्यू एम्बेसडर। आई विल बी लीविंग सम नोट्स, तो उसको भी वो होता है, और साथ में फिर जब आप दिल्ली जाके कंसल्टेशंस होती हैं, तो उसमें भी आप यू गेदर मोर अबाउट द रिलेशनशिप एंड व्हाट आर द प्रायोरिटीज, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू वर्क ऑन।
1: सर, एक डिप्लोमेट के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या है?
0: वेल, चैलेंजिंग आई वुड से चैलेंजिंग नहीं है, चैलेंजिंग आई वुड से इज कि आप अपना जो दायरा है, दायरे से हटके अगर आप देख सकें, आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो यू नो इफ यू गेट कंस्ट्रेन्ड बाय व्हाट इज हैपनिंग, उसको थोड़ा यू नो फिर आप उतना ही काम कर

0: पाएंगे। तो जैसे इंडिया और कतर के बीच में भी देर आर इमेंस अपॉर्चुनिटीज, अब उन अपॉर्चुनिटीज को किसी ना किसी को शेप करना है, आइडिएशन देना, आई थिंक दैट इज द जॉब ऑफ ऑफ एम्बेसडर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड दैट इज व्हाट वन हैज टू कीप वर्किंग ऑन। सो आई वुड गिव यू वन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब पिछले 3 साल में हम लोगों ने जैसे UPI है हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंडिया में, तो UPI को एक हम लोगों ने थोड़ा इंट्रोड्यूस किया, उसके बारे में बात करी, लोगों को बताया और फाइनली उसको लास्ट ईयर UPI यहाँ पे लॉन्च हुआ। अब धीरे धीरे करके उस पर आगे जो काम हो सकता है दैट वन विल बी डूइंग। तो इस तरीके से नई चीजें क्या कर सकते हैं रिलेशनशिप में, आई थिंक वो दायरा बढ़ाना, दैट इज आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एनी रिलेशनशिप।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। योर एक्सेलेंसी, आपकी करियर में कोई ऐसा मोमेंट रहा जहां आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया जो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और उसके लेसंस और टेक अवेज आज भी आपको याद हैं?
0: वेल आई मीन तो जब आप काम करते हैं तो कुछ ना कुछ अपना यू नो वन पुट्स देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, तो ऐसा कोई वो नहीं है, बट हाँ बहुत सारे काम चलते रहे हैं। सो यू नो आई हैव डन अ नंबर ऑफ थिंग्स ड्यूरिंग माय टेन्योर एज अ डिप्लोमैट, यू नो आई वर्क्ड ऑन डिसआर्ममेंट फॉर एग्जांपल फॉर 5-6 years। दुबई में जब मैं कौंसल जनरल था उस समय कोविड हुआ, तो कोविड के टाइम पे कैसे लोगों को टेक केयर करना है, आई वोंट से दैट इट्स अ टर्निंग पॉइंट इन अ करियर, पर हाँ मैंने यू नो व्हेन आई स्टार्टेड सर्विस सो आई टुक अरबिक एज अ लैंग्वेज, सो दैट डेफिनेटली हैज गिवन अ शेप टू माय करियर बिकॉज़ आई हैव डन क्वाइट अ लॉट इन द अरब वर्ल्ड, स्पेशली इन द गल्फ वर्ल्ड।
1: अच्छा, कोई खास इंटरेस्ट था अरबिक लैंग्वेज ही आपने पिक की, चूज की?
0: Well, I think जो मेरा एक ही वो था कि हम हमेशा से अपनी फिल्में देखते आए हैं उसमें बहुत सारे उर्दू के शब्द भी होते थे और कनेक्ट एक दिखता था कि हाँ अरब वर्ल्ड के साथ इंडिया का एक बहुत बड़ा कनेक्ट रहा है ओवर द सेंचुरीज ओवर द मिलेनियम, तो उसमें यू नो दैट डेफिनेटली यू नो वाज वन ऑफ द रीजंस कि मैंने अरब वर्ल्ड को चूज किया। और मेरे ख्याल से जो हमारी रिलेशनशिप्स फॉर एग्जांपल गल्फ के साथ हैं, हम हमेशा कहते हैं एक्सटेंडेड नेबरहुड, वो इतनी डीप है कि यहाँ पे काम करने का एक अपना चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं और काम करने के लिए बहुत है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो वो यू नो टेकिंग अरबिक बिकेम वन ऑफ द स्टेपिंग स्टोन्स इन दैट डायरेक्शन।
1: वाओ, क्या बात है। सऊदी अरेबिया में योर एक्सेलेंसी आपकी क्या टॉप प्रायोरिटीज रहने वाली हैं, कुछ आपने प्लान किया अभी से, कुछ सोचा है?
0: Well, not really. I mean, अभी तो मेरा यहाँ पे अपना you know कतर में I will finish my tenure and then of course थोड़ा बहुत प्रिपरेशन अपना चालू हो जाता है, but I have not really gone into that detailing. तो वो in the days to come I'll be doing that.
1: सही। Your Excellency, कतर से आपने ऐसा क्या सीखा जो आप चाहते हैं कि आप सऊदी अरेबिया भी अपने साथ लेकर जाएं?
0: Well, I think every ambassadorship is a lesson. तो तरह तरह के एक experiences रहते हैं अपने, क्या नई चीजें हम कर सकते हैं जैसा मैंने कहा, तो वही एक लेसन हम लोग अपने साथ लेके जाएंगे। बट कई तौर पे जो रिलेशनशिप है इंडिया की ओवरऑल गल्फ के साथ, उसमें बहुत सारी डायमेंशन सिमिलर हैं और लेकिन हर कंट्री के साथ एक डिफरेंट रिलेशनशिप है, तो उसको भी बिल्ड करना है। बट जो हम एक तरीके से जो मेरा एक्सपीरियंस हो गया है गल्फ रीजन में, दुबई में काम करके, कतर में काम करके डेस्क पे एज जॉइंट सेक्रेटरी गल्फ, तो वो सारा एक्सपीरियंस लेके क्या नई चीजें हम कर सकते हैं सऊदी के साथ, आई थिंक दैट इज व्हाट आई विल बी लुकिंग एट।
1: सर, कुछ है ऐसा इस कंट्री कतर के बारे में जो आप मिस करेंगे बीइंग देयर इन सऊदी?
0: Oh, I'll miss you know many things of Qatar. You know, one thing would be that even till today, whenever I interact with our Qatari friends, brothers and sisters, you know, you always find something new of their connect with India. तो वो कनेक्ट जो इंडिया के साथ है, जो वार्मथ है, वो बहुत पुरानी है और बहुत बहुत बड़ी है, तो वो हमेशा याद रहेगी कि कैसे इतने सारे लोग इंडिया से बड़े अच्छे तौर पे कनेक्टेड है। I mean, one of the very small examples would be

0: इंडियन मैंगो इज सो लाइक बाय ऑल कंट्रीज. बहुत छोटा एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, बट एवरीवन गेट्स एक्साइटेड विद दैट. बट जो हमारा जो कल्चरल कनेक्ट है एंड दैट कीप्स कमिंग जब हम अपने कतरी लोगों से बात करते हैं, सो दैट इज समथिंग दैट आई हैड नॉट रियलाइज दैट इट इज सो बिग एंड दैट इज आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और सेकेंडली जो अपनी इंडियन कम्युनिटी के साथ मिलके जो काम किया, द लव एंड अफेक्शन दैट दे हैव गिवन टू मी, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट आई रिमेंबर. एंड ऑफकोर्स यू नो ओवरऑल रिलेशनशिप में जितना कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए, that is also something that I will always cherish.
1: क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि सर आप फिर वापस यहाँ दोहा कतर में आएंगे, मतलब ऐसे घूमने ही आ सकते हैं क्योंकि सऊदी से तो पास तो
0: नहीं है. या बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मतलब जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आई विल बी द फर्स्ट वन टू कम हियर. मेरे को बहुत अच्छी यादें लेके हम लोग यहाँ से जाएंगे. और इतना बढ़िया यू नो दोहा में इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी बढ़िया लाइफ है. एंड अगेन एज आई सेड द वार्मथ दैट वी हैव विद कतर इज समथिंग दैट इज क्वाइट एक्सेप्शनल.
1: सर कमिंग टू द क्लोजिंग क्वेश्चन, इंडियन डायस्पोरा के लिए आपका मैसेज, फाइनली क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: वेल मैसेज यही है कि यू नो भारत और कतर की बहुत अच्छी एक रिलेशनशिप है, बहुत हिस्टोरिक हमारी दोस्ती है. और हम लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है स्पेशली एज अ लार्जेस्ट ग्रुप है दैट वी कीप कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इंटरेस्ट्स एंड वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस ऑफ कतर एंड ऑल्सो कीप थिंकिंग एज टू हाउ वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट बैक होम टू इंडिया टू मेक इंडिया यू नो एज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एज सेड विकसित भारत बाई 2047. तो वो हम लोगों को एक हमेशा वो रखना है. पर इंडिया कतर की रिलेशनशिप में कैसे हम लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर सके, आई थिंक दैट्स अ ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन हु इज लिविंग इन कतर.
1: ब्यूटिफुल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर कि आपने वक्त निकाला और बहुत अच्छा बड़े दिल से खुल के आपने हमारे साथ अपने व्यूज अपने एक्सपीरियंस शेयर किए. थैंक यू वंस अगेन.
0: थैंक यू नाज, ऑलवेज अ प्लेजर.
1: थैंक यू सर.
0: थैंक यू.
1: वेल विद दिस दोस्तों अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने के, इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह नए मंथ में एक और नए एम्बेसडर से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे. वेल तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए एफएम 107 दिल से देसी.
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: दोस्तों, साइबर क्राइम के खतरों से बचने के लिए हमेशा एहतियात बरतना जरूरी है। अननोन सोर्सेस से आने वाले मैसेजेस का जवाब देना या उनके लिंक्स पर क्लिक करना आपके लिए खतरा बन सकता है। हर मैसेज या ईमेल को वेरीफाई करें और सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेस पर ही यकीन कीजिए। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड्स और बैंकिंग डिटेल्स कभी भी किसी अनजान शख्स के साथ शेयर न करें। स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें और अपने डिवाइसेस पर एंटीवायरस और सिक्योरिटी अपडेट्स हमेशा अप टू डेट रखें। याद रखें, आपकी अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है और छोटी सी एहतियात आपको बड़े नुकसान से बचाती है। साइबर क्राइम से महफूज रहने के लिए होशियारी और एहतियात को अपनी आदत बनाएं। FM 107 आपको याद दिलाता है कि धोखेबाजी से हमेशा होशियार रहना है।
2: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए।
3: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो।
4: द रिक्वेस्ट शो
3: हर शाम 4 से 5 फजील के साथ संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
5: आप सुन रहे हैं FM 107
6: दिल से दे

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
3: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
2: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360. जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में.
3: हर मंडे सुबह 10 बजे से आज नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107.
2: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ.
3: दोस्तों, लिफ्ट में फंस जाने की सूरत हाल में इन हिदायत पर अमल करें. सबसे पहले तो पुरसुकून रहिए और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए. गहरी सांस लें और अपने आप को याद दिलाएं कि मदद रास्ते में है, क्योंकि परेशान होने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा. इमरजेंसी बटन या इंटरकॉम का यूज करें. हर लिफ्ट में एक सिस्टम होता है जो डायरेक्टली सिक्योरिटी या बिल्डिंग मैनेजमेंट से कनेक्ट करता है. बटन को प्रेस करें और जवाब का इंतजार करें. इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है. दरवाजों को फोर्स ना करें. ऑटोमेटिक डोर्स को हाथों से खोलना खतरनाक हो सकता है. ओपन या क्लोज बटन को 5 सेकंड प्रेस करके चेक करें, लेकिन दरवाजों को फोर्स ना करें. हरकत कम करें और मोबाइल का सिग्नल चेक करते रहें. ज्यादा मूवमेंट से हवा और एनर्जी पर असर पड़ता है. पुरसुकून होकर बैठें या खड़े रहें. अगर मोबाइल सिग्नल है तो 999 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन बताएं. रेस्क्यू टीम का सब्र से इंतजार करें. सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें. घबराहट या परेशानी से बचने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करें. FM 107 आपके सेफ और खुशहाल दिन की दुआ करता है.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
2: بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل

0: जैसा मैं अभी यहाँ पे काम करता हूँ
1: जी,
0: जैसा मैं यहाँ पे काम करता हूँ
1: जी जी,
0: मैंने अपना बीवी बच्चों को पैसा भेजता हूँ
1: जी जी,
0: तो उसको मेरा मतलब भाई को कुछ मालूम नहीं होता है, वो मेरे साथ ही होता है या दूसरा भाई होता है या तीसरा भाई होता है
1: जी,
0: तो इसमें कोई गुनाह नहीं होता है।
1: भाई कहाँ पर होते हैं?
0: भाई हमारे साथ ही होता है ना, हमारा कटे हम कटे रहता है ज्वाइंट फैमिली है
1: जी जी, वहाँ वहाँ मुल्क में इकट्ठे रहते हैं
0: जी जी, लेकिन उसका खर्च का पैसा मतलब हम भेजते हैं
1: जी जी जी जी,
0: लेकिन उसके अलावा हम अपना बीवी बच्चों को पैसा भेजते हैं, उसका कोई गुनाह है या नहीं?
1: जी जी बिल्कुल, इस पर तो कोई गुनाह की बात नहीं मेरे ख्याल से, लेकिन इस पर इंशाल्लाह रोशनी डालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, ज़रूर इस पर जवाब दीजिएगा। बहुत बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, सलाम। सामीन, नूर इस्लाम प्रोग्राम चल रहा है और इस ताल्लुक़ से सवालात का सिलसिला जारी है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
2: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह।
1: जी, आपका नाम?
3: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह।
1: जी, आपका नाम?
2: मोहम्मद।
1: मोहम्मद जी, मोहम्मद भाई फरमाइए।
2: मेरा दो सवाल है, एक तो ईद के बारे में कि ईद का जुम्मा नमाज होता है नहीं होता?
1: किसके
2: बारे में? किस कंट्री में
1: किसके बारे में?
2: जुम्मे की नमाज।
1: जुम्मे की नमाज
2: लेडीज का यानी 10 रकात होते हैं या 2 रकात होते हैं? जुम्मे की नमाज लेडीज का होते हैं नहीं होता? औरत
1: औरत यानी औरत पर जुम्मे की नमाज फर्ज है या नहीं?
2: जी।
1: अच्छा अच्छा जी, इस पर जरूर बात की जाएगी इंशाल्लाह।
2: दूसरा सवाल यह है, जो डिलीवरी बॉय है
1: जी,
2: उसमें ऐसा कस्टमर का मिसाल के तौर पर 1.50 रियाल, 1.48, हम उनसे 2 रियाल लेते हैं या 1 रियाल लेते हैं या जो भी ऊपर नीचे होगा, वो हमारे लिए जायज होगा या उसका पर लेना हो? क्योंकि उतना तो पैसा तो नहीं होता ना।
1: कस्टमर से आप 1-2 रियाल ज्यादा लेते हैं?
2: मेरे मिसाल के तौर पर 1.48 है या 50 है
1: जी,
2: वो दो रियाल दिया
1: जी जी,
2: तो 50 चेंज नहीं है, 50 हमने वापस नहीं किया ना
1: जी जी,
2: मिसाल के तौर पर सिर्फ 50 है, 1 रियाल दिया होती, वो क्या हिसाब होगा? वो हमारे लिए जायज है या जायज?
1: बिल्कुल इस पर रोशनी डालेंगे, बिल्कुल इस पर रोशनी डालेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। सामीन, प्रोग्राम नूर इस्लाम जारी है और सवालात का सिलसिला भी जारी है, टेलीफोन कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
4: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।
1: जी भाई,
4: कैसे हैं भाई?
1: अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह।
4: और अस्सलाम वालेकुम शेख साहब।
3: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।
1: सलाम वरहमतुल्लाह। जी भाई, अच्छा
4: हजरत, मेरा नाम हमजा है, हमजा रियाज।
1: जी हमजा भाई,
4: और सर एक छोटा सा समझने के बाद आपकी रोशनी चाहता हूँ कि हम लोग डिलीवरी का काम करते हैं
1: जी जी,
4: ठीक है, और जो है हम लोगों को थोड़ा प्रेशर ये होता है कि हम लोगों को ऑर्डर टाइम टू टाइम पिकअप करना पड़ता है
1: जी जी,
4: ठीक है, कंपनी की तरफ से थोड़ा बहुत प्रेशर होता है जो एज पर डिलीवरीज के लिहाज से ठीक भी है कि हाँ ठीक है, प्रॉपर काम करना चाहिए
1: जी।
4: तो हमारे जो है नमाज में कोताही होती है बहुत सारी
1: जी।
4: और दूसरा मैंने एक सुना था पहले पाकिस्तान के अंदर कि जो सफर है, सफर के दौरान आप जो नमाज है वो आप फराइज अदा कर सकते हैं या उसमें भी कोई कमी पेशी है, तो इस बात में थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि अगर हम लोग हैं जो हमें टाइम मिलता है, अगर 5-10 मिनट हम अपना एक्स्ट्रा निकालते हैं, कोशिश करते हैं नमाज अदा करने की, जो अल्लाह पाक हम सबको हिदायत भी दे,
1: बिल्कुल बिल्कुल आमीन,
4: तो उसमें आप थोड़े से रोशन डालेंगे अगर क्या हम, क्योंकि हमारा 12-13 घंटे का सफर रहता है पूरे दिन का
1: जी जी,
4: तो हमें सफर के लिहाज से पढ़नी चाहिए या हम मुस्तकिल यहाँ पर मौजूद हैं, हमें उस लिहाज से नमाज अदा करनी चाहिए, ठीक है, और बस यही तकरीबन सवाल है कि हमें अगर हो सफर के लिहाज से अदा करनी चाहिए या फिर उस लिहाज से कि जैसा हम मुस्तकिल यहाँ पर मौजूद हैं।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

0: नुकसान पहुंचाते हैं। आजकल बहुत सी कंपनीज और ब्रांड्स सस्टेनेबल फैब्रिक्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ये फैब्रिक्स उन मटेरियल से बनते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए सेफ और रिन्यूएबली सोर्स्ड होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक कॉटन यानी नमियाती कपास, हेम्प और बैम्बू। ये फैब्रिक्स ट्रेडिशनल फैब्रिक्स के मुकाबले में बहुत कम रिसोर्सेस यूज करते हैं और इनको प्रोड्यूस करने में पोल्यूशन भी कम होती है। बात करते हैं ऑर्गेनिक कॉटन की। ये कॉटन वो होता है जो केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स के बिना उगाया जाता है। ऑर्गेनिक कॉटन की कल्टीवेशन में ज्यादा पानी और फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं होता और जो फार्मर्स इसे उगाते हैं उनकी हेल्थ भी बेटर होती है। इसके अलावा ये कपास का प्रोडक्शन एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। हेम्प की बात करें तो ये एक नेचुरल फाइबर है जो बहुत तेजी से ग्रो होता है और इसके लिए कम पानी और पेस्टिसाइड्स की जरूरत होती है। हेम्प से बनने वाले कपड़े ड्यूरेबल होते हैं और उनका कॉटन फुटप्रिंट बहुत कम होता है। बैम्बू, ये भी एक रिन्यूएबल मटेरियल है जो फास्ट ग्रोइंग है और इसकी कल्टीवेशन के लिए कम वाटर और फर्टिलाइजर्स की जरूरत होती है। बैम्बू फैब्रिक बनाने में कम एनर्जी यूज होती है और ये फैब्रिक सॉफ्ट, ब्रीदेबल और एंटी बैक्टीरियल होता है जो हमारे लिए भी बेनिफिशियल है। आप सोच रहे होंगे ये सब तो ठीक है, लेकिन पुराने कपड़ों का क्या होता है? जब हम नए कपड़े खरीद कर पुराने कपड़ों को वेस्ट कर देते हैं तो ये वेस्ट जल्द ही लैंडफिल में पहुंच जाता है। इन कपड़ों को सालों लगते हैं ब्रेक डाउन होने में और ये प्रोसेस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है। इसके लिए एक सलूशन है रीसाइक्लिंग और अपसाइक्लिंग। रीसाइक्लिंग इसका मतलब है कि हम पुराने कपड़ों को दोबारा यूज करते हैं, उन्हें न्यू फैब्रिक या प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर एक पुरानी कॉटन टी शर्ट है तो उससे एक न्यू फैब्रिक या स्टफिंग मटेरियल बनाया जा सकता है। इससे हम न्यू रिसोर्सेस का इस्तेमाल कम करते हैं और पुरानी चीजों को दोबारा इस्तेमाल करते हैं। अपसाइक्लिंग इसका मतलब है कि पुराने कपड़ों को ऐसे डिजाइन करना कि उनकी वैल्यू बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक पुरानी शर्ट को एक यूनिक बैग या फिर स्कार्फ में बदल देना। इस तरीके से हम अपने वेस्ट को वैल्यूएबल और स्टाइलिश बनाते हैं, जो ना सिर्फ एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है बल्कि हमारी क्रिएटिविटी को भी इनहेंस करता है।
1: आप सुन रहे हैं सस्टेन द फ्यूचर आरजे महविश के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
0: सस्टेनेबल फैशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इथिकल प्रोडक्शन को इम्पोर्टेंस दी जाए। इसका मतलब है कि क्लोथिंग ब्रांड्स अपने वर्कर्स के राइट्स का ख्याल रखें, उनको फेयर वेजेस दें और सेफ वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करें। फास्ट फैशन ब्रांड्स का अक्सर क्रिटिसिज्म ये होता है कि उनके प्रोडक्शन प्रोसेसेस में वर्कर्स के राइट्स वायलेट होते हैं, उन्हें कम वेजेस मिलती हैं और उनकी वर्किंग कंडीशंस बहुत खतरनाक होती हैं। लेकिन सस्टेनेबल फैशन में ये चीजें चेंज हो रही हैं। ब्रांड्स जो इथिकली प्रोड्यूस करते हैं वो अपने वर्कर्स को प्रॉपर वेजेस और हेल्थ केयर फैसिलिटीज देते हैं और उनका वर्क एनवायरनमेंट सेफ और सिक्योर होता है। स्लो फैशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम क्वालिटी को क्वांटिटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं। फास्ट फैशन में हम ट्रेंड के पीछे भागते हैं और हर सीजन नए डिजाइन्स खरीदते हैं, लेकिन स्लो फैशन में हम अपने कपड़े केयरफुली चूज करते हैं और लॉन्ग लास्टिंग हाई क्वालिटी गारमेंट्स खरीदते हैं जो ज्यादा टाइम तक चल सके। जब हम स्लो फैशन को अपनाते हैं, हम अपने वार्डरोब को सस्टेनेबल बनाते हैं और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करते हैं। स्लो फैशन में हम ज्यादा नहीं बल्कि अच्छी क्वालिटी के कपड़े खरीदते हैं जो हमारे लिए भी बेनिफिशियल है और प्लैनेट के लिए भी। सस्टेनेबल फैशन सिर्फ कपड़ों तक लिमिटेड नहीं है, आजकल फैशन एक्सेसरीज भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुडन सनग्लासेस, recycled

leather bags और biodegradable jewelry. ये सब materials वो हैं जो environment पर कम pressure डालते हैं. ये products हमारे style को भी boost करते हैं और planet की भी मदद करते हैं. जब हम eco-friendly accessories choose करते हैं, तो हम अपनी fashion choices को environment की तरफ shift करते हैं. Shopping करना तो हम सबको पसंद है, लेकिन अगर हम अपनी शॉपिंग को कॉन्शियस शॉपिंग बनाएं, तो हम अपनी चॉइसेस के जरिए बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं. ये कैसे? हम उन ब्रांड्स को सपोर्ट करते हैं जो इथिकल और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, जैसे फेयर ट्रेड, वेगन प्रोडक्ट्स और कार्बन न्यूट्रल प्रोडक्शन. हमारी शॉपिंग चॉइसेस हमारे प्लैनेट को अफेक्ट करती हैं, इसीलिए हमें अपनी चॉइसेस को बेहतर बनाना होगा. फैशन इंडस्ट्री में एक फैशन रेवोल्यूशन चल रहा है जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर रहा है. ये रेवोल्यूशन इस बात पर फोकस करता है कि हमारी फैशन चॉइसेस सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है. जब हम सस्टेनेबल फैशन को अपनाते हैं, हम ना सिर्फ अपने पर्सनल स्टाइल को इम्प्रूव करते हैं बल्कि हम अपने प्लैनेट की भी मदद करते हैं. जब हम सस्टेनेबल फैशन की बात करते हैं, तो हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सोच रहे होते हैं. ये सिर्फ आज की बात नहीं बल्कि हमारे अगले 10, 20 और 50 साल के लिए भी एक बेहतर दुनिया बनाना है. कंपनीज अब सस्टेनेबल फैशन को अपनाने लगी हैं और वर्ल्ड गवर्नमेंट्स भी इस ट्रेंड को प्रमोट कर रही हैं. हम सबको मिलकर अपनी फैशन हैबिट्स को बदलना होगा और प्लैनेट की मदद करनी होगी. सस्टेनेबल फैशन सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि एक जरूरत है जब हम अपनी फैशन चॉइसेस में एनवायरमेंट को मद्देनजर रखते हैं, तो हम अपने प्लैनेट की मदद करते हैं. ये हमारा फर्ज है कि हम अपने डेली फैशन चॉइसेस को सस्टेनेबल बनाएं, ताकि हम अपने लिए भी और अपने प्लैनेट के लिए भी एक बेहतर फ्यूचर क्रिएट कर सकें. सो अगली दफा जब शॉपिंग करें, तो अपनी चॉइसेस को कॉन्शियस और रिस्पॉन्सिबल बनाएं और अपने प्लैनेट को बचाने में मदद करें. अब अगर कतर में भी लोगों की शॉपिंग के ऊपर एक नजर डालें, तो देखेंगे कि यहाँ के मॉल्स में हमें सिंथेटिक फैब्रिक्स जैसे पॉलिएस्टर या नायलॉन से बने कपड़े अक्सर मिलते हैं. ये फैब्रिक्स सस्ते होते हैं, लेकिन इनका प्रोडक्शन फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड करता है जो कि ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करते हैं. और जब ये कपड़े खराब हो जाते हैं, तो ये माइक्रो प्लास्टिक्स बनाते हैं जो समंदर में जाते हैं और मैरीन लाइफ को नुकसान पहुँचाते हैं. So why is sustainability in fashion important? क्योंकि हम जो पहनते हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारे एनवायरमेंट पर. If we keep buying fast fashion, we are stressing the planet. पानी वेस्ट होता है, पोल्यूशन बढ़ता है और लैंडफिल्स कपड़ों से भर जाती हैं. लेकिन गुड न्यूज ये है कि हम सब अपनी चॉइसेस से फर्क ला सकते हैं. So here's how we can contribute to a better future. सबसे पहले तो instead of buying 10 cheap t-shirts जो एक सीजन में खराब हो जाएं, invest in high quality clothes जो durable हों. थोड़ी सी रिसर्च करें, brands जो eco-friendly materials यूज करते हैं उन्हें सपोर्ट करें. Second, recycle and upcycle. आप हर जगह थ्रिफ्ट स्टोर्स और क्लोथिंग डोनेशन बिन्स ढूंढ सकते हैं. अपने पुराने कपड़े डोनेट करें या उन्हें अपसाइकिल करें. मसलन एक पुरानी जीन्स को टोट बैग में बदल डालें. सपोर्ट सस्टेनेबल ब्रांड्स. ऐसे ब्रांड्स चूज करें जो रिसाइकल्ड मटेरियल या ऑर्गेनिक कॉटन यूज करते हैं. यहाँ कतर में भी आपको इको कॉन्शियस फैशन ब्रांड्स मिल जाते हैं. सो कीप एन आई आउट. So listeners, ये था हमारा मेन सेगमेंट ऑन सस्टेनेबल फैशन. अब हमें बताएं आप अपनी वार्डरोब को कैसे इको फ्रेंडली बनाते हैं. सेंड अस योर टिप्स ऑन व्हाट्सएप @666-22107 या फिर हमारे सोशल मीडिया @FM107 कतर पे हमें अपना फीडबैक दें. अब चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट ग्रीन फ्लैश, लेकिन उससे पहले लेंगे हम

0: जी लिस्टर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं FM 107 पे सस्टेन द फ्यूचर विद आरजे महावेश खान। और अब वक्त हुआ है हमारी ग्रीन फ्लैश सेगमेंट का।
1: ग्रीन फ्लैश,
0: वेलकम टू ग्रीन फ्लैश, जहां हम लाते हैं दुनिया भर से तीन लेटेस्ट सस्टेनेबिलिटी स्टोरीज। तो आइए इस हफ्ते की स्टोरी सुनते हैं। सबसे पहली खबर है एक स्वीडिश इनिशिएटिव के बारे में। एक स्वीडिश इनिशिएटिव ने टारगेट रखा है कि 2026 तक उनके 50% कपड़े रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर से बनाए, ताकि वर्जिन प्लास्टिक पर डिपेंडेंसी कम हो। दिस इज अ बिग स्टेप टुवर्ड सस्टेनेबल फैशन। दूसरी खबर है टोक्यो से। टोक्यो में एक प्लेटफॉर्म क्लोथिंग रेंटल्स को प्रमोट कर रहा है, जो एक सर्कुलर इकोनॉमी को इनकरेज करता है और टेक्सटाइल वेस्ट को कम करता है। ट्रेंडी कपड़े रेंट करें, बाय ना करें। अब आ जाते हैं अपनी थर्ड न्यूज पे। इंडिया में टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स प्लांट बेस्ड डाइज अपना रहे हैं, जो केमिकल डाइज के मुकाबले में पानी के पोल्यूशन को कम करती हैं। ये यकीनन एक

0: बेहतरीन इको फ्रेंडली स्टेप है। ये थी हमारी ग्रीन फ्लैश स्टोरीज। एक्साइटिंग है ना? अगर आपके पास भी कोई सस्टेनेबिलिटी न्यूज है तो शेयर करें @FM107 कतर या व्हाट्सएप करें 666-22-107। अब चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट। अब हम बात करेंगे एक गेम चेंजर इनोवेशन के बारे में जो फैशन इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रहा है।
1: ग्रीन इनोवेशन।
0: आज हम स्पॉटलाइट डाल रहे हैं ऑन बायोफैब्रिकेटेड मटेरियल्स। ये क्या होता है? बायोफैब्रिकेटेड मटेरियल्स जैसे लैब ग्राउन लेदर या मशरूम बेस्ड फैब्रिक, फॉसिल्स फ्यूल्स और पानी के यूज को ड्रामेटिकली रिड्यूस करते हैं कंपेयर टू ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स। मसलन एक कंपनी मशरूम रूट से लेदर जैसा मटेरियल बनाती है जो 100% बायोडिग्रेडेबल है। ये ना सिर्फ इको फ्रेंडली है बल्कि ये ट्रेडिशनल लेदर से ज्यादा सस्टेनेबल है। दुनिया भर के डिजाइनर्स भी अब ऐसे मटेरियल्स एक्सप्लोर कर रहे हैं टू क्रिएट हाई एंड सस्टेनेबल अबायास और ड्रेसेस। इजंट दैट कूल? ये इनोवेशंस हमें दिखा रही हैं कि फैशन स्टाइलिश भी हो सकता है और प्लैनेट फ्रेंडली भी। आप क्या सोचते हैं बायोफैब्रिकेटेड फैशन के बारे में? क्या आप ऐसे कपड़े ट्राई करेंगे? लेट अस नो ऑन व्हाट्सएप @666-22-107। अब चलिए अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं।
1: इको लिविंग टिप्स।
0: आज के टॉपिक सस्टेनेबल फैशन के मुताबिक हियर आर सम प्रैक्टिकल टिप्स जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं।

0: सकते हैं, जहां पे सेकंड हैंड क्लोथ्स ढूंढ सकते हैं। ये बजट फ्रेंडली भी है और प्लैनेट फ्रेंडली भी। दूसरी टिप ये है कि अपने कपड़ों को कोल्ड वाटर में धोइए और एयर ड्राई करें। ये एनर्जी सेव करता है और कपड़ों की लाइफ भी बढ़ाता है। अपने फ्रेंड्स के साथ क्लोथ स्वैपिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करें। नए कपड़े के लिए शॉपिंग करने के बजाय अपने वार्डरोब को रिफ्रेश करें विदाउट स्पेंडिंग और वेस्टिंग। ट्राई दीज टिप्स और हमें बताएं कि कैसे इन्होंने काम किया। अब चलिए, अब वक्त है इंस्पायरिंग वॉइसेस का, यानी हमारे सेगमेंट वॉइसेस ऑफ द प्लैनेट का।
1: वॉइसेस ऑफ द प्लैनेट।
0: अब हम सुनेंगे एक पावरफुल वॉइस जो सस्टेनेबिलिटी के लिए काम कर रही है। अभी हम आपको 30-second क्लिप सुनाएंगे वंदना शिवा का, जो कि एक रिनाउंड एनवायरमेंटलिस्ट हैं और एक्टिविस्ट भी। तो चलें सुनते हैं।
2: Well, fast fashion is globalized. A handful of brands who all get production in the same slave factories. Then they put their logos and their labels, but it's the same slave factories. They are not sustainable because even when they sell cotton, probably it's 5% cotton.
0: Wow, kitni inspiring baat ki hai Vandana Shiva ne. हमें रिमाइंड करने के लिए कि छोटी सी चॉइसेस भी हमारे प्लैनेट के लिए बड़ा फर्क ला सकती हैं। आप भी ऐसी वॉइसेस से इंस्पायर होते हैं?
1: वीकली चैलेंज।
0: तो लिसनर्स, अब टाइम है हमारे टेक अवे चैलेंज का। इस हफ्ते का चैलेंज है गो अ वीक विदाउट बाइंग न्यू क्लोथ्स। इंस्टेड ट्राई रिपेयरिंग, स्वैपिंग या थ्रिफ्ट शॉपिंग। अगर आपके पास पुराने कपड़े हैं, उन्हें डोनेट करें या अपसाइकल करें। नेक्स्ट वीक के शो में हमें जरूर बताएं कि आपने ये चैलेंज कैसे कंप्लीट किया। और यहाँ पे हमारा शो होता है एंड। आज का सस्टेन द फ्यूचर ऑन FM 107 कतर। शुक्रिया लिसनर्स कि आपने हमें ज्वाइन किया। अगले हफ्ते हम बात करेंगे द एनर्जी शिफ्ट, रिन्यूएबल वर्सेस फॉसिल फ्यूल्स। हम जानेंगे कि दुनिया क्यों सोलर और विंड पावर की तरफ मूव कर रही है और कतर के सोलर प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल टिप्स जैसे रूफटॉप सोलर पैनल्स और LED लाइटिंग के बारे में। प्लस एक्साइटिंग ग्रीन फ्लैश स्टोरीज अबाउट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर फार्म्स। सो डोंट मिस इट। टिल देन स्टे ग्रीन, स्टे सस्टेनेबल और अपना ख्याल रखें। हमें फॉलो करना ना भूलिएगा @FM107 कतर और मैसेज करके अपना फीडबैक जरूर शेयर करें कि आपको हमारा ये शो कैसा लग रहा है @666-22107। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।
1: सस्टेन द फ्यूचर।
3: आपने सुना हमें ऑन एयर। नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें। हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
1: घर ऑफिस और हमारा वजूद सब संभाल कर रख लेने की ताकत और कुछ कर गुजरने की हिम्मत ख्वातीन में कुदरती है तो इसलिए हम ला रहे हैं एक प्लेटफॉर्म

शोकेस करने के लिए ऐसी ही इंस्पायरिंग वुमेन को। तो ट्यून इन कीजिए इंस्पायरिंग वुमेन विद आरजे नाजिया हर वेंसडे 5 बजे से 6 बजे तक और सुनिए उनके सफर को जो प्रूफ करती हैं कि पैशन और डेडिकेशन से कुछ भी पॉसिबल।

0: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं हूं नाज़िया एफएम 107 से एंड वेलकम टू द शो कॉल्ड इंस्पायरिंग वुमेन.
1: इंस्पायरिंग वुमेन उसकी कहानी हर किसी को आगे बढ़ने की ताकत देती है.
0: एक ऐसा शो जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं इंस्पायरिंग वुमेन की स्टोरीज. वेल देखा जाए तो ये शो उन आवाजों का है जिन्होंने मुश्किल रास्तों को चुना और अपनी मेहनत और जज्बे से दूसरों के लिए रोशनी का सबब बनी. जी हां, आज के इस एपिसोड में हमारी गेस्ट बहुत ही खास है. ये एक पैशनेट एजुकेटर है और बहुत ही प्यारे दो बच्चों की मदर भी है. जी हां, आपका नाम है समरीन. और समरीन ना सिर्फ तालीम के मैदान में अपनी एक खास मकाम बना रही है बल्कि वो हर रोज अपने स्टूडेंट्स को मौका दे रही हैं कि वो अपने लिए और समाज के लिए एक नई मिसाल कायम करें. आज हम उनकी कहानी सुनेंगे, उनके चैलेंजेस सुनेंगे और उनकी कामयाबी सुनेंगे. सो हमारे साथ मौजूद है समरीन हामिद जफर. तो समरीन, आपको पहले मैं वेलकम कहना चाहूंगी एफएम 107 पे. कैसी हैं आप?
2: थैंक यू सो मच नारिया फॉर कॉलिंग मी इन योर प्रोग्राम. आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसी हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह. ओके समरीन, शुरुआत करेंगे आपकी इब्तदाई और आपकी ज़ाती ज़िंदगी को जानने के हवाले से. तो वो कौन से लम्हे थे जिन्होंने आपको इंक्लाइन किया टुवर्ड्स टीचिंग?
2: अगर मैं आपको बताना चाहूँ अपने बचपन के किस्से, तो मैं कभी भी पढ़ने में अच्छी नहीं थी.
0: अच्छा.
2: और स्पेशली जो मेरा सब्जेक्ट है जिसमें मैं स्पेशलाइज्ड हुई हूँ, मैंने कभी भी होमवर्क नहीं किया उस सब्जेक्ट का.
0: अच्छा.
2: लेकिन जब मैं कॉलेज लेवल पे आई और बहुत सारे मेरे टीचर्स थे जिन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस किया टीचिंग के टूवर्ड्स, स्पेशली जो मेरी प्रिंसिपल थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वुमेंस कॉलेज की, शी वाज सो काइंड. बहुत मोटिवेटिंग थी ऐसे बच्चों के लिए जो इंटरेस्टेड नहीं थे पढ़ाई में और मोस्टली आई वाज बिजी इन प्लेइंग और डिबेट्स एंड ऑल दैट. तो उन्होंने मुझे इस तरह से मोटिवेट किया कि मुझे लगा कि ये प्रोफेशन लोगों का माइंडसेट चेंज कर सकता है, तो व्हाई डोंट आई ज्वाइन दिस प्रोफेशन. तो दैट वाज द फर्स्ट टेक ऑन मी जब मैंने सोचा कि मैं भी टीचिंग फील्ड में जा सकती हूँ और मैं भी उन बच्चों को मोटिवेट कर सकती हूँ कुछ करने के लिए लाइफ में जैसे इन्होंने मुझे किया है. तो शी वाज द माय फर्स्ट पर्सन हु इन्फ्लुएंस्ड मी टू बिकम अ टीचर.
0: वेरी वेल सेड. तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि टीचर का रोल जो था वो आपकी लाइफ पे काफ़ी अहम रहा. और हम जानते हैं कि आप मदर भी हैं, तो अपना काम और ख़ास करके अपने घर की जिम्मेदारी ने बैलेंस करने में क्या किसी तरह की कोई परेशानी है? हाउ डू यू डू दिस? करती कैसे हैं आप?
2: मेरा काम, मेरे बच्चे और मेरे शौहर, ये सब बैलेंसिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा शरीक हयात मिला है जिसकी वजह से आई एम एबल टू हैंडल द सिचुएशंस. जब मुझे ज़्यादा काम होता है तो वो हेल्प कर देते हैं घर पे बच्चों को पढ़ाने के लिए या घर के कामों के लिए, या फिर जब वो बिज़ी होते हैं तो मैं बैलेंस कर लेती हूँ. और तो इस तरह हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है तो अभी तक की. एंड ही इज़ माई सेकेंड मोटिवेटर. आई मस्ट टेल यू कि मैं एक ऐसी बैकग्राउंड से आई हूँ जो बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली है, पर जब मेरी शादी हुई तो इन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि तुम कर सकती हो. और आज भी मैं एक स्ट्रॉन्ग डिबेटर हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड. बिकॉज वेन एवर आई विन और आई लूज ही ऑलवेज सेलिब्रेट्स इट कि तुमने पार्टिसिपेट किया, दैट्स वॉट आई लव इट. तो मैं जब भी ट्रॉफी लेके घर आती हूँ ही ऑलवेज वेलकम मी एंड यू नो एवरी वन सेलिब्रेट्स इट. दैट इज़ द बेस्ट मोमेंट फॉर मी. सो ही इज़ द वन, बिकॉज ऑफ हिम आई एम एबल टू बैलेंस द लाइफ, माई वर्क, माई किड्स, ऑल ऑफ द थिंग्स.
0: इसलिए तो आप नहीं बोल रहे हैं कि वो सामने आपके बैठे?
2: नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. दैट्स ट्रू एक्चुअली.
0: चलिए जी, बहुत ही खुशी हुई ये बात जान के कि आपके हस्बैंड का आपकी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और किस तरह से वो एक गुड बैलेंस बनाने में आपकी हेल्प कर रहे हैं. अच्छा, हम जानते हैं कि आप एक बहुत अच्छी ओरेटर हैं, बहुत अच्छे से आप डिबेट्स में पार्टिसिपेट करती हैं, तो इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई?
2: वैसे तो मैं कॉलेज में डिबेट्स में पार्टिसिपेट करती थी एंड आई ऑलवेज लाइक पब्लिक स्पीकिंग एंड एज अ टीचर आई वॉज एवरी डे आई एम पब्लिक स्पीकिंग फॉर मी इन फ्रंट ऑफ द किड्स. आई एम जस्ट स्पीकिंग. सो देर वॉज नो फेयर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, पर मुझे एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था पब्लिक स्पीकिंग के लिए जो मुझे चाहिए था. देन वन फाइन डे आई गॉट अ फ्लायर फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड्स. उसने मुझे इनवाइट किया कि तुम एक मीटिंग में आओ, यहाँ पर हम लोग सारे लेडीज़ मिलके बोलते हैं और पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ा एक दूसरे को इनकरेज करते हैं. मैं गई, आई वाज सो सरप्राइज टू सी कि कैसे नॉट ओनली द वर्किंग वुमेन, देयर वर लॉट ऑफ हाउसवाइफ्स जो इतना अच्छा बोल रही थी और स्टेज पे इतना ज़बरदस्त बोल रही थी. तो मुझे लगा दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म फॉर मी एंड सिंस देन आई एम अ वेरी गुड डिबेटर. मेरी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बहुत पॉलिश हुई हैं, मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ट अप हुआ है, इसमें मैंने काफ़ी अवार्ड्स भी जीते हैं. तो आई एम रियली लविंग द लाइफ व्हाट आई एम लिविंग राइट नाउ.
3: वेरी वेल सर. अच्छा, ये तो हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन इज अ की और ये सॉफ्ट स्किल आज के टाइम में हर बच्चे के लिए बहुत मैंडेटरी हो गया है. तो आप अपने गुड एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो आप सीख रही हैं एज अ डिबेटर, आपको क्या लगता है किस तरह से आप वो इनकलकेट कर पा रही हैं स्टूडेंट्स में भी?
2: दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने खुद में डिफरेंस देखा है पहले की टीचिंग में और अब की टीचिंग में. मुझे अपने बहुत फर्क नज़र आता है. जैसे मैं टाइम मैनेजमेंट जो मैं हमें डिबेट में सिखाया गया या फिलर्स वर्ड्स हमें सिखाए गए या कैसे वर्ड्स को आपको अपने बोलना है, कैसे आपको पूरे फॉर्म करना है स्पीचेस को. और जब बच्चों का मैंने स्टार्ट किया एक एक्टिविटी पीरियड में, मैं क्या करवाती हूँ बच्चों के एट द एंड ऑफ द डे कि मैं उनको टॉपिक्स देती हूँ, ऑन स्पॉट टॉपिक्स, एंड रैंडमली आई विल कॉल देम एंड यू नो दे विल स्पीक ऑन दैट टॉपिक्स. तो इससे एवरीडे की प्रैक्टिस से बच्चों की स्पीकिंग स्किल्स भी बहुत डेवलप हो रही हैं. और मैं उनको बताती हूँ कि आपने यहाँ इम्प्रूव करना है, आपने ऐसे करना है. तो मुझे लग रहा है कि मैं आई कैन नाउ बेटर नोटिस द फ्लॉज इन अदर स्पीकिंग सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई स्टूडेंट्स इन दैट वे. सो इन एवरी डे प्रैक्टिस आई एम डूइंग इवन ड्यूरिंग द क्लास. अर्लियर आई यूज टू टीच एंड दे यूज टू लिसन, नाउ दे यूज टू स्पीक एंड आई एम लिसनिंग. सो दिस इज द वे हाउ आई टर्न फ्लिप माई क्लासेस.
3: वेरी वेल सर. अच्छा, कोई ऐसी यादगार डिबेट, मतलब जीत या हार, वो आप बताना चाहेंगे जिससे आपने पर्टिकुलरली कोई एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीखा?
2: अगर जीत की बात करें तो मैंने जब ज्वाइन किया था पब्लिक स्पीकिंग का तो ये मेरा पहला कॉन्टेस्ट था और मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे फर्स्ट प्लेस मिलेगा उसके अंदर. तो आई वाज सो सरप्राइज एंड आई वाज जस्ट सिटिंग एट द बैक एंड क्लैपिंग फॉर अदर्स. सडनली दे हैव कॉल्ड माय नेम दैट यू आर ऑन द फर्स्ट प्लेस. आई वाज सो सरप्राइज. तो मुझे इतनी खुशी हुई कि इतने सालों के बाद, कॉलेज के बाद इतने सालों के बाद मैं खुद ट्रॉफी ले रही हूँ और रिसीव कर रही हूँ, वो चीज़ में एक अलग ही तरह की फीलिंग थी. और उधर ही अगर आप बात करती हैं लूजिंग की, तो वेरी नेक्स्ट व्हेन आई गो टू द एरिया लेवल, मैं वहाँ पे मैं पूरी कॉन्फिडेंट थी कि मैं जीतूंगी. मैंने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से किया था पर मैं एक सेकेंड से टाइम डिस्क्वालीफाई होके लॉस कर गई. तो वहाँ मैंने एक लेसन लर्न किया कि हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. मे बी आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं बट यू नीड टू स्पीक विद इन दैट टाइम लिमिट. सो ये लेसन अभी मैं कभी भी जब भी कॉन्टेस्ट में जाती हूँ तो मैं कभी भी नहीं भूलती. और मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
3: इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये सिलसिला दोस्तों जारी रहेगा शॉर्ट सॉन्ग ब्रेक के उस पार भी.

0: घर, ऑफिस और हमारा वजूद सब संभाल कर रख लेने की ताकत और कुछ कर गुजरने की हिम्मत ख्वातीन में कुदरती है।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं शो इंस्पायरिंग वुमेन और आज हमारे साथ एक बहुत ही कमाल की इंस्पायरिंग वुमेन मौजूद है।
2: उसकी कहानी हर किसी को आगे बढ़ने की ताकत देती है।
1: अच्छा, किसी स्टूडेंट की कोई कहानी आप शेयर करना चाहेंगे जिसने आपको पर्टिकुलरली इंस्पायर किया या सरप्राइज कर दिया ऑन बेसिस ऑफ योर गुड एक्सपीरियंस? इतना टीचिंग का है, कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा रहा होगा जो
3: डेफिनेटली बहुत सारे हम इतने, मैं 13 साल से पढ़ा रही हूँ तो बहुत सारे हर साल जो बैच जाता है तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो आपको कुछ सिखा के जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हम ही सिखा रहे, बच्चे भी आपको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। तो 2002 की बात है, एक बच्चा था मेरी क्लास में, वो हमेशा ही चुप रहता था, ज्यादा बात नहीं करता था।
1: अच्छा।
3: तो मैं हमेशा, मुझे आदत पड़ गई थी इस चीज की कि मैं बच्चों को बुलवाऊं क्लास के अंदर, वो कुछ बोले टॉपिक से रिलेटेड, कि मैं बोल देती थी ये टॉपिक है तुमने बोलना है। तो वो बच्चा हमेशा रिलक्टेंट रहता था कि मैं नहीं आई विल नॉट डू, मैं राइटिंग कर लूंगा लेकिन मैं बोलूंगा नहीं।
1: अच्छा।
3: हर दिन मेरा ये काम था कि मैं उसको बोलूंगी कि तुम्हें बोलना है और वो मना करता था। एट द एंड ऑफ द ईयर वो बच्चा आया, बोला आई वॉन्ट टू से समथिंग टू यू, और उसने 7 मिनट की पूरी स्पीच मेरे ऊपर बोली, द हाउ एज अ पर्सन ही लाइक्स मी एंड व्हाट ऑल ही लर्नड फ्रॉम मी। और इतना अच्छा बोला उसने, इतना फॉर्म में बोला, आई वाज सो सरप्राइज कि ये बच्चा इतने दिन से अपने इस टैलेंट को अंदर रखे हुए था। और उसके बाद से आज तक टाइम हो गया, उसके पेरेंट्स का मेरे पास मैसेज आता है, ही इज अ वेरी गुड डिबेटर ऑल्सो राइट नाउ, ही इज गोइंग फॉर कतर डिबेट्स एंड एवरीथिंग। सो पेरेंट्स आर रियली, यू नो, they are sending me messages for all this, so this is the what I am
1: wanting, the real congratulations I am receiving. बिल्कुल, ये तो सही बात है। अच्छा, जैसे debating की हम बात कर रहे हैं, हम मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं critical thinking को भी और आपके expressions को भी मौका देता है कि आप उसको पूरी तरह से जो है ना pen down करें। तो बच्चे जो घबराते हैं, जो उन्हें घबराहट होती है, they have that talent, उनमें है वो talent और आप भी as a teacher ये समझते हैं इनमें talent और potential है, but in spite of that उन्हें एक fear होता है stage पर जाकर, you know, public को face करने का। तो कौन सी ऐसी techniques या tips जो है आप as a teacher on the basis of your good experience देना चाहेंगी parents को भी and students को भी, जिससे वो अपनी इस घबराहट को दूर कर सके?
3: सबसे पहले तो parents को identify करना चाहिए कि हमारे बच्चे के अंदर क्या skills है। अगर उसके अंदर just a stage fear है तो उसके लिए हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्लासेस के अंदर देते हैं बच्चों को बोलने के लिए। जब वो एक 32-35 की स्टूडेंट के सामने बोल पाएंगे, देन वी हैव क्लास असेंबलीज, वहाँ पर बच्चों को बोलने की अपॉर्चुनिटीज देते हैं। उसके बाद फिर आपके आते हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स स्कूल के अंदर, एनुअल डेज, स्पोर्ट्स डे एंड ऑल दैट, तो उसमें बच्चों को हमें लगता है ये बच्चे उस लेवल तक जा सकते हैं, तो हम उसके भी उनको वो देते हैं। अलॉन्ग विद दैट वी हैव डिबेट क्लब्स, जिसके अंदर हम बच्चों को डिबेट की ट्रेनिंग्स देते हैं, स्पेशली उन बच्चों को टारगेट करते हैं जिनके अंदर हमें पता है कि पब्लिक स्पीकिंग का टैलेंट है बट फियर है। तो एक स्कूल लेवल पे भी डिबेट करते हैं हम लोग, फिर वो बच्चे इंटर स्कूल जाते हैं या कतर डिबेट तक वो बच्चे प्रमोट हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो 7th-8th में मे भी बहुत अच्छा नहीं बोलते थे, पर 11th में आके दे आर वेरी गुड डिबेटर्स एंड दे आर विनिंग ऑल्सो। सो दिस इज वॉट वी आर डूइंग लाइक फ्रॉम अवर साइड, हाउ टू इनकरेज ऑल दीज फ्यूचर पब्लिक स्पीकर्स।
1: वेरी वेल सेड। अच्छा, हम कम्युनिकेशन स्किल्स तो एनहांस हो ही रही है, ऑफकोर्स जब आप अच्छा बोल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स भी एट द सेम टाइम हो रही है, लेकिन रीडिंग कहते हैं ना कि राइटिंग और स्पीकिंग इन दोनों के लिए बहुत ही एसेंशियल है कि आप एक अच्छे रीडर हों, तो इस हैबिट को किस तरह से इनकल्केट किया जा सकता है स्टूडेंट्स में?
3: उसके लिए भी हमारे जैसे स्कूलों के अंदर आप कहें तो हम लोग रीडिंग के अवार्ड्स देते हैं बच्चों को जिसने मैक्सिमम बुक्स रीड करी हैं, तो बच्चे इनकरेज होते हैं। या बच्चों को ये बोला जाता है कि आपको बुक्स के ऊपर समरी लिख के लानी, तो और यह क्लासेस के अंदर भी हम लोग उनको ये बोलते हैं कि इस वीक में आपने जो बुक्स पढ़ी हैं उसकी समरी आप सुनाइए क्लासेस की। तो रीडिंग को भी बहुत ज़्यादा इनकरेज कर रहे हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर रीडिंग नहीं बच्चे करेंगे तो वो लिख नहीं सकते, और अगर वो लिख नहीं पाएंगे तो डेफिनेटली वो बोलेंगे भी नहीं। तो दिस इज़ ऑल इंटरकनेक्टेड, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि उनका स्क्रीन टाइम से टाइम शिफ्ट होके रीडिंग पे आए और फिर वो क्रिएटिव राइटिंग में आए, उसके बाद वो स्पीकर बने. सो दिस इज ऑल स्टेप बाय स्टेप हाउ दे आर डूइंग इट.
1: अच्छा अच्छा समरीन, ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि क्लासरूम में एक्चुअली जो पर्सुएसिव आर्ग्यूमेंट्स हैं और एम्पैथी, इन दोनों में गुड बैलेंस कैसे बना पाती हैं, एंड डू यू फाइंड इट मोर चैलेंजिंग?
3: या समटाइम्स व्हेन देयर इज अ डिबेट इन द क्लास, फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ टाइम आई डू द स्पीकिंग एक्टिविटी इन द क्लास. सो मैं क्या करती हूँ, बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कर देती हूँ, उनको टॉपिक्स दे देती हूँ और उनको डिबेट करना होता है. And there is a ground rule that you have to attack on the argument, not on the person.
1: Okay.
3: So they have to prove their point, but they have to understand the other point is also right from that point of view. तो ऐसा नहीं है कि वो उसको बोल सकते नहीं यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग एंड मे बी वो जो अदर ग्रुप बोल रहा है वो अपने पॉइंट से करेक्ट बोल रहा है. तो हमेशा बच्चों को मैं ये सिखाती हूँ कि आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करना है, ना कि दूसरे का ये बताना कि तुम गलत हो. तो इस चीज से जब हम उनको ट्रेनिंग देते हैं तो इससे फिर उनके अंदर थोड़ी एम्पैथी आती है, वो दूसरे बच्चों पे उस तरह से अटैक नहीं करते और वर्बली अटैक नहीं करते जिससे दूसरा डिमोटिवेट हो.
1: सही. और मुझे लगता है कि अगर आप किसी के ओपिनियन के साथ डिफर करते हैं इट्स वेरी गुड, इसमें कुछ बुराई नहीं, और आपकी अपनी ओपिनियन है, वी नीड टू रिस्पेक्ट. बिल्कुल. अच्छा आप मदर हैं एंड वी नो दैट कि आपका जो बच्चा है ही इज अ वेरी टैलेंटेड, वी नो हिम, और उसके अलावा भी ही वॉज डायग्नोज विद ADHD.
3: यस
1: राइट. तो उसको आपने किस तरह से हैंडल किया व्हाइल यू आर वर्किंग वुमेन? तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहा होगा.
3: एक्चुअली दैट वॉज अ वेरी बिग चैलेंज नॉट फॉर मी, फॉर होल फैमिली. व्हेन ही वॉज यंग तो हमें इतना पता नहीं था कि बच्चा जो चीज़ें कर रहा है वो नॉर्मल है कि नहीं है, पर मैं दूसरे बच्चों को ऑब्जर्व करती थी और मैं क्लास में बच्चों को ऑब्जर्व करती थी, तो मुझे लगता था कि मेरा 3 साल का बच्चा उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा जैसे बाकी बच्चे कर रहे हैं. तो हमने फिर उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट करा, हमने उसको डॉक्टर्स को दिखाया, कई सारे डॉक्टर्स को, और उसको माइल्ड ADHD है. तो डॉक्टर्स ने हमें बोला कि या तो आप दवाई दे सकते हैं या तो फिर आप उसकी थेरेपीज कर सकते हैं. थेरेपीज के लिए थोड़ा तो डॉक्टर्स ने किया, फिर उन्होंने हमें टेक्निक्स बताई. अलॉन्ग विद दैट मैंने किताबें पढ़ी जिसके अंदर टेक्निक्स लिखी हुई थी, मैंने बहुत सारे वीडियोज देखे ADHD से रिलेटेड. मैंने उसकी डिटेल्स में गई कि इसके रीजन रूट कॉज क्या है और हाउ कैन वी क्योर इट बिकॉज दिस इज क्योरेबल. फिर उसके बाद मैंने अपनी जॉब से रिजाइन करा और मेरा फुल फोकस मेरे बेटे के ऊपर हो गया. मैंने वो चीज़ें बंद कर दी जो जैसे कि डॉक्टर ने मुझे बताई थी, फ्राइड फूड नहीं देना है आपने, आपने मीठा कुछ नहीं देना है बच्चों को, किसी भी तरह के जूसेस नहीं देने, मार्केट का कोई भी प्रिजर्वेटिव फूड नहीं देना है, वो सारी चीज़ें या जितना भी आप जंक फूड आ रहा है वो कुछ भी नहीं देना है, सारा होम मेड फूड देना है. तो वो सारी चीज़ें से उसका बहुत कंट्रोल हुआ क्योंकि खाना डाइट मैटर करती है बहुत ज़्यादा.
1: अच्छा.
3: और प्लस स्क्रीन टाइम आपको बच्चे का कंट्रोल करना है क्योंकि स्क्रीन पे इतने फ्लैशेस आ रहे हैं, इतने कलर्स आ रहे हैं कि वो बच्चे का माइंड कंट्रोल नहीं कर पाता है. तो वो बच्चे का एट टेंडर एज वो चीज़ें बच्चे जब कैच करते हैं तो वो वही चीज़ें करने लगते हैं. तो ये एक थोड़ा मसला आ जाता है. तो मैंने उसका स्क्रीन टाइम भी कैंसिल किया. उसके टूवर्ड्स मैंने उसको रीडिंग की तरफ थोड़ा इंकरेज किया. तो अभी तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रीडिंग में है. इज़ अ पब्लिक स्पीकर ऑल्सो, इज वेरी मच इंटू यू नो रोबोटिक्स एंड ऑल, दैट्स व्हाट हिज एम इज़ टू बिकम ए रोबोटिक इंजीनियर. और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपने तरफ से बहुत कोशिश करी, हर तरह से उसने भी बहुत कोऑपरेट किया. हमने उसे समझाया कि तुम्हें ये मसला है और हमें ऐसे ही कंट्रोल करना है. तो उसने भी कभी जिद नहीं करी कि नहीं मुझे मीठा खाना है. अगर कभी कुछ अच्छा होता था तो हम हफ्ते में एक बार चॉकलेट दे देते थे. तो इन सब चीज़ों से और बहुत सारे गेम्स थे जो हमने लिए उसके लिए, उसको इंगेज किया. स्पेशली ड्राइंग, स्विमिंग ऐसी एक एक्टिविटी है जो माइंड को सूदन करती है, या ड्राइंग अगर बच्चा कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा है, बहुत देर तक कलरिंग कर पा रहा है तो उसका पेशेंस लेवल बढ़ रहा है. तो ये सब एक्टिविटीज़ करानी चाहिए बच्चों को, ना कि मतलब किसी भी ऐसे उसमें भेजें जिसमें वायलेंस सीखे बच्चा. तो इस तरह की हमें एक्टिविटीज बच्चों को ज्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए.
1: एंड दैट्स टू परसिस्टेंट कैन आउटपेस सिंगल टैलेंट एवरी सिंगल टाइम, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ये सिलसिला दोस्तों जारी रहेगा शॉर्ट सॉन्ग ब्रेक के उस पार भी.

0: वो ऐसा बच्चा है जिसने इस चीज को देखा है कि भाई ये सब चीजों के थ्रू जा रहा है, या भाई स्कूल जाता है तो बच्चे कैसे बुली कर रहे हैं उसको, या बच्चे परेशान अगर उसको कर रहे हैं तो वो कैसे भाई को सपोर्ट करती है. तो वो शी बिहेव्स लाइक अ एल्डर सिस्टर, उसको समझाती है तुम ऐसे करो तुम वैसे करो, या उसके लिए हेल्प करती है जब उसको इमोशनल आउटबर्स्ट होता है तो उसको बहुत ज्यादा केयर करती है. तो इस मामले में वो छोटी है फिर भी वो बहुत मतलब समझदारी से बिहेव करती है.
1: इसके एक पेरेंट्स का उसके साथ एक कन्वर्सेशन सेशन रहा,
0: हमने उसे बताया, हमने उसे समझाया कि भाई के साथ ऐसा मसला है और हमें सबको मिलके भाई के साथ कोऑपरेट करना है. तो वो माशाल्लाह करती है, पर वो भी बच्चा है, कभी कभी तो वो भी हो जाती है.
1: नहीं चलिए खैर, फिर भी बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छे से अपने भाई के साथ होना.
0: जी जी,
1: कोप अप करें चीजों को. अच्छा, आप अपने बच्चों को और चलिए बच्चों के अलावा स्टूडेंट्स को किस तरह से रेसिलिएंट होना सिखाते हैं?
0: क्लासेस के अंदर एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑपरेट करना है, दूसरे की बिहेवियर को सबसे पहले आपको टॉलरेट करना है. जो डिफरेंसेस हैं हमारे क्लासेस के अंदर, जो लैंग्वेज डिफरेंसेस हैं, जो कल्चर डिफरेंसेस हैं, तो जब बच्चे उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो डेफिनेटली उनके अंदर इस तरह की फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं कि वो कैसे कोऑपरेट करके एक दूसरे, क्योंकि हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पर अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें एक्सेप्ट करना बहुत ईजी नहीं होता है. पर जब हम एज अ टीचर क्लास में हम कोई बायस नेचर नहीं करते, हम सबके साथ इक्वली बिहेव करते हैं और वही चीज़ क्लासेस के अंदर प्रमोट करते हैं, तब बच्चों के अंदर रिजल्ट बिहेव मोर
1: और वैसे भी इंक्लूसिविटी को जो है प्रमोट करते हैं.
2: ये चाहिए, वेरी वेल सेड. अच्छा, बहुत अच्छा लगा समरीन आपसे बात की हमने, और वक्त हमें बिल्कुल पता नहीं चला कहाँ निकला, लेकिन जाते जाते मैं आपसे जानना चाहूँगी आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं एज एन एजुकेटर एंड ऑफ कोर्स एज अ डिबेटर, और किस तरह की लेगेसी आप छोड़ना चाहती हैं?
0: एज ए एजुकेटर डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि मैं वैसे मैं आपसे बहुत ज़बरदस्त किस्सा शेयर करना चाहूँगी कि मैं जिस स्कूल में भी पढ़ा रही हूँ तो वहाँ पर एक बच्ची आई टीचर रिक्रूट होके, उसने आके मुझे कहा कि मैम आपने मुझे फिफ्थ ग्रेड में पढ़ाया है, नाउ ही इज़ अ टीचर इन माई स्कूल. आई फील सो हैप्पी टू सी हर कि वो मेरा ही सब्जेक्ट आके पढ़ा रही है, तो वो मुझे एक मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट लगा. दूसरा किस्सा मैं आपको बताऊंगी कि मैं पुलिस स्टेशन गई.
1: अच्छा.
0: तो वहाँ पर एक पाकिस्तानी बच्ची थी, उसने मुझे रिकॉग्नाइज करा, बोला मैम यू टॉट मी इन 8th ग्रेड. तो आई फील लाइक दिस इज व्हाट आई हैव अचीव्ड इन दीज मेनी इयर्स. तो यही मुझे चाहिए. मैं एज अ एजुकेटर मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो है डिफरेंट फील्ड्स में जाएं, सक्सेसफुल हों और हमेशा मुझे याद रखें इन गुड वर्ड्स. दिस इज व्हाट आई वांट. एंड एज अ डिबेटर डेफिनेटली आई वांट टू गो टू द वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल. डेफिनेटली वन डे आई वांट टू गो, दैट्स माय टारगेट. लेट्स सी
1: इंशाल्लाह. बहुत सारी दुआएं हमारे आपके साथ हैं. थैंक यू सो मच स्पीकिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड शेयरिंग सच अमेजिंग इनसाइट.
0: थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी. थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी.
1: थैंक यू वंस अगेन. दोस्तों इसी के साथ वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का. इंशाल्लाह नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुनते रहिए FM 107 दिल से डीसी.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी,
1: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेज और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
0: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
1: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
0: हर मंडे सुबह 10 बजे से आरजे नाज़िया के साथ ओनली ऑन FM 107
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: FM 107 पर अपना business advertise करने के लिए आज ही राब्ता करें.
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी Qatar Media Corporation की marketing team से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
4: न्यूज एट 7 PM विद फुरकान शाहिद फ्रॉम उर्दू रेडियो FM 107.
5: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह. दोहा कतर में इस वक्त शाम के 7 बजे हैं. आप सुन रहे हैं उर्दू रेडियो कतर FM 107. फुरकान शाहिद से समाप्त कीजिए आज की ताज़ा तरीन खबरें. इब्तदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियाँ. वजारत मेहनत की मुआविन वज़ीर शेखा नजवा बिनत अब्दुलरहमान अलसानी ने आज सिंगापुर में वजारत अफरादी क़ुव्वत और मुतअल्लिक़ इदारों के मुतअद्दद तकनीकी इजलास मुनाक़िद किए. कतर ने दमिश्क में एक कैफ़े पर होने वाले बम धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है. कतर ने अक़वामे मुत्तहिदा के इंसदादे दहशतगर्दी हफ्ता के अनवान से मुनाक़िदा प्रोग्राम में शिरकत की. कतरी बैनुल अक़वामी सर्च एंड रेस्क्यू टीम वेंजुला के जलजले में मुतासर इलाकों में इमदादी फजाई पुल के जरिए रेस्क्यू कार्रवाइयाँ और इमदाद की तरसील जारी रखे हुए है. और अमरीका ने अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसल के हंगामी इजलास में ईरान से बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों की पासदारी और सफारती रास्ता इख्तियार करने का मुतालबा किया है. ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियाँ. अब समाप्त कीजिए उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफसल नशरिया.

0: की है और दहशतगर्दी को हर सूरत में मुस्तरद करते हुए अपने मौकिफ का इआदा किया। कतर ने अक़वामे मुत्तहिदा के इंसदादी दहशतगर्दी हफ्ता प्रोग्राम में शिरकत करते हुए आलमी तआवुन, सलाहियत साजी और बाहमी इश्तराक को मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया है। कतरी बैनुल अक़वामी सर्च एंड रेस्क्यू टीमों ने वेनेजुएला के जलजले में मलबे तले दबी एक लड़की को जिंदा निकालने में कामयाबी हासिल की है और मुतासरा इलाकों में इमदादी फिजाई पुल के जरिए रेस्क्यू कार्रवाइयां और इमदाद की तरसील जारी रखे हुए हैं। और बहरीन की दरख्वास्त पर ईरान की मुबैना जारहाना कार्रवाइयों पर गौर वखोज के लिए मुनाकिदा अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में अमेरिका ने ईरान से खलीजी ममालिक पर हमला रोकने और आबनाए हुरमुज में बैनुल अक़वामी जहाजरानी में रुकावट न डालने का मुतालबा किया है। इसी के साथ साथ आज का दूसरा नशरिया अपने अख्तिताम को पहुँचता है। उर्दू रेडियो कतर एफ एम 107 के स्टूडियो से तकनीकी मुआविन जासिम और मुझे फुरकान शाहिद को दीजिए इजाज़त। फी अमानिल्लाह।
1: हमारा अगला बुलेटिन सुबह 9 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए एफ एम 107।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: एब्सोल्यूट सिनेमा।
3: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा। यार अगर टिकट ले लिया आपने तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर टिकट नहीं लिए तो रुक जाओ, सबर कर लो। मैं आपको बता दूं, अगर टिकट नहीं लिया है तो थोड़ा सोच लो, उसके बाद टिकट लेना।

0: is Welcome to the Jungle.
1: कोई स्क्रिप्ट है आपके पास?
2: एक जबरदस्त कहानी है.
3: और टाइटल क्या है फिल्म का?
2: वेलकम टू द जंगल.
0: ये कौन सी मूवी है? वेलकम टू द जंगल. वेलकम तो सुनी थी, एक्चुअली ये वेलकम ही. वेलकम टू द जंगल ये मूवी जो है वेलकम का सीक्वल कह सकते हैं. कुछ यूनिकनेस इसमें जो है दी गई है और ये एक्चुअली तीसरा पार्ट है. आप वेलकम टू द जंगल को ले सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सी नई चीजें हैं. लेकिन

सबसे पहले मूड के बारे में बात कर लें. फिल्म खत्म होने के बाद जो ऑडियंस है उसका मूड है बहुत ज्यादा मिक्स और कंफ्यूजिंग मूड है लोगों का. पहला हाफ देखकर आपका मूड एकदम फ्रेश और हैप्पी हो जाता है क्योंकि स्क्रीन पर नॉन स्टॉप कॉमेडी है, फनी डायलॉग्स हैं और पुराने बॉलीवुड एक्टर्स का मजाक चल रहा होता है. लेकिन इंटरवल के बाद

0: एक्शन सीक्वेंसेस और ओवर द टॉप पेट्रियोटिक इमोशनल सीन्स ले लेता है। तो यहाँ पर फिल्म जो है वो थोड़ी सी छूटती हुई सी लगती है, लेकिन अगर आप फिल्म के दीवाने हैं, अगर आप एक्टर्स के दीवाने हैं, तो एक्टर्स के ऊपर जो जोक मारा गया है फिल्म में, उसके आप फैन हो जाएंगे शुरुआत में, आपको मजा आ जाएगा, आप सोचेंगे यार ये इस तरह की भी कॉमेडी होने लग गई है।
1: तो पैसों की बात कौन करेगा, बताइए कैसा दिया?
2: अबे ये क्या तरकारी लेने आया क्या?
0: स्टार्स जो रहे हैं उनके ऊपर, उनके मूवी के ऊपर बड़ा कॉमेडी सीन है। अभी आगे मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा। तो दोस्तों ये जब फिल्म सेकंड हाफ में पहुंचती है, जब जंगल में पहुंच जाते हैं पूरे स्टार कास्ट, तो अचानक बदलाव की वजह से ऑडियंस जो है वो थोड़ी सी बोर और फ्रस्ट्रेटेड महसूस करने लगती है। जो लोग दिमाग घर छोड़कर सिर्फ हंसने आए थे, उन्हें भी सेकंड हाफ में घटिया VFX, गोरिल्ला और बिना सर पैर की कहानी देखकर थोड़ा सा सर दर्द होने लगता, मूड खराब होने लगता है। फाइनल फ्रेम तक पहुंचते पहुंचते मजा थोड़ा फीका पड़ जाता है। ये एक ऐसी फिल्म है जो आपको बहुत ज्यादा हंसाती भी, और साथ ही साथ अपने लंबे रन टाइम यानी कि 164 मिनट की ये मूवी है, उसकी वजह से थोड़ा थका भी देती है। आप ऐसे होता है ना कि बैठे बैठे आपका दिमाग खराब हो जाता है। अच्छा, खास तौर पे अब जब कतर में इस मूवी को देखेंगे, तो यहाँ तो वो वाला सीन भी नहीं है ना कि आपको आधे घंटे का ब्रेक मिल रहा और फिर मूवी शुरू हो रही है।

0: बोर और ज्यादा बोर इंसान होने लगता है। लेकिन अगर बीच में, जैसे इंडिया में होता है, बीच में मूवी रोक दी जाती है, फिर लोग खाना पीना करने अपना जाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, मूवी देखते हैं, तो वो बना रहता है माहौल। लेकिन उसमें भी अगर मूवी खराब है तो ज्यादा ही मूड खराब हो जाता है कि एक तो बैठना भी है इतना लंबा 164 मिनट और ऊपर से मूवी भी इतनी अच्छी नहीं है। तो ओवरऑल थिएटर से निकलते वक्त आपका मूड पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं होता है इस मूवी को देखने के बाद, बल्कि आप सोचते हैं कि काश डायरेक्टर ने सेकंड हाफ को भी पहले हाफ जितना ही फनी या शॉर्ट रखा होता तो मजा आया।
1: वो जो छपरी ने किया है ना, वो अपने को भी करने का है।
2: ये मेरे को नहीं करने का एक्शन।
0: अच्छा, इस मूवी के हाइप के बारे में बात कर लेते हैं, लोगों की उम्मीदें क्या थी इस मूवी से। दोस्तों, इस फिल्म की हाइप रिलीज से पहले बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर थी। इसका सबसे बड़ा रीजन था इसका मेगा स्टार कास्ट अनाउंसमेंट प्रोमो, जिसमें अक्षय कुमार थे,

0: गा रहे थे
1: हमारी फिल्म आर्मी वाली और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है
0: फैंस को लगा था कि ये मूवी पुरानी वेलकम 2007 और वेलकम बैक 2015 का आइकॉनिक क्रेज जो है वो वापस लेकर आएगी ऊपर से नीरज वोरा का लिखा हुआ पुराना स्क्रिप्ट और अक्षय कुमार की कॉमिक रोल

0: और 2026 के अक्षय कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? 2007 में वेलकम में अक्षय कुमार मासूम रोल में थे, उनका चेहरा, उनकी मासूमियत, उनकी टाइमिंग वो बहुत अच्छी थी। लेकिन 2026 में वो ज़्यादा ही चिल या कहें बहुत ही आउटस्पोकन हो गए हैं ऑन स्क्रीन, है ना। जिस तरह से वो अपने डायलॉग बोलते हैं, ऑब्वियसली वो बहुत ही यूनिक, इंटरेस्टिंग, फनी, बेहतरीन टाइमिंग है, बट वो मासूमियत रह गई है। और जो उनका बोलने का, डायलॉग डिलीवरी का तरीका है, वो मासूमियत पर उस तरह से आता नहीं है। तो अब वेलकम वाला जो सीन था, जो स्क्रिप्ट थी, और फिर अब 2026 की जो स्क्रिप्ट है उसमें आप बराबरी करेंगे तो वो बात नहीं आती है। उसके अलावा जब फिल्म स्क्रीन पर आई तो ये पूरी तरह से उस ह्यूज हाइप को जस्टिफाई नहीं कर पाई। हद से ज़्यादा कैरेक्टर्स होने की वजह से पूरी फिल्म बिखरी हुई लगती है। अब देखिए, ये भी एक बड़ा रीज़न है कि ज़्यादा बड़े एक्टर्स रहेंगे तो सब पर दिमाग ना डाइवर्ट हो रहा, सबके एक्टिंग पर दिमाग जो है डाइवर्ट होता रहता है, और ये इस मूवी के साथ प्रॉब्लम हुई। जितनी उम्मीद आइकॉनिक कैरेक्टर्स जैसे कि उदय मजनू भाई के लेगेसी से थी, वो मज़ा थोड़ा कम है।
1: ये दो भाई, एक उदय का भाई और दूसरा मजनू का भाई, फिल्म में ये भी घुस पड़े।
0: सोशल मीडिया और बाकी जगह पे पब्लिक डिस्कशन से साफ पता चलता है कि फिल्म ने शुरुआत तो धमाकेदार हाइप के साथ की थी, लेकिन खराब एग्जीक्यूशन की वजह से ये सिर्फ एक एवरेज वन टाइम वॉच बनकर रह गई।

0: हाइप बहुत ज्यादा ऊंची थी, लेकिन फिल्म का फाइनल आउटपुट थोड़ा ओवरवेलमिंग रहा। ऑल्दो अगर आप ये मूवी देखने जाएंगे तो मे बी द पॉसिबिलिटी इज कि आपको ये मूवी अच्छी लगे, लेकिन क्रिटिक्स का, बाकी लोगों का जो मूवी को देखते हैं प्योर नॉट एंटरटेनमेंट बट एज अ क्रिटिक्स एज वेल, तो उनका ये कहना है कि फिल्म की जो रेटिंग है उसे 5 में से 3 मिलेगा। और मैं उम्मीद कर रहा था कि जब ये मूवी रिलीज होगी हाइप के अकॉर्डिंग इसे आराम से 4 या 4.5 मिल जाएगा, लेकिन इस मूवी को रेटिंग मिली है 5 में से 3। ये एवरेज रेटिंग कहलाती है। ये रेटिंग पूरी तरह से फिल्म के 2 हिस्सों में बटी हुई है। अगर सिर्फ पहले हाफ की बात करें तो आराम से 4 स्टार्स दिए जा सकते हैं, क्योंकि अक्षय की विंटेज कॉमिक टाइमिंग, जॉनी लीवर का अचानक आवाज खो देना वाला फन, और परेश रावल, राजपाल यादव की जो पागल बनती है वो बहुत ज्यादा एंटरटेन करती है। फर्स्ट हाफ का मेटा कॉमेडी कॉन्सेप्ट, जहां एक फ्लॉप फिल्म बनाने की साजिश होती है, बहुत फ्रेश और यूनिक लगता है ये सब। लेकिन फिल्म का सेकंड हाफ इस रेटिंग को नीचे गिराकर 2 स्टार पर ला देता है। एक तो CGI इफेक्ट अच्छा नहीं है, बिना किसी लॉजिक के चलने वाली एक्शन चेस सीन्स हैं, दिशा पाटनी, जैकलिन फर्नांडेस जैसे लीड्स के विस्टेड रोल्स फिल्म के स्टैंडर्ड को डाउन करते हैं, इसलिए दोनों हाफ्स को बैलेंस करते हुए ये फिल्म एग्जैक्ट 3 स्टार पर आकर रुकती है। ये रेटिंग बताती है कि फिल्म बिल्कुल खराब या फ्लॉप नहीं है, बल्कि ठीक ठाक मसाला पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट है। एक बार आप देख सकते हैं, अगर आप बिना दिमाग लाए दोस्तों के साथ सिर्फ टाइम पास करने के लिए जाना चाहते हैं तो ये 3 स्टार राइड आपके लिए एक बार देखने लायक जरूर है। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं, आप अपनी मर्जी से इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। इसके अगर आप ट्रेलर को देखेंगे ना, क्योंकि आजकल ट्रेलर ऐसा बनाया जा रहा है कि ऐसा लगता है यार क्या बोम्बास्टिंग मूवी आएगी बाबा, कुछ डायलॉग तो बड़े ही लाजवाब है। अच्छा, ट्रेलर का कुछ हिस्सा है वो सुनो।
1: पहले टॉप का हीरो था, अब ड्रॉप का हीरो, वेपन
2: आ रोलिंग, तो पैसों की बात कौन करेगा बताइए, कैसा दिया?
1: अबे ये क्या तरकारी लेने आया क्या?
3: और ये दो भाई, एक उदय का भाई और दूसरा मजनू का भाई, फिल्म में ये भी घुस पड़े।
4: ये कोई पेंटिंग है घोड़े के ऊपर गधा?
5: मैं बताता हूँ मेरी पेंटिंग, गधे के ऊपर घोड़ा।
6: पेंटिंग की सिक्वल पहली बार देख।
0: देखा, मैं कह रहा हूँ कुछ डायलॉग्स अच्छे हैं, कुछ के टाइमिंग अच्छे हैं, और अक्षय कुमार की तो बात देखो है ही निराली। लेकिन वही वाली बात हो जाती है कि मासूमियत में किसी के साथ कुछ परेशानी हो रही हो तो उसमें ज्यादा हंसी आती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब ये ह्यूमन

तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं मूवी की बाकी चीजों के बारे में, जैसे इस मूवी के बारे में फन फैक्ट क्या है। वेल, इस मूवी के बारे में एक सबसे यूनिक बात जो है वो मैं आपको बता दूं, ये स्टार कास्ट है। इतने ज्यादा बड़े स्टार थे कि मैं बता नहीं सकता। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इनका बहुत बड़ा था। फिल्म के सेट पर हर रोज का काम संभालना किसी मेला लगाने जैसा था भाई। एक नॉर्मल शूटिंग डे पर सेट पर एक साथ 34 मेन एक्टर्स, 50 वैनिटी वैंस, मतलब ये पहली बार एक तरह से माना जा सकता है, 50 वैनिटी वैंस, 250 गाड़ियां और तकरीबन 900 लोग मौजूद होते थे। डायरेक्टर अहमद खान ने खुद बताया कि इस फिल्म की शूटिंग मैनेज करना रोजाना एक मैसिव म्यूजिक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करने जैसा मुश्किल काम था। और इन लोगों को एक जगह इकट्ठा करना फिर भी आसान है, लेकिन इनके लिए गाड़ियां और उनकी पार्किंग, ये एक और जरूरत से ज्यादा बड़ा काम था जो रोज इनके मैनेजमेंट को, इनके

30 से ज्यादा मेन बॉलीवुड स्टार्स और 500 से ज्यादा बैकग्राउंड डांसर्स को एक साथ एक ही स्क्रीन पर डांस करवाया, जो बॉलीवुड हिस्ट्री के सबसे बड़े क्राउड डांस नंबर्स में से एक है। वो गाना कौन सा है? ये

0: उसके अलावा एक और फन फैक्ट है इस मूवी के बारे में, विच इज जो बड़े स्टार्स हैं उन्होंने अपनी फीस जो है वो छोड़ दी है फिल्म की शूटिंग के दौरान। बीच में कुछ बड़े बजटिंग इश्यूज और फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे जिसकी वजह से फिल्म रोकने की नौबत आ गई थी। ऐसे में लीड एक्टर्स जैसे कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी ने दोस्ती निभाई और प्रोडक्शन की मदद करने के लिए अपनी स्टैंडर्ड अपफ्रंट फीस लेने से मना कर दिया ताकि फिल्म का थिएट्रिकल काम बिना किसी रुकावट के स्मूथली पूरा हो सके। तो देखो ये दिल के तो अच्छे हैं, ये तो बात पता चल गई। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्टर विजन, कि डायरेक्टर का विजन क्या था इस मूवी को बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सी बातें होती हैं भाई, सिर्फ मूवी बनाना थोड़ा ही होता है, डायरेक्टर का अपना विजन होता है। अच्छा, यूनिकनेस इस मूवी में आपको जरूर मिलेगी, ये तो गारंटीड है। क्या यूनिकनेस है डायरेक्टर विजन में, सबसे पहले उसके बारे में डिसाइड कर लेते हैं। कॉम्बैट और कॉमेडी का कॉन्ट्रास्ट। डायरेक्टर अहमद खान का मेन विजन ये था कि वो एक बहुत ही अजीब कॉन्ट्रास्ट स्क्रीन पर दिखाएं। उन्होंने बताया कि अगर आप इस फिल्म को बिल्कुल म्यूट करके देखेंगे तो ये आपको एक बहुत ही सीरियस ग्रिटी कॉम्बैट और मिलिट्री एक्शन मूवी लगेगी, जहां एक्टर्स ने आर्मी गियर पहने हैं और हाथों में ऑटोमेटिक वेपन्स हैं। लेकिन जैसे ही आप वॉल्यूम ऑन करेंगे ये बिल्कुल एक पागलपंती वाली सटायर और मेटा नॉनसेंस कॉमेडी में बदल जाती है। कोई ईगो क्लैशेस नहीं, इतनी बड़ी मल्टी जनरेशनल स्टार कास्ट को एक साथ हैंडल करना आसान नहीं था, लेकिन अहमद खान का कोरियोग्राफर बैकग्राउंड उनके बहुत काम आया। उनको बड़े ग्रुप्स और क्राउड्स को मैनेज करने की आदत थी, इसलिए उन्होंने बिना किसी एक्टर के ईगो क्लैश के पूरी फिल्म शूट कर ली। उनका मकसद सिर्फ सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स थिएटर के लिए एक बहुत ही लाउड हाई एनर्जी सिनेमा एक्सपीरियंस बनाना था ताकि लोग बड़े पर्दे पर हंसें। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात कर लेंगे एक शॉर्ट स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में कि क्या है इस मूवी का प्लॉट, एंड देन वी गोना टॉक अबाउट क्रिटिक्स का क्या कहना है, भाई आपको मूवी देखनी है या नहीं देखनी है। डिस्कशन कर लेंगे परफॉर्मेंस पे कि परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रांग है कि देखी जाए या फिर छोड़ दिया जाए। वेल, इस मूवी को सिर्फ इसलिए आई गेस देखना चाहिए कि इसमें स्टार बहुत हैं और पहला हाफ अच्छा है। ठीक है, एक फिलहाल छोटा सा ब्रेक, एफएम 107 पे वापस कुछ ही देर में। दिल से देसी
1: एब्सोल्यूट सिनेमा,
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है एफएम 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा। एफएम 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड। सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ, सफा के साथ संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी, दिल से देसी।
3: मेहतराज ऐप अब अपने यूजर्स को ट्रैफिक वायलेशंस का पेमेंट करने की सहूलत न सिर्फ आसानी बल्कि बहुत मुफीद तरीके से फराहम करती है। आप सिर्फ ट्रैफिक विंडो में जाकर चंद आसान स्टेप्स फॉलो करके किसी भी किस्म के ट्रैफिक फाइन्स का पेमेंट कर सकते हैं, बिना किसी लाइन में खड़े हुए और बिना किसी ऑफिस जाए। ये डिजिटल फैसिलिटी न सिर्फ आपके कीमती वक्त की बचत करती है बल्कि ट्रैफिक लॉस के मुताबिक बर वक्त अदायगी का एक सीधा और आसान रास्ता भी मुहैया करती है। मेहतराज ऐप का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हर उम्र के अफराद के लिए बहुत आसान है और इसके जरिए आप अपनी व्हीकल्स की तफसीलात भी देख सकते हैं, अपने फाइन्स चेक कर सकते हैं और सिर्फ चंद टैप्स के जरिए आप अपने पेमेंट मुकम्मल कर सकते हैं। ये मॉडर्न सर्विस रियासत कतर की डिजिटल गवर्नेंस और पब्लिक कन्वीनियंस को बेहतर बनाने की तरफ एक अहम कदम है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। एफएम 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेज और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: Absolute cinema.
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो चल रहा है रिव्यू ऑफ द वीक, जहां पर हम बात कर रहे हैं वेलकम टू द जंगल मूवी के बारे में, जिसमें 30 से ज्यादा बड़े स्टार्स बॉलीवुड हैं। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिल्मिंग लोकेशन। इस मूवी की फिल्मिंग लोकेशन क्या है? सबसे पहले मुंबई का नकली जंगल। फिल्म का नाम वेलकम टू द जंगल है, इसलिए डेंस जंगल का माहौल दिखाने के लिए मुंबई में एक बहुत बड़ा सेट लगाया गया। प्रोडक्शन डिजाइनर शैलेश महादिक ने 9 एकड़ की जमीन को कन्वर्ट करके एक आर्टिफिशियल घना जंगल बनाया। ये शूटिंग मुंबई के फिल्म सिटी, रॉयल पाम्स, बोरीवली नेशनल पार्क और एरे कॉलोनी के अलग अलग हिस्सों में शूट की गई है। उसके अलावा एक और कुछ लोकेशंस हैं बड़ी खूबसूरत, जैसे कि कश्मीर और UAE के स्केड्यूल्स भी हैं। मुंबई के आर्टिफिशियल फॉरेस्ट साउंड स्टेजेस के अलावा फिल्म की शुरुआत की शूटिंग कश्मीर की हसीन वादियों में हुई है। भाई आप जब देखेंगे ना, फिल्म की शुरुआत जब होगी तब आप देखिएगा क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। उसके बाद पूरी जो कास्ट और क्रू है वो 15 दिनों के एक बड़े इंटरनेशनल स्केड्यूल के लिए UAE चले गए। वहाँ उन्होंने हाई ऑक्टेन चेज सीन और बड़े गाने जैसे कि अबू धाबी में, दुबई में, रास अल खैमा में प्रीमियम लोकेशन पर शूट किए। तो वहाँ पर भी काफ़ी लंबा जो है काम रहा है, काफ़ी लंबे वक्त तक रहे हैं। अब बात कर लेते हैं एक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन, लुक्स या चेंजिंग क्या है। वैसे बहुत कोई यूनिकनेस नहीं थी इस मूवी के कैरेक्टर को लेकर, लेकिन अक्षय कुमार का जो भोजपुरी लुक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अक्षय कुमार ने इस फिल्म में अपने रेगुलर क्लासी और सोफेस्टिकेटेड लुक को छोड़कर एक बिल्कुल अलग अवतार अपनाया। वो फिल्म में एक लार्जर देन लाइफ और लाउड भोजपुरी फिल्म स्टार का रोल प्ले कर रहे हैं। अब यहीं से पता चल जाता है कि इस फिल्म में काफ़ी यूनिकनेस, फनी चीज़ें होंगी, फनी एलिमेंट्स होंगे, उसके अलावा स्क्रिप्ट अच्छी ऑटोमेटिक हो जाएगी और फिर अक्षय कुमार हैं तो उनकी जो डिलीवरी है वो लाजवाब हो ही जाती है। अक्षय के इस लुक के लिए उन्होंने बहुत ही चमकीले और वाइब्रेंट कपड़े पहने हैं, जो कि ऑब्वियसली ज़रूरी था, और लोकलाइज्ड भोजपुरी डायलेक्ट सीखी है, बोलचाल सीखी, और उन पर एक अजीब सॉन्ग घिस घिस घिस भी शूट किया गया है। तो ये भी एक यूनिक बात तो हो ही जाएगी भाई साहब। अच्छा, अक्षय के कुछ सीन्स यहाँ पर हम जरा देखते हैं। अक्षय के कुछ डायलॉग्स जो है वो हम देख लेते हैं, ट्रेलर से हमें क्या कुछ मिला है वो सुनिए।
3: चलो तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं।
4: वो कांता भाई फटके मारने ना तो जमीन पे मार, इधर
3: तो वैसे तो तेरा थोबड़ा भी गंदा है, उसे लगाऊंगा।
2: अब जब अक्षय की बात होगी तो यार इस तरह के डायलॉग तो देखो होंगे, और उनकी डायलॉग डिलीवरी मुझे नहीं लगता उनकी जैसे डायलॉग डिलीवरी अभी किसी की भी है बॉलीवुड में अगर हम देखें तो। उसके अलावा जैकलीन के बारे में बात कर लें, उनका होना कोई ऐसा खास रीज़न नहीं था, वो ट्रेलर में ही कहा जा रहा है कि मैं किस लिए हूँ, आपका काम बस कोई खास काम नहीं है, बस आपका होना ज़रूरी है मूवी में। ये डायलॉग भी आप ट्रेलर में भी देखेंगे उसमें भी कहा गया। जैकलीन फर्नांडिस ने इस मूवी के लिए एक बहुत ही बड़ा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया, उन्होंने अपने बालों को पूरी तरह बदल कर एक पेरिस हिल्टन स्टाइल ब्लॉन्ड लुक अपना लिया है, बहुत ही क्रिएटिव। ये क्रिएटिव आइडिया खुद डायरेक्टर अहमद खान और अक्षय कुमार का था, ताकि उनका कैरेक्टर बाकी कास्ट से बिल्कुल अलग और थोड़ा केओटिक कॉमेडी वाइब्स देने वाला लगे। तो ऐसा तो कोई यूनिक नहीं था, लेकिन वो होता है ना कि भाई एक्टर ट्रांसफॉर्मेशन तो करना पड़ेगा कुछ। उसके अलावा सिनेमाटोग्राफी और साउंड के बारे में हम बात करें तो वाइड एंगल फ्रेमिंग जो है इस पूरे मूवी में रखी गई है, क्योंकि एक एक सीन में 20 से 30 एक्टर्स मौजूद होते थे, इसलिए डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी यानी कि सिनेमाटोग्राफर ने बहुत ज़्यादा वाइड एंगल लेंसेज का इस्तेमाल किया। कोशिश ये थी कि एक ही स्प्रॉलिंग ग्रुप फ्रेम में ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर्स और उनके एक्सप्रेशंस को कैप्चर किया जा सके। ये स्केल देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन एक्शन सीन्स में फ्रेम बहुत ज़्यादा मैसी और बिखरा हुआ लगने लगता है।
5: फिर उसके बाद ये भी है ना कि एक ही स्क्रीन में आप इतने एक्टर्स देखेंगे तो आपका मन है कि कितने एक्टर्स को आप देखेंगे, तो आप किसी एक को नोटिस ही नहीं कर पाएंगे, उनके एक्सप्रेशंस को, उनके डायलॉग्स को नोटिस नहीं कर पाएंगे। एक फ्रेम में आपके पास 100 कार हो या आप कहीं कार देखने जाएं, आपको 100 कार दिखा दी जाए, आप मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार कौन सी लूं, है ये तो 4x4 है लेकिन इसका इंटीरियर अच्छा नहीं है, यार इसका इंटीरियर अच्छा है लेकिन 4x4 नहीं है, यार इसका इंटीरियर अच्छा है लेकिन ये गाड़ी में वो पावरफुल नहीं है, यार इसके जो रेटिंग्स हैं वो अच्छी नहीं है, फिर उसके बाद यार इसका इंटीरियर और आउटसाइड दोनों अच्छा है लेकिन इसकी पेंट के बड़े मसले आते हैं। तो इतने इतने ज्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे तो फिर आपका मन डगमगा जाएगा, इतने ऑप्शन देने नहीं चाहिए। तो ये एक मसला रहा है। उसके अलावा जो लाउड और स्लैपस्टिक साउंड मिक्स है वो भी इस मूवी की यूनिकनेस रही है। फिल्म का साउंड डिजाइन पूरी तरह से 2000s की अर्ली कमर्शियल मसाला मूवीज जैसा है। इसमें बहुत ज्यादा लाउड स्लैपस्टिक ऑडियो क्यूज, बैकग्राउंड पंच साउंड्स और बॉम्बास्टिक म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया है। डायलॉग डिलीवरी बहुत ज्यादा फास्ट है और बैकग्राउंड स्कोर इतना लाउड रखा गया है ताकि थिएटर में बैठे लोग हाई डेसिबल एनर्जी फील कर सकें। हालांकि कुछ सीन्स में ये जो तेज आवाज है ना, ये कान में चुभती हुई सी लगती है, आपको इरिटेट करती है। तो ये सारी चीजें हैं, ऑल दो हमने सारी चीजें कवर कर ली इस सीन में, सिनेमाटोग्राफी, एक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन, फिल्मिंग का लोकेशन, डायरेक्टर का विजन एंड कुछ फैक्ट्स के बारे में हमने बात करी कि भाई इतने सारे स्टार्स आते थे, उनको मैनेज करना मुश्किल था, उससे बड़ा काम था उनकी कार को पार्क कहाँ किया जाए। इतने ज्यादा तो लोग थे, वैनिटी वैन 30 से ज्यादा, फिर गाड़ियां इतनी ज्यादा, 900 लोग एक बार में एक जगह पे होना तो बड़ा मुश्किल था। लेकिन इस मूवी का प्लॉट क्या है उस पर बात कर लेते हैं। एक तो फ्लॉप फिल्म का प्लान, सबसे बड़ा प्लॉट, एक बहुत अमीर और करप्ट कॉरपोरेट बिजनेसमैन है जिसका नाम है सिन्हा। उसे पता चलता है कि उस पर इनकम टैक्स की बड़ी रेड पड़ने वाली है। अपना काला धन यानी कि ब्लैक मनी लीगल तरीके से छुपाने के लिए वो एक अजीब और खुराफात प्लान बनाता है। और फिर सबसे बुरा क्रू, सिन्हा एक बिल्कुल बेकार और अजीब या घटिया फिल्म बनाने का फैसला करता है ताकि 2000 करोड़ का बिजनेस लॉस दिखाकर अपना सारा टैक्स बचा सके। इस बेकार फ्लॉप मूवी को बनाने के लिए वो दो सबसे यूजलेस डायरेक्टर्स जैसे कि परेश रावल और राजपाल यादव और एक वॉस्ड अप फ्लोर एक्टर यानी कि अक्षय कुमार को हायर करते हैं। ये फिल्म की बारे में बात हो रही है, ठीक है, ये असलियत में नहीं। उसके बाद जो आगे की प्लॉट लाइन है वो है असली डेंजर, जैसे कि फिल्म की शूटिंग के लिए ये पूरी क्लूलेस पलटन एक जंगल के पास वाले रिमोट विलेज में चली जाती है। वहां अचानक कुछ असली डेंजरस लोग जो हैं वो आ जाते हैं आर्म्ड। तो ये फिल्म में जो फिल्म बन रही है उनके जो एक्टर्स हैं वो वहां के बवाल करने वाले लोगों को असल में जूनियर आर्टिस्ट समझ लेते हैं, उन्हें डोमिनेट करने लगते हैं और मासूम गांव वाले इन एक्टर्स को असली इंडियन आर्मी समझ बैठते हैं। बस यहीं से असली हंगामा शुरू होता है। ये सेकंड हाफ का सीन है, ऑल्दो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बट कई लोगों को पसंद भी आ सकता है। लेट्स टॉक अबाउट दी परफॉर्मेंसेस जो लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अक्षय कुमार के बारे में जो राजीव कोहली है। अक्षय कुमार इस फिल्म के सबसे बड़े एंकर और जान है। उन्होंने बहुत सालों बाद ऐसी जबरदस्त विंटेज कॉमिक टाइमिंग दिखाई। उनकी फिजिकल कॉमेडी और अपने हाई रियल लाइफ करियर चॉइसेस पर मजाक उड़ाने वाले सेल्फ अवेयर मेटा जोक्स ऑडियंस को बहुत ज्यादा हंसाते हैं। कई मूवीज बीच में उनकी फ्लॉप गई हैं तो उस फ्लॉप मूवीज का इस मूवी में बहुत ज्यादा मजाक उड़ा है, तो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जॉनी लीवर के बारे में बात कर लेते हैं दुबे जी। जॉनी लीवर ने फिल्म के सबसे बेस्ट और ओरिजिनल कॉमेडी सीन्स दिए हैं। फिल्म में उनका एक रनिंग गैग है जहां वो ज्यादा एक्साइट या स्केयर होने पर अपनी आवाज बिल्कुल खो देते हैं और अजीब इशारे करते हैं जो देखने में बहुत ही मजेदार लगते हैं। ये भी एक यूनिक चीज है ना। सुनील शेट्टी और अर्शद वारसी के बारे में बात करें तो ये दोनों पुराने वेलकम फिल्म के यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं और उदय मजनू के भाई बने हैं। इन दोनों की आपसी नोकझोंक, डायलॉग्स, नॉस्टैल्जिक केमिस्ट्री देखकर पुरानी वेलकम वाले जो दिन हैं वो याद आ जाते हैं। परेश रावल और राजपाल ने भी बम्बलिंग डायरेक्टर्स के रूप में बहुत एनर्जी डाली है। क्योंकि फिल्म में 30 से ज्यादा बड़े एक्टर्स हैं इसलिए कृष्णा अभिषेक, श्रेयस तलपड़े और यशपाल शर्मा जैसे ब्रिलियंट कॉमेडी स्टार्स को कुछ खास करने का मौका नहीं मिला। वो बस क्राउड बढ़ाने के लिए पीछे खड़े नजर आते हैं। लीडिंग लेडीज का रोल दिशा पाटनी, जैकलीन के पास एक्टिंग के नाम पर जीरो कंटेंट था। दिशा का तो पहले हाफ में कोई ढंग का डायलॉग भी नहीं था और जैकलीन को बस पेरिस हिल्टन जैसा ब्लॉन्ड लुक देकर स्क्रीन पर ग्लैमर ऐड करने के लिए रखा गया है। ये खुद बात कही भी है, मतलब फिल्म में, कि मैं किस लिए हूं, तो बताया गया इसलिए आप। तो ये ओवरऑल कुछ चीजें हैं। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रिटिक्स, के क्रिटिक्स का क्या कहना है। अनुपमा चोपड़ा, अगर लोगों को पता है तो पता है, उन्होंने अपने रिव्यू में कहा है कि फिल्म का कोर कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार और हॉलीवुड की मशहूर फिल्म ट्रॉपिक थंडर जैसा सटायरिकल था, लेकिन स्क्रिप्ट इतनी बिखरी हुई है कि मजा खराब हो जाता है। उनके मुताबिक डायरेक्टर ने सब कुछ एक साथ डाल दिया, अजीब CGI, गोरिल्ला सीन, बवाल करने वाले लोग जो जंगल में होते हैं, इमोशनल विलेजर्स, जिसकी वजह से फिल्म स्पार्कलिंग लगने के बजाय यू नो बहुत ज़्यादा बेकार और स्लैपडैश जिसे कहते हैं वो लगने लगती है। अनुज कुमार का कहना है कि डायरेक्टर अहमद खान ने एक प्रॉपर जुड़ी हुई फिल्म बनाने के बजाय इसे 164 मिनट का वैरायटी शो बना दिया। ये मूवी कम और सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने वाले 30 सेकंड के रील्स और क्लिप्स का एक लंबा कलेक्शन ज्यादा लगती है। अच्छा, ये भी कभी कभार दिमाग में आता भी है, क्योंकि कई ऐसे मीम्स हुए हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं पुरानी फिल्मों से, तो डायरेक्टर्स भी बहुत ज्यादा अब ना फोकस करने लगे हैं कि बस कोई ऐसे डायलॉग हो, कोई ऐसे सीन हो जो बहुत ज्यादा एज अ रील फेमस हो जाए, उस फेमस रील की वजह से उनकी मूवी चल जाए। ये आजकल एक्चुअली लोग बात भी करने लगे हैं और कुछ डायरेक्टर्स पॉडकास्ट में इस बात को बता भी चुके हैं। एंड नाउ एक और क्रिटिक्स हैं, शुभ्रा गुप्ता जिनका नाम है, उनका कहना है कि फिल्म अपने हैवी कास्ट की वजह से बहुत ज़्यादा बोझ तले दब गई है। शुरुआत में तो स्लैपस्टिक जोक्स पर हंसी आती है, लेकिन सेकेंड हाफ में कॉमेडी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और ज़बरदस्ती की बॉर्डर एक्शन, चेस सीक्वेंसेस, देशभक्ति शुरू हो जाती है जो ऑडियंस को बहुत ज़्यादा बोर कर देती है। तो ये कुछ बातें दोस्तों जो लोगों को लगी। अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के वर्डिक्ट के बारे में कि क्या भाई इस मूवी को देखना है कि नहीं देखना है, क्या करना है। टिकट तो हमने खरीद लिया, अगर आपने टिकट खरीद लिया ऑब्वियसली ये मूवी बुरी नहीं है, क्योंकि शुरुआत में भी हमने कह दिया कि इसको 5 में से 3 स्टार मिल चुके हैं। तो अगर किसी मूवी को 5 में से 3 स्टार मिले हैं तो वो ऑब्वियसली बड़ी अच्छी है। और वैसे भी फर्स्ट हाफ के लिए इसे 5 में से 4 मिले हैं और सेकेंड हाफ के लिए 5 में से 2 मिले हैं, तो ओवरऑल 5 में से 3 स्टार लेकर आई है। तो मुझे लगता है अगर आपने टिकट खरीद लिए तो वो जाया नहीं जाएगी किसी भी हाल में। तो चलिए बात कर लेते हैं वर्डिक्ट के बारे में। वेलकम टू द जंगल, ये मूवी एक प्योर ब्रेन रॉट स्लैपस्टिक और टाइम पास एंटरटेनर है। पहला हाफ इसे कहेंगे पैसा वसूल। अक्षय कुमार की कमाल की कॉमिक टाइमिंग, जॉनी लीवर के गैग्स और स्टार्स स्टडर्ड मेटा कॉमेडी आपको बहुत ही ज्यादा हंसाएंगे। सेकंड हाफ के बारे में बात करें, ये सरदर्द है। जंगल में जाते ही कॉमेडी खत्म हो जाती है और फिर बड़ा घटिया CGI, गोरिल्ला उसमें आएगा, खराब एक्शन है, जबरदस्ती की देशभक्ति फिल्म को बहुत लंबा और बोर बना देती है। अच्छा, आजकल ये भी एक चलने लगा है ना कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कोई एक ऐसा एलिमेंट डाल दो जो लोगों के दिलों को छू जाए, और वो फिजूल का, जबकि फिल्म का काम है ही नहीं कि लोगों के दिलों को छूना। फिल्म का काम है कि आप एंटरटेनमेंट के पर्पस से आए तो आप एंटरटेन करें। उसके अलावा हमने बात करी फिल्मिंग लोकेशन के बारे में, जो कि शूट हुई मुंबई में, कश्मीर में, UAE में, अबू धाबी, दुबई और रास अल खैमा में शूट हुई। उसके अलावा अक्षय कुमार जो दिखे हैं वो भोजपुरी अवतार में दिखे हैं, जैकलीन और दिशा का कोई ऐसा कोई खास काम था नहीं। सिनेमाटोग्राफी के बारे में हमने बात करी, सब कुछ कवर कर लिया। अब इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। अब नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी एक नए मूवी के बारे में बात करते हुए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई कोई ऐसी मूवी के बारे में बात करो जो अंग्रेजी हो या आपकी मर्जी की मूवी हो जिसकी रिव्यू आप सुनना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6667 और कॉल भी कर सकते हैं, नंबर है 4434377। उसके अलावा

0: और बात जो कि बड़ी लाजमी है वो ये कि आप हमें हर जगह फॉलो भी कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जैसे कि आप हमें टिकटॉक पे, फेसबुक पे और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपको ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, FM 107 कतर डालिए किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आपको हमारा नाम, हमारा ऑफिशियल पेज आसानी से मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर भी हम FM 107 के नाम से मौजूद हैं, साथ ही टिकटॉक पर भी हम मौजूद हैं और फिर हम फेसबुक के साथ साथ यूट्यूब पर भी मौजूद हैं। FM 107@FM107 कतर, बस इतना डालिए और हमें ढूंढ लीजिए। तब तक मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी फिर इसी एपिसोड में। दिल से देसी,
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: خوش رايك صح.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. लॉग इन टू आवर वेबसाइट urduradio.qa और डाउनलोड द ऐप QMC नाउ.
2: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से. तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए. प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा. हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी. हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी. दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार.

0: कहते हुए सुना होगा कि इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है। अब रोजे अव्वल से तकदीर लिखी जा चुकी है, अच्छी या बुरी, तो इंसान उसे कैसे बदल सकता है। आपने मोहर तो देखी होगी, मोहर पर दर्ज अल्फाज उल्टे लिखे होते हैं और जब किसी कागज पर हम वो मोहर लगाते हैं तो अल्फाज सीधे हो जाते हैं। याद रखिए, तकदीर भी इंसान के माथे पर मोहर की तरह है और इस मोहर को सीधा सिर्फ हमारे सजदे ही कर सकते हैं। और यूं भी तकदीर में जो लिखा है लिखने वाले के लिए यानी अल्लाह ताला के लिए उसको बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी और अपने खानदान की बेहतरी के लिए अल्लाह ताला के हुजूर सजदारीज होकर दुआ कीजिए। सजदे की हालत में मांगी गई दुआएं अक्सर कबूल होती हैं।
1: पैगाम ऑन FM 107।

0: like, you know, look into the customer preferences, you know, which keeps on changing. There are new models coming, which are practically possible to include in our fleet. We do that. Now it's the era of the Chinese vehicles. We have included the Chinese brands also in our fleet. So basically, depending on the customer preferences, that section is also being looked into.
1: Being into a leadership role, how do you you motivate your team and you maintain that strong performance in fast-paced and this competitive industry? What do you do? Are there training sessions and how frequently you interact with your team?
0: So training is there in every company. The best part is that, you know, you need to have one-on-one, conversations with them. Group is good, it's needed, but I would say that, you know, with everyone, personal one-on-one interaction is always better, and you need to have the comfort level with them.
1: To the team members, that's top priority.
0: Like you can tell them anything. They are also free to come and speak to you regarding any problems that they have or the issues that they are facing. So they should feel free.
1: They should be given this much of liberty. Right. Okay, Mr. Zaid, tell me, how do you see the role of, you know, the rental car companies evolving in next 5 to 10 years?
0: It will increase only. It will increase. It should, yeah. I'm not too sure about which all categories, but it is there to stay and it is there to increase.
1: Okay. Now coming to the closing question, the final one. What advice would you like to give to someone who wants to start a car rental business today?
0: You should do proper groundwork before starting. Mm-hmm. You should analyze the customer budget, the preferences which are changing. Mm-hmm. The vehicle prices are fluctuating. The availability issues are there. So, you know, whatever you do, it should take all these factors into consideration. And first and foremost, like, you know, you should be sincere to yourself and the stakeholders. Stakeholders means your partners and your staff. And, you know, work hard and believe in yourself. And inshallah, everything will fall into space.
1: That's really a very valuable advice. Thank you so much, Mr. Zaid, for sharing your valuable insight with us today. And it was truly a pleasure having you on Qatar Business 360. Thank you once again. वेल दोस्तों, आज हमने जो है वो बात की मिस्टर जैद उस्मान से और जानने की कोशिश की कि किस तरह से रेंटल कार बिजनेस जो है वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है कि नहीं है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है. वैसे एक चीज़ तो हमें और आपको समझ में आ ही गई कि आज के इस मॉडर्न और फास्ट पेस जमाने में लोग जो हैं वो कन्वीनियंस और फ्लेक्सिबिलिटी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. अब हम अपने आप को ही देख लें, है ना, हमें भी तो कन्वीनियंस चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए. और शायद इसी सोच के चलते रेंटल कार बिजनेस दुनिया भर में तेजी से ग्रो कर रहा है. जी हाँ, और कतर जैसे मुल्क की बात की जाए तो यहाँ ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रेंटल कार बिजनेस का एक सिंपल सा आइडिया ये है कि आप लोगों को टेम्परेरी बेसिस पर गाड़ी प्रोवाइड की जाए. कोई बाइक का सेलिंग का आपके ऊपर कोई हेडेक नहीं, कुछ नहीं. चाहे फिर वो एक दिन के लिए हो, या फिर एक वीक के लिए हो, या फिर एक महीने के लिए हो. इसमें कस्टमर्स को गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो जरूरत के मुताबिक उसे यूज या इस्तेमाल कर सकते हैं. कतर में भी ये इंडस्ट्री काफी फास्ट ग्रो कर रही है, खास तौर पे टूरिज्म और बिजनेस ट्रैवल की वजह से. यहाँ पे मिस्टर जैद उस्मान जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके फादर अर्ली 60-61 में यहाँ पर कतर आ गए थे. उसके बाद एक पर्टिकुलरली एक ग्रुप के साथ एसोसिएट किया, वहां पर जुड़ के उन्हें पता चला कि किस तरह से जो और दूसरे कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड ये रहती थी कि क्या कोई गाड़ी अवेलेबल है जो रेंट पे वो ले लें कुछ वक्त के लिए और फिर उसे वापस कर दें. तो ये एक छोटी सी क्वेरी कह सकते हैं, या छोटा सा कोटेशन जो था उस वक्त, इस तरह से जहन में इनके हिट हुआ इनके फादर के, इन्होंने अपना रेंटल कार बिजनेस स्टार्ट किया. अब कतर की बात की जाए तो कतर जो है एक रैपिडली डेवलपिंग कंट्री है, जहां टूरिज्म तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपैक्ट पॉपुलेशन यहाँ बहुत ज्यादा है, बिजनेस एक्टिविटीज कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट्स यहाँ पर होते ही रहते हैं. और शायद इसी वजह से लोग टेम्परेरी ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस प्रेफर करते हैं. रेंटल कार इंडस्ट्री लोगों को कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी देती है, कन्वीनियंस प्रोवाइड करती है और कॉस्ट सेविंग भी होती है. ये इंडस्ट्री कतर की इकोनॉमी का भी एक स्ट्रॉन्ग पिलर है और विजन 2030 के अंडर भी मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का

रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट है. देखिए, अगर मैं इस पर्टिकुलर बिजनेस की बात करूँ, थोड़ा सा और मैं आपको समझाऊँ, तो रेंटर कार बिजनेस के बहुत सारे फायदे हैं. एक तो हाई डिमांड और स्टेबल मार्केट है. रेंटा कार की डिमांड हर वक्त ही रहती है. टूरिस्ट को ट्रैवल के लिए, बिजनेस लोगों को मीटिंग्स के लिए, रेजिडेंट्स को टेम्परेरी यूज के लिए, और शायद इसी वजह से बिजनेस जो है वो रिलेटिवली कहा जा सकता है कि स्टेबल है. वहीं पर बार बार इनकम होती है, रीअकरिंग इनकम भी होती है. अगर आपके पास फ्लीट है, यानी बहुत सारी कार्स है, तो हर गाड़ी मल्टीपल कस्टमर्स यूज कर सकते हैं, है ना. आप एक ही एसेट, जो आपकी एक गाड़ी है वो एक एसेट है, उसे बार बार पैसा कमा सकते हैं. ये एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल भी है, जैसे गवर्नमेंट लगातार प्रमोट कर रही है. फिर एक और चीज जो मेरे और आपके जहन में आनी ही चाहिए, वो है कि ये मॉडल जो है बिजनेस का काफी फ्लेक्सिबल है. आप अपना बिजनेस डिफरेंट तरीके से चला सकते हैं. आई मीन टू से, शॉर्ट टर्म रेंटल्स, या फिर लॉन्ग टर्म लीजिंग्स, या फिर यू नो कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट्स, या फिर लग्जरी कार रेंटल्स. इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आप डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स टारगेट भी कर सकते हैं. इसके साथ अगर देखा जाए तो कतर में, जैसे हम और आप जानते हैं कि टूरिज्म ग्रो कर रहा है, और यहाँ पर टूरिज्म ग्रो जो है वो डायरेक्टली रेंटल कार इंडस्ट्री को बेनिफिट करती है. जितना ज्यादा यहाँ टूरिस्ट आएंगे, उतने ज्यादा रेंटल कार की डिमांड्स भी होंगी. वहीं ये बिजनेस स्केलेबल बिजनेस भी है. आप छोटे स्केल से शुरू कर सकते हैं, यानी 2-3-5 कार से स्टार्ट कर लिया और फिर ग्रेजुअली आपने उसको एक्सपैंड कर लिया. वहीं पर एक और चीज जो हमें और आपको समझने की जरूरत है इस बिजनेस के हवाले से, जो हमारे गेस्ट ने भी बताया, वो ये कि डिजिटल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को आपको ग्रैब करना है. ऑनलाइन बुकिंग और एप्स की वजह से कस्टमर्स जो हैं वो इजली गाड़ी आसानी से घर बैठे बुक करते हैं. बिजनेस ऑटोमेट हो जाता है. आजकल ज्यादातर मैं कह सकती हूँ बुकिंग्स, जैसे हमारे गेस्ट ने भी बताया, कि ऑनलाइन ही होती है. वहीं देखिए, इतने सारे फायदे तो मैंने आपको गिना दिए. ऐसा नहीं है कि इस बिजनेस के अपने चैलेंजेस नहीं है. सिर्फ ये एक बहुत ही अच्छा, हेल्दी, प्रॉफिटेबल, स्टेबल बिजनेस है. लेकिन फिर भी इस बिजनेस के कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए. ये बिजनेस सस्ता नहीं होता. कार खरीदनी होती है, इंश्योरेंस लेना होता है, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी होती है. जहां इन्होंने बताया कि इनका खुद का अपना इन्होंने गैरेज भी सेटअप किया, क्योंकि गाड़ियों की मेंटेनेंस तो फ्रीक्वेंटली होगी ही होगी. अब जब लोग इतना फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, तो उसको उस तरह से मेंटेन भी करना है. तो ये सारी चीजें भी आपके ऊपर ही आ जाती हैं. वहीं पर मेंटेनेंस और सर्विस कॉस्ट एडिशनली इस बिजनेस के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है. गाड़ी की रेगुलर सर्विसिंग बड़ी जरूरी है. फिर टायर्स की हो देखभाल, ऑयल चेंज करना है, रिपेयर करना है. अगर आपने मेंटेनेंस को इग्नोर किया, तो कस्टमर एक्सपीरियंस खराब हो सकता है. और यहाँ पे जो ये बिजनेस है वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे चलता है, ट्रस्ट पे चलता है. एक बार खराब हो गया नाम मार्केट में आपका, फिर क्लाइंट्स शायद धीरे धीरे जो है वो आपसे हटते चले जाए. वहीं कतर की बात करें, तो कतर में बहुत सारी लोकल और इंटरनेशनल कंपनीज ऑलरेडी काम कर रही हैं. तो ऐसा नहीं है कि इस बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स नहीं है. टफ कॉम्पिटिशन है, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन है. प्राइसिंग प्रेशर भी होता है, डिफ्रेंसिएशन बड़ा ज़रूरी हो जाता है खुद को स्टैंड आउट करने के लिए. वहीं पर एक तरह से कुछ चीज़ों में मैं कह सकती हूँ सीजनल डिमांड्स भी हैं. कुछ मंथ्स में डिमांड जो है वो हाई है, यानी जो टूरिज्म सीजन होते हैं, और कुछ में होता है कि काफ़ी कम होती हैं. तो इसमें भी एक गुड बैलेंस बनाए रखना बड़ा इम्पॉर्टेंट है. कस्टमर्स जो हैं वो कभी कभी गाड़ी डैमेज कर देते हैं, या फिर होता है कि वो यू नो लेट रिटर्न कर रहे हैं. इसलिए रिस्क मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है. कई बार एक्सीडेंट हो गया, वो सारे इश्यूज भी आते हैं, जिसके लिए आपको पैरेलली मेंटली खुद को प्रिपेयर भी रखना है. फिर अगर हम कतर की ही बात करते हैं, तो कतर में लाइसेंसिंग रूल्स हैं, इंश्योरेंस लॉज हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं. इन सारी चीज़ों को फॉलो करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं. अब मान लीजिए कि इन सारी चैलेंजेस के बावजूद भी कतर में आप जो है वो रेंटल कार बिजनेस स्टार्ट करना ही चाहते हैं, जैसे मैंने अपने गेस्ट से भी पूछा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने वाजे की वो ये कि रिसर्च और प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले मार्केट रिसर्च करिए. टारगेट कस्टमर्स कौन से हैं आपके, डिमांड किस टाइप की कार्स की है, कॉम्पिटिटर्स क्या ऑफर कर रहे हैं. ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसी बिजनेस में नहीं बल्कि सारे बिजनेसेस में. फिर आप जानते हैं कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन.

वो आपको पता ही है कमर्शियल रजिस्ट्रेशन है ट्रेड लाइसेंस है लेने होते हैं और ये प्रोसेस जो है वो लीगल कंप्लायंस के लिए बड़ा जरूरी भी है उसके साथ ये आपको डिसाइड करना है कि आप कौन कौन सी कार्स जो है वो चूज करना चाहते हैं इकोनॉमी कार्स हैं यानी चीप ऑप्शन आपको रखने हैं SUVs रखनी है फैमिली के लिए रखनी है या लग्जरी कार्स रखनी है आपको जो कभी आपको अगर प्रीमियम कस्टमर्स मिलते हैं तो कुछ ना कुछ आपको वैरायटी तो रखनी ही है वहीं पर डिफरेंट टारगेट्स करना बहुत ज़्यादा यू नो डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स को टारगेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप एक तरीके के टारगेट लेके चलते हो तो शायद आप जो है उस तरह से ग्रो नहीं कर पाते तो ये भी आपको देखना है ये चीजें भी रखनी है फिर हर गाड़ी का फुल इंश्योरेंस कराइए ड्राइवर की पॉलिसीज जो हैं वो सारी चीजें ड्राइवर के लाइसेंस वगैरह की भी कई बार आपको ही देखनी पड़ जाती है चीजें तो ये सारा बड़ा प्रॉपर होना चाहिए फिर आपका ऑफिस कहाँ हो आइडियली मतलब कोशिश ये कीजिए कि लोकेशन जो है या सेटअप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे तो आज का दौर ऑनलाइन दौर है डिजिटल दौर है लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि आपका जो ऑफिस है जो भी आप बनाते जहाँ भी वो एयरपोर्ट के आसपास हो या फिर यू नो होटल्स के आसपास हो या बिजनेस एरियाज हैं जैसे वेस्ट वे है तो यहाँ पर क्या होगा कि डिमांड आपकी हाई रहेगी लोगों को पता जल्दी चलेगा और आपका जो है वो बिजनेस अच्छे से ग्रो भी करेगा फिर आपको अपने कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग को रखना होगा मतलब प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पर बड़ा समझदारी से काम करना होता है डेली रेट्स को मॉनिटर करना वीकली पैकेजेस को बनाना फिर मंथली डील्स जो भी हो सकती हैं वो सारी आपको खुद इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपका इस तरह का बिजनेस जो है वो ग्रो करे वहीं पर मॉडर्न बिजनेस के लिए आज के टाइम में ना डिजिटल प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है यानी आपकी एक प्रॉपर वेबसाइट हो मोबाइल बुकिंग सिस्टम हो व्हाट्सएप बुकिंग हो ये सारी चीज़ें आज के टाइम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अलावा मार्केटिंग कहने को तो कहते हैं लोग अरे अभी क्या ही जरूरत है इस तरह के बिजनेस में लेकिन हाँ प्रमोशन जरूरी है फिर चाहे सोशल मीडिया पे हो या फिर आप किसी भी ट्रैवल एजेंट के साथ कनेक्ट हो सकते हो या फिर आप हाँ कोलैबोरेशन कर सकते हैं किसी भी होटल इंडस्ट्री के साथ किसी भी होटल पार्टनरशिप्स उस तरह के जो होते हैं ऑफर्स वो भी आप कर सकते हैं उससे भी आपका फायदा होगा लेकिन एक चीज जिस पे आपको कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना अगर आप अपना बिजनेस चाहते हैं कि वो कामयाब हो उसका सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र ये है कि सक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है गुड कस्टमर एक्सपीरियंस सर्विस यहाँ पे फास्ट होनी चाहिए कार एकदम क्लीन साफ होनी चाहिए और बुकिंग आसान होनी चाहिए वहीं पर अगर आप सोचते हैं कि मैं अपने इस बिजनेस को स्टार्ट करके सस्टेन कर चुका हूँ ठीक ठाक पोजीशन में आ चुका हूँ मुझे अब इसे एक्सपैंड करना है तो अपनी फ्लीट इंक्रीज करने पर भी ध्यान देना होगा कई नई लोकेशंस पर सोचना होगा और जो बड़े बड़े कॉरपोरेट क्लाइंट्स हैं उन्हें हर हाल में ऐड करना ही करना है देखिए रेंटल कार का जो बिजनेस कतर में है काफ़ी प्रॉमिसिंग है टूरिज्म तो ग्रो कर रहा है मैंने आपको बताया ईवी कार्स आएंगी डिजिटल सिस्टम और ज़्यादा इंप्रूव होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्मार्ट मोबिलिटी फ्यूचर का हिस्सा बन चुके हैं और कंपनीज ये इन्हें अडॉप्ट करना ही करना है तो ऐसे में अगर थोड़ी सी समझदारी से थोड़े से अच्छे से होमवर्क के साथ आप मार्केट में एंटर करते हैं और इस तरह के बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं या फिर स्टार्ट करना चाहते हैं देन व्हाई नॉट कार रेंटल बिजनेस एक स्ट्रॉन्ग और प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है लेकिन ये तभी होगा जब आपकी प्लानिंग स्ट्रॉन्ग हो आपकी सर्विस क्वालिटी हाई हो और आपकी मार्केट अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफी क्लियर हो इस बिजनेस में ना अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है और चैलेंजेस भी बहुत है जो लोग स्मार्ट स्ट्रैटेजी और इनोवेशन अडॉप्ट करते हैं वो इस इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करते हैं अगर आप चाहते हैं कतर जैसे मार्केट में इस बिजनेस को स्टार्ट करना तो आप एक ग्रोइंग सेक्टर का हिस्सा बन सकते हैं जो फ्यूचर में और भी ज्यादा प्रॉमिसिंग और एक्सपैंड होने वाला है जैसे हमारे गेस्ट ने भी बताया कि फ्यूचर काफी प्रॉमिसिंग है जो मैंने पूछा भी इसीलिए बस मैं तो यही कहना चाहूंगी कि रेंटल कार बिजनेस सिर्फ गाड़ी रेंट देने का नाम नहीं है ये एक मोबिलिटी सोल्यूशन है जी हाँ ये एक मोबिलिटी सोल्यूशन है जो मॉडर्न लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है बस अब आपकी और हमारी देर है कि हम इसे अपने बिजनेस का हिस्सा कब कैसे और किस सिचुएशन में बनाएं वेल यहाँ पे सोचने के लिए तो सवाल बहुत सारे हैं लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस एक्यूमेंट तो चाहिए ही चाहिए एक और चीज़ चाहिए पता है क्या और वो

0: चीज होती है आपके अंदर अगर रिस्क लेने की ताकत है. अब रिस्क हम कब लेंगे? जब हमारे पास कुछ बैकअप में हो, कुछ हमारा कह सकते हैं हल्का फुल्के अंदाज में हमारा फ्यूचर हल्का फुल्का सिक्योर हो, तब हम जो है थोड़ा सा रिस्क ले पाते हैं. लेकिन कभी कभी अच्छी प्लानिंग और स्ट्रॉन्ग यू नो विजन के साथ अपना गोल अचीव करने की तरफ आप जाते हैं, भले ही आपके पास उतना स्ट्रॉन्ग बैकअप नहीं है, बट आपका आइडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका होमवर्क बहुत ही तगड़ा है और आप बहुत ही ज्यादा पैशनेट उस काम को करने के लिए, देन देयर इज नो एज सच कॉल स्टैग्नेशन, जस्ट गो फॉर इट. मैं तो ये कहूंगी फिर मत रुकिए, मत सोचिए, उस चीज को स्टार्ट कीजिए एंड गिव योर सेल्फ अ चांस. याद रखिए बिजनेस में रातों रात कोई कभी कामयाब नहीं होता. यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी, थोड़ा सा हिम्मत, थोड़ा सा हौसला, थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक रहना और खुद पर यकीन करना और अपनी अच्छी टीम बनाना, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. और हाँ, खुद पर यकीन रखना, अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा रखना और बस धीरे धीरे सब्र के साथ, मेहनत से, ईमानदारी के साथ अपने बिजनेस को रन करना. आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 5-6 साल में आप देखिएगा आप कितने बड़े और कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं. चलिए भाई, ये तो हो गया आज का हमारा सेगमेंट. अब मुझे यानी नाजिया को दीजिए इजाजत और हम अपने गेस्ट को एक बार वापस से थैंक यू कहना चाहेंगे, दो हम उनसे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं. बट यस, अगेन वी वुड लव टू थैंक मिस्टर सैयद उस्मान कि उन्होंने वक्त निकाला और इतनी अच्छी और वैल्यूबल इंसाइट हमारे सबके साथ शेयर की. सो थैंक यू वंस अगेन. विद दिस, मुझे यानी नाजिया और शहबाज अंसारी, हम दोनों को इजाजत दीजिए. सुनते रहिए एफएम 107 दिल से देसी.
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन एफएम 107 दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
1: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
2: गेम ऑन,
1: वॉल्यूम अप,
2: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
1: विद अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन।
2: सुनिए समर स्पोर्ट्स ओनली ऑन FM 107 दिल से।

0: गाड़ियों के दरमियान सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना रोड पर हर फर्द की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। हमेशा इतनी जगह जरूर छोड़ें कि अगर आगे वाली गाड़ी अचानक रुक जाए तो आपके पास रिएक्ट करने का वक्त हो। याद रखें, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी स्पीड और डिस्टेंस दोनों कंट्रोल में रखें। अक्सर हादसे इसी वजह से होते हैं कि ड्राइवर्स गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला नहीं रखते। आपकी रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाने में भी मददगार साबित होती है। फास्ट ट्रैफिक और हाईवे पर ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है। सडन स्टॉप्स और इमरजेंसीज किसी भी वक्त हो सकती हैं, इसलिए हमेशा महफूज फासला रखना जरूरी है। ड्राइव सेफली, क्योंकि आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी नहीं रोड पर हर शख्स की जिम्मेदारी भी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक ट्रैफिक रूल्स को एहतियात से फॉलो करना ही एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है। तो अगली दफा जब आप ड्राइव करें तो याद रखिए, फासला जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: Gen Z की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है, FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ। रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको।
4: टॉप 10 काउंटडाउन।
3: सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर दिल से देसी।

0: आर यू रेडी? लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको।
1: टॉप 10 काउंटडाउन।
0: भाई देखिए, साफ सीधी बात है, पहले तो अस्सलाम वालेकुम सभी को। मैं दुहा वाला कबीर, FM 107 पे। ये मेरा फॉर्मल इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। अभी जो ये टॉप 10 है हमारा FM 107 का, इसमें आपका स्वागत है। बैठिए, ये कुर्सी लगाए, कोई टेंशन नहीं, इसमें बहुत बदलाव आने वाले। आई एम सो एक्साइटेड। हाँ, मैं फैन हूँ भाई, यू कैन कॉल मी। आजकल क्या चल रहा है वो जेंजीज में, पगलू। तो मैं इमरान पगलू। तो इमरान हाशमी की आवारापन के जब तक गाने नहीं आते, ये लिस्ट में अभी कंपटीशन थोड़ा हल्का है। कंपटीशन जरूर है, लेकिन कंपटीशन अभी आने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड अभी से ही आने वाले एपिसोड्स के लिए। बट फॉर नाउ, वेलकम टू द शो। मैं दुहा वाला कबीर, FM 107 पे। एनी लिस्ट आप जानते ही कैसे हम चलाते हैं, है ना। तो गाने फ्रॉम 10 टू 1 चले, मतलब कि 10 से शुरू होगी गिनती और टॉप का गाना फिर आखिर में आएगा। मगर इस पूरी लिस्ट में कुछ चीजें बदली हैं, कुछ चीजें अभी भी वहीं पर ही हैं, कुछ गानों ने अपनी जगह को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है और कुछ गानों ने डिसाइड कर लिया मैं तो चला, तो लिस्ट से बाहर भी हो चुके हैं। कुछ गानों के बाहर होने की वजह कोई ज्यादा खास नहीं है, इट्स जस्ट दैट यू नो समटाइम्स यू हैव टू मूव फ्यू सॉन्ग्स ताकि बाकी गानों को जगह मिल सके, एक मौका मिल सके। तो हमारी लिस्ट ऐसी है कि जहां पे हम गानों को एक परफॉर्म करने के लिए पोजीशन भी देते हैं कि चलो इसको 9 नंबर पे रखते हैं, क्या ये गाना आगे जाएगा नहीं जाएगा। दैट्स हाउ वी टेक दिस फॉरवर्ड। हेल्दी कंपटीशन इज अ गुड कंपटीशन, राइट? सो सोशल मीडिया हैंडल्स FM 107 Qatar, FM 107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह मौजूद है। प्लीज हमसे जुड़िए एंड अपना भी गाना बताइए। हो सकता है कि आपको कोई गाना हो जो आपको पसंद आता हो और आपको लगता है कि लिस्ट में होना चाहिए लेकिन नहीं है, तो लेट मी नो। मगर आज के गानों में से, हिट नंबर्स में से। तो रूल बड़ा सिंपल है, जो गाने वायरल हुए अपने डांस नंबर्स की वजह से, अपने डांस कोरियोग्राफी की वजह से, कुछ गानों के व्यूज ज्यादा रहे, कुछ गानों के व्यूज ज्यादा नहीं थे बट दे वर पॉपुलर बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ फेसेस। तो शुरू करते हैं आज का शो विद 10, 9 and 8। ठीक है, तो गाना नंबर 10, इस गाने ने अपनी जगह यहां पर बना ली है 10वें पोजीशन पे। आई थिंक ये बहुत जल्दी ऊपर भी जाएगा। स्टीवन बेन की आवाज में गाना है। ये वो सिंगर है जिसको मैंने परफॉर्म करते हुए लाइव कतर में देखा एंड ही परफॉर्म्ड रियली रियली वेल। इस बंदे को मैं जानता हूं इन अ वे कि ऐसा लगता है इसकी आवाज से सुनकर, इसकी आवाज सुनकर पहली बात तो ऐसी फील आती कि ये अपना ही कोई दोस्त वोस्त है जो गा रहा है, और ये कोई बुरी बात नहीं है। दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर हिम बिकॉज ही साउंड्स वेरी ग्राउंडेड। अब मैं कैसे समझाऊं, कुछ कुछ लोगों की आवाज में एक एक्स फैक्टर होता है, जैसे अरिजीत सिंह। सो यू नो कि जब वो

0: आ रहे हैं तो यू नो के इस आदमी ने हद से ज्यादा रियाज किया है और बहुत ही मास्टर क्लास आवाज है और ये आदमी कुछ भी गा सकता है, क्या हरकतें ले रहा है। फिर के साहब आते हैं जिनकी आवाज को सुन के हमेशा से लगता था हिज लेगेसी विल लिव ऑन, उनकी आवाज को सुन के लगता था यार ये आदमी जो कुछ भी गा देगा ना, जिस जिस लिरिक्स को छू देगा वो सोना हो जाएगी। दैट्स हाउ ही वाज। मैं मॉडर्न सिंगर्स की बात कर रहा हूँ, पहले के सिंगर्स में तो फिर लंबी लिस्ट हो जाएगी। वैसे ही स्टीवन मेन का है, द मोमेंट ही स्टार्ट सिंगिंग एनी सॉन्ग इट फील्स वेरी ग्राउंडेड। ऐसा लगता है कि यार ऐसे तो यार बिल्कुल ऐसा लगता है मैं इसको जानता हूँ, मेरे साथ में सफर कर चुका है और ये गा रहा है। और यही ब्यूटी इस गाने में है, गाने का नाम भी इत्तफाकन है सादगी।
1: सादगी तो हमारी जरा देखिए,
0: बहुत सादगी से गाया है सेवन बैन ने गाना और ये इंडियन पॉप कल्चर में ऐसे गाने आने चाहिए, बट few people are doing it and Steven Ben is one of them. So number 10 पे जगह बनाइए। वीडियो में बहुत ही शानदार दिख रहे हैं वो, एक कव्वाल के तौर पे नजर आ रहे हैं। A beautiful track and beautiful lyrics. Originality को हमेशा पूरे नंबर मिलने चाहिए, efforts के नंबर बिल्कुल मिलने चाहिए और effort भाई ने पूरा डाला है। Of course he deserves it and that's why Steven Ben का गाना सादगी is at number 10 on the list. अब अगला गाना देखो, पिक्चर के बारे में थोड़ा सा कमेंट करूंगा, रिव्यू तो हमारे फजील भाई दे चुके हैं। वेलकम टू जंगल का पहला हाफ ऐसा है कि आपको लगेगा अरे ये मूवी तो यार ठीक ठाक जा रही है, फिर सेकंड हाफ में आप बोलेंगे मैंने जैसा सोचा था वैसे ही है। तो मूवी के बारे में नो कमेंट्स, दैट हैज ऑलरेडी बीन डन 100 times, मगर जो गाना है वो 9 पे आ चुका है। ये गाना ऑफकोर्स नॉस्टैल्जिया है, ये गाना ऑफकोर्स एक फैन फेवरेट गाना है, ये गाना ऑफकोर्स प्रोड्यूसर्स की तरफ से एक फैन सर्विस है। ऊंचा लंबा कद, ये तो मैं जानता था ये आना ही है, द मोमेंट दे अनाउंस के वेलकम का तीसरा पार्ट है और वेलकम टू जंगल है और अक्षय कुमार है, वी ऑल न्यू दिस वाज गोइंग टू हैपन। ऊंचा लंबा कद का एक नॉट रिप्राइज्ड मगर एक अलग वर्जन 2.0 इस मूवी के अंदर है, दैट हैज बीन प्लेस्ड एट नंबर 9 ऑन द लिस्ट। अक्षय कुमार इज अगेन परफॉर्मिंग एंड इज डूइंग अ ग्रेट जॉब बाय द वे। मूवी का एक बंदा जो अपने कंधे पे पूरी मूवी को जैसे ना तैसे ले गया है वो अक्षय कुमार ही है, एंड that also shows in the song as well. He is still enjoying the track. को पता लग रहा है कि आदमी जब वीडियो में आता है तो कैसा, मतलब is he enjoying or not? And Akshay Kumar is still enjoying the track. ऊंचा लंबा कद, and that's why we enjoyed it. And that's why number 9 पे है ऊंचा लंबा कद। हाय, अब गाना नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। गाना नंबर 8 जो है, मेरी शुरुआत में इस गाने को सुन के एक दो कंप्लेंट्स थी, पहले वो बता दूं मैं। लोग सोच रहे होंगे कंप्लेंट भी कर रहा है, गाने को 8वें नंबर पे डाल रहा है। देखो कंप्लेंट मेरी ये थी कि गुरु रंधावा का गाना आया था कतल, आंख कतल, वो याद है ना आपको, तो उसके जो जो जो उसकी कोरियोग्राफी थी वो हिट हुई, गाना बड़ा हिट हुआ, लोगों ने बहुत रील्स बनाई और हमारी लिस्ट पे एक टाइम पे वो नंबर 1 पे भी था। फिर गाना आया ये वाला जो 8वें नंबर पर है, दिस इज फ्रॉम द मूवी धमाल 4, गाने का नाम है कहर, और कहर जो गाना है इसकी भी कोरियोग्राफी वायरल हो रही है, लोग रील्स पे रील्स बना रहे हैं भर भर के, मगर इफ यू लिसन टू दिस सॉन्ग क्लोजली, अच्छा चलो मैं गलत हूं, ठीक है मैं मान लेता हूं मैं गलत हूं, आप ये गाना सुनना एंड मुझे बताना क्या आपको कतल सॉन्ग जो गुरु रंधावा का है वो और ये दोनों सेम नहीं लग रहे।
1: बॉम्बे तू बॉम्बे तेरा शहर कुड़े, शहर कुड़े, कहर कुड़े,
0: मतलब द वाइब इज सेम, लिरिक्स हैव बीन चेंज्ड and it is still beautiful. ये मैं पहली मर्तबा देख रहा हूँ, exact almost exact music है पर lyrics change करके फिर भी गाना hit है भाई। ये गुरु रंधावा ही कर सकते हैं and this is at number 8 on the list and the best part is कि इसके music video को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कहाँ कहाँ से लोग models ला रहे हैं। नहीं, those are not models by the way, बहुत एक नया culture आया जो slowly seep in हो रहा है and I'm so proud of the fact कि music industry ने इस culture को अपनाया। वो culture ये है कि ये लोग social media पे जिसे देखते हैं जो बहुत अच्छे dancers हैं, choreographers हैं, उन्हें मौका दे रहे हैं to feature in their video, which is really really awesome. And एक और part है, not just people who are good dancers, ये अच्छा डांस करके रील बना रहे हैं उनको काम मिल रहा है, बल्कि उनको भी काम मिल रहा है जो हिडन कोरियोग्राफर्स हैं जिनका नाम कभी आपने सुना भी नहीं होगा, वो लोग कोरियोग्राफी कर रहे हैं और उन लोगों को ये लोग काम दे रहे हैं। अब देखो इसमें कोई भी वजह हो सकती है, अगर मैं सिंपल बोलूं साफ शब्दों में तो ये हो सकता है कि सस्ते में बढ़िया माल मिलना, ऐसा भी हो सकता है, यू नो समटाइम्स यू गो फॉर कोरियोग्राफी और आपको लगता है अरे बाप रे ये तो बहुत पैसे ले लेगा, तो आप ऐसे

0: फोटोग्राफर्स को ढूंढते हैं जो यंग है, यंग टैलेंट है, हो सकता है ज्यादा प्राइसी भी नहीं है मगर काम उनका परफेक्ट है. एंड ये कल्चर बहुत जरूरी था ना, बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ डांसिंग स्टूडियोज जिन्हें रिसेंटली दबा के काम मिला है. एंड गुरु रंधावा हो गए, बादशाह हो गए, चरणप्रीत हो गए, बहुत सारे लोगों ने काम दिया है. एंड ये कल्चर चलना चाहिए बिकॉज लोग जो टैलेंटेड हैं, जिनका करियर आर्ट फॉर्म से जुड़ा हुआ है, उनका करियर भाई मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, मैं सबके लिए दुआ करता हूँ. मगर क्योंकि मैं आई कैन रिलेट टू एन आर्टिस्ट, आई थिंक दे आर गेटिंग जॉब्स एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो कुडोस टू गुरु रंधावा फॉर फीचरिंग अनदर आर्टिस्ट इन दिस एल्बम ट्रैक प्रोबेबली. तो कहर फ्रॉम धमाल फोर का ट्रेलर आपने देख ही लिया होगा, वो उस पर मैं कमेंट करूंगा कभी और. मगर दिस इज एट नंबर 8 एंड क्या कोरियोग्राफी है, क्या डांस है, ये भी वायरल हो रहा है. अब जरा लौट के आएंगे तो जरा आगे बढ़ेंगे 7, 6 और 5 की तरफ. ये है टॉप 10 दिस वीक ओनली ऑन FM 107 और सोशल मीडिया हैंडल जैसे मैंने कहा 666-22107. स्टे ट्यून्ड.
1: FM 107 टॉप 10 नंबर 10.

FM 107 Top 10, number 8. Number 8.

0: FM 107 Top 10.
1: वेलकम बैक, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे, एंड दिस इज टॉप 10 ऑन द लिस्ट. अभी हम पहुंच चुके हैं 10, 9 और 8 हमने कर दिया है जी. ये सीडी पे चढ़े हैं हम, तो 10 पे था सादगी बाय स्टेफन बेन, बहुत सादगी से गाया हुआ गाना, ब्यूटीफुली सॉन्ग. एंड देन 9th पोजीशन पे है ऊंचा लंबा कद, वेलकम टू जंगल से. और उसके बाद 8 है कहर धमाल 4 से. अब बारी है 7, 6 और 5वें पायदान की, यानी कि ऑलमोस्ट मिडिल ऑर्डर, मतलब मिडिल ऑर्डर ही है. तो नंबर 7 पे अभी भी टिके हुए हैं असीम अजहर. भाई साहब, बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग सॉन्ग मुझे लग रहा था शुरुआत में. यूट्यूब वाले शायद समझ नहीं पा रहे इसको, इतना प्यारा सॉन्ग है, अंडर परफॉर्म नहीं करना चाहिए. एंड थैंकफुली मैं गलत था, गाना परफॉर्म कर गया, बहुत बढ़िया गया है. आरजू आसिम अजहर की आवाज में ब्यूटीफुल ट्रैक है. मैं आसिम अजहर का धीरे धीरे फैन होता चला जा रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं लग रहा. एंड इज नो लॉन्गर अंडररेटेड. सो इफ यू हैवंट हर्ड दिस ट्रैक, लिसन टू दिस वन. ओरिजिनल है, ओरिजिनल लिरिक्स है, ओरिजिनल म्यूजिक है. आसिम अजहर की आवाज हमेशा रॉ लगती है मुझे, लाइक वो आवाजें होती है ना जो बिना म्यूजिक के भी अगर कोई गा दे तो आपको लगता है वाह भाई यार क्या सुर लगाए, वैसी आवाज है आसिम अजहर की. यानी ही हैज आउटडन हिमसेल्फ विद एवरी ट्रैक रिसेंटली. तो 7 पे है आरजू, सुनिए आरजू. नाउ कमिंग एट नंबर 6, अगेन आसिम अजहर की ही आवाज है. आई कुड नॉट हेल्प भाई, मुझे रखने पड़े दो गाने इनके, क्योंकि दूसरा गाना भी उतना ही खास है और ये गाना तो वायरल भी हुआ है. तू है वही, तू है वही, असीम अजहर की आवाज अगेन.
2: तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा.
1: एंड मुझे पता है इसका ऑडियो बड़ा अच्छा लगा. वीडियो जब भी असीम अजहर का आता है मुझे उसकी अच्छी बात ही लगती है कि इफ देर इज अ वीडियो, उसमें कुछ ना कुछ सिंपल चीजें हो रही होती हैं जो आप असल जिंदगी में देख पाते हैं. आपको लगता है हाँ यार ऐसा तो होता होगा. ठीक है, कुछ गानों में ऐसा होता है कि काफी गाने फ्लैशी होते हैं, उनकी वीडियोस में काफी सारी लाइट्स और बहुत ही फास्ट कट्स लगाए हुए होते हैं, लेकिन असीम अजहर के गानों में कहानी होती है. असीम अजहर के गानों में जो कहानी पिरोई हुई होती है उस पर वीडियो बनाना बड़ा आसान लगता है. एंड असीम अजहर अगर फ्यूचर में एआई का सहारा लेके वीडियोस बनाएंगे सो आई वुड नॉट माइंड बिकॉज ही डिजर्व्स इट, ही शुड डू इट. भाई असीम अजहर सारे पैसे जो है ना अपने म्यूजिक पे लगा दो भाई, और हमें वीडियो कैसा भी दे दो, मुझे पता है क्योंकि कहानी बहुत अच्छी होती है इनके गानों में. एंड आई लव द फील व्हेन ही कम्स आउट एंड डिलीवर्स अ ट्रैक जिसमें कहानी होती है. बहुत कम ऐसे सिंगर्स बचे हैं जो स्टोरी टेलिंग कर रहे होते हैं अपने गानों में. ऑफकोर्स बातें बहुत होती है मोहब्बत की, मैं ये ले आया, मैं वो ले आया, मैं घर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, बट कुछ गानों में होती है स्टोरी टेलिंग, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ऐसा हुआ. एंड असीम अजहर इज वन ऑफ दोज पॉप कल्चर आर्टिस्ट जो ऐसा कर पा रहे हैं. रैप में तो मैंने बहुत कुछ देखा है ऐसा, रैप तो हर बार ऐसे ही होता है, मगर हिप हॉप के अलावा भी पॉप कल्चर में ऐसा होना, आई एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली लव इट. सो असीम अजहर, कुडोस टू हिम एट नंबर 6, यह गाना तू है वही. अब नंबर 5 पर जाते हैं. ये पोजीशन बड़ी क्रिटिकल है और ये बड़ी खतरे वाली कुर्सी है. 5वें नंबर पे जो गाना होता है ये कभी भी इधर का उधर हो सकता है. इस हफ्ते जो गाना है एट नंबर 5, ये पिछले हफ्ते भी था, ये है कुंवर साहब का गाना, गाने का नाम है पीछे तेरे. गाना छोटा है, मैं अभी भी कह रहा हूँ ये गाना 2 मिनट 1 सेकंड का है, मगर इससे ज्यादा का होता तो शायद गाने में और ज्यादा वाइब्रेंसी होती, क्योंकि गाने में पोटेंशियल है. मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे साथ होता है समटाइम्स आई राइट समथिंग और वो शायद 1 मिनट का मैंने लिख लिया होगा और मैं रैप कर देता हूँ उस जो मैंने लिखा है. एंड देन आई फील कि यार ये है तो अच्छा लेकिन अधूरा सा लग रहा है, अगर मैं 1 मिनट का और गा दूं तो मजा आ जाएगा. वैसा इस गाने के साथ है, लाइक मन भर गया है बट पता नहीं और ज्यादा भूख है कि काश थोड़ा और लिखा था कुंवर भाई ने. ये गाना बहुत बढ़िया है, आई लव्ड इट. ये गाना ऐसा है कि किसी ना किसी मूवी को ये गाना उठाना चाहिए और अपनी मूवी में बाकायदा इसे पेश करना चाहिए कुंवर साहब की आवाज में, बिकॉज ही डिजर्व्स दिस अटेंशन. ही हैज डन अ ग्रेट जॉब विद दिस ट्रैक. सो पीछे तेरे एट नंबर 5, जैसे मैंने कहा काफी क्रिटिकल पोजिशन है. आने वाले हफ्ते में बहुत बड़ी बड़ी मूवीज रिलीज हो रही है, एंड ये पोजीशन खतरे में आ जाती है. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, मगर फिलहाल एट नंबर 5 इज पीछे तेरे कुंवर साहब की आवाज में. अब जरा रिवीजन कर लेते हैं. तो नंबर 10 पे रहा सादगी स्टीफन बेन की आवाज, नंबर 9 पे ऊंचा लंबा कद वेलकम टू जंगल से, अ फैंटास्टिक रिक्रिएशन, ऑफ कोर्स नॉट अबाउट द मूवी, आई वुड ओनली टॉक अबाउट द ट्रैक, बहुत बढ़िया है. एंड देन नंबर 8 पे है कहर विद एब्सोल्युटली किलिंग इट विद कोरियोग्राफी, और क्या लिरिक्स है, धमाल फोर से गाना। देन नंबर सात पे है आरजू, अ वेरी सिंपल अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक आसिम अजहर की आवाज में। एंड देन नंबर छह पे है वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स फ्रॉम आसिम अजहर और ये है तू है वही। फिर पांचवें नंबर पे है गाना जिसके अंदर भयंकर पोटेंशियल है भाई, गाना है पीछे तेरे कुंवर साहब की आवाज में, कुंवर की आवाज में, एंड इट इज अगेन अ ब्यूटीफुल ट्रैक। तो ये सब सुन लीजिए क्योंकि अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो लिस्ट उस पोजीशन पे आने वाली है जहां पे बहुत जल्दी बहुत सारी कुर्सियां छिनने वाली हैं, बिकॉज आवारापन टू इज कमिंग, बट वारा इज कमिंग, चौहान इज कमिंग, बहुत सारी मूवीज आने वाली है। अगर इन लोगों ने कोई भी पुराना गाना नहीं डाला, एटलीस्ट आवारापन टू के बारे में कंफर्म हूं क्योंकि मैं फैन हूं, तो आई कैन वाउच फॉर इट, तो वो तो जगह लेने वाला है भाई इस लिस्ट में। बट कितने गाने जो आने वाले हैं 4, 3, 2, 1, कितने गाने टिके रहेंगे और कितने गाने लिस्ट से बाहर होंगे, कितने गाने नीचे जाएंगे, ये वक्त बताएगा। अब मैं उल्टा नर्वस हो रहा हूं उनके लिए। सो वंस वी आर बैक, बात करेंगे कुछ देर में चौथे नंबर के गाने की, तीसरे नंबर की, दूसरे नंबर की और पहले नंबर के गाने की। ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है, तो जाना नहीं है आपने, मिलते हैं कुछ देर।
0: FM 107 Top 10 Number 7।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: दोस्तों, सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमरास जुर्म रोकने और उनकी डिटेक्शन में मदद करते हैं। ये इंश्योर करें कि ये कैमरास सिर्फ लाइसेंस्ड और अप्रूव्ड कंपनीज के जरिए इंस्टॉल किए गए हों, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के सिक्योरिटी सिस्टम डिपार्टमेंट के साथ लाइसेंस्ड या रजिस्टर्ड हैं। ये आपकी प्राइवेसी की हिफाजत करते हैं और सेफ्टी को इनहेंस करते हैं। सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमराज आजकल हर जगह जरूरी हो चुके हैं, घर से लेकर ऑफिस तक। ये कैमराज ना सिर्फ जुर्म की रोकथाम में मदद करते हैं, बल्कि किसी भी हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन में भी मददगार साबित होते हैं। याद रखिए, अनऑथराइज्ड कंपनीज के थ्रू लगवाए गए सिस्टम आपकी प्राइवेसी के लिए रिस्क बन सकते हैं। सिर्फ लाइसेंस्ड कंपनीज ही आपकी डेटा प्रोटेक्शन और कैमरा कवरेज के हवाले से प्रॉपर गाइडेंस देती हैं।

कैमरास को एंट्रेंसेस, एग्जिट्स और पार्किंग एरियाज में इंस्टॉल करें। ये आपके लिए जहनी सुकून का बायस बनते हैं, खासकर जब आप घर या ऑफिस में नहीं होते। आपके सेफ और स्ट्रेस फ्री दिन की दुआ के साथ FM 107 हमेशा आपके

0: 107 Top 10.
1: अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, मैं दूं हवाला कबीर FM 107 पे. एंड अब वक्त आ गया है उन गानों का, जैसे मैंने कहा इनकी कुर्सी सबसे ज्यादा खतरे में रहती है, बिकॉज दीज आर द सॉन्ग्स जिनकी कभी भी इधर से उधर हालत हो सकती है. चौथे नंबर का गाना दसवें भी आ सकता है. यहाँ पे परफॉर्म करना बहुत बहुत बहुत बहुत जरूरी है. सो गाना नंबर 4 जो है ये अभी भी अपनी पोजीशन पे है. गाना है शुभ का और गाने का नाम है बाउंस. ये गाना मैंने चौथे नंबर पे अभी भी इसलिए रखा है बिकॉज देयर इज अ रीजन. YouTube काउंट इसके भले ही पीछे हुए हैं, मगर मैंने जब चेक किया तो Spotify और Gaana.com एंड Apple Music पर इसके जो प्लेज हैं वो बढ़ रहे हैं लगातार. नॉट जस्ट दैट, शुभ भाई ने रिसेंटली कॉन्सर्ट भी किया जिसमें ही परफॉर्म दिस ट्रैक एंड पीपल वर चैंटिंग फॉर इट, क्योंकि म्यूजिक बहुत बढ़िया है. म्यूजिक एक यूनिक है और मैं पता नहीं मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टाइम्स अभी तक कह चुका हूँ, वो तो मैं मेटाफोरिकली कह रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत बार कहा है इस गाने पे, इस बीट पर, जिस बीट पर शुभ ने गाया है, बहुत मुश्किल है. रैप करना मुश्किल है, पॉप करना तो और ही मुश्किल है. बट अमेजिंगली डन, द ट्रैक इज फाइन, फिनेस के साथ है और उतना ही अच्छा वीडियो है. बट क्या ये अगले हफ्ते भी चौथे नंबर पे रहेगा? आई डाउट इट, बिकॉज बहुत सारे परफॉर्मिंग गाने आने वाले हैं और अभी इस गाने को और परफॉर्म करना पड़ेगा. If this Gaana wants to stay at 4, तो ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे गाना को स्टूडेंट हो. बेटा अगर आप ऊपर आना

अपने मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं चलेगा। तो शुभ भाई का गाना बाउंस एट नंबर 4 ऑन द लिस्ट। अब गाना नंबर 3, ये पोजीशन बहुत क्रिटिकल है, इवन जो टॉप 5 है उससे ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन होती है टॉप 3 की। दिस ट्रैक इज ब्यूटिफुल एंड इट इज किलिंग इट। इसके इतने वायरल वीडियोज बने हैं, मतलब इस पर अगर कोई अभी भी जाके डांस का वीडियो बना देगा ये हिट हो जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूं, अभी भी कोई बनाएगा ना, अगर ढंग का कोरियोग्राफी कर ली इस गाने में, कोरियोग्राफी करने की जरूरत नहीं, जस्ट हैव टू कॉपी द स्टेप्स, तब भी आप हिट है। मैं लिख के दे रहा हूं, क्योंकि अभी बादशाह भाई, चरणप्रीत दोनों इस गाने की जितने भी रील्स बन रहे हैं उसे बीच बीच में पोस्ट करते रहते हैं। एंड इफ दे आर नॉट पोस्टिंग इट, वो उस वीडियो को लाइक जरूर करते हैं। उनके लाइक करने से, शेयर करने से वीडियो अपने आप फैलता है, अपने आप आगे बढ़ता है। गाना है बन जा तू मेरी, बन जा बन, सॉरी मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं, पर मुझे वो गाना ऐसा लगता है कि मैं खुद ही गा पड़ा। बन जा तू मेरी, बन जा। चरणप्रीत और बादशाह इसमें है, एंड आसी जिनका नाम है, उन्होंने इसे परफॉर्म किया है। अगेन जैसे मैंने शुरुआत में कहा, अब म्यूजिक इंडस्ट्री, नॉट बॉलीवुड बट म्यूजिक इंडस्ट्री स्पेसिफिकली फोकस कर रही है उन लोगों पे जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। वो कोरियोग्राफर्स जो बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका स्टूडियो भी है, वो डांस क्लासेस देके कमा रहे हैं, बट दे नॉट गेटिंग द रियल चांस, नाउ दे आर गेटिंग। दिव्या गोयल आई बिलीव उनका नाम है, दिव्या तो आई एम श्योर गोयल उनका लास्ट नाम है शायद, उन्होंने कोरियोग्राफ किया है ये गाना। आसी जिन्होंने परफॉर्म किया है इसमें, शी हैज बीन परफॉर्मिंग सिंस अ व्हाइल नाउ, वो गुरु रंधावा के वीडियो में थी, अब वो यहाँ पे परफॉर्म कर रही है। जो हुक स्टेप है इस गाने का, उस पे बहुतेरी रील बनी है भाई, भर भर के रील बनी है, एंड गाने का हुक इज एब्सोल्युटली अ शेफ्स किस। क्या हुक है, वायरल हुक्स बहुत कम आते हैं और जब गाने कर पाते हैं, उस हुक को क्रिएट कर पाते हैं तो कमाल हो जाता है। आई एम स्टिल शॉक्ड, आपको एक फैक्टर बताता हूं बिफोर आई प्ले द ट्रैक एट नंबर 3, बन जा तू मेरी। चरणप्रीत जो है उनके जाके लाइक्स देखिएगा, अब भी कम है। मैं हैरान हूं भाई, दुनिया जहां रील बना रही है इस गाने पे, जाके बंदे को सपोर्ट करो भाई, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया उन्होंने, बहुत बढ़िया गाया है, एंड बादशाह भाई का रैप भी बहुत बहुत कमाल गया। बादशाह तो फिर कहने की बात ही नहीं है, बहुत बहुत बहुत अच्छा हो गया, आई एम इन लव विद द हुक, और गाने की कोरियोग्राफी इज अमेजिंग, टॉप नॉच। तो ये गाना अपनी पोजीशन में बहुत स्ट्रांगली बना हुआ है एट नंबर 3 ऑन द लिस्ट। बन जा तू मेरी, चरणप्रीत और बादशाह। अब भाई बिफोर आई टेक द ब्रेक एंड मूव ऑन विद 2 मोर सॉन्ग्स ऑन द लिस्ट, एक काम करता हूँ, गाना नंबर 2 आपको बता देता हूँ, 2 के लिए बजा के रख, 2-1, चलो मैं काम करता हूँ, बजा के रखते हैं।

सोशल मीडिया चैनल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं. प्लीज गेट इन टच विद अस. आप जुड़ेंगे, आप गाने के बारे में बताएंगे, आपको कोई फेवरेट होगा. यू नेवर नो की लिस्ट जो करंट लिस्ट है हमारी, उसमें आप कुछ जोड़ना घटाना चाहें या अपना गाना हम बताना चाहें. बिकॉज यू पीपल आर इम्पोर्टेंट. आप नहीं तो हम नहीं. आप बताएंगे तभी गाड़ी और अच्छे से आगे बढ़ेगी. ठीक है, तो बताइएगा जरूर. बाकी मुझे ढूंढना चाहें तो दोहा वाला कभी FM107 मिल जाऊंगा आपको. जाना नहीं है, अभी टॉप बाकी है, अभी बिल्डिंग का ऊपरी माला बाकी है, टॉप का गाना बाकी है. स्टे ट्यून्ड FM 107.

0: FM 107 Top 10.
1: Assalamu alaikum, welcome back. Main tu hawala kabir FM 107 pe. And now it's time for the top 10 songs this week ke number 2 or 1 ki bari. 1 to kya? The top track. To number 2 pe jo gana bana hua hai, ये प्योर नॉस्टैल्जिया है, ये अगेन एक फैन सर्विस है. चलो फैन सर्विस कर दी तो कर दी, बढ़िया कर दी. फैन सर्विस हमेशा अच्छी नहीं होती है, इस बार बढ़िया हो गई है. कॉकटेल 2 मूवी जैसी भी गई हो, गाने एक नंबर भाई. फिल्माया गया जिन तीनों पे है, ऑफकोर्स कृति सानन 20 में नजर आएंगे आपको, और रश्मिका भी हैं और शाहिद कपूर भी हैं. गाना है बंधु 2.0 एंड नॉस्टैल्जिया हिट करेगा आपको जब आप ये गाना सुनेंगे. बिकॉज आई रिमेम्बर बैक इन द डे जब डायना और दीपिका और सैफ अली खान जब तीनों उसमें गाने में थे तो बहुत अच्छा बॉन्डिंग दिखाई गई थी. एंड दिस टाइम ऑल्सो आई हैवंट सीन द वीडियो आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, लेकिन गाना सुन के लगता है कि हाँ वीडियो भी अच्छा फिल्माया गया होगा. एंड प्योर नॉस्टैल्जिया कॉकटेल 2 से गाना एट नंबर 2. अब जरा मैं लिस्ट को एक बार ही बता दूं शुरुआत से लेकर हम अभी तक कहां पे आ चुके हैं. नंबर 10 पे रहा सादगी स्टेवन बेन, और नंबर 9 पे रहा ऊंचा लंबा कद वेलकम टू जंगल, नंबर 8 पे रहा कहर धमाल 4, नंबर 7 पे आरजू आसिम अजहर, नंबर 6 पे तू है वही आसिम अजहर, नंबर 5 पे पीछे तेरे कुंवर, एंड नंबर 4 पे शुभ विद बाउंस, नंबर 3 पे बन जा तू मेरी बादशाह चरणप्रीत, नंबर 2 पे बंधु 2.0 कॉकटेल 2.0 से. और अब वक्त है, सॉरी वो साउंड इफेक्ट थोड़े सस्ते लगा रहा हूं बट अंडरस्टैंड कीजिएगा. सो नंबर 1 पे द टॉप ट्रैक ऑफ द लिस्ट, ऑन टॉप ऑफ इट ये गाना अभी भी बना हुआ है. नंबर 2 पे घिसक गया था, नंबर 1 पे वापस आ गया है, अपनी गद्दी से हटने के बाद वापस गद्दी छीन ली है.

0: गाना है मशूका कॉकटेल टू का ये गाना विद वॉसम वाइब, एकदम वॉसम वाइब भाई। गाने वाइब भी तो होनी चाहिए। गाना कई मतलब ऐसे होता है कि बड़ा ढंग का कायदे का गाया हुआ होता है और आप कहते हैं मजा नहीं आया। ये गाना बड़ा रेगे स्टाइल है एंड आई लव द म्यूजिक टोटली, एंड जिस तरीके से परफॉर्म किया गया है वो तो किलर है भाई, एब्सोल्यूटली किलिंग इट। एंड गाने की कोरियोग्राफी बढ़िया है, गाने के लिरिक्स बहुत बढ़िया है, बीच में स्पेनिश भी है। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रैक। कितनी रील्स के पीछे चल रहा होता है यार, आपने देख लिया होगा। एंड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलैरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉल वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ फीमेल ऑडियंस इज यूजिंग दिस ट्रैक हर फोटो के पीछे, it's going just bonkers. So ye gana mashuka at number 1 cocktail 2 se abhi to hai iske paas gaddi, jaise maine warn kar diya har gaane ko on the list, agle hafte bhai hamara pan 2 ke gaane aa gaye to fir main kuch nahi kar sakta, but filhal yahi hai hamari list. And mashuka chalane se pehle aapse chahunga main ijazat. Social media handles FM107 Qatar, FM107 Qatar. Mujhe aap dein please ijazat. Agle hafte milenge. And agle hafte mujhe pata hai ki gaane bahut sare upar niche hone wale. But for now, aapse ijazat. Aur Doha wala Kabir aap mujhe dhoond sakte hain. And FM107 Qatar on social media handles. Apna khayal rakhiyega. Kyunki aap behad, behad zaruri hain. Maasalam.
1: FM 107 Top 10 Number 2.

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान, सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, मरहबा मरहबा मरहबा, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन एफएम 107 पर। मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ और आप हैं मेरे साथ मेरी पहचान पर। तो कैसे हैं आप? आई एम श्योर कि आप सब बहुत मजे में होंगे, लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही होगी, ये पूरा वीक बड़ा अच्छा गुजर रहा होगा। वेल, आज आप अमिता के साथ हैं, यानी कि मेरे साथ हैं, और मेरी पहचान की शुरुआत करने से पहले आज एक बहुत जरूरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ठीक है? पिछली बार जब आपने अपना फोन उठाया या फिर सोशल मीडिया के जो अलग अलग पेजेस हैं उसे स्क्रॉल किया, तो आपने क्या देखा? शायद किसी फ्रेंड की द पर्ल में यॉट पार्टी, या किसी की मुशायरे में वो परफेक्ट फैमिली डिनर की फोटो, या फिर कोई अजनबी जिसकी स्किन बिल्कुल बेदाग है, करियर परफेक्ट है और जिंदगी जैसे किसी मूवी का सीन हो। अब ये सब देखकर आपने क्या महसूस किया? इंस्पायर्ड या फिर थोड़ा सा छोटा? ऐसा लगा जैसे आप कहीं पीछे छूट गए हैं? तो ब्यूटीफुल लेडीज, अगर आप मेरे साथ हैं तो आज हम बात करने वाले हैं उस चोर की जो हमारी खुशियां चुरा लेता है। यस, द कंपैरिजन ट्रैप। आज हम एक ऐसे दौर, एक ऐसे एरा में जी रहे हैं जहां हम अपने बिहाइंड द सीन्स, यानी हमारा बिखरा हुआ किचन, हमारी थकी हुई आंखें, हमारी टेंशन, उसे दूसरों के हाईलाइट रील से कंपेयर करते हैं। हम फिल्टर्स के पीछे भाग रहे हैं जबकि ये दुनिया असलियत की भूखी है। हाँ जी, I'm talking about reality। आज हम उन फिल्टर्स को उतार फेंकेंगे जो हमें सच्चाई से काफी दूर ले जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम खुद को इस ट्रैप से आजाद कर सकते हैं। तो आप अभी क्या करेंगे? मुझे व्हाट्सएप करेंगे 6622107 पर, 6622107 पर, और बताएंगे वो कौन सा स्टैंडर्ड है जिसे पूरा करते करते आप थक चुके हैं। क्या वो परफेक्ट बॉडी है, परफेक्ट पेरेंटिंग है, या परफेक्ट घर है? खुलकर बात कीजिए, अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी बातें हैं आप जरूर मुझसे शेयर कर सकती हैं 6622107 पर, 6622107 अपने नाम के साथ, क्योंकि आज बात हो रही है आपकी अपनी पहचान की।

बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन एफएम 107 पर. मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ और आप हैं मेरे साथ मेरी पहचान पर. कहा जाता है कि कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय, यानी तुलना खुशी की चोर होती है. लेकिन आज के इस डिजिटल दौर में मैं इसमें थोड़ा ना चेंज या यूं कहें बदलाव करना चाहूंगी. आज कंपैरिजन सिर्फ खुशी नहीं चुरा रहा, ये हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान भी चुरा रहा है. कभी सोचा है आपने कि जब हम सुबह उठते हैं बिना आंखें खोले, मतलब ऐसे मूंदी हुई आंखों से फोन उठाते हैं और स्क्रॉल करना शुरू करते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम अनजाने में अपनी शख्सियत, अपनी जो पर्सनैलिटी है, उसको दूसरों के तस्वुर से तोल रहे होते हैं, या यूं कहें दूसरों की इमेज से तोल रहे होते हैं. जब हम घंटों दूसरों की लाइफ देखते हैं, उनका खाना, उनके कपड़े, उनकी हंसी, तो हम अपनी खुशी का जो ब्लूप्रिंट है ना, जो नक्शा है, उसे कहीं खो देते हैं. हम वो चीजें चाहने लगते हैं जो शायद हमें पसंद भी नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो स्क्रीन पर एक एस्थेटिक फिल्टर के साथ अच्छी लग रही है एंड लोग उसे पसंद कर रहे हैं. वी आर चेजिंग समवन एल्सस ड्रीम, जबकि हमारे खुद के सपने हमारा इंतजार कर रहे हैं. पर हमारी कम्युनिटी में ये बीमारी कोई नई नहीं है, बस आप डिजिटल हो गए हैं तो बस फिर देखिए. पहले ये बातें सिर्फ जो कहते हैं ना किटी पार्टीज या शादियों तक लिमिटेड थी, मगर अब ये हमारी जेब में है, हमारे फोन में 24 घंटे मौजूद है. बच्चों के मार्क्स कंपेयर करना, ज्वेलरी के डिजाइंस पर चर्चा करना, या ये देखना कि सो एंड सो रिश्तेदार ने कौन सा नया वेकेशन लिया है, हमने जिंदगी को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट बना दिया है, एक ऐसी रेस जिसका कोई फिनिश लाइन नहीं है. हम लोग क्या कहेंगे कि डर से इतना गिर गए हैं कि हमने अपना सुकून, अपना पीस गिरवी रख दिया है. हम भूल जाते हैं कि हर घर की अपनी एक कहानी होती है, हर इंसान की अपनी एक स्ट्रगल की कहानी होती है. जो फोटो आप देख रहे हैं वो सिर्फ एक मोमेंट है, पूरी जिंदगी नहीं. हम दूसरों के हाईलाइटेड रील्स को देख कर अपने बिहाइंड द सीन्स को बुरा भला कहने लगते हैं. इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है? चलिए एक मिसाल के रूप में ले लीजिए कि सड़क पर चलती हुई हर गाड़ी ब्रांडेड हो सकती है ना, चमकती हुई हो सकती है, मगर हर एक का जो पर्पस है, जो मकसद है, वो अलग होता है. कोई स्पोर्ट्स कार है जो सिर्फ स्पीड के लिए बनी है, कोई 4x4 SUV है जो रेगिस्तान की रेत में चलने के लिए बनी है, और कोई फैमिली कार है जो कंफर्ट और सेफ्टी के लिए है. अब अगर वो स्पोर्ट्स कार ये सोचने लगे कि वो रेत में क्यों नहीं चल पा रही, या फिर वो SUV ये सोचने लगे कि वो ट्रैक पर सबसे तेज क्यों नहीं है, तो ये बात जो है ना वो नाइंसाफी होगी, है कि नहीं? बिल्कुल वैसे ही एक की जिंदगी दूसरे से बेहतर नहीं है, बस अलग है. सबका सफर अलग है, सबकी मंजिलें अलग है, तो फिर हम अपनी जिंदगी की गाड़ी किसी और के ट्रैक पर क्यों चला रहे हैं? क्यों हम दूसरों के स्टैंडर्ड्स पर खुद को फेल अनाउंस कर देते हैं? योर लाइफ इज योर यूनिक जर्नी एंड इट्स टाइम यू स्टॉप, है ना? तो आप दूसरों की जिंदगी को अपनी जिंदगी का आईना ना बनाए और किसी और की कार को अपनी कार ना बनाए. मेरे ख्याल से ये एग्जाम्पल आपको कुछ हद तक समझ में जरूर आया होगा, है कि नहीं? वैसे मुझे एक फिल्म का बड़ा प्यारा डायलॉग याद आ रहा है, एंड वो शुरू इस तरह से होता है कि मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता. तो इस डायलॉग में एक बहुत गहरा सबक, यूं कहें लेसन छुपा है. दौड़ना जरूरी है, आगे बढ़ना जरूरी है, मगर अपनी डायरेक्शन में. हम दौड़ तो रहे हैं मगर दूसरों के पीछे. जो आपकी सोच है बस इतनी ही है, आपकी रफ्तार कोई रेस नहीं है. कंटेंटमेंट यानी सुकून तब नहीं मिलता जब आपके पास वो सब हो जो दूसरों के पास है. असली सुकून तब मिलता है जब आप ये यकीन करती हैं, ये बिलीव करती हैं कि आपके पास जो भी कुछ है वो आपके लिए परफेक्ट है, वो आपके लिए बेस्ट है और आपके कल के सफर के लिए बिल्कुल काफी है. तो अब जब आप सोशल मीडिया को अपने फोन पर स्क्रॉल करें, तो मैं कहूंगी कि एक चीज का ख्याल जरूर रखें,
देखे तो जरूर लेकिन अपनी पहचान खो कर नहीं, अपनी खुशियों को खो कर नहीं. रिमेम्बर यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी. ठीक है, अब जरा गहराई में चलते हैं, क्योंकि ये जो हम रोजाना स्क्रॉल करते हैं ना, ये सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं है, इट्स अ कंपैरिजन ट्रैप कि एक बहुत बड़ी कीमत हमारा जिस्म और हमारा दिमाग चुकाता है. कभी सोचा है आपने कि सोने से पहले जब आप वो आखिरी बार फोन चेक करते हैं तो आपके जहन में क्या चल रहा होता है? वेल, साइकोलॉजिस्ट इसे डिजिटल एंग्जाइटी कहते हैं. हमारा दिमाग उस ब्लू लाइट और दूसरों की चमकती लाइफ्स को देखकर इतना हाइपर हो जाता है कि सुकून की नींद एक ख्वाब बन जाती है. हम अपनी स्लीप साइकिल को तबाह कर लेते हैं. और क्यों? सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमारा दिमाग अनजाने में उन चीजों को प्रोसेस कर रहा होता है जो असली में है ही नहीं. हम फिल्टर्ड चेहरे देखते हैं, वो स्किन स्मूदिंग फिल्टर्स, वो जॉ लाइन शार्पनर टूल्स, और फिर जब हम फोन बंद करके मिरर में अपने आप को देखते हैं तो हमें अपनी स्किन, अपने कर्व्स और अपनी उम्र से थोड़ी सी ना गिला होती है. और कभी कभी तो हम हेट भी करते हैं. उफ, वी स्टार्ट लुकिंग आवर फ्लॉस, जो कि वो एक मास्टरपीस है. तो जनाब, हम यहाँ कतर में रहते हैं. दोहा एक ऐसा शहर है जो खूबसूरती और लग्जरी से भरा हुआ है. यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत फास्ट है और इस लाइफस्टाइल के साथ आता है एक अनस्पोकन प्रेशर भी. चाहे वो द पर्ल में कोई फ्राइडे ब्रंच हो, मुशरब में एक कॉफी डेट हो, या फिर किसी नामी मॉल में शॉपिंग हो. क्या ये जो आपके सोशल मीडिया पे चीजें दिख रही होती हैं आपको प्रेशर देती हैं? आई एम वेरी सर्टन देती होंगी. ये प्रेशर इतना एग्जॉस्टेड कर देता है कि हम मोमेंट को इंजॉय नहीं कर पाते. यस, जिस मोमेंट में हम अपनों के साथ हो रहे होते हैं, हम सडनली भूल जाते हैं कि ये लाइफ जो भी प्रेजेंट में चल रही है वो हमारी है, ना कि जो हम अपने फोनों की स्क्रीन पर देख रहे हैं. हम खाना खाने से पहले उसकी तस्वीर खींचते हैं, मिलने से पहले चेक करते हैं कि लाइटिंग सही है या नहीं. इससे पैदा होता है बॉडी डिस्मोर्फिया, एक ऐसी हालत जहां हमें अपने जिस्म में सिर्फ गलतियां नजर आती हैं. हम हमेशा फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट में रहते हैं कि कहीं मैं पीछे तो नहीं छूट गई, कहीं मेरी लाइफ बोरिंग तो नहीं हो गई. ये पिक्सल्स की दुनिया हमारे बैलेंस को ना बिगाड़ रही है. और तभी हम जब फिल्में देखते हैं तो कहीं ना कहीं से हमें इंस्पिरेशन भी मिलती है. मुझे सडनली याद आया डियर जिंदगी फिल्म का शाहरुख खान का वो डायलॉग जो कहता है कि सेफ फील करने के लिए पहले सारे डर निकालना जरूरी है. डोंट लेट योर पास्ट और समवन एल्सस प्रेजेंट ब्लैकमेल योर फ्यूचर. कितनी गहरी बात है ना. हम दूसरों के प्रेजेंट को देखकर, उनकी फिल्टर्ड फोटोज को देखकर अपने आने वाले कल को ना ब्लैकमेल करते हैं. हम सोचते हैं कि जब तक मैं वैसी नहीं दिखूंगी मैं खुश नहीं हो सकती, जब तक मेरा घर वैसा नहीं होगा मैं कामयाब नहीं हूँ. हमने अपनी खुशी की चाबी दूसरों के जो सोशल मीडिया हैंडल्स है उनको दे दी है. हम भूल गए हैं कि सेफ्टी और कंफर्ट हमारे अंदर से आता है, ये किसी फिल्टर से नहीं आता. योर बॉडी इज नॉट अ ट्रेंड. कपड़ों का फैशन बदलता रहता है, फोन के मॉडल्स बदलते रहते हैं, मगर आपका जो जिस्म है वो हर साल बदलने के लिए नहीं बना है. यस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखें. तो कहना चाहूंगी कि हमेशा ये याद रखिए, आपका जिस्म कोई डिस्प्ले पीस नहीं है कि जो किसी भी मॉल के विंडो में रख दिया जाए. ये आपकी रूह का घर है, इसे सजा मत दीजिए सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये किसी कंप्यूटर जनरेटेड इमेज जैसा नहीं दिखता. हम फिटनेस के नाम पर खुद को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करते हैं सिर्फ इसीलिए ताकि हम उस स्टैंडर्ड में फिट हो सकें जो किसी एआई एल्गोरिदम ने सेट किया है. बैलेंस तब आता है जब आप अपनी औकात या यूं कहें अपनी अहमियत को पहचानते हैं. जब आप ये समझते हैं कि आपकी स्किन पर जो निशान है ना वो आपके जीने की गवाही देता है, आपकी आंखों के नीचे जो थकावट है वो आपकी मेहनत की कहानी सुना रहा है. इसे छुपाइए मत, इसे ओन कीजिए. योर वर्थ इज नॉट मेजर्ड इन पिक्सल्स, इसका ख्याल जरूर रखें. ये मेजर करता है कि भाई आपने अपनी जिंदगी को किस तरह से होल्ड किया है. चलिए अब एक रियल मिरर चैलेंज की बात करते हैं. तो आज का आपके लिए चैलेंज है,
कि जब आप घर जाएं या घर पर आपको जब मौका मिले तो आईने के सामने

सामने खड़े होइए और अपने फोन को साइड पर रख दीजिए। एक असली आईने में देखिए, वो भी फिल्टर फ्री होकर। अपनी आंखों में देखिए और खुद से कहिए, मैं जैसी हूँ काफी हूँ। बैलेंस पिक्सल्स में नहीं, प्रेजेंस में है। तो कल जब आप दोहा की सड़कों पर निकले तो सोशल मीडिया रेडी होने के लिए नहीं, बल्कि लाइफ रेडी होने के लिए निकले। अपने वजूद का जश्न मनाए, आया समझ, तभी आपकी लाइफ आसान होगी। मैं हूँ अमिता आपके साथ और आप सुन रहे हैं मेरी पहचान। बने रहिए मेरे साथ क्योंकि आगे हम बात करने वाले हैं उस छुपी हुई मैं के बारे में जो कि आप हैं। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वंस अगेन. मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ और आप हैं मेरे साथ मेरी पहचान पर. हाँ जी, आज का एपिसोड हमारा बड़ा कमाल का है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं द कंपैरिजन ट्रैप के बारे में. हाँ जी, तो शो की शुरुआत में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि वो कौन सा एक स्टैंडर्ड है जिसे आप मेंटेन करते करते परेशान हो गई हैं. और हम आगे अपनी बातों को बढ़ाएं उससे पहले चले कुछ मैसेजेस की तरफ रुख करते हैं. तो हमें सारा का मैसेज है जो कि पहले कहती हैं सलाम. सो सारा, आपको भी सलाम. बोलती हैं कि ऑनेस्टली बोलूं तो मैं उस परफेक्ट मॉम वाले इमेज को मेंटेन करते करते थक गई हूं. और सोशल मीडिया पर जब मैं देखती हूं कि मॉम्स को वो अपने बच्चे के लिए ऑर्गेनिक खाने बना रही हैं, एस्थेटिकली प्लीजिंग टिफिन्स बना रही हैं, तो यहाँ मेरा जो बेटा है वो बिना नखरे करे दाल चावल तक नहीं खाता और वो खा ले तो बहुत बड़ी बात है. तो मैं सोचती हूँ कि भाई मुझे अभी सोशल मीडिया वाली मम्मियों को ना थोड़ा सा देखना बंद करना पड़ेगा. और मैंने तय किया है कि मैं अपने बिखरे हुए बालों और बच्चों के शोर के साथ ही खुश हूँ. नो मोर गिल्ट. दैट्स वेरी नाइस सारा. मेरे ख्याल से हमारे शो की शुरुआत में जो भी हमने बातें की और वो सुनने के बाद अगर आप ये हमें मैसेज कर रही हैं, देन रियली हैट्स ऑफ टू यू. वो कहते हैं ना कि कभी कभी आपकी अच्छी बातें अगर किसी एक के लिए भी काम आ जाए तो आप सक्सेसफुल हैं. बस वही मुझे महसूस हो रहा है. चले आगे बढ़े. जोया का मैसेज क्या कहता है. जोया कहती है कि मेरे लिए सबसे बड़ा बोझ होता है परफेक्ट घर दिखाना, वो वाइट सोफा, वो बिना मिट्टी वाला किचन. असलियत में वैसा घर सिर्फ फोटोज में ही होता है. मेरे घर में हर जगह खिलौने, किचन में मसालों के दाग, और मतलब रियलिटी में देखा जाए तो फिल्टर के बिना मेरा घर कहीं भी दिखाना या सोशल मीडिया पर दिखाना इट्स नॉट इजी. तो मैंने अब सोच लिया है कि भाई मेरा घर कोई म्यूजियम नहीं है, इसलिए जैसा है अब वैसा ही रहेगा. वेल जोया, यहाँ पर मैं आपको हाई फाई देना चाहूंगी बिकॉज एग्जैक्ट फीलिंग मुझे भी आती है. एंड ये जो आज मैंने टॉपिक लिया है हमारे शो का, ये इसके बारे में मैंने बहुत सोचा क्योंकि पर्सनली मेरा भी एक्सपीरियंस कुछ इसी तरह का रहा. जब हम परफेक्ट होम की बात करते हैं तो मेरे घर में भी काफी सारे लोग हैं, बच्चे हैं, तो जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ घर बिखरा ना हो तो ये इम्पॉसिबल है. सो डोंट वरी, वी आर ऑन द सेम ट्रैक. अब उसके बाद हमें अगला मैसेज आया है मारिया का और ये कहती है कि हाय अमिता, मेरा स्ट्रगल हमेशा से परफेक्ट बॉडी को लेकर रहा है. हर दूसरी पोस्ट पर वही ग्लास स्किन और जीरो साइज वेस्ट देख करना और स्ट्रेच मार्क्स के बिना जो लेडीज इतनी खूबसूरत लगती हैं वो देखकर मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं भी वैसे हूँ या मैं वैसे अपने आप को मेंटेन करूँ. पर आज रियलाइज हुआ कि ये थकी हुई आंखें मेरे परिवार की जो खिदमत की निशानी है ना, ये वो है. मैं इन फिल्टर्स की भूखी दुनिया से अब थोड़ा सा दूर रहने वाली हूँ और मैं अपने मोमेंट्स को एंजॉय करने वाली हूँ. सो मारिया, रियली हैट्स ऑफ टू यू. इट्स नॉट एन ईजी थिंग जो अभी आपने हमें मैसेजेस के थ्रू बताई. इट्स नॉट एट ऑल. सो रियली हैट्स ऑफ टू यू. और आप अपनी लाइफ को अपने दम पर अपनी खुशियों के साथ एंजॉय करें. मतलब कंपैरिजन ट्रैप से दूर रहेंगे तो आप अपनी लाइफ को वैसे भी बहुत स्मूथली एंजॉय कर सकते हैं. फरा का मैसेज है जो कहती है कि मुझ पर हमेशा एक भूत सवार रहता है कि मैं सुपर वूमन दिखूं. आ हा हा फरा, ये सिर्फ आपकी नहीं, ये सारी इस जनरेशन की लेडीज की प्रॉब्लम है. मतलब अब जब मैं देखती हूँ, ठीक है हमारी मम्मियों का दौर डिफरेंट था, लेकिन आज की हर औरत एक्चुअली सुपर वूमन बनना चाहती है. फिर चाहे ऑफिस का काम हो, घर का दस्तरखान हो और दोस्तों के साथ सोशल लाइफ हो, सब परफेक्ट होना चाहिए. आई रियली अग्री टू दैट. इस चक्कर में ना मैं खुद को भी भूल गई हूँ. फरा, मैं समझ सकती हूँ. और अब कहती है वो कि आज मैं कबूल करती हूँ कि मैं थक जाती हूँ और हर चीज में परफेक्ट होना एक धोखा है भाई, मुझसे नहीं होगा, मैं अब इम्परफेक्ट ही रहूंगी. फरा, मैं पता है आपके जैसे पहले थी, ऐसे नहीं कहूंगी कि अमिता बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट है. मेरे अंदर भी ये भूत सवार था कि मैं तो सुपर वुमन ही बनूंगी. हाँ, मैं अपने आप को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, दैट्स समथिंग दैट आई डू. लेकिन सुपर वुमन वाला जो भूत था वो काफी टाइम पहले मेरा उतर गया जब मेरी हेल्थ पर बात आने लगी. सो यस, आई थिंक अगर अभी आपने ये बात सोच ली है देन यू आर ऑन अ राइट ट्रैक. अब मुझे मैसेज है आयशा का जो कहती है कि हमेशा दूसरों की हाईलाइट रील्स, जैसे कि वेकेशन हुए, उनके गिफ्ट्स हुए, कांस्टेंट पार्टीज देख कर ना मैं सोचती थी कि मेरी लाइफ कितनी बोरिंग है भाई. पर सच तो ये है कि उन फोटोज के पीछे भी ना कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही होते हैं. तो भाई अब तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इंजॉय करूंगी सोशल मीडिया को, लेकिन उससे अपनी लाइफ से कंपेयर नहीं करने वाली हूँ.
तो देखें हमारी ब्यूटीफुल लेडीज के जो कुछ चुनिंदा मैसेजेस आए, उन्होंने कितनी खूबसूरत बातें कही कि देखिए ये सब स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हम मेंटेन करते करते करते थक गए एंड नाउ वी जस्ट वांट टू बी फ्री. तो फिर हम क्यों नहीं कर पा रहे हाँ? आई एम वेरी सर्टेन कि हम अब से कंपैरिजन ट्रैप से थोड़ा बच जाएंगे. चलिए मैसेजेस का आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, और जो मैसेजेस मैं पढ़ नहीं पाई हूँ उन्हें मैं शो के बाद जरूर पढ़ने वाली हूँ. सो प्लीज डोंट माइंड एंड अपने दिल की बातें, जो भी आपको लगता है आप चाहते हैं कि मेरी पहचान शो में ये भी अमीता चीज है जिसके बारे में आप बात करें, देन 666 डबल

0: आप सुन रहे हैं मेरी पहचान ए फॉर अमिता के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: और अब हम बात करेंगे छुपी हुई मैं के बारे में। अच्छा चलिए एक सवाल आपसे पूछ लेती हूँ। कभी सोचा है कि जब जो हमारे घर का वाईफाई बंद होता है, जब मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है और जब वो स्क्रीन की रोशनी एकदम गुल हो जाती है, तो वो छुपी हुई मैं कौन होती है? Who is the hidden you when the world is not watching? जब आपको कोई देख नहीं रहा है तो आप कौन है? वो एक ऐसी औरत है जो शायद बिखरे हुए बालों में रहती है, जो खुलकर बिना किसी डर के हंसती है, ये सोचे बिना कि उसकी हंसी एलिगेंट लग रही है या नहीं। वो है जो एक पुराने थोड़े से टूटे हुए कप में भी ना करक को इंजॉय

कर रही होती है पकोड़ों के साथ, बिस्किट्स के साथ, क्योंकि उसके लिए जायका या यूं कहें टेस्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है. क्रॉकरी नहीं कि भाई बिल्कुल लग्जूरियस स्टफ उनके घर में होना चाहिए, है कि नहीं. अब उस छुपी हुई मैं के पास ऐसी कहानियां हैं, ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो कोई फिल्टर, कोई लेंस कभी कैप्चर कर ही नहीं सकता. उसके चेहरे की लकीरें उसकी मेहनत की दास्तान सुनाती है और उसकी आंखों की चमक उसकी असली खुशी का आईना होती है. इस छुपी हुई मैं को किसी लाइक की जरूरत नहीं है कि खुद को प्यारा महसूस कराने के लिए मुझे लोगों के लाइक्स की जरूरत है या मुझे लोगों के फॉलोइंग्स की जरूरत है. उसे हजारों फॉलोअर्स नहीं चाहिए ये मानने के लिए कि वो इस दुनिया में मौजूद है, कि वो कीमती है. कम ऑन, असली हरियाली, असली ग्रीनरी जिसे हम कहते हैं, तो तब आती है जब आप कंपैरिजन की जो तलवार है ना उसे नीचे रख देते हो, जब आप दूसरों से ना खुद की तुलना करना छोड़ देते हो, तब सही मायनों में आप जीना शुरू करते हो. अब आप उन छोटे लम्हों की कद्र करना शुरू करोगे जो आप यूं ही इग्नोर कर देते थे, क्योंकि ये छोटे छोटे लम्हे ना बहुत सेक्रेड होते हैं. उन्हें इंटरनेट पर पोस्ट करने का दिल भी नहीं करता, लेकिन न जाने क्यों कंपैरिजन ट्रैप में हम वो सब करते हैं. वो बच्चे की मासूम शरारतें, वो दोस्तों के साथ फिजूल की बातें, या वो खामोशी से जो आप अपने साथ आराम से बैठकर अपनी दुनिया के बारे में सोचते हैं, ये सब आपकी हिडन आइडेंटिटी है. अपनी इस हिडन आइडेंटिटी को पहचानिए, उसे गले लगाइए. यकीन मानिए वो किसी भी डिजिटल फिल्टर से कहीं ज्यादा नायाब और खूबसूरत है. तो अब सवाल ये उठता है कि अमिता, हम इस ट्रैप से निकले कैसे? Well, इस ट्रैप से बाहर कैसे आएंगे? सुकून और कंटेंटमेंट कैसे पाएंगे? चलिए आज से हम मिलकर कुछ नए नियम बनाते हैं, कुछ रूल्स बनाते हैं, एक नया ब्लूप्रिंट बना लेते हैं. सबसे पहला कदम है डिजिटल डिटॉक्स का. उन अकाउंट्स को बिना किसी हेजिटेशन के अनफॉलो कीजिए जो आपको कम महसूस करवाते हैं. अगर किसी की प्रोफाइल, किसी की फोटोज देखकर अगर आपको अपनी जिंदगी सही नहीं लगती, या यूं कहें आप अपने आप को अनसक्सेसफुल मानने लगते हो, तो हिट दैट अनफॉलो बटन राइट नाउ. याद रखिए, ये कोई बदतमीजी नहीं है, ये सेल्फ केयर है. अपनी जहनी सुकून, यूं कहें मेंटल पीस की हिफाजत करना है, और ऐसा करने से आपको जरूर फर्क पड़ेगा. और दूसरा नियम है द 5 मिनट ग्रेटिट्यूड रूल. सुबह उठ के फोन को हाथ लगाने से पहले सिर्फ 5 मिनट निकालिए. 3 ऐसी चीजों के नाम लीजिए जिनके लिए आप दिल से शुक्रिया करते हैं. अपनी असलियत को पहले अपनाइए, इससे पहले कि आप किसी और के डिजिटल फैंटेसी में कदम रखें. जब आपका दिन शुरू होता है तो ग्रैटिट्यूड के साथ उसे शुरू कीजिए, तो दूसरों की चमकती हुई जिंदगी आपको फीकी लगेगी. ओके, तो अब बात करेंगे जोमो ओवर फोमो की. हाँ जी, आजकल हर कोई फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में जी रहा है, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ जोमो के बारे में सोचे, यानी जॉय ऑफ मिसिंग आउट. हाँ, इसको सेलिब्रेट कीजिए. हर पार्टी में होना, हर ट्रेंड का हिस्सा बनना, हर नई जगह पर चेक इन करना जरूरी नहीं है. कभी कभी घर पर बैठ कर पुरानी किताबें पढ़ना या सिर्फ खामोशी को सुनना सबसे बड़ी कामयाबी है. योर वैल्यू इज नॉट मेजर्ड बाय सोशल कैलेंडर, है कि नहीं. और

स्मार्टर, वेल्दियर या हैप्पियर नहीं बना रहा तो वो क्लटर है भाई, उसे साफ कर लो। सेलिब्रेट अदर्स, अगर किसी की कामयाबी देखकर थोड़ी जलन हो रही है तो उसे तुरंत एक कॉम्प्लीमेंट में बदल दो, उन्हें दिल से बधाई दो, उन्हें दिल से मुबारकबाद दो और खुद को याद दिलाओ कि उनकी जीत मेरी हार नहीं है, सबका अपना वक्त आता है। एंड देन रियल कनेक्शन, इस हफ्ते किसी एक ऐसे दोस्त से मिलो और शर्त ये रखो कि फोन टेबल पर उल्टा रहेगा, यानी कि आप उनके साथ अपना वक्त अच्छे से गुजारेंगे, क्योंकि असली मुश्किलों पर बात की जाती है, असली हंसी इंजॉय की जाती है। सिर्फ दोस्तों के साथ मिलना एक तस्वीर के लिए और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए नहीं होना चाहिए। क्यों, तो मैंने सही कहा ना? तो फिर आज आप अपनी इस छुपी हुई मैं को पहचानिए और मेरी पहचान पर अपने आप को एंजॉय कीजिए। और अभी लेट्स एंजॉय द ब्यूटीफुल ट्रैक, स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन एफएम 107 पर. मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ, और अब वक्त आ गया है आप सभी से विदा लेने का. वैसे मेरी पहचान में आज हमने इस कंपैरिजन ट्रैप के बारे में जो बात की, आई एम वेरी सर्टेन कि इससे हम अब जरूर निकल पाएंगे. वैसे अगले हफ्ते हम एक बहुत ही नाजुक और जरूरी बात करने वाले हैं, मेंटल लोड ऑफ मदरहुड. हाँ जी, अब हम इसे नेविगेट करेंगे, वो बोझ जो दिखाई नहीं देता मगर हर माँ उसे उठाती है. आज के लिए मैं कहूँगी इस कंपैरिजन ट्रैप से अपने आप को निकालिए, और फिर जो भी माँ है या जो भी माँ की हर एक प्रॉब्लम्स को समझती हैं वो इस अगले टॉपिक से जुड़ जाएंगी. और जिन्हें इनके बारे में कुछ नहीं पता, मतलब हमें हमेशा लगता है कि माएँ तो सुपर वुमन होती हैं, है कि नहीं? हमें नहीं पता कि जब वो सुपर वुमन बन जाती हैं तो वो क्या कुछ सैक्रिफाइस कर रही होती हैं. यस, वी विल टॉक अबाउट दैट. और हम कोशिश

करेंगे कि हर माँ का जो लोड है, जो मेंटल लोड है, उसे कम कैसे किया जाए. ठीक है, तो अगर आपके भी कोई सजेशंस वगैरह हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं 6622107 पर, 6622107 पर. और अभी के लिए अपनी अमिता को दीजिए इजाजत, क्योंकि अगले हफ्ते इस कमाल के टॉपिक के साथ हम मिलने वाले हैं मेरी पहचान शो पर. और अभी के लिए आप क्या करेंगे, हमारे FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, या फिर अपनी आरजे अमिता को भी सोशल मीडिया पे ढूंढ के आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं. अभी के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, एंजॉय योर रेस्ट ऑफ द डे. हम मिलेंगे अगले हफ्ते, सेम टाइम सेम प्लेस. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड। सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ, संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी, दिल से देसी।
2: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
3: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
2: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
3: हर मंडे सुबह 10 बजे से आरजे नाज़िया के साथ ओनली ऑन FM 107।
2: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107। दिल से देसी।

Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: तैयार हो जाइए एक बेमिसाल सफर के लिए, एक रेडियो शो जो आपको ले जाता है वक्त और स्पेस के हैरतअंगेज सफर पर। इस शो में आप डिस्कवर करेंगे तारीख और साइंस के सबसे बड़े राज, भूले हुए सिविलाइजेशंस, पुरानी टेक्नोलॉजीज जो वक्त के साथ खो गई, और कॉस्मिक मिस्ट्रीज जो आज भी साइंटिस्ट्स को हैरान कर रही हैं। हर एपिसोड एक दिलचस्प ऑडियो एडवेंचर है जो फैक्ट्स को रियलिस्टिक साइंस फिक्शन के टच के साथ प्रेजेंट करता है। अपनी क्यूरियोसिटी को जगाइए, इमेजिनेशन को बढ़ाइए और हमारे साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मजा लीजिए। आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और हमारे आज के इस सफर का टॉपिक है एक ऐसा राज जो सुना भी जा सकता है और महसूस भी किया जा सकता है, लेकिन इसे समझना इतना आसान नहीं है। किसके बारे में बात कर रही हूँ, चले बताती हूँ। सोचिए जरा, आप एक सूने सूने से रेगिस्तान में है, धूप इतनी तेज है कि उसकी झिलमिलाहट आंखों के अंदर तक जा रही है, हवा के झोंके रेत के जर्रात को तेजी से यहाँ वहाँ फेंक रहे हैं, और जब ये जर्रात एक साथ मिलकर यहाँ वहाँ सिरकते हैं तो अचानक एक आवाज उभर कर आती है। ना ये आवाज किसी रेडियो की है और ना ही किसी मशीन की, असल में ये है एक कुदरती राज, जैसे दूर से कोई बजती हुई घंटी, या कभी लगता है कि जैसे गहरा ढोल बज रहा हो, और कभी कभी तो ऐसा भी महसूस होता है कि जमीन अपने ही कोई गीत गा रही है। इस राज को कहते हैं सिंगिंग ड्यून्स, यानी गाने वाले रेगिस्तानी टीले। और सबसे हैरत की बात यह है कि ये आवाज सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग रेगिस्तानों में सुनाई देती है, सहारा से लेकर अलग अलग मुख्तलिफ रेगिस्तानों तक, और यहाँ तक कि कतर के रेगिस्तानों से लेकर चिली के अटाकमा तक। साथियों, आज का हमारा ये सफर एक ऐसी नेचुरल ऑर्केस्ट्रा का है जो इंसान ने नहीं बनाया, मगर जिसका सुरों भरा गीत साइंस को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। आज हम जानेंगे कि ये सिंगिंग ड्यून्स कैसे बनते हैं, कैसे आवाज निकालते हैं, और आखिर क्यों इनके सुर कभी नगमे की तरह लगते हैं और कभी जायंट ढोल की तरह सुनाई देते हैं। तो चलिए इस ऑडियो एडवेंचर का पहला कदम उठाते हैं और रेगिस्तान की गहराइयों में चलते हैं, जहां रेत खुद एक सुरीला सा गीत बन जाती है। साथियों, सिंगिंग ड्यून्स यानी गाती हुई रेत का जिक्र कोई नया नहीं है, इसका हवाला हमें बहुत से पुराने सफरनामों में मिलता है, जैसे दुनिया के मशहूर तरीन ट्रैवलर मार्को पोलो ने अपनी एक किताब में लिखा था कि जब वो चाइना के मशहूर तकलामाकन डेजर्ट से गुजरे तो उन्हें वहाँ रेत के टीलों से अजीब और गरीब आवाजें महसूस हुईं। उन्होंने ऐसी आवाजों को महसूस किया जो इंसानी आवाजों की तरह लग रही थी, कभी ढोल बजे तो कभी ऐसा महसूस हुआ कि जैसे गहरी हमिंग की साउंड हो। सिर्फ मार्को पोलो ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे ट्रैवलर्स हैं और कैरवान्स जिन्होंने ये इवेंट्स रिकॉर्ड किए। उनका कहना था कि जब बड़े बड़े रेत के टीले एक साथ मूव करते हैं या हवा चलती है तो रेत ऐसे गुनगुनाती है जैसे कोई गीत गा रही हो, कभी वो आवाज किसी घंटी जैसी होती है और कभी एकदम से आती गहरी गूंज जो दिल को दहला कर रख दे। मंगोलिया, चाइना और अरेबिया के डेजर्ट्स में लोगों के लिए ये आवाजें एक अजीब और हैरत अंगेज तजुर्बा होती हैं। उनका कहना था कि इन रेगिस्तानों में आवाजें ऐसी महसूस होती हैं जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। अक्सर कैरवान्स तो रात के वक्त इन टीलों के करीब रुकने से घबराया करते थे क्योंकि उन्हें लगता था

ये आवाजें इंसान को अपनी तरफ खींचती हैं और जो रुक जाए वो रेगिस्तान में खो भी सकता है। पुरानी अरबिक पोइट्री और पर्शियन टेल्स में भी इसका जिक्र बहुत ही मिस्टीरियस अंदाज में होता था। शायरों ने लिखा कि रेगिस्तान इंसान से बात करते हैं, कभी उसके दुख को समझते हैं, कभी उसकी तन्हाई के साथी बन जाते हैं। जरा सोचिए, उस वक्त के लोगों के लिए ये आवाज एक नई दुनिया का एहसास होती होगी। पहले जमाने में तो कुछ लोगों का ये भी मानना था कि ये रेत में छुपी मखलूकों की आवाजें हैं, और कोई तो इसे दोस्ती का पैगाम भी समझता था। ये इमेजिनेशन और मिस्ट्री आज भी डेजर्ट कल्चर का हिस्सा है। अब भी जो लोग सहरा या रेगिस्तानों में सफर करते हैं वो कहते हैं कि जब आवाज तेज चलती है और रेत हिलती है तो दिल को हिलाने वाली गूंज सुनाई देती है। साथियों, अब हम चलते हैं सिंगिंग ड्यून्स के साइंटिफिक राज की तरफ, मतलब असल में ये आवाजें बनती कैसे हैं। भाई, सोचने वाली बात ये है कि क्या ये सिर्फ हवा के खेल हैं या रेगिस्तानों का कोई छुपा हुआ मैजिक ट्रिक। साइंस ने इस पर बहुत रिसर्च की है और आज हम उसकी कहानी आपको मजीद तफसील से सुनाने जा रहे हैं। सबसे पहली बात ये है कि आवाज तब निकलती है जब रेत के पार्टिकल्स एक साथ नीचे की तरफ गिरते हैं या स्लाइड करते हैं। अच्छा, इसे कुछ ऐसे समझने की कोशिश करें कि जब आप रेत की एक बड़ी स्लोप पर चल रहे होते हैं या उस पर स्लाइड करते हैं, या हवा के प्रेशर से रेत नीचे की तरफ सिरकती आ रही होती है, तो रेत के छोटे छोटे जर्रात यानी रेत के छोटे छोटे ग्रेन्स एक दूसरे के साथ रब होते हैं। इस रबिंग और फ्रिक्शन की वजह से हवा के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं और ये वाइब्रेशन कन्वर्ट होती है एक बूमिंग साउंड में, जो आपको लगता है कि जैसे रेगिस्तान गा रहा हो। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस साउंड की फ्रीक्वेंसी भी साइंटिस्ट्स ने मेजर की है। वो ये कहते हैं कि ये आवाज 70 हर्ट्ज से 110 हर्ट्ज तक होती है। अब अगर आपको फिजिक्स थोड़ा याद हो तो समझ जाइएगा कि ये फ्रीक्वेंसी बिल्कुल उसी रेंज में आ जाती है जहां म्यूजिकल नोट्स बनते हैं। भाई, मतलब सिंपल जबान में समझें तो रेगिस्तान की आवाज एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करती है, जैसे एक जायंट ढोल बज रहा हो जो हवा में गूंज रहा हो। अच्छा साथियों, ये आवाज दुनिया के हर रेगिस्तान से नहीं आती, सिर्फ कुछ खास जगहें होती हैं जो आपको ये कॉन्सर्ट सुनाएंगी। सबसे मशहूर सिंगिंग ड्यून्स आपको मोरक्को, चिली, चाइना और ओमान के डेजर्ट्स में मिलते हैं। इनके अलावा सेंट्रल एशिया के कुछ और रेगिस्तान भी इसी लिस्ट में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोरक्को के अर्क जबी ड्यून्स, इनमें आपको ऐसा लगता है जैसे कोई जायंट सा तबला बजा रहा है। और चाइना के बेडियान जरान डेजर्ट में, वहां पर तो आवाज इतनी जोर से आती है कि सुनने वाले को लगता है कि जैसे पूरा का पूरा पहाड़ गरज रहा हो। और भाई, अगर ओमान के बारे में बात करें तो ओमान के रुब अल खाली में तो लोकल लोग कहते हैं कि उनके ड्यून्स में अजीबोगरीब मखलूकों की आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन साइंस के मुताबिक ये सब कुछ सिर्फ फ्रिक्शन का खेल है। अच्छा साथियों, अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई हर रेगिस्तान की रेत क्यों ऐसे गीत नहीं गाती। भाई, साइंटिस्ट ने इसका जवाब भी दिया है। वो कहते हैं असल में ये डिपेंड करता है रेत की शेप और साइज पर। जिन ड्यून्स से गाने की आवाजें आती हैं उनकी रेत के ग्रेन्स बहुत ही राउंड और यूनिफॉर्म साइज के होते हैं, मतलब सब जर्रात एक जैसे गोल और छोटे मोती की तरह होते हैं। अगर ग्रेन्स का साइज अनइवन हो या रेत बहुत गीली हो जाए तो आवाज प्रोड्यूस नहीं होती। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब रेत बहुत हैवी या मिक्स टेक्सचर वाली हो तो वाइब्रेशन आपस में कैंसिल हो जाती है, और जब वाइब्रेशन कैंसिल हो जाए तो भाई आवाज भी खत्म ही हो जाएगी ना। मतलब रेगिस्तान का ये ऑर्केस्ट्रा चलने के लिए भाई रेत की परफेक्ट ट्यूनिंग में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा साथियों, अब रुख करते हैं एक बहुत ही जबरदस्त साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की तरफ। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT के रिसर्चर्स ने ये मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। उन्होंने रेत का एक आर्टिफिशियल एवलेंज बनाया, मतलब ये कि जानबूझकर रेत को एक बड़े स्लोप से नीचे गिराया। जब रेत नीचे गिरी तो थाउजेंड्स ऑफ ग्रेन्स एक साथ एक रिदम में वाइब्रेट करने लगे। हर ग्रेन अपनी माइक्रो वाइब्रेशन करता रहा, लेकिन जब ये वाइब्रेशंस एक साथ सिंक हो जाती हैं,
तो वो एक सिंगल पावरफुल बूम साउंड में कन्वर्ट हो जाती हैं। MIT के साइंटिस्ट्स ने इसको कंपेयर किया एक नेचुरल ऑर्केस्ट्रा के साथ, लेकिन फर्क ये था कि इस ऑर्केस्ट्रा का कोई कंडक्टर नहीं था भाई। सब रेत के ग्रेन्स अपनी ही मर्जी से एक ही रिदम पकड़ लेते हैं और आवाज बनाते हैं। जरा सोचिए, बिना किसी म्यूजिशियन के एक पूरा डेजर्ट अपने कॉन्सर्ट दे रहा हो, कोई सितार, कोई गिटार, कोई तबला नहीं, सिर्फ रेत के जर्रात और हवा, और आवाज ऐसी कि सुनने वाले की रूह गूंज उठे। तो साथियों, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर अपनी कहानी, अपनी एक्सप्लोरेशन कंप्लीट करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए FM 107 पर एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी।

0: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अब वक्त है शो के बाकी हिस्से का, जहां मजीद इंटरेस्टिंग बातें आपका इंतजार कर रही हैं। साथियों, एक और अमेजिंग चीज जो साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर की वो ये थी कि ये आवाज छोटी सी जगह तक लिमिटेड नहीं होती। कभी कभी ये बूमिंग साउंड किलोमीटर्स दूर तक सुनाई देती है। इसकी इंटेंसिटी ऐसी होती है जैसे दूर कहीं थंडर हो रहा हो। साउंड्स की ये पावर डिपेंड करती है कि एवलेंच कितनी बड़ी है और रेत के ग्रेन्स का सिंक्रोनाइजेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। छोटी सी स्लोप पर आवाज हल्की सी होगी, लेकिन अगर एक पूरा बड़ा ड्यून एक साथ स्लाइड कर जाए तो आवाज लिटरली एक जायंट स्पीकर की तरह पूरे रेगिस्तान में फैल जाती है। साथियों, यहाँ पर एक और फन फैक्ट भी मौजूद है, और पता है वो क्या है? ये आवाज हमेशा एक ही पिच पर नहीं होती। कभी ये डीप बेस होती है, कभी थोड़ा हाई नोट, मतलब रेगिस्तान कभी कभी डीजे भी बन जाता है और अपने हिसाब से बीट्स चेंज करता रहता है। साथियों, साइंटिस्ट्स ने ये देखा है कि पिच का फर्क रेत के ग्रेन्स के साइज और उनके गिरने की स्पीड पर डिपेंड करता है। तो साथियों, सिंपल लफ्जों में अगर आपको समझाया जाए तो भाई, सिंगिंग ड्यून्स की आवाजों का रीजन है रेत के ग्रेन्स एक स्पेसिफिक साइज और शेप के होते हैं। जब ये ग्रेन्स एक साथ स्लाइड करते हैं तो फ्रिक्शन और वाइब्रेशन बनती है। जब वाइब्रेशन सिंक्रोनाइज होती है तो वो एक लाउड म्यूजिकल साउंड बनाती है। ये आवाज 72-110 हर्ट्ज की होती है, जो बिल्कुल म्यूजिकल नोट्स के बराबर है। मतलब रेगिस्तान असल में एक नेचुरल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इंसान ने डिजाइन नहीं किया बल्कि नेचर ने खुद बनाया है, और दुनिया के कुछ खास रेगिस्तान ये लाइव कॉन्सर्ट हमें गिफ्ट करते हैं। साथियों, इंटरेस्टिंग बात ये है कि हर रेत के टीले की अपनी एक अलग आवाज निकलती है। कोई ऐसी आवाज निकालता है जो बिल्कुल डीप बेस जैसी होती है, जैसे दूर कहीं ढोल बज रहा हो, और कोई टीला फ्लूट जैसी हल्की फुल्की सुरीली सी आवाज निकालता है। मतलब ये कि डेजर्ट का हर ड्यून एक अलग ही म्यूजिशियन है। आपको सुनकर ये हैरत होगी कि अगर आप खुद अपने हाथ या पांव से रेत को स्लाइड करें तो आपको महसूस होगा कि छोटी सी सिंगिंग शुरू हो जाती है। मतलब डेजर्ट में किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत ही नहीं, बस थोड़ी रेत हिलाइए और कॉन्सर्ट शुरू। साथियों, पुराने दिनों में लोग जब ये आवाजें सुना करते थे तो उनको लगता था कि शायद कोई UFO या एलियन सिग्नल आ रहा है। जरा सोचिए, एक शख्स रात के अंधेरे में डेजर्ट से गुजर रहा हो और अचानक ये आवाज सुन ले, तो ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि उसे लगता होगा कि कोई खलाई मखलूक उसे कांटेक्ट कर रही है। अच्छा साथियों, रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जहां उन्होंने लोगों को एक साथ ड्यून्स पे दौड़ाया, और फिर जो आवाज निकली भाई, वो आवाज तो और भी ज्यादा पावरफुल थी, जैसे कि पूरा ऑर्केस्ट्रा बज रहा हो। मतलब ये कि एक बंदा चले तो गाना हल्की सी आवाज में होगा, और अगर पूरी टीम चले तो भाई फुल वॉल्यूम कॉन्सर्ट हो जाता है। अच्छा साथियों, ओमान के डेजर्ट के लोग कहते हैं कि कभी कभी इन ड्यून्स की आवाजें शादी के वक्त बजने वाले ढोल की याद दिलाती हैं। मतलब ये कि डेजर्ट भी मूड समझता है भाई, कहीं आसपास शादी हो रही हो तो आवाज भी ढोलक वाली प्रोड्यूस करेगा। साथियों, अब थोड़ा सा आगे मूव ऑन करते हैं और बात करते हैं उस हिस्से की जहां साइंस ने थोड़ा समझा दिया लेकिन बहुत से राज अभी भी हवा में तैर रहे हैं। मतलब ये कि सिंगिंग ड्यून्स के कुछ सीक्रेट्स अभी भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुए। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि हर ड्यून क्यों नहीं गाता। जरा सोचिए, आप एक रेगिस्तान के बीच खड़े हैं, एक टीला ऐसे गूंज रहा है जैसे पूरा डेजर्ट म्यूजिक का कॉन्सर्ट दे रहा हो, और साथ वाला टीला बिल्कुल खामोश। ऐसा क्यों भाई? रेत की सरफेस बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, हवा भी चल रही है, लेकिन इसकी आवाज अभी तक नहीं निकली। साइंटिस्ट ने ये देखा है कि इसके पीछे बहुत सटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे रेत के ग्रेन्स की माइक्रोशेप, उनका मॉइस्चर कंटेंट और ग्रैनुलर अलाइनमेंट। दूसरी मिस्ट्री ये है कि आवाज का पैटर्न कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल होता है। कभी एक ड्यून पूरे जोर से बजती है और अगले दिन वही ड्यून बिल्कुल खामोश हो जाती है। भाई मतलब ये कि नेचर के इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का रिदम कभी प्रेडिक्टेबल नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि शायद हवा का डायरेक्शन और तेजी इसकी वजह होगी या भाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी इस पर असर डाल सकती है। अगर हवा का प्रेशर ज्यादा हो तो वाइब्रेशन और लाउड हो जाती है, अगर हवा थोड़ी सी धीमी हो तो आवाज भी हल्की ही होगी ना। लेकिन इन फैक्टर्स का एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन अभी तक साइंस के लिए भी एक चैलेंज है भाई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि डेजर्ट के अंदर ये आवाज कभी कभी इतनी परफेक्ट लगती है कि लोग पुराने जमाने में इसे रूहानी या मैजिकल फिनोमेना समझते थे। कुछ कल्चर्स के लोग कहते हैं कि शायद ये आवाजें डेजर्ट के अंदर छुपी हुई किसी मखलूक की हैं, जो इंसान से बात कर रही होती हैं। साइंस ने इसको पार्शियली एक्सप्लेन किया, लेकिन इमेजिनेशन के एलिमेंट्स अभी भी अलाइव हैं। और साथियों, इसी वजह से सिंगिंग ड्यून्स एक हाफ साइंस हाफ मिस्ट्री टॉपिक बन गया है। हम जानते हैं कि फ्रिक्शन और वाइब्रेशन काम करते हैं, लेकिन कभी कभी नेचर अपनी मर्जी से सरप्राइजेस देती है। एक नेचुरल ऑर्केस्ट्रा जहां कंडक्टर सिर्फ हवा और रेत के जर्रात हैं। और हाँ, यहाँ की परफॉर्मेंस कभी रिपीट नहीं होती। सोचिए साथियों, एक ऐसी चीज जहाँ साइंस का फॉर्मूला पार्शियली काम करता है, लेकिन कुछ सीक्रेट्स अभी भी ऐसे हैं जो सिर्फ डेजर्ट खुद जानता है। शायद यही मैजिक है जो हम ह्यूमंस को नेचर के राजों की तरफ अट्रैक्ट करता है, और ये क्यूरियोसिटी ही हमें अगले एडवेंचर की तरफ ले जाती है। तो साथियों, ये था हमारा आज का सफर रेत के टीलों की इंटरेस्टिंग सिंफनी के साथ। एक ऐसी आवाज जो कभी रूहानी लगती है, कभी साइंटिफिक, और कभी बस एक डेजर्ट का राज होती है। साथियों, जाते जाते मैं आपको एक छोटी सी सोच के साथ छोड़ना चाहती हूँ। सोचिए, अगर नेचर खुद आपसे अपनी कहानी कहती हो तो क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं? हर ड्यून अपना गीत गाता है, हर टीला एक राज छुपाए रखता है, और हर गूंज हमें एक पैगाम देती है कि अभी भी दुनिया में ऐसे राज हैं जो हम सिर्फ महसूस करके समझ सकते हैं, उन्हें देखकर नहीं। तो साथियों, अगले सफर में भी अपने दिल और कानों को खुला रखिएगा, क्योंकि शायद आपको एक ऐसी आवाज सुनाई दे जो सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। साथियों, याद रखिएगा कि ये सिंगिंग ड्यून्स यानी गाती हुई रेत असल में एक ऐसी कुदरती पहेली है जो साइंस, कल्चर और इमेजिनेशन तीनों को मिलाकर हमारी सोच को हिला कर रख देती है। आप जरा सोचिए, एक सहरा जहां इंसान सोचता है कि सब कुछ सूखा, सूना और सुनसान होगा, वहां से अचानक ऐसी आवाजें उठती हैं कि जैसे जमीन अपनी कहानी सुना रही हो। साइंटिस्ट कहते हैं कि जब हवा तेज चलती है या इंसान रेत पर चलकर उसे हिलाता है तो रेत के जर्रात आपस में टकरा कर एक वाइब्रेशन पैदा करते हैं। ये वाइब्रेशन ही वो सुर बन जाती है जो कभी गुनगुनाती हुई लगती है, तो कभी ढोल बजाती हुई महसूस होती है, और कभी ऐसी लगती है जैसे जमीन की गहराइयों से कोई अपने राज कहना चाह रहा हो। लेकिन साथियों, मानने वाली बात है कि इसकी असली खूबसूरती सिर्फ साइंस तक लिमिटेड नहीं है। कई लोकल लोगों और मुख्तलिफ कल्चर्स की मुख्तलिफ रिवायतें तो ये भी कहती हैं कि ये ड्यून्स डेजर्ट की रूह हैं जो इंसान से राब्ता करती हैं, उन्हें याद दिलाती हैं कि सहरा खामोश नहीं, जिंदा है। ये भी तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना, कि हर डेजर्ट की ड्यून एक अलग ही सुर में गाती है। कहीं वो आवाज आपको लगता है जैसे कोई घंटी बजा रहा हो, तो कभी ऐसा लगता है कि गहरी बेस वाली हमिंग चल रही हो। इसीलिए इन्हें लोगों ने सिंगिंग ड्यून्स, बूमिंग ड्यून्स और विस्परिंग सैंड्स तक कहा है। ये नाम ही इसकी रूह को समझाते हैं। डेजर्ट में वो राज छुपे हैं जो आवाजों के जरिए दुनिया को छूते हैं। भाई, आज के इस एपिसोड का सबसे बड़ा पैगाम आप लोगों के लिए ये था कि ये मत भूलिएगा कि नेचर हमेशा अपने तरीके से हमसे बात करती है, कभी फूल की खुशबू में, कभी समंदर की लहरों के शोर में, और कभी रेत के इन मिस्टीरियस सुरों में। मामला सिर्फ ये है कि हम अपने दिल और कानों को कितना खोल कर सुनते हैं। सोचने वाली बात ये है, अगर एक सूखा सुनसान डेजर्ट भी गा सकता है तो जिंदगी के हर मोड़ पर हमें भी अपने सुर ढूंढना चाहिए, क्योंकि इंसान और कुदरत दोनों एक ही रंग के हिस्से हैं। बस जरूरत है तो उस रंग को समझने की, और शायद इसीलिए सिंगिंग ड्यून्स हमें कहती हैं, सुनो जिंदगी खामोश नहीं है, हर जगह एक गीत छुपा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नई जगह एक नए टॉपिक पर इन एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तब तक के लिए सफा को दीजिए इजाजत, ना ढेर सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, और सुनते रहिए FM 107।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

दोस्तों, सड़कों पर मुकर्रर की गई या डेजिग्नेटेड लेन्स में चलना, खास तौर पर चौराहों और ट्रैफिक सिग्नल पर ट्रैफिक की रवानी में मदद फराहम करता है और सड़क हादसात को कम करता है। जब हर शख्स अपनी डेजिग्नेटेड लेन में चलने का एहतमाम करता है तो ना सिर्फ सफर ज्यादा आसान हो जाता है बल्कि

0: रास्ते में चलने की सहूलत मिलती है। इससे ना सिर्फ वक्त की बचत होती है बल्कि हादसे और रुकावटों का खतरा भी कम हो जाता है। जब हर शख्स लेन का ख्याल रखता है तो ना सिर्फ सफर में बेहतरी आती है बल्कि सबके लिए सेफ एनवायरनमेंट भी बन जाता है। चौराहों और ट्रैफिक सिग्नल पर लेन में चलना रोड रेज को भी कम करता है और सबको अपनी मंजिल तक जल्दी और अहम वक्त में पहुंचने में मदद मिलती है। अगर हम सब अपनी अपनी लेन में चलें तो हम ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरे लोगों की भी जान को महफूज रख सकते हैं। रोड सेफ्टी को अपनाकर हम अपने सफर को बेहतर और सिक्योर बना सकते हैं। ट्रैफिक रूल्स का एहतराम करना हमारी जिम्मेदारी है जो सबके अमन और सेफ्टी के लिए जरूरी है। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है। कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आज हम बात करेंगे कतर बीच वॉलीबॉल के वन ऑफ द सुपरस्टार्स अहमद तिजान के बारे में। अहमद तिजान कतर के लीडिंग बीच वॉलीबॉल प्लेयर्स में से एक हैं, जो असल में घाना से ताल्लुक रखते हैं और बाद में कतर की नेशनल टीम का हिस्सा बन गए। उनका टॉल और स्ट्रॉन्ग एथलेटिक स्ट्रक्चर उन्हें नेट के करीब एक पावरफुल ब्लॉकर बनाता है। अहमद तिजान ने शरीफ यूनुस के साथ मिलकर दुनिया की टॉप बीच वॉलीबॉल प्लेयर्स को टफ कंपटीशन दिया है और कतर को इंटरनेशनल लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाया है। अहमद तिजान के खेलने की सलाहियत डिफेंसिव ब्लॉकिंग और क्विक रिएक्शंस पर मबनी है। वो कोर्ट पर बहुत काम और कंपोज रहते हैं, जो उन्हें प्रेशर सिचुएशंस में भी बेहतर परफॉर्मेंस देने में मदद देता है। उन्होंने ओलंपिक गेम्स और FIVB यानी इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन वर्ल्ड टूर में कतर की तरफ से शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं और कई बार पोडियम फिनिशेस हासिल की हैं। उनका पार्टनरशिप शरीफ यूनुस के साथ बीच वॉलीबॉल वर्ल्ड में बहुत मशहूर है और दोनों की केमिस्ट्री उनकी सक्सेस का राज मानी जाती है। अहमद तिजान ने कतर के बीच वॉलीबॉल स्ट्रक्चर को इंटरनेशनल रेस्पेक्ट दिलाने में अहम किरदार अदा किया है। उनकी डेडिकेशन और हार्ड वर्क उन्हें दुनिया के एलिट प्लेयर्स में शामिल करता है और आज वो कतर की स्पोर्ट्स लीगेसी को आगे बढ़ाने में मसरूफ है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, गाड़ियों के ड्राइवर्स और दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों को अर्जेंट इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे के सिविल डिफेंस, एम्बुलेंसेस, फायर इंजन्स और पुलिस की गाड़ियों को गुजरने के लिए रास्ता देना चाहिए। इन गाड़ियों के ड्राइवर्स मल्टी टोन साइरन्स और मखसूस लाइट डिवाइसेस के जरिए आपको बताते हैं कि उस वक्त इन्हें अर्जेंट इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी कॉल के दौरान इन गाड़ियों को ओवरटेक करने से या इमरजेंसी व्हीकल्स के पीछे 50 मीटर से कम फासला बनाए रखने से आपको ट्रैफिक वायलेशन का सामना करना पड़ सकता है। ड्राइविंग के वक्त सतर्क रहिए और दूसरों का ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। FM 107 आप सबकी खुशगवार जिंदगी का ख्वाहिशमंद है।
2: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं RJ सर्वर MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में। MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारती दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद RJ सर्वर। Don't miss it.
0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 Qatar। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम बात करने वाले हैं कमर दर्द से बचाव के बारे में कि कमर दर्द दुनिया भर में एक बहुत ही आम मसला है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि अक्सर सूरतों में इसे दुरुस्त आदत अपनाकर रोका जा सकता है। कमर दर्द की एक बड़ी वजह हमारी जो पोस्चर है वो गलत होना है, या फिर नशिस्तो बर्खास्त है वो, चाहे आप ऑफिस में हों, गाड़ी चलाते हों, या घर के काम आप सर अंजाम दे रहे हों, जिस्म की दुरुस्त पोजीशन बहुत अहम है। जैसे कि अगर हम चेयर पर बैठते हैं तो बिल्कुल सीधा बैठिए, कमर को कुर्सी के बैक सपोर्ट से ज़रूर लगाइए, कंधे को ढीला और बिल्कुल सीधा रखिए, दोनों पाँव ज़मीन पर होने चाहिए, कंप्यूटर स्क्रीन आंखों की सतह पर होनी चाहिए, और इसी तरह जो वजन है वो दोनों जो पाँव हैं उन पर बराबर तकसीम कीजिए जब आप खड़े हों, और इसी तरह से जैसे ही आप खड़े हों तो कंधे बिल्कुल सीधे रखिए, ज़्यादा देर एक ही पोजीशन में ना खड़े हों। अगर कोई चीज़ उठानी हो तो कमर झुकाने के बजाय घुटनों को आप मोड़िए और वज्र जिस्म के करीब रख कर उठाइए। लिसनर्स, ये हमें याद रखना है कि दुरुस्त जो पोस्चर है ना सिर्फ कमर दर्द से बचाता है बल्कि जिस्मानी थकावट और पट्टों के दबाव को भी कम करता है। अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी छोटी तब्दीलियां लाएं तो हम बहुत ही बेहतर अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और ये छोटी छोटी तब्दीलियां लाकर आप और हम अपनी कमर को सेहतमंद रख सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107. This is your eco switch segment with Safa. और भाई आज का टॉपिक है स्कूल के बच्चों को अवेयरनेस, यानी बच्चों को इको हैबिट्स सिखाना असल में फ्यूचर में सबसे बड़ी एनवायरनमेंट इन्वेस्टमेंट है. अच्छा, अब इसको एक बड़ी सिंपल सी सोच से सोचिए. अगर आप पानी बचाना, बिजली बचाना और सफाई रखना बचपन से ही सीख लें तो वो आदतें आपके साथ पूरी जिंदगी चलती हैं ना. बिल्कुल जैसे साइकिल या स्विमिंग कभी नहीं भूलती. देखिए, स्कूल सिर्फ किताबी तालीम का सेंटर नहीं होते बल्कि ये वो जगह होते हैं जहाँ हैबिट्स रीशेप होती हैं, या कह लें कि शेप होती हैं. और इको हैबिट्स अगर यहीं डेवलप हो जाएं तो भाई एक जनरेशन का एनवायरमेंटल फुटप्रिंट ड्रामेटिकली चेंज हो सकता है. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यूनेस्को के मुताबिक अगर बच्चों को अर्ली एज पर एनवायरमेंटल एजुकेशन दी जाए तो वो 70% यानी 70% ज्यादा चांसेस रखते हैं कि वो एडल्ट लाइफ में सस्टेनेबल चॉइसेस अडॉप्ट करें, यानी रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस उनकी नॉर्मल लाइफ का हिस्सा बन जाता है. अब जरा इमेजिन करें, अगर एक स्कूल में 500 बच्चा है और हर बच्चा सिर्फ एक छोटी आदत चेंज करे, जैसे जब ब्रश कर रहे हो तब अपने घर में पानी का टैप बंद कर देना, तो रोजाना हजारों लीटर पानी वेस्ट होने से बच सकता है ना. देखिए, कतर जैसे कंट्री में जहाँ वाटर ऑलरेडी एक वैल्यूएबल रिसोर्स है, ये अवेयरनेस और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है. अब अगर इको स्विच को हम रिलेटेबल बनाएं तो सोचिए, स्कूल का वॉशरूम है और एक

0: एक बच्चा टैब फुल प्रेशर पर छोड़ देता है। देखिए वो बच्चा 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट में लगभग 10 से 15 लीटर पानी वेस्ट कर सकता है। अब अगर वही बच्चा इको स्विच समझ ले, टैप बंद करे, जरूरत पड़ने पर ही उसे ऑन करे, तो वो हर दिन मल्टीपल बकेट्स पानी सेव कर रहा है बिना किसी एफर्ट के। यही छोटी छोटी हैबिट्स मिलकर बड़ा इम्पैक्ट बनाती हैं। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी अवेयरनेस की। स्कूल क्लासरूम्स में अक्सर लाइट्स, फैंस और एसी तब भी चल रहे होते हैं जब क्लासरूम एम्प्टी होता है। अगर बच्चों को ये हैबिट सिखा दी जाए कि भाई जो लास्ट रूम से निकल कर आएगा ना, जाते हो लाइट्स ऑफ करेगा, तो एक स्कूल अपनी एनर्जी कंजम्पशन को 10-20% तक रिड्यूस कर सकता है। एक और फन फैक्ट ये है साथियों कि अगर एक नॉर्मल स्कूल बिल्डिंग सिर्फ लाइट्स एफिशिएंटली यूज करे ना, तो वो हर साल इतनी एनर्जी सेव कर सकती है जो कि एक छोटे घर को 6 महीने तक चलाने के बराबर होती है। अच्छा, अब इको स्विच में बच्चों को एंगेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ लेक्चर देना काफी नहीं होता, उन्हें एक्टिविटीज चाहिए होती है ना, जैसे इको पॉइंट सिस्टम, जहां हर बच्चे को रिवॉर्ड मिले जब वो रिसाइकल करे, डस्टबिन यूज करे या पेपर वेस्ट कम करे। स्टडीज शो ये करती हैं कि जब बच्चे गेम फील्ड लर्निंग के थ्रू इको फ्रेंडली हैबिट्स डेवलप करते हैं तो उनकी रिटेंशन रेट 80% तक बढ़ जाती है। अब एक और रिलेटेबल एग्जांपल ये है कि स्कूल कैंटीन में अगर डिस्पोजेबल प्लास्टिक बॉटल्स यूज हो रही हैं, तो बच्चों को एनकरेज किया जाए कि वो रिफिलेबल बॉटल्स लाएं। एक छोटी सी हैबिट जो हम चेंज करते हैं, हर दिन हजारों प्लास्टिक बॉटल्स को वेस्ट होने से रोक सकती हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि भाई एक प्लास्टिक बॉटल को डिग्रेड होने में तकरीबन 450 से 500 साल लगभग लग जाते हैं। मतलब जो बॉटल आज यूज होती है वो कई जनरेशंस तक एनवायरनमेंट में रह सकती है। अब बात करते हैं पेपर वेस्ट की। स्कूल में नोटबुक्स, वर्कशीट्स और असाइनमेंट्स का यूज होता ही होता है, जो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन अगर डबल साइडेड प्रिंटिंग और रीयूज ऑफ रफ पेजेस अडॉप्ट किया जाए तो पेपर वेस्ट तकरीबन 30-50% तक कम हो सकता है। बच्चों को ये समझाया जाए कि हर पेज सिर्फ कागज नहीं बल्कि एक दरख्त का हिस्सा है। एक सिंपल फैक्ट ये भी है कि एक दरख्त से लगभग 8000 पेजेस तक का पेपर बन सकता है। सो अगर हम वेस्ट कम करेंगे तो हम डायरेक्ट स्ट्रेस से बच सकते हैं। इसके अंदर इको स्विच का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है रोल मॉडलिंग, यानी बच्चे वो सीखते हैं जो वो देखते हैं। अगर टीचर्स और स्टाफ इको फ्रेंडली हैबिट्स फॉलो करें, जैसे लाइट्स ऑफ करना, वेस्ट सेग्रीगेट करना, तो बच्चे नेचुरली उन्हें इमिटेट करते हैं। अब थोड़ी सी प्रैक्टिकल टिप्स की तरफ आए साथियों, तो भाई स्कूल्स इजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला ये कि क्लासरूम इको मॉनिटर, देखिए इको मॉनिटर अपॉइंट करें जो हर दिन ये चेक करे कि लाइट्स, फैंस और एसी प्रॉपर्ली यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। दूसरा हमारा पॉइंट ये है, रिसाइकलिंग कॉर्नर हर क्लासरूम में बनाया जाए जहां पेपर और प्लास्टिक अलग अलग कलेक्ट हो रहे हों। तीसरा, वीकली इको चैलेंज रखा जाए जहां बच्चे अपने घर से इको एक्टिविटी सीखें। चौथा, स्कूल गार्डन प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करें जहां बच्चे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, नेचर को डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये सब एक्टिविटीज सिर्फ अवेयरनेस नहीं देती बल्कि इमोशनल कनेक्शन भी बिल्डअप करती हैं। अब अगर हम बात करें ब्रॉडर पिक्चर के बारे में, तो भाई एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का फ्यूचर इसी जनरेशन के हाथ में है। और अगर आज हम बच्चों को इको स्विच माइंडसेट दे दें तो कल वो सिर्फ कंज्यूमर्स नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनेंगे। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि बच्चे चेंज से डरते नहीं हैं, वो चेंज को एक्सेप्ट करते हैं और उसे फन बनाते हैं। तो भाई इको स्विच का मैसेज आज के लिए ये है कि अगर हम फ्यूचर को ग्रीन देखना चाहते हैं तो भाई हमें आज से ही अपने क्लासरूम्स को इको फ्रेंडली बनाना होगा। साथियों इसी नोट के साथ स्टे ट्यून्ड टू FM 107, मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच, जहाँ हर छोटी आदत एक बड़ा फर्क ला सकती है। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: क्वालिटी एजुकेशन की अहमियत क्यों है? इसकी अहमियत इसलिए है कि जब इंसान को एक अच्छी तालीम मिलती है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, वो अपनी जिंदगी के बेहतर फैसले ले पाता है। तालीम जो है वो इंसान को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाती है। एजुकेटेड सोसाइटी ज्यादा पीसफुल, पावरफुल और प्रोग्रेसिव होती है। क्राइम रेट ऐसी सोसाइटी में कम होता है। लोग एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से रहना सीखते हैं। जहाँ क्वालिटी एजुकेशन इकोनॉमी को मजबूत बनाती है, स्किल्ड लोग जॉब्स क्रिएट करते हैं और इनोवेशन लेकर आते हैं, इससे मुल्क की जीडीपी भी तो बढ़ जाती है। वहीं पर जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं, वो भी एजुकेशन के चलते, आई मीन टू से क्वालिटी एजुकेशन के चलते जो है उन्हें भी हैंडल या टैकल किया जा सकता है। जैसे क्लाइमेट चेंज है, पावर्टी है, हेल्थ इश्यूज है, ये प्रॉब्लम्स एजुकेटेड लोगों के लिए हैंडल करना थोड़ा सा आसान होता है। रिसर्च और इनोवेशन के जरिए भी ये मसाइल हल किए जा सकते हैं। एजुकेशन को अक्सर की एनेबलर माना जाता है क्योंकि ये बाकी तमाम डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने में मदद करती है। अब ये जानना जरूरी है कि क्वालिटी एजुकेशन की बुनियाद क्या, फाउंडेशन क्या है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है क्वालिफाइड टीचर्स का होना। अच्छे टीचर्स तालीम के सबसे इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं। अगर टीचर्स ट्रेन्ड हैं, मोटिवेटेड हैं, तो स्टूडेंट्स भी बेहतर परफॉर्म करते हैं। वहीं पर करिकुलम को अपडेट किया जाए, डिजिटल लिटरेसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स को मजीद और इन्हांस किया जाए। वहीं स्कूल और यूनिवर्सिटीज सेफ हों ताकि स्टूडेंट एक रिस्पेक्टफुल और सपोर्टिव एनवायरमेंट में जाएं और तालीम हासिल करें। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है, सेफ लर्निंग एनवायरमेंट होना चाहिए। वहीं टेक्नोलॉजी, इसका इस्तेमाल तो बहुत जरूरी है। आज के दौर में ऑनलाइन लर्निंग है, AI है, डिजिटल टूल, इन सारी चीजों के जरिए भी तालीम जो है हासिल करना आसान भी हो गया है। एक चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है इक्वल एक्सेस। हर बच्चे को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, लड़का हो या लड़की हो, बूढ़ा हो जवान हो, तालीम का हक बराबर से मिलना चाहिए। दुनिया भर में क्वालिटी एजुकेशन को हासिल करने की बहुत सी रुकावटें हैं और सबसे बड़ी है पावर्टी, गुर्बत। वहीं पर कुछ जगहों पे जेंडर इनइक्वालिटी, लड़कियों को तालीम से रोका जाना। वहीं पे कुछ जगहों पर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, यानी स्कूल्स नहीं है, लाइट नहीं है, क्लीन वाटर नहीं है, प्रॉपर क्लासरूम्स नहीं है, ट्रेन टीचर्स नहीं है, और डिजिटल डिवाइड इस पे तो शायद बात करूं तो घंटों बात करूं। देखिए, हम और आप जब बात करते हैं टेक्नोलॉजी क्वालिटी एजुकेशन की, तो हमें ऑनलाइन क्लासेस को भी समझना आना चाहिए, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए आसान हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हम समझें, और ये सब एजुकेशन को आसान और एक्सेसिबल बनाते हैं। देखिए, 2030 का जो एजेंडा है उसमें पावर्टी खत्म करना है, इक्वालिटी लाना है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, सबसे इम्पोर्टेंट पिलर जो कहीं ना कहीं हर किसी के साथ इंटरलिंक्ड होता है, वो है क्वालिटी एजुकेशन। इन तमाम गोल्स को अचीव करने के लिए एजुकेशन जरूरी है। SDGs के मुताबिक 2030 तक हर बच्चे को प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए, जेंडर इक्वालिटी को इंश्योर किया जाना चाहिए। ये एक ग्लोबल कमिटमेंट है जिसमें तमाम कंट्रीज हिस्सा ले रही हैं। सिर्फ हिस्सा लेने से काम नहीं चलेगा, काम करके दिखाने से होगा। दोस्तों, आखिर में बस मैं यही कह सकती हूँ कि क्वालिटी एजुकेशन एक पावरफुल टूल है जो दुनिया को बेहतर बना सकता है। ये सिर्फ इल्म हासिल करने के जरिए नहीं, बल्कि इंसानियत के जरिए भी, और इंसानियत का रास्ता भी दिखाता है। अगर हम 2030 तक अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं, तो हमें आज ही से एजुकेशन में इन्वेस्ट करना होगा, इक्वालिटी की बात करनी होगी, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना होगा, और आखिर में ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हम तालीम को बेहतर बना दें तो हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। इसी पॉजिटिव नोट पे मैं नाजिया आपसे इजाजत लूंगी। आपकी मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी। One step to 2030.
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: बराहे करम गर्मियों के दौरान गाड़ियों में आग लगने के खतरात से बचने के लिए जरूरी सेफ्टी गाइडलाइंस का ख्याल रखना इंतहाई अहम है। आप सबके लिए हमारी दुआ है कि ये गर्मियां महफूज और एक्सीडेंट फ्री गुजरें। गाड़ी को आग के खतरात से महफूज रखने के लिए चंद अहम बातों पर जरूर अमल करें। सबसे पहले मोबाइल फोन्स या किसी भी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को गाड़ी के अंदर छोड़कर ना जाएं, क्योंकि गाड़ी में ज्यादा गर्मी हो जाने की वजह से इनमें आग लग सकती है। हमेशा अपनी गाड़ी में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखें, जो इमरजेंसी के वक्त फौरन इस्तेमाल हो सके। किसी भी किस्म का एक्सप्लोसिव मटेरियल या जल्दी जलने वाली चीजें जैसे परफ्यूम्स, लाइटर्स या केमिकल्स गाड़ी में रखने से परहेज करें। और वहीं रेडिएटर में कूलेंट को बाकायदगी से चेक करते रहें, ताकि ओवरहीटिंग से बचा जा सके और इंजन महफूज रहे। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि आपकी सेफ्टी आपकी पहली डिफेंस होती है। याद रखें, छोटी सी एहतियात बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

हमने मूसा को वही भेजी कि रातों रात मेरे बंदों को लेकर निकल जाओ, तुम्हारा पीछा किया जाएगा। इस पर फिरौन ने फौजें जमा करने के लिए शहरों में नकीब भेज दिए और कहला भेजा कि ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं और इन्होंने हमको बहुत नाराज किया है, और हम एक ऐसी जमात हैं जिसका शेवा हर वक्त चौकन्ना रहना है। इस तरह हम उन्हें उनके बागों और चश्मों और खजानों और उनकी बेहतरीन कयामगाहों से निकाल लाए। ये तो हुआ उनके साथ, और दूसरी तरफ बनी इसराइल को हमने इन सब चीजों का वारिस कर दिया। सुबह होते ये लोग उनके ताकुब में चल पड़े। जब दोनों ग्रोहों का आमना सामना हुआ तो मूसा के साथ ही चीख उठे कि हम तो पकड़े गए। मूसा ने कहा, हरगिज नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो जरूर मेरी रहनुमाई फरमाएगा। हमने मूसा को वही के जरिए से हुक्म दिया कि मार अपना आसा समंदर पर। यकायक समंदर फट गया और उसका हर टुकड़ा एक अजीम शान पहाड़ की तरह हो गया। उसी जगह हम दूसरे ग्रोह को भी ले आए। मूसा और उन सब लोगों को जो उसके साथ थे हमने बचा लिया और दूसरों को गर्क कर दिया। इस वाकये में एक निशानी है, मगर इन लोगों में से अक्सर मानने वाले नहीं है। और हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम भी।

इसके बाद इब्राहिम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे हुक्म अता कर और मुझको सालेहों के साथ मिला, और बाद के आने वालों में मुझको सच्ची नामवरी अता कर और मुझे जन्नत नाइम के वारिसों में शामिल फरमा, और मेरे बाप को माफ कर दे कि बेशक वो गुमराह लोगों में से है, और मुझे उस दिन रुस्वा न कर जबकि सब लोग जिंदा करके उठाए जाएंगे, जबकि न माल कोई फायदा देगा न औलाद, बजुज इसके कि कोई शख्स कल्बे सलीम लिए हुए अल्लाह के हुजूर हाजिर हो।

समूद ने रसूलों को जुटलाया। याद करो जबकि उनके भाई सालेह ने उनसे कहा, क्या तुम डरते नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूं, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूं, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के जिम्मे है, क्या तुम उन सब चीजों के दरमियान जो यहां हैं बस यूं ही इत्मीनान से रहने दिए जाओगे, इन बागों और चश्मों में, इन खेतों और नखलिस्तानों में जिनके खोशे रस भरे हैं, तुम पहाड़ खोद खोद कर फखरिया उनमें इमारतें बनाते हो, अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, उन बेलगाम लोगों की इताअत न करो जो जमीन में फसाद बरपा करते हैं और कोई इस्लाह नहीं करते। उन्होंने जवाब दिया।

तू महज एक सहरज़दा आदमी है, तू हम जैसे एक इंसान के सिवा और क्या है, ला कोई निशानी अगर तू सच्चा है। सालेह ने कहा, ये ऊंटनी है, एक दिन इसके पीने का है और एक दिन तुम सबके पानी लेने का, इसको हर गिज न छेड़ना वरना एक बड़े दिन का आजाब तुमको आ लेगा। मगर उन्होंने उसकी कोंचे काट दी और आखिरकार पछताते रह गए, अजाब ने उन्हें आ लिया। यकीनन इसमें एक निशानी है मगर इनमें से अक्सर मानने वाले नहीं, और हकीकत यह है कि तेरा रब जबरदस्त भी है और रहीम।